अच्छा तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो कि खुदा कभी खुशकी पर ही तुमको जमीन में धंसा दे या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे और तुम उससे बचाने वाला कोई हिमायती ना पाओ? और क्या तुम्हें इसका अंदेशा नहीं कि खुदा फिर किसी वक्त समंदर में तुमको ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेजकर तुम्हें गर्क कर दे और तुमको ऐसा कोई ना मिले जो उससे तुम्हारे इस अंजाम की पूछ गछ कर सके? ये तो हमारी इनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी और उन्हें खुशकी और तरी में सवारियां अता की और उनको पाकीजा चीजों से रिस्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूकात पर नुमाया फौकियत बख्शी।

0: फिरौन ने यही कहा था ना कि ऐ मूसा, मैं समझता हूं कि तू जरूर एक सहरज़दा आदमी है। मूसा ने उसके जवाब में कहा, तू खूब जानता है कि ये बसीरत अफरोज निशानियां जमीन और आसमानों के रब के सिवा किसी ने नाजिल नहीं की हैं, और मेरा ख्याल ये है कि ऐ फिरौन, तू जरूर एक शामत ज़दा आदमी है। आखिरकार फिरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इसराइल को जमीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने उसको और उसके साथियों को इकट्ठा गर्क कर दिया, और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब तुम जमीन में बसो। फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आन पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले उसे बशारत दे दो और जो न माने उसे मुतनब्बिह कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने मौका मौका से बतदरीज उतारा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या न मानो, जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है उन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वो मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं, पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था, और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं, और इसे सुनकर उनका खुशू और बढ़ जाता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम है, और अपनी नमाज न बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़ो और न बहुत पस्त आवाज से, इन दोनों के दरमियान औसत दर्जे का लहजा इख्तियार करो, और कहो तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने न किसी को बेटा बनाया, न कोई बादशाही में उसका शरीक है, और न वो आजिज है कि कोई उसका पुश्तिबान हो, और उसकी बड़ाई बयान करो कमाल दर्जे की बड़ाई। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزي.

0: सामीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दोस्त हमेशा आपके साथ रहे, आपका साथ दे, तो ये जरूरी है कि हम आपस में मामलात को साफ रखें। अरबी जबान की कहावत है, इदा बगैत रफीजक दौम हासिब कुल्लियो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोस्ती बरकरार रहे, तो हर दिन उसका मुहासबा लें और आपस में मामलात को साफ रखें। वैसे ये कहावत दोस्त ताजरों और गाहकों के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। तो जब कोई गाहक नई चीज खरीदना चाहता है लेकिन उसके जिम्मे पहले से वाजिबुल अदा कर्जा है, तो ये कहावत इस्तेमाल की जाती है ताकि गाहक अपनी पिछली अदायगियां मुकम्मल करे फिर नई चीज खरीदे। इदा बगैत रफीजक दौम हासिब कुल यौम।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy, Health for All. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum rahmatullah. Health for All mein khush aamdeed. Aaj ka topic hai dil. Hamara sabse mazboot magar sabse nazuk hissa hai. हम रोज उसके लिए कितना खुश करते हैं शायद बहुत कम आज हम जानेंगे कि कैसे चंद सादा आदतें दिल को मजबूत सेहतमंद और खुश भी रख सकती हैं एक 45 years एक शख्स नदीम उनका नाम है और वो हमेशा काम में मसरूफ रहते थे खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं था एक्सरसाइज बिल्कुल नील एक दिन मामूली सीने के दर्द से हॉस्पिटल पहुंचे जहां ये पता चला कि दिल की जो शरियाने हैं वो तंग हो चुकी हैं तो डॉक्टर ने कहा कि आपका दिल थक गया है अगर आज नहीं संभाला तो फिर कल बहुत देर हो जाएगी तो इसलिए फिर नदीम साहब ने अपनी ज़िंदगी बदली वॉक शुरू की बैलेंस डाइट ली और नींद पूरी की तो चंद माह के बाद उनका दिल बेहतर होता चला गया तो इसमें बहुत सारे जो मसाइल हैं वो होते हैं और उनकी ख़ास वजह भी होती हैं जैसे कि हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली गिज़ाएँ जब खाते हैं तो मुमकिन है हमारे दिल को अच्छा ना लगे स्ट्रेस जो है वो भी जो है वो दिल की सेहत को ख़राब करने में हम ये कह सकते हैं कि कुछ नंबर्स में हो सकता है स्मोकिंग बहुत अहम है इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना भी दिल को नुकसान पहुंचा सकता है और गिज़ाएँ जैसे कि छोटे छोटे मेजर्स अपना कर हम अगर अपनी गिज़ा में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें फिश का या एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें शामिल कर लें तो हमारे दिल को पसंद आएगा इसके अलावा सब्जियां हैं दलिया है ताज़ा फल हैं वो ज़रूर शामिल कीजिए नमक और चीनी कम रखिए WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में तकरीबन 1.8 करोड़ अफराद दिल की बीमारियों से वफात पा जाते हैं यानी हर 34 सेकंड्स के बाद एक जान ज़ाया हो जाती है तो इसके लिए करना कि यह है कि रोज़ हमें 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग तर्क कर दीजिए अपना वजन जो है नॉर्मल रखिए नींद की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर पूरी कीजिए इसके अलावा जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिविटी है उससे आप दूर रहिए अब अगर हम सवाल अपने आप से करें और करना भी ज़रूर चाहिए कि हम रोज़ाना वॉक करते हैं या नहीं तो क्या आपने आज दिल के लिए कोई हेल्दी कदम उठाया है या नहीं ये बहुत अहम है अब दिल की हिफाजत सिर्फ मेडिसिन से नहीं तर्ज ज़िंदगी से होती है यानी हम अपना लाइफस्टाइल जो है उसे देखें और हर खाना हर एक्टिविटी हर सांस हमारे दिल पर असर डालती है और जो अफराद दिल के दोस्त खाना खाते हैं और तनाव कम रखते हैं या स्ट्रेस कम रखते हैं तो उनका दिल हमेशा जवान रहता है दिल सिर्फ

0: प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह अपने मुल्क की सियाहत कर रहा था। उसे ये सोच आई कि अपनी रियाया यानी अपने लोगों का इम्तिहान लिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि वो किस तरह के लोग हैं। बादशाह ने फैसला किया कि अपनी रियाया का इम्तिहान लेने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो उनकी सोच और उनके रवैये को समझने में मदद करे। बादशाह ने अपनी सलाहियत के मुताबिक एक अच्छा सा प्लान बनाया। उसने एक बड़ी और मशहूर गुजरगाह के बीच में एक बहुत बड़ा चट्टानी पत्थर रखवा दिया। ये पत्थर इतना बड़ा था कि वो सड़क का रास्ता बंद कर रहा था। फिर बादशाह ने अपने एक पहरेदार को, जो एक दरख्त के नीचे छुपा बैठा था, ये हुक्म दिया कि वो आते जाते लोगों के रद्द अमल को देखे और बादशाह को रिपोर्ट करे। एक दिन पहला शख्स जो वहां से गुजरा, शहर का एक मशहूर ताजिर था। जब उसने सड़क पर रखा हुआ पत्थर देखा तो वो गुस्सा हो गया और बहुत नफरत से उस चट्टान को देखकर बोला, उफ, ये किस काम का है? इसको किसने यहाँ रखवा दिया भाई? जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसे सबक सिखाना चाहिए। फिर वो चट्टान के आसपास कुछ देर घूमता रहा और बादशाह तक शिकायत करने की धमकी देता हुआ चीखता हुआ चला गया। उसका गुस्सा देखकर ये लग रहा था कि जैसे वो इस छोटी सी बात पर अपने गुस्से का पूरा इजहार कर रहा हो। उसके बाद एक ठेकेदार का गुजर वहां से हुआ, वो भी इस चट्टान को देखकर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज्यादा नहीं था जितना पहले वाले ताजिर का था। उसने कहा, ये तो एक बेहिसाब काम है, ऐसे लोग कैसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हैं? ये देखो कैसे बिला वजह का पत्थर पड़ा है, अब इसको हटाना किसकी जिम्मेदारी है? उफ, इसको हटाने का एहसास कौन करेगा अब? फिर वो भी थोड़ा थोड़ा घूम घुमा कर वहां से चला गया। इसके बाद वहां से कुछ दोस्त गुजरे जो काम की तलाश में निकले हुए थे, लेकिन उनका रद्द अमल बहुत हल्की सी तनकीद पर मुबनी था। वो हंसते हुए बोले, अरे ये किसने बेकार का काम किया है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ना है? ये कहकर वो अपने अपने रास्ते पर चल दिए। इस सब को दो दिन गुजर गए और दो दिन बाद एक गरीब किसान का गुजर वहां से हुआ। वो एक बहुत मेहनती और मुसलसल काम करने वाला इंसान था। उसने जब ये देखा कि सड़क का रास्ता बंद हो गया है तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उसे इस बात का एहसास हो गया कि ये पत्थर उन लोगों के लिए तकलीफ का सबब बन रहा होगा जो यहाँ से गुजरते होंगे। उसने अपने दिल में सोचा, अगर ये पत्थर यहाँ से हट जाए तो सबके लिए बेहतर ही होगा, हर शख्स को इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी। अब ये किसान अकेला था और इस पत्थर को हटाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मजबूत लाठी से इस पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। उसने पूरी ताकत लगाई और लंबी कोशिश के बाद बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वो पत्थर हट गया। जैसे ही पत्थर हटा, उसने देखा कि पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में एक पुरानी संदूक थी। किसान ने इस संदूक को खोला, जब उसने अंदर देखा तो अंदर एक सोने का टुकड़ा था और एक छोटा सा खत था। खत पर लिखा था, इस पत्थर को सड़क के बीच से हटाने के लिए शुक्रिया, आप वो शख्स हैं जो मुसीबत का हल निकालने के लिए नफरत और गुस्सा नहीं बल्कि सोच और अमल से काम लेते हैं। इस काम के बदले ये सोना उस मेहनत और सबर का इनाम है। किसान ने नहायत ही खुशी से वो सोना उठाया और अपनी मेहनत का इनाम समझकर शुक्र अदा किया। उसे ये समझ आ गया था कि जो लोग शिकायत करते हैं वो सिर्फ असल में अपने गुस्से को जायल करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच और मदद से किसी की मुश्किल हल करते हैं उन्हीं को असल इनाम मिलता है। बादशाह जो अपने पहरेदार से ये सब कुछ सुन रहा था, उसे ये दिखा कि किसान ने अपनी मुस्बत सोच और अमल से मसले का हल निकाला था। इसलिए बादशाह ने सोचा कि ये किसान वाकई एक बेहतरीन इंसान है जो अपने काम से अपने जज्बात को कंट्रोल करके अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि शिकायत करना बहुत आसान होता है, लेकिन असली ताकत अपनी सोच और अमल में होती है। मसाइल का हल नफरत और गुस्से में नहीं होता, बल्कि सब्र और अच्छे रवैयों में होता है।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें। गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
0: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
0: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
0: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है, इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है? किस तरह इकॉनमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है? इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुताल्लिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूँ नासिया FM 107 से एंड वेलकम टू दिस सेगमेंट कॉल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि रेट इंटरेस्ट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ गया? और अगर सुना है तो शायद सोचा हो कि ये बेसिस पॉइंट होता क्या है। और अगर नहीं सुना तो आज आप जानेंगे कि ये छोटी सी गिनती इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल प्ले करती है और आपकी जिंदगी को भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है। कैसे? ऐसे अब बताते हैं। दोस्तों, बेसिस पॉइंट है क्या? सबसे पहला और बुनियादी सवाल। तो बेसिस पॉइंट, बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BPS। एक बेसिस पॉइंट जो है वो बराबर होता है 0.01% के। यानी अगर इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता है तो इसका मतलब है 1% का इंक्रीज, यानी 1% इंक्रीज हुआ। ये टर्म फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसलिए यूज होती है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर सिर्फ 1% इंक्रीज बोला जाए तो लोग सोच सकते हैं कि टोटल रेट 1% है या 1% बढ़ा है। लेकिन अगर कहा जाए 100 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज तो बात बिल्कुल वाजे हो जाती है। अब इस छोटी सी गिनती की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, इस पे भी बात करूंगी। बेसिस पॉइंट का बेसिकली जो यूज है वो है इंटरेस्ट रेट्स में होता है, बॉन्ड्स को लेकर होता है, लोन रेट्स में होता है और कई बार इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को मेजर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, बैंकर्स या इकोनॉमिस्ट इस टूल का इस्तेमाल करते हैं और वो बेसिकली से कहते हैं प्रिसिशन टूल। जी हाँ, जब सेंट्रल बैंक जैसे कि कतर सेंट्रल बैंक या फिर US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो वो बेसिस पॉइंट्स में बताता है ताकि हर कोई एग्जैक्ट समझ सके कि कितना फर्क आया है। वैसे इसके काम करने का तरीका जो है वो बड़ा ही यूनिक है। मतलब अगर हम गिनतियों को अच्छे से समझने में, यानी मेरी तरह अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गिनती आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे लगती है या उतनी क्लियरली समझ नहीं आती, तो ये टूल आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लीजिए घर के लिए एक लोन लिया है और आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट है 5% और बैंक कहता है कि वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे हैं, तो नया रेट क्या हुआ? 5.25%। वही अगर एक बॉन्ड का रिटर्न है 3.50% और कोई कहता है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट गिर रहा है, तो नया रिटर्न रेट होगा 3.25%। यानी छोटी सी गिनती, लेकिन अगर लोन अमाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह के मामले में इसको देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए, इसका इस्तेमाल बैंक्स करते हैं लोन्स और डिपॉजिट रेट को सेट करते वक्त, वहीं इसका इस्तेमाल जो है वो इन्वेस्टर्स करते हैं रिटर्न्स को कैलकुलेट करते वक्त, वहीं इसका इस्तेमाल सेंट्रल बैंक्स भी करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस अनाउंस करते वक्त, इसका इस्तेमाल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं अपने प्रीमियम को कैलकुलेट करते टाइम, वहीं इसका इस्तेमाल देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करने के लिए भी किया जाता है। तो ये जो है बड़ी कमाल की इकाई है, लेकिन ये आपकी और हमारी लाइफ को किस तरह से मुतासर करती है ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मान लेते हैं अगर आपका इंटरेस्ट रेट, जो आपने लोन या ईएमआई वगैरह आपकी चल रही है, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए तो आपकी मंथली ईएमआई भी बढ़ सकती है। यानी अगर आपका कार लोन या फिर आपका होम लोन है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ये असर आपका जो है वो अच्छे खासे नंबर में कैलकुलेट हो जाता है। वहीं अगर बैंक डिपॉजिट 100 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी आपकी सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा आपको फायदा होगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है या इसका जो इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए भी होता है, जहाँ सेंट्रल बैंक्स बेसिस पॉइंट्स के जरिए इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है, महंगाई, यानी अगर महंगाई बढ़ रही हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है और ये बेसिस पॉइंट्स में ही होता है। तो बेसिस पॉइंट्स, अब सवाल उठता है क्या बेसिस पॉइंट हर किसी को समझना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ बिल्कुल, चाहे आप इन्वेस्टर हो या आप स्टूडेंट हैं या आप सिर्फ अपनी पर्सनल फाइनेंस मैनेज करते हैं, बेसिस पॉइंट समझना एक स्मार्टर डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। बेसिकली एक तरह की टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत होता है, चाहे आपकी सैलरी को लेकर हो, फिर चाहे आपके लोन्स को लेकर हो या आपकी सेविंग्स को लेकर हो, सब कुछ इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बेसिस पॉइंट से अफेक्ट होती ही होती है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं काफी हद तक इस टर्म को आपको समझाने में कामयाब रही हूँ। तो बस जाते जाते एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं कि बेसिस पॉइंट है क्या। तो बेसिस पॉइंट जो है वो एक बहुत छोटी सी यूनिट है, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसका रोल बहुत बड़ा है। ये क्लैरिटी, प्रिसिशन और ट्रांसपेरेंसी लाता है इकोनॉमिक डिसीजंस में, जो कि जरूरी भी है। अगर आप चाहें कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े तो बेसिस पॉइंट को समझना आपके लिए जरूरी था, इसीलिए इस टर्म को लेकर मैं आई भी। वेल, अगली बार जब आप न्यूज में सुने कि इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया, तो आप स्माइल करके मुझे याद कीजिएगा कि हाँ, आपको पता है कि PPS है क्या। वेल, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नए एपिसोड में एक नए टर्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुंदरी FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्लाह।

FM 107. Time check. राइट गाइस, टाइम फॉर द टाइम चेक. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.

0: दोस्तों, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो है अपने काम की तरफ आप निकल चुके होंगे या फिर निकलने की प्लानिंग कर रहे होंगे। वैसे आज ना मुझे पता नहीं क्यों बार बार रह रहे कि एक चीज़ याद आ रही थी कि कुछ लोग जो होते हैं ना लाइफ में, वो इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं टूवर्ड्स परफेक्शन कि उन्हें हर चीज़ में परफेक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली मेम्बर। जब भी मैं निकल रही थी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, अरे भाई मैं सुबह सुबह जल्दी में हूँ, ऐसे वैसे करने के चक्कर में मैं लेट हो सकती हूँ ना। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सब कुछ परफेक्ट हो। ये भी मेरे जहन में आया कि हो सकता है ये घर पर हैं, थोड़ा सा रिलैक्स्ड मोड में है, फ्री हैं, तो शायद हर चीज़ को परफेक्ट वाली निगाह से देख रहे हैं। बट हाँ, जो लोग जो थोड़ा सा जल्दी में होते हैं वो शायद चीज़ों को उतना परफेक्टली नहीं कर पाते। आई मीन टू से चीज़ें अपनी जाते वक्त उतना परफेक्टली नहीं रख पाते जितना रखना चाहिए। और उसके बाद आपको पता है, अगर आपकी मम्मी है, आपकी खाला है, आपकी कोई और भी एल्डरली आपके घर में है बंदा या बंदी, तो वो आपको डेफिनेटली टोकता ही टोकता है। तो इस तरह की नोक झोंक टोक तो चलती रहती है। लेकिन हाँ, यहाँ से एक और भी चीज़ निकल के आती है और वो ये कि कुछ लोग जो हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम अपने आज को जब तक परफेक्ट नहीं करेंगे कल की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। जबकि मैं ये कहती हूँ कि आज को परफेक्ट करने के बजाय आज को बेहतर करो। परफेक्शन का लेवल तो बहुत मुश्किल से बड़ी बाद में अचीव होता है। देखो, हम सब की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा होता ही होता है। कभी हम किसी काम के लिए या किसी काम को इसलिए डिले कर देते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि या तो बहुत अच्छा हो या तो चलो करो ही मत। लेकिन अक्सर ज़िंदगी हमें और आपको ये सिखाती है कि परफेक्शन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेस। अगर आज आप अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज 10 मिनट की वॉक शुरू करना इज फार बेटर देन एक परफेक्ट फिटनेस रूटीन से। शुरुआत आज ही करनी है, अभी करनी है। और लाइफ में बाकी सारी चीज़ें तो आती जाती रहती है, तो बस आज ही इस प्यारे से नोट पे खूबसूरत सी शुरुआत की है। मैंने तो बताया अपना हालचाल और आप मुझे मेरे साथ जुड़ के अपना हालचाल मुझे बता सकते हैं 666-22-107 पर। और जैसे हमने आते ही बात की ना कि ठीक है परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में काम ही ना हो, ये कैसा थॉट हो सकता है? तो काम कीजिए, ठीक है, करते करते करते करते आप परफेक्शन का लेवल भी अचीव कर लेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट करूँगा और तब तक करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आज का सुबह का ज्ञान हो गया, अब आपका हालचाल होगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले सुबह के असकार होंगे, वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका और हमारा स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन है, नंबर्स हैं 666-22-107, कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं।

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: गाइस, एक बार वापस आप सबको कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ। और आज है बहुत ही प्यारा सा ट्यूसडे का दिन, 11th of August। और आज जो होता है आप जानते हैं कि आज हम पुराने गाने यानी आई मीन टू से 90s आपके लिए सेट करके रखते हैं, जो 7 बजे से यानी 7 AM ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट कर देंगे। आपके बैक टू बैक जितने भी अच्छे फेवरेट वाले सॉन्ग्स हैं वो सारे के सारे लाइन अप है, क्योंकि मैं देख रही थी कि आज लिस्ट में है क्या क्या। जब मैंने देखा तो मुझे लगा अरे वाह, तो बहुत ही खुश होगी हमारी ऑडियंस। तो आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम धीरे धीरे आते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं मौसम के हाल चाल पर। तो चलिए आज मौसम कैसा रहेगा वो आपको बताते हैं। आज मौसम अगेन गर्म है, पार्शली सनी भी है। टेम्परेचर की बात की जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज 42 degrees Celsius, वहीं मिनिमम की बात की जाए तो इट्स 33 degrees Celsius। एंड ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 55 से लेकर 70 के दरमियान रहने वाला है, इसलिए गर्मी भी लगती है। जैसे हम बाहर निकलते हैं हमें तो बहुत ज़्यादा, एक तो चश्मा आप लगा कर अगर निकलते हैं ना ग्लासेस, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो बस थोड़ा सा ये बात हमें बता रही होती बार बार कि कितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी का लेवल है। अच्छा, यूवी इंडेक्स इज अगेन वेरी हाई एट 8। एंड अगर आप बाहर निकल रहे हैं सो मेक श्योर कि आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इसके अलावा सनराइज़ यानी आज जो है वो सूरज चाचा निकले हैं कह सकते हैं 5:08 पे, और सनसेट होगा 6:16 पर। बाकी तो सारी चीज़ें मैं बताती ही चली जा रही हूँ, वो तो अब मैं क्या ही आपको याद दिलाऊँ, आपको याद ही हो गई है। अच्छा, उसके साथ जैसे आज हमने कहा कि 11th of August है, तो आज दुनिया भर में कुछ दिलचस्प ऑब्जर्वेंसेस भी हैं, जिसमें सबसे पहले जो मुझे नज़र आया वो ये कि प्ले इन द सैंड डे। अभी ये तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, फिलहाल तो नहीं करूँगी, लेकिन लेटर ऑन कैन प्लान सच थिंग्स। ये काफ़ी फन ऑब्जर्वेंस है जो कहीं ना कहीं हमें और आपको ये याद दिलाता है कि यू नो ज़िंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उन्हें इन्जॉय करना कितना ज़रूरी है। चाहे आप यू नो बीच पर कैसल बनाते हैं या बच्चों के साथ और एक्टिविटीज़ जो भी बीच की हैं वो करते हैं, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कीजिएगा जब भी आपको मौका मिले, ये छोटी छोटी चीज़ें वाकई आपको हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन का अपने आप में बहुत ही इंस्टेंटली एहसास देती हैं। तो आज ये दिन है। इसके अलावा आज का दिन है नेशनल सन एंड डॉटर डे। ये दिन जो है वो पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच एक ख़ास रिश्ते को सेलिब्रेट करने के हवाले से जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और मैं कह सकती हूँ कि आज का दिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मौका भी हमें देता है कि बच्चों के साथ अगर हमारे पास टाइम है तो वो एक परफेक्ट नहीं कहना चाहिए, क्वालिटी टाइम जो हमें स्पेंड करना है वो करना चाहिए। उनके छोटे छोटे अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें बताइए कि वो हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। तो एक अच्छी गुड कन्वर्सेशन उनके साथ होना, सिंपली जस्ट सिट एंड जस्ट हैव अ परफेक्ट, फिर मुंह से निकल रहा है मेरे, एक अच्छी कन्वर्सेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दो चीज़ें और भी हैं बट वो उतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है। बस यही हम कह सकते हैं कि आज का दिन कहीं ना कहीं हमें और आपको बड़ा ही खूबसूरत सा पैगाम देता है कि ज़िंदगी की हर खुशी जो है वो किसी परफेक्ट चीज़ में मत ढूंढिएगा। बार बार मैं परफेक्ट पे जोर दे रही हूँ क्योंकि आज का हमारा टॉपिक कहीं ना कहीं इसके साथ भी जुड़ा है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को एकदम यादगार बना देती हैं। तो बस इसी तरह से छोटे छोटे पल जो भी मैं आपको मिलते हैं उन्हें इन्जॉय कीजिए। फिलहाल तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई, आई मीन टू से वेदर हो गया और आज के ऑब्जर्वेंसेस हो गए। अब आ जाते हैं आज आप में से कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए यानी आपके मैसेजेस की तरफ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो है वो सऊदी अरेबिया से हुसैन जी सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर कल बारिश हुई। अच्छा, सऊदी में कल कुछ जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। देखिए ऐसे तो यहाँ भी मैंने देखा, कुछ लोगों ने वीडियोस डाले थे एक दो दिन पहले के भी, वो भी मैं देख रही थी कि कुछ जगह पर हल्की फुल्की यू नो बूंदाबांदी, तो थोड़ी सी बारिश हो रही है। एंड यहाँ और शायद कल भी हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कल और उससे पहले वाले दिन, प्लीज़ करेक्ट कीजिए। बट हमें तो कहीं समझ में नहीं आई, हमें तो कहीं बारिश दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन लोग डालते वीडियो तो कई बार मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ऐसी कभी बहुत पुरानी बारिश का वीडियो ऐसे डाल दिया कि बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हियर इन कतर. आई डोंट नो, अगर आपके आसपास के कोई इलाके में हुई है तो बताइएगा जरा मुझे. अच्छा, इसके साथ गुड मॉर्निंग एंड सलाम कहा है यहाँ पे कयाम खान जी ने, हमारे साथ जुड़ गए हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आपको एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाजिया मैम, और सभी को गुड मॉर्निंग कहते हैं. इन्होंने अपना वर्कआउट फिनिश किया है, फीलिंग सुपर एनर्जेटिक. यू वोंट बिलीव, मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं जिम ज्वाइन करूँ. और ये है मीत हमारे साथ, और मैं यही सोचती रहती हूँ कि अब करूँ तब करूँ, अब करूँ तब करूँ, लेकिन वही है कि एक परफेक्ट रूटीन प्लान करती रहती हूँ, उस चक्कर में जो छोटी मोटी एक्सरसाइज है वो भी नहीं हो पाती. आगे कहते हैं, मॉर्निंग ट्रेनिंग इजंट जस्ट अबाउट बिल्डिंग मसल, it sets the tone for your mindset too. Yeah, of course, when you start your day with movement, you carry that energy into everything else you do. Haan, ye to baat sahi kahi aapne, bilkul perfect baat hai. Aage kehte hain, for all those whose schedules allow, jinka allow karta hai schedule, I truly encourage them to make time for the gym in the morning. That's nice, but ho nahi pata. You will experience a powerful wave of positivity, clarity, confidence that stays with you throughout the day. Is it nice? Aur baki hum to kahenge, hum to kehte hi rehte hain aur khud ko bhi manate rehte hain ki ha aaj kal parso, but ab maine decide kar liya main karne hi wali hu bahut jaldi, is month mein nahi but inshallah September se to pakka. So aakhir mein kehte hain, let's keep pushing forward, staying constant and spreading this positive vibe together. Have a wonderful day ahead. We wish you the same. Have a wonderful day. Aur jaise unhone kaha ki aap itna energetic feel karte hain, agar if in case aapke paas time hai morning mein, set kar lijiye aur exercise kijiye, gym kijiye, whatsoever. Ye wo bande hain jo apni cheezon ko qaide se plan karte hain, hai na Meet. Main ye aapko keh sakti hu, Meet likh rakha hai inhone, inka naam I don't know, but I think inki life mein cheeze jo hain wo kafi planned hai. Inka schedule, inka daily ka routine, so many other things. तो ये बहुत अच्छी बात है. अच्छा, यहाँ पर गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आ चुका है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड लवली मॉर्निंग हमारी सारी टीम को एंड वर्ल्ड स्टील पैन डे. अच्छा जी, ये दिन भी आज मनाते हैं, तो मुझे क्यों नहीं नज़र आते हैं एक आध दिन यूसुफ जी. अच्छा चलिए, मैं अभी इसको देखती हूँ और मैं देखती हूँ इसको क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है. ऑल राइट, एंड यहाँ पर नूर मोहम्मद जी हैं एंड आई एम बैक. ओ वेलकम वेलकम जी, वालेकुम अस्सलाम. और आज 90s के सॉन्ग्स, हाँ जी आज 90s के सॉन्ग्स प्ले होने वाले हैं. उसमें इन्होंने बोला है कि DDLG का एक सॉन्ग आप प्ले कर दीजिएगा. ऑल राइट, ठीक है. वैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, बट चलिए ज़रूर. फरीद जी हमारे साथ खूबर सऊदी अरेबिया से जुड़ गए हैं. वाओ दैट्स नाइस. तो बताइए फरीद जी, क्या बारिश वारिश हुई? किसी ने बोला कि हाँ यहाँ हुई है, आप बताइए खूबर में भी हुई है कि नहीं. और सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आरजे नाजिया और सारी टीम को, सभी दोस्तों को. जावेद बाजवा जी की तरफ से सलाम एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, वी विश यू द सेम. एंड इंशाल्लाह आई होप कि हम और आप जल्दी कनेक्ट भी होंगे यहाँ पर. एक और भाई हमारे यहाँ पे सऊदी से जुड़ गए हैं, मियां बख्श जी सलाम कहते हैं. गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, और सभी सुनने वालों को सलाम आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग. इसके साथ एक और हमारे पास मैसेज है, इनका नाम हम चेक कर लेते हैं. गुड मॉर्निंग कहते हैं, ये है सिंह. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल आपको भी. इसके साथ यहाँ पर गुड मॉर्निंग कहते हैं साथ, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. यहाँ हमारे पास एक और मैसेज है, अली गुड मॉर्निंग कहते हुए अलखोर से हमें सुनते हुए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड किसी ने पूछा है ये कौन है भाई, इनका नाम देख लेते हैं. सोहेल जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, एंड आज मैं आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर मॉर्निंग में सुन रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग और रियली थैंक यू सो मच. आई होप कि आगे भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे, सुनते रहेंगे. अब से थोड़ी देर बाद हम जो हैं वो अपने ख़ास मुद्दे की तरफ भी आएंगे, उस पर भी बात होगी. वहाँ भी आपको हमारा साथ देना है, वहाँ पर आपको हमें डायरेक्टली कॉल करना है. और कॉल करने के लिए नंबर है 4434377. ये नंबर आप लिख लीजिए, और जैसे ही हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा, बस हम और आप वन टू वन कनेक्ट होंगे, बात करेंगे. आज भी कुछ है, लेकिन जैसे मेरे मुंह से निकलते ही जा रहा है ना, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तो समथिंग रिलेटेड टू दिस, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ कहीं आसपास है. अच्छा, गुड मॉर्निंग सर जी. अरे मुझे मैम बोलो भाई, सर तो बोल दिया आपने मुझे. सर जी इनका नाम जो है वो यहाँ पे है नहीं, एस एस लिखा हुआ है. सो थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी जी. इसके अलावा एक और गुड मॉर्निंग हमें आ चुका है और इनका नाम भी हम चेक कर लेते हैं. इनका नाम है हमजा. वेरी गुड मॉर्निंग हमजा, थैंक यू सो मच. तो यहाँ पे प्यारे प्यारे मॉर्निंग वाले मैसेजेस आ चुके हैं. हम भी पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, वापस आएंगे तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो आपके साथ शेयर करेंगे. कहीं नहीं जाइए, यहीं पर रहिए. मेरे मतलब है समर मॉर्निंग्स में मेरे साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी.
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नियत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 ओनली ऑन एफएम 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीब टू हैबिट,
5: हदीब टू हैबिट,
4: दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
6: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए.
7: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है. और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं. इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो.
8: द रिक्वेस्ट शो
7: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
8: फजील के साथ
7: संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी,
8: दिल से.
9: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है. अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो. सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए. कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों. फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके. पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे. बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके. पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके. इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके. छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है. पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए. इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद

0: मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ
0: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियत खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है

राइट गाइस, एक बार वापस आप सबको कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ 6:37 ऑन द क्लॉक। और आज का जो मुद्दा है वो उस पर आ जाते हैं। देखिए, आज मैंने सोचा कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें हमने महसूस किया है कि दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो हर चीज़, हर काम को, अपने दिन को परफेक्टली प्लान करते हैं। उनके कैलेंडर्स आप देखिए तो सेट होते हैं, रिमाइंडर्स लगे होते हैं, एकदम रूटीन सेट होता है। और अगर थोड़ा भी रूटीन ऊपर नीचे हो जाए ना तो वो थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं लाइफ में जो कहते हैं, जिन्हें कहते हुए आपने सुना होगा, लेट्स सी व्हाट्स हैपन। तो वो मतलब चीज़ों को प्लान नहीं करते, वो छोड़ देते हैं कि जब जैसा जो मौका आएगा मैं वैसे वैसे काम करता चला जाऊँगा। ज़्यादा प्लानिंग की बजाय मैं कह सकती हूँ वो सिचुएशन के मुताबिक जो है वो डिसीजंस लेना पसंद करते हैं। वैसे मैं ये नहीं कहती कि ये दोनों अप्रोचेस जो हैं वो सही नहीं है। देखा जाए तो दोनों ही अप्रोचेस सही भी हैं और इनके अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। प्लानिंग फॉर श्योर हम सब के लिए ज़रूरी है और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लानिंग हमें डायरेक्शन तो देती है। जब हम अपने गोल्स के लिए, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए एक बेहतर तरीके से प्लान कर लेते हैं तो उन्हें अचीव करना डेफिनेटली कितना आसान हो जाता है ना। और प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके वक्त की भी तो बचत करती है। बहुत बहुत सारा जो लास्ट में स्ट्रेस आता है लोगों के ऊपर वो भी नहीं आता है। लेकिन एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि अगर हर चीज़ परफेक्टली प्लान हो जाए और आप अपनी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें अगर परफेक्टली प्लान कर लेते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है वो एक्चुअली बोरिंग हो जाती है? अब सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं, सारी चीज़ें तो आपने प्लान कर रखी हैं डेली, तो वो जो हर रोज़ का जो एक एक्साइटमेंट है कि आज क्या नया हो सकता है, आज क्या नई चीज़ मैं कर सकता हूँ, या ऑल ऑफ सडन कुछ करना, वो फिर आप वो चीज़ें इंजॉय कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेट्स कीप इट दिस वे कि अगर हर चीज़ आपकी लाइफ में, आपके ज़िंदगी में प्लान्ड है एंड सो कॉल्ड परफेक्टली प्लान्ड है, जो भी आप प्लानिंग बनाते हैं, इट्स नॉट दैट कि आप सालों की प्लानिंग कर रहे होगे। हो सकता है हर रोज़ की प्लानिंग आप करते हो, हर वीक की प्लानिंग आप करते हो, या 2 weeks की प्लानिंग आपके जहन में चलती हो, या फिर अ मंथ, जो कि थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है मुझे। इतना लंबा तो प्लान अभी तो कोई नहीं कर सकता, नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में आप कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल आपका मैनेजमेंट है उसको लेकर आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में एप्लीकेबल

0: हैं। तो बस ये मुझे बताइए कि अगर आप ऐसे सोच के देखिए सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्लान है, यू हैव अ वेरी सेट टिपिकल रूटीन, तो क्या आपकी जो लाइफ है वो बोरिंग हो जाती है या उसमें एक्साइटमेंट बाकी रहता है? यही आज का सवाल है, प्लानिंग वर्सेस स्पॉन्टेनियस होना। आप क्या हैं, आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं, आपको क्या ज़्यादा बेहतर लगता है, हर चीज़ को प्लान करना, हर चीज़ को प्लान के मुताबिक करना, हर चीज़ को अपने स्केड्यूल के मुताबिक करना या फिर छोड़ देना, कह रहे भाई देखा जाएगा आज बस मैं कुछ प्लान नहीं करूँगा, जो जैसा जहाँ मौका मिलता रहेगा मैं वैसे वैसे वहाँ वहाँ वो चीज़ें करता रहूँगा। वैसे कुछ जगहों पे प्लानिंग होना बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कहूँगी अगर बच्चे हैं वो सुन रहे हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी है तो इसमें तो प्लानिंग तो मैंडेटरी है, आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। वहीं पर अगर आप जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचना चाहते हैं अपने आने वाले लाइफ में, वहाँ पर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपने बजट को मैनेज करें, चीज़ों को मैनेज करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, लाइफ में कितनी बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं जहाँ हमने कुछ भी प्लान नहीं किया होता और हम उन्हें इंजॉय भी कर रहे हैं। अब आपने आज के स्केड्यूल में ये नहीं प्लान किया कि कोई आपका बहुत ही प्यारा दोस्त अचानक से आपके साथ मिल जाएगा या कहीं पर वो टकराएगा और फिर आप और मिलकर लंच करेंगे और एक पूरा दिन जो है वो यादगार बन सकता है, ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। हो सकता है उस टाइम पर आपने कुछ और ही प्लान करके रखा हो, लेकिन अब आपको इस लम्हे को जीना होता है। तो कुछ लोग जो है वो परफेक्टली इंजॉय कर रहे होते हैं उन चीज़ों को, वहीं कुछ लोग होते हैं वो टाइम देख रहे होते हैं, घड़ी देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा जो इस वक्त काम करना जो मुझे था वो टाइम निकल रहा है काम के लिए, वो चीज़ें कर नहीं पाऊंगा मैं, तो थोड़े से परेशान होते हैं और उन लम्हों को जी नहीं पाते। मैं ये नहीं कहती कि प्लानिंग नहीं करना है, प्लानिंग हमेशा करना है और करनी ही चाहिए, लेकिन हाँ, क्या हमेशा हर चीज़ को प्लान करना ज़िंदगी को वाकई बोरिंग बना देता है? ये एक सवाल, बड़ा सवाल है, मुझे बताइए। और ये भी आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आपने आपका एक अनप्लान्ड इवेंट आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यादगार मोमेंट बन गया, वो इवेंट आपने प्लान ही नहीं किया था, ऑल ऑफ सडन हुआ और वो आपकी लाइफ का सबसे यादगार मोमेंट बन गया। ऐसा होता ही है। तो बस आज हम इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर है 4434377। आई होप मैं आपको बता समझाने में कामयाब रही हूँ, नहीं हूँ तो मैं एक्सप्लेन और करूँ, बताइए मुझे तो मैं आगे और एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यहाँ पे तौफीक जी हमारे साथ जुड़ते हुए अलवकरा से सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ जो है वो जुनैद जी जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और कहते हैं कि मैम मैं चीज़ों को जो है वो लाइफ में प्लान नहीं करता, बहुत ज़्यादा नहीं करता, कुछ चीज़ें अलबत्ता करनी ही पड़ती हैं, जैसे आपने भी बजट के बारे में कहा, लेकिन हाँ मैंने चीज़ों को जो है वो इतना प्लान पहले करता था, अब इतना प्लान नहीं करता। अच्छा, अब उसका कोई आपको नुकसान हुआ या कोई फ़ायदा हुआ किसी चीज़ का, वो भी हमें बताइएगा, जिससे कि हमारी और जो लिसनर्स हैं वो थोड़े से इनकरेज हो, उन्हें भी समझ में आए कि हाँ प्लानिंग का क्या फ़ायदा है या अनप्लान थिंग्स भी आपके लिए क्या कभी फ़ायदेमंद हुई साबित, ये चीज़ें आप मुझे बताइए। अच्छा, कई बार देखिए अगर हम प्लानिंग नहीं करके जाते तो आपने देखा होगा कि आप जो है ना शॉपिंग मॉल में गए, आपने प्लान तो किया नहीं है कि आपको क्या ख़रीदना है, तो बस जो पसंद आता है आप उठाते चले जाते हैं, ख़रीद लेते हैं और फिर लास्ट में आपको समझ में आता है कि बजट तो बिगड़ गया, या फिर आपको वाकई अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि चीज़ें जो है ना अनप्लान्ड हो, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ख़रीद लूँगा, इतना लिख के इतनी प्लानिंग से क्या ही फ़ायदा है ना। तो चलिए फ़िलहाल मेरे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: आज पहली बार मैंने कॉल किया है।
0: अच्छा, पहली बार आपने कॉल किया, नाइस। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम?
1: समद भाई के साथ रोज सुनते हैं लेकिन आज पहली बार कॉल किया, कल करने वाले थे लेकिन बहरहाल क्योंकि हम ड्राइव कर रहे होते हैं।
0: चलिए, नाइस। मुझे सॉरी आई डिडंट गेट यू।
1: मोहित
0: मोहित ओके
1: मोहित
0: तो मोहित क्या कहना चाहेंगे आप आज के हमारे इस टॉपिक के हवाले से?
1: इसमें सिर्फ एक ही बात हम अपनी रख सकते हैं कि इस्लाम की हदीस है कि किस आदमी से फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने जो दुनिया में तुम्हें जो भी कुछ फायदा दे ना उसको हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करना और सुस्ती मत करना, काहली मत करना, और फिर अगर फैसला तुम्हारे हक में ना हो

0: तो सबर करना, ये मत कहना कि अगर ये कर लेता तो वो हो जाता, तो वो कर लेता तो वो हो जाता, अगर मगर शैतान का रास्ता खोलता है। ये जो आपका सवाल है ना, ये सारा इसके अंदर आ गया। तो कोशिश हमेशा करनी है,
1: मतलब कह रहे हैं कि प्लानिंग करनी चाहिए लाइफ में, प्लानिंग भी कीजिए।
0: प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन अंजाम जब जो भी हो ना उसको सबर करना चाहिए,
1: उसपे सबर करना चाहिए। प्लानिंग कीजिए, लेकिन अगर रिजल्ट्स आपके दिल के मुताबिक नहीं है,
0: इंसान की पहचान है डिसिप्लिन।
1: ये बहुत अच्छी लाइन कही आपने, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, नहीं है तो बेकार
0: है।
1: ये बात तो है, बोरिंग हो या ना हो, एक्साइटिंग हो या ना हो, लाइफ आपकी डिसिप्लिन होना इम्पोर्टेंट
0: है। काम जितने छोड़ खुदा पर सौदा, तेरी तकदीर से तकदीर बहुत अच्छी है।
1: बहुत जबरदस्त,
0: तो छोड़ देना चाहिए तकदीर पर, लेकिन कोशिश अपनी पूरी करते रहना चाहिए।
1: कोशिश करते रहना चाहिए, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात, जबरदस्त। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आगे भी जुड़िए प्लीज जब जैसे आपको टाइम मिले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट कॉलर आए जिन्होंने बहुत ही सटीक टू द पॉइंट बात कही, और उनके मुताबिक प्लानिंग की थी, और प्लानिंग्स अगर फेल हो जाती हैं तो उस पर रिग्रेट्स नहीं करने हैं, फिर सब्र कीजिए। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रईस भाई आप, खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या प्लान करके आप निकली भाई कि हम लोगों को फंसाने की चक्कर में?
1: इसकी भी मैंने प्लानिंग की एक वीक पहले, आपने बिल्कुल सही कहा, क्या प्लानिंग है,
2: गोल गोल घुमा
1: गोल गोल नहीं, आज तो मैं आपको थोड़ा सा सॉर्ट करना चाह रही हूँ, जस्ट वांट यू कि आप थोड़े से सॉर्टेड हो जाएं लाइफ में, अपने रूटीन को लेकर, अपनी चीजों को लेकर।
2: आगे से लेफ्ट मार, फिर उधर एक खंबा आएगा, उधर से फिर लेफ्ट मार, फिर एक बिल्डिंग आएगा, उधर से लेफ्ट मार, फिर आगे कादर घर बोलता, फिर आगे मेरे से ही बिल।
1: नहीं, अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बताइए रईस जी, आप चीजें ऐसे प्लान करते हैं हर रोज, कल क्या क्या करना, अभी चलो मैं तय कर लेता हूँ कल की ये काम है मेरे, मैं लिख लेता हूँ, ऐसा करते नहीं करते?
2: हेलो
1: जी, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आपको कल क्या क्या करना है वो आप प्लानिंग कर लेते हैं एक दिन पहले कि कल तो मेरे ये काम है, ये है,
2: करते हैं, लेकिन सिचुएशन पे मैटर करता है कि अगर हमारे सामने अगर सिचुएशन बेटर है तो उसको हम उस प्लानिंग को अंजाम देंगे, अगर सिचुएशन का हिसाब से हमारे को फिर दोबारा फैसला बदलना भी पड़ सकता है, क्योंकि उससे मान लो हमने प्लान किया कि ये काम मुझे करना है कल, और अगर सिचुएशन का हालात का वो मतलब, तो उससे ही आदमी को मतलब अड़ नहीं जाना चाहिए कि नहीं मैंने ये प्लानिंग किया था तो इसको करूंगा ही, क्योंकि उसमें फिर नुकसान का भी सौदा हो सकता है। तो बंदे को प्लानिंग तो करना जरूरी है, लाइफ का हिस्सा है, हर काम को बिना प्लानिंग किए आदमी को फिर वो जो करता है बेसर पैर का फौरन फैसला लेता तो उसमें थोड़ा कामयाबी
1: के चांसेस थोड़े कम है।
2: सोचना चाहिए, हाँ पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, मेरा ये है, पॉजिटिव रह के अपने प्लानिंग को करना चाहिए, और करने के बाद में फिर अगर सिचुएशन उस हिसाब से आपके साथ नहीं ये हो रहा है तो फिर उसको बदल के उसको तर्क भी कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। उसी पे आड़े नहीं होना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा और हमारे भाइयों को मौका दूंगा कि मतलब और वो लोग मतलब बहुत लंबा ये करके।
1: चलिए, आपने भी बहुत अच्छी बात की, और मुझे लगता है मोर ओवर वही बात की जो हमारे पहले कॉलर ने कही कि ठीक है प्लानिंग कीजिए, लेकिन इफ इन केस वो प्लान फेल होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना, बहुत परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस नहीं होना, लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस, और फिर उसे दूसरे तरह से प्लान
2: कर। वक्त हालात कुदरत के हिसाब से मतलब भी होता है कि मान लो अब हम प्लान कल बारिश होगा फला जगह पे ये वो ऐसा ऐसा, तो हो सकता है कि वो ना होए, फिर वो आपका प्लान और या कोई काम आप प्लानिंग किए कि फला जगह मैं कल जाऊंगा, कुछ हालात और सिचुएशन के हिसाब से आपको वो तब्दील करना पड़ा, तो पॉजिटिव रहे बहुत ज्यादा, हो सकता है तुम्हारे लिए आगे कुछ मतलब हालात बेहतर ना रहे हो, अल्लाह ताला तो जानता, हम तो इल्म नहीं रखते हैं, तो कोई कभी कभी ऐसा प्लान ये काम और वो हमारे लिए फिर वो नुकसानदेह भी साबित होता, फिर हमें एहसास भी होता कि यार अगर अच्छा हुआ कि मैं फला जगह पे नहीं गया।

0: मिसाल के तौर पे
1: सही बात,
0: कोई गाड़ी आगे गए और कोई मतलब आगे सामने खतरा था और आपका गाड़ी रास्ते में मतलब कोई मामला सामने आया, आपको गुस्सा आया कि यार ये क्यों आया, मुझे क्यों नहीं जाने दिया धड़ाधड़, लेकिन आपको बीच में रुकना आपके लिए आगे जो मुसीबत चला उससे रुक गया है। तो ये सब चीजें आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए कोई भी चीज को। मैं तो कोई भी काम करता हूँ तो क्यों फौरन फौरन मैं इस पे सब्र कर लेता हूँ कि ये शायद मेरे लिए बेहतर नहीं था, हाँ ये उसका बदल मैं सोचता हूँ कि मतलब ये शायद हो सकता है मेरे आगे मतलब कुछ मुश्किल या मेरे आगे फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा ना रहा हो, तो उस पे मतलब आदमी को इत्मीनान रहना चाहिए।
1: बहुत सही, बहुत ही अच्छी बात की आपने, जबरदस्त। तो ऐसे बहुत बार मौके आते हैं जब हमें पता चलता है कि देखो ये प्लानिंग हमारी फेल तो हुई उस टाइम, लेकिन ये हमारे लिए आज के टाइम में देखो फायदेमंद साबित हुई, तो
0: जी
1: ये है। तो
0: मैं ये कहूँगा कि तकरीबन आदमी को वहाँ पे सब करके ये करना चाहिए जो हमारे पहले कालर थे वो भी मतलब उसी उस पे मतलब उनका भी
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: तकरीबन पे बंदे को ये होना चाहिए कि मुतमईन हो जाना चाहिए कि नहीं भाई वो हो सकता है, मैंने प्लानिंग तो जरूरी है।
1: सही, प्लानिंग जरूरी है लाइफ में, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा अफसोस करना अगर फेल हो जाती है इन केस, वो सब नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ पर आप कोई प्लान नहीं करते, ऑल ऑफ सडन बस चीजें करते हैं और आपने देखा कि वो आप ज्यादा एंजॉय कर लेते हैं।
0: आदमी को फ्यूचर के लिए हाँ ये करना चाहिए, मान लो मिसाल के तौर पर कोई भी चीज, और कभी कभी हमारा अपना बनाया हुआ बहुत आगे कुछ लोगों के साथ में पॉजिटिव जाते जाते जाते फिर बीच में थोड़ा हमारे लिए फिर ये रुकावट का जरिया बन जाता है, तो उस पर घबराना भी नहीं चाहिए।
1: सही, उसे घबराना नहीं चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। आप सबने अभी दोनों ही कॉलर्स का कहना है प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट लाइफ में, चीजें प्लानिंग करना चाहिए,
0: भी करना चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ अगर हालात ये हो तो फिर अपने आप को मतलब रुक जाना चाहिए और उस पर सब्र भी करना चाहिए कि नहीं मतलब वो हमारे लिए शायद बेहतर था वो चीज का मतलब ना होना।
1: सही सही, तो बिल्कुल
0: मैं ये करूंगा और हमारे भाइयों को भी जितने हमारे जानने वाले सुनने वाले हैं सबको सलाम हुआ था।
1: वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। तो ये तो थे हमारे साथ रईस जी, जिनका भी यही कहना था कि हाँ प्लानिंग हो, लेकिन हाँ अगर वो फेल हो जाए तो बहुत ज़्यादा उसके लिए बेचैन परेशान ना हो। वैसे ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई प्लानिंग आपने की, बड़ी मेहनत की, लेकिन आपने देखा कि वो प्लानिंग आपकी फेल हो गई, और फिर आपको काफ़ी अरसे में या कुछ टाइम के बाद ये पता चला कि ये आपके हक में हुआ था, ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई वाक्या है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पर, या ऑफ कोर्स आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली 4434-3477 पर। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं कि वो प्लान ए फेल होने के बाद उन्होंने प्लान बी तैयार कर रखा होता है एंड दे गो फॉर प्लान सी एंड डी, तो इतनी अच्छी इतनी तगड़ी प्लानिंग की होती है। और अब तो खैर आप जानते हैं, अगर आप जॉब्स में आप जॉब कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, दैट यू नो दिस कि यहाँ बड़ा मैंडेटरी होता है, ट्रेन किया जाता है कि व्हाट्स प्लान बी, आपसे प्लान ए पूछने से पहले प्लान बी पूछा जाता है। तो अब प्लानिंग का दौर तो कुछ ऐसा है कि बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं कहूँगी कि ऊपर वाला इज़ द बेस्ट प्लानर। अब बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं, वी प्लान बट ही डिस्पोज, तो देखिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन सब्र रखना और अफसोस ना करना और ये सोचना कि हमारे लिए बेहतर है, एक बहुत अच्छी अप्रोच है। फिलहाल मेरे साथ एक और कॉलर जो है वो यहाँ जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसे हैं?
2: बस अल्हम्दुलिल्लाह, आज फर्स्ट टाइम मेरा कॉल भी लग गया
1: है। ओह नाइस, वाओ, दिस इज ग्रेट। आज तो फर्स्ट टाइम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और आपका नाम क्या है?
2: काशिफ।
1: काशिफ, ओके, सो हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग?
2: तो अभी आपने नंबर बोला, मैंने बोला एक बार फिर आज किस्मत आजमाते हैं अपनी।
1: नहीं, अच्छा किया आपने कि आपने ट्राई किया एंड सी, यू आर लकी।
2: क्या चीज़?
1: मैंने कहा आपने ट्राई किया एंड आई एम लकी कि आपसे मेरी बात हो पा रही है।
2: ट्राई किया, फर्स्ट टाइम में ही लगे।
1: नाइस, वेरी नाइस। सो आज के हमारे टॉपिक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
2: नहीं, मेरा यही कहूंगा मैं कि प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन मेरा प्लानिंग आज तक हमेशा एक ही किया मैंने प्लानिंग, और वो हमेशा गलत हुई है, जो मेरी डेली की रूटीन में हो रहा है।
1: अच्छा, इज इट? क्यों ऐसा?
2: नहीं, मेरा एक ही प्लानिंग रहती है डेली का कि यार आज मैं

0: ड्यूटी से खत्म करूंगा ड्यूटी, जाते ही मैंने खाना खा के सो जाना है।
1: सही।
0: और डेली मेरे साथ यही होता है कि मैं जाता हूँ खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है मेरे साथ कि मैं 5-6 घंटे 7 घंटे अगले नहीं सो सके।
1: हमेशा ऐसा हो रहा है।
0: या तो कोई ऐसा काम पड़ जाएगा, कभी दोस्तों का कोई काम आ जाएगा।
1: तो ये बताइए, ये चीजें आपको एक्साइट करती हैं कि आपने तो प्लान किया कि सोऊंगा सोऊंगा पर मजा पूरा एंजॉय करते
0: हैं। पूरा एंजॉय करता हूँ इन चीजों को। मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, ये भी हुआ है तो ये कुछ बेहतरी के लिए ही हुआ होगा।
1: लेकिन हाँ, आपकी नींद भी इम्पोर्टेंट है, तो जब जैसे जहाँ मौका मिल जाए प्लान मत कीजिए, बस फौरन चले जाइए सोने, जैसे ही आप फारिग हुए जहाँ मौका मिले।
0: आज भी मेरा ये आज भी रात को मैं तकरीबन 12-1 बज गया था मुझे सोने में। अभी अब मुझे ड्यूटी में आए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है।
1: तब तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। नहीं नहीं, फिर तो आपको वाकई तगड़ी प्लानिंग करनी होगी, और उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसकी प्लानिंग अलग से करनी होगी।
0: प्लानिंग करके बैठा हूँ मैं आज भी, अभी भी मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, आज ड्यूटी खत्म करूंगा
1: जाके सोऊंगा।
0: सीधा 5 बजे ड्यूटी खत्म होगी, 6 बजे तक मैं सो जाऊंगा, लेकिन कल बताऊंगा आपको कि क्या हुआ।
1: प्लीज प्लीज प्लीज, और मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी इंशाल्लाह। 6 तो नहीं है, 7 बजे तक 8 बजे तक आप सो जाएं, ये मेरी दुआ है। और लेट्स सी, कल आप मुझे बताइएगा उसके लिए। लेकिन देयर यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स, कोशिश कीजिए कि इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना, उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। Either you switch off your phones or whatever you can do best for yourself, just do that. पहले से कह के रखो कि आज तो मेरा 8 बजे से या 7 बजे से मेरा फलाना प्लान है, ऐसा है, so that लोग आपको बहुत ही कम डिस्टर्ब करें। इस तरह का कुछ माहौल आप जो है ना पहले से सेट कीजिए।
0: बहाना बना के ट्राई करेंगे।
1: हाँ, बहाना बनाइए, और वो बहाना जो है ना आपके लिए यूजफुल होगा। कल जरूर कनेक्ट होइएगा और बताइएगा क्या कुछ आज आपके लिए बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है,
0: इंशाल्लाह।
1: बट थैंक यू सो मच, ग्लैड एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, तो यहाँ पे बड़े ही ऑनेस्ट से लिसनर हमारे साथ, और बिल्कुल उन्होंने सच्ची बात कही। इस लाइन के साथ मैं कहूँगी बहुत लोग जो हैं वो कनेक्ट करेंगे। हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं और करते हैं अपने लिए सोच सोच के कि आज ऐसा करना है करना है, वो नहीं पाता। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत अरसे से आई एम स्ट्रगलिंग कि मुझे जो है वो जिम ज्वाइन करना है, मुझे जाना ही जाना है, आई एम गोना सेट माई दिस थिंग। और मुझे पिछले 2-3 महीने हो गए हैं सिर्फ ये सोचते सोचते, और नहीं हो पा रहा। अब अगला महीना, एंड दैट वे वो आगे बढ़ती जा रही है। तो बस प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन प्लानिंग हो नहीं रही है सक्सेसफुल, ये भी एक स्टोरी है। फिलहाल मेरे साथ एक और कॉलर यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो,
2: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज अज्जू, राइट?
2: यस।
1: सो हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग?
2: Morning going very good day.
1: Very good.
2: Yeah, already, yeah. We stop work.
1: Nice. So what's your take? Do you believe in doing perfect plannings?
2: No, Nazia, the secret of success is planning.
1: Okay.
2: I believe the jo duniya mein jitna success hai ye planning ke under mein hota hai. आपको अनएक्सपेक्टेड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यू आर गोइंग अ लॉन्ग ड्राइव, सडनली समथिंग हैपन विच मीन्स अ रोड ब्लॉक और समथिंग इशू, यू हैव टू गो फॉर द अनदर रूट। Maybe the another route cause around unexpected miles, or maybe you will face some issue. But that issues give you a wonderful experience how to survive unplanned things happening in your life.
1: Right. So most of the time, aap kehte hain planning is mandatory.
2: Planning is mandatory, but usually the daily things, for my personal experience, I'm not planning, because daily routine, it's a common thing in my life.
1: So you don't plan your routines, huh? Okay.
2: I don't want to plan, because I know 6:30 my job already started, and 2 o'clock finished, then in

0: between breakfast, lunch, and what are the things coming, I know. So no need to plan such a daily routine, but the major thing is definitely I want to plan.
1: Major things to plan. For example, like...
0: इसलिए हर कंपनी में प्लानिंग इंजीनियर होता है
1: हां एक प्लानिंग वही मैं कह रही हूं कंपनी में तो प्लान ए बी सी और अभी तो डी तक जाते हैं लोग ये नहीं तो ये तो प्लानिंग तो इतना स्ट्रॉन्गली की जाती है लेकिन कई बार आपने देखा ये भी होगा कि आपकी प्लानिंग फेल हुई बट देन यू रियलाइज कि उसमें कुछ ना कुछ आपकी बेहतरी थी कुछ फायदा भी हुआ
0: लास्ट यस्टरडे I took to suffer the same thing. After my studies, I was suffering more than 6 months, 8 months without getting any job. I had to both plan karta hum, interview preparation and how to paise wo log ko समझाने का बहुत अपना प्लानिंग किया था लेकिन लकली माय बैड लक आई डिडंट गेट अ गुड जॉब
1: बट यू अल्टीमेटली लैंडेड अप गेटिंग एक्सीलेंट जॉब
0: या आफ्टर दैट आई वाज थिंकिंग व्हाट आई वांट टू डू देन आई वाज आई एम रियली माय माइंड वाज गॉन ऑलरेडी Then suddenly there was a call from my friend. ऐसे एक job है आपको कर सकता है. So I will refer Craig for the beginner stage. People are okay, no problem. I need a job. Then I went for job and it's a very good job. So that See? Unplanned thing changed my life.
1: Wow, nice. See. किस तरह से अनप्लान थिंग ने वाकई आपकी ज़िंदगी बदली एंड यू आर सो हैप्पी विद दैट तो बस यही होता है कि कई बार हम बहुत प्लानिंग करते हैं लेकिन ऊपर वाले की अलग प्लानिंग चल रही होती है तो बस बहुत सारी चीज़ें
0: पर्सनल लाइफ और तो आपका वाइफ को आपको मालूम नहीं होगा शायद लव मैरिज है तो नो प्रॉब्लम यू नो हिम यू नो हर वेरी वेल बट अरेंज मैरिज है तो इसका बारे में आपको कुछ पता भी नहीं आपको बहुत सारा प्लान होता है मेरा वाइफ ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए कोई काम होने का फैमिली के साथ अच्छा बात करने का ऐसे बहुत चीज शादी का पहले बहुत आदमी प्लान करता है लेकिन इसको अनएक्सपेक्ट हाई होता है अनएक्सपेक्ट प्लान है ये से बहुत होता है ना लेकिन लाइफ तो जाना ही चाहिए
1: तो प्लान कर सकते हैं बट दूसरों से रिलेटेड चीजें आप उतनी आसानी से प्लान नहीं कर सकते प्लानिंग का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं
0: एग्जैक्टली बट यू कैन अज्यूम 50-50% इज राइट
1: You can plan maximum, yourself that way कि मैं इसमें ऐसे adjust हो जाऊँगा इस तरह की wife होगी तो ऐसे adjust होऊँगा blah blah whatever but आप एकदम wife को अपने हिसाब से you cannot plan things accordingly ये इसका सबसे बड़ा drawback है यही शायद कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि चलो let's leave it like जो होगा last में देखेंगे
0: Yeah, that's why this is a 50-50 chance only. आपको 50-50% commonly match होता है 50% maybe नहीं match होता है क्योंकि आपका planning कभी कभी उसमें execute हो रहा ना
1: ये जरूरी नहीं कि आपकी planning उसकी planning सामने वाले की planning के साथ same और वैसे ही align करें important तो नहीं है ना हो सकता है नहीं मैच करें आपकी बहुत अच्छी planning है बहुत strong है और आप बहुत convinced हैं with that but सामने वाला नहीं है
0: Exactly, I agree. I agree 100%. Then, आपका एक planning team है वो लोग they are planning but they are working as a group. So बहुत सारा आदमी को उसका planning पसंद नहीं रहता है. अपना खुद का planning में चला जाता है. उसमें क्या होता है something आपको आपको achievement में fulfill करने के लिए थोड़ा time लगता है. Maybe the budget is going up and down. प्लानिंग में भी बहुत सारा
1: ड्रॉबैक्स है सो व्हाट यू आर सेइंग प्लानिंग विद फ्लेक्सिबिलिटी इज परफेक्ट
0: Yeah, planning with flexibility is perfect.
1: Right,
0: for example,
1: right.
0: That's why I told you, the in life mein jitna successful thing comes with we have good planning and the good management only.
1: That's true.
0: So, planning is one of the good thing to do successful things.
1: So life mein cheeze plan kijiye but with flexibility. That's the point.
0: Yeah.
1: Excellent.
0: Flexibility
1: honi chahiye planning. Haan, ye toh aapne bilkul
0: sach kaha. अगर फ्लेक्सिबिलिटी प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप प्लान करके फायदा ही नहीं है.
1: हाँ, फेल हो जाएंगे.
0: फेल नॉट ओनली फेल मे बी इट विल बी सक्सेस बट आपका अनएक्सपेक्टेड थिंग्स गोइंग वेरी हाई. फॉर एग्जांपल प्लानिंग में आपको बजट सेट करता है. आपका मैन पावर आपका टाइम पूरा सेट करता है. मे बी इट विल गो ऑन तो फ्लेक्सिबल प्लानिंग होना चाहिए.
1: बिल्कुल प्लान भी होना चाहिए. आप फ्लेक्सिबल हो चेंजेस करें अल्ट्रेशंस हैं तो वो रिक्वायर्ड हैं गो फॉर दैट. और ये इतना होना भी चाहिए फिर उसमें आपका दिल इतना बेचैन या परेशान ना हो कि नहीं नहीं ये मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहा है. मेरे हिसाब से कुछ लोग होते हैं कि उनकी प्लानिंग अगर पूरी एग्जैक्टली वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो उन्हें समझ में नहीं आती.
0: मेरा फैमिली में मैं बहुत सारा प्लान करता हूँ. कहीं भी मैं वेकेशन जाएगा तो भी बहुत सारा प्लानिंग करता है. मैं इधर जाने का उधर जाने का ट्रकिंग जाने का उसमें एक बार फिशिंग जाने का बहुत सारा प्लानिंग करता है. ये सबसे तोड़ने वाला मेरा वही है. इसको बिल्कुल बिल्कुल अनप्लान्ड है. वो कोई प्लान भी नहीं करता है.
1: उनकी लाइफ एक्साइटिंग है. वो हर पल को एक्साइटिंग बना रही है कि अब मैं बस ऐसा कुछ करूंगी कुछ अलग कर लूंगी. वो एकदम प्लानिंग के साथ ऐसे बोरिंग सी लाइफ नहीं पसंद करती होगी. ये भी सोचिए उनका पर्सपेक्टिव है उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी है. हो सकता है उनको पसंद आता हो कि अनप्लान्ड हो कुछ और बहुत ही अच्छा हो और उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया है बहुत टाइम से और वो शायद कामयाब रही हैं. दैट्स हाउ उन्हें अच्छा लगता है. नहीं करते बहुत लोग प्लानिंग. मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके मैं नाम लूँ वो बिल्कुल यकीन नहीं करते प्लानिंग्स में. मतलब थोड़ी बहुत जो ज़रूरी प्लानिंग्स हैं दैट वी ऑल डू इन आर लाइफ वो तो करनी ही करनी है. अदरवाइज वी डोंट प्लान आर डे लाइक हर रोज़ क्या करना है. कुछ लोग मैंने देखा इतने परफेक्ट है वो हर रोज़ प्लान कर रहे होते हैं. अब कल मेरे पास ये काम है नो मैं मेरे पास टाइम नहीं है हम मिलेंगे नहीं या हम बैठ नहीं सकते बिकॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं अपने अपने रूटीन को फॉलो करने के हवाले से. सो दैट वे ऑल्सो हैपेंस. तो
0: भाई लाइक मैं अभी भी अनप्लान में स्ट्रगल नहीं किया.
1: अच्छा है. प्लानिंग इज ऑलवेज गुड. ऑलवेज गुड मतलब अगर आप जनरल मेजोरिटी में अगर ये बात पूछें तो मेजोरिटी यही कहती है कि प्लानिंग इज ऑलवेज गुड. प्लान करनी चाहिए उससे आप सॉर्टेड रहते हैं. लास्ट मिनट का आपको हसल बसल नहीं होती कोई स्ट्रेस नहीं होता और चीज़ें भी बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाते हैं अच्छे से. बिकॉज आप प्लान है तो आपकी प्रिपरेशन भी है. इफ़ यू नॉट प्लान तो आप प्रिपेयर भी नहीं है उस तरह से है ना. सो दैट्स
0: बड़ा प्लान करके ये एट द मोमेंट आपको प्लान फेल हो गया तो क्या माइंडसेट होगा.
1: मैं बुरा तो लगता ही है तो है. आपने कुछ बड़ा प्लान किया फॉर एग्जांपल आपने अपनी ट्रिप प्लान की बट ऑल ऑफ सडन कुछ मिसहैप या कुछ ऐसा हो गया कि आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते या आप उसे जो है वो आगे नहीं ले जा सकते तो यू फील बैड. रियली यू फील बैड लेकिन क्या किया जा सकता है. दैट्स लाइफ.
0: मेंटली बहुत डिप्रेशन स्टेज में चला गया.
1: ट्रू
0: बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ में स्पेशली मैं आई वाज इन कॉलेज.
1: देयर आल्सो बट दिस वन इज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. आपने प्लानिंग की प्रिपेयर किया खुद को इंटरव्यूज के लिए इतनी कोशिश की बट देखिए ऑल ऑफ सडन ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा तय किया था आपको जॉब मिल गए एंड दे वर लाइक रियली हैप्पी फॉर दैट. तो ये ऊपर वाले की प्लानिंग होती है.
0: आप जितना प्लानिंग करो ऊपर वाला का प्लान ही होता है वही.
1: हां ही इज द बेस्ट प्लानर. दैट्स राइट.
0: ही इज द बेस्ट प्लानर.
1: या
0: आपको क्या देने का आपको क्या चाहिए किसी टाइम किसी सिचुएशन में जरूर देगा.
1: ये यकीन होना चाहिए हमारा. बिल्कुल सही. जबरदस्त. थैंक यू सो मच अर्जुन. थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी बात आपने अपने एग्जांपल अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया. सो फॉर दैट आल्सो थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. बाय. ऑलराइट दोस्तों यहां पर एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक लेंगे वापस आएंगे तो ये डिस्कशन जारी रहेगा.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
5: राइट गाइस एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग 7:23 ऑन द क्लॉक मैं हूं नाजिया आपके साथ और आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आज बात चल रही है प्लानिंग वर्सेस स्पॉन्टेनिटी आप क्या बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं चीज़ें या फिर आप स्पॉन्टेनियस हैं जब होगा जब जैसा वैसे कर लूँगा मुझे नहीं बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी तो क्योंकि कम प्लानिंग करते हैं तो थोड़ा सा कम अफसोस भी होता है जो लोग थोड़ा ज़्यादा प्लान करते हैं उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा अफसोस भी होता है जब उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है चलिए खैर फिलहाल मैं अपने जो है वो कमेंट्स रिजर्व करूँगी यहाँ पर मेरे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं पहले इनसे बात कर लेते हैं हेलो
6: हाँ जी
5: अ वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं जी
6: मैडम जी आप जिस प्लानिंग के साथ टॉपिक्स लेके आते हो ना शो में अगर उनको बंदा लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले तो लाइफ इज एक्सीलेंट एंड आई एम आल्सो एक्सीलेंट
5: अरे वाह तो मुझे अरे कर क्यों ले करेगा करना ही है
6: करेगा।
5: हम सबको करना चाहिए है ना जब हम सब सीख ही रहे हैं तो फिर उसको अप्लाई तो करना ही है ना हमें
6: Yes, there is no plan B.
5: There is no plan B in your dictionary. This is what you're saying. आपकी लाइफ में कुछ नहीं है सच प्लान बी होता ही नहीं होता
6: मैडम प्लान बी तो होता है मैं मैडम आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ
5: हाँ
6: जब अच्छे से की हुई प्लानिंग मैडम एग्जीक्यूट होती है ना तो उसका फायदा दूसरों को भी होता है और अपने को भी होता है देखिए मैडम मैं आपको अर्बन प्लानिंग की एक एग्जांपल दूंगा आप भी गए हो चंडीगढ़ सिटी में
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
6: प्लान्ड सिटी सबसे पहली प्लान्ड सिटी है
5: यस राइट बिल्कुल सही तो प्लानिंग यहाँ तो जरूरी है हाँ ये तो प्लानिंग्स हैं लेकिन अपने आप से रिलेटेड यू एज अ पर्सन लाइक गाबा अपने अपने आप से रिलेटेड आप जो प्लानिंग्स करते कर पाते हो उन्हें एग्जीक्यूट अपने आप से रिलेटेड प्लानिंग देखो फैमिली के लिए आप करते होगे बच्चों के एजुकेशन के लिए आप प्लान करते हैं अपने पेरेंट्स के रिटायरमेंट की अपने रिटायरमेंट की आप प्लानिंग करते ही करते होगे ठीक है फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपकी चल रही होती वो भी ठीक है बट एग्जैक्टली अगर अपने आप से पूछो कि मैं अपने लिए हर रोज़ क्या प्लानिंग करता हूँ या कर पाता हूँ तो ऐसा है आपके पास हाँ का जवाब कि हाँ मैं कर रहा हूँ अपने लिए भी
6: मैडम मेरी प्लानिंग भी सारी उन्हीं से जुड़ी हुई है ना मेरी अपनी फैमिली से
5: मेरी बात है अपने
6: मेरी
5: लिए कुछ नहीं
6: प्लानिंग
5: है
6: वो तो मेरे काम से रिलेटेड है मैडम
5: बस उतनी है नहीं अपनी खुशी के लिए यू नो अपने एंजॉयमेंट के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ

0: एज सच वैसी प्लानिंग होती है आपकी?
1: मैडम वो तो होती है, बिल्कुल होती है जी, बट वो एस एच में अभी चक्कर पता क्या है?
0: क्या
1: मेरे को लगता है ना जिंदगी में दो फील्ड, क्या इससे ज्यादा फील्ड है, जैसे आपने प्राइम एग्जांपल दी ना जिम की, वो बंदे का सोमवार ही नहीं आता मैडम जिम ज्वाइन करने का।
0: और मैं तो दो बार मैं पैसे जमा करके मेरे वेस्ट हुए पता है, मैं जा ही नहीं पाई। एक बार एक दिन गई और फिर मैं इतना थक गई
1: जी। देखिए आपके साथ नहीं मैडम, बहुत सभी के साथ यही होता है, बंदे का वो सोमवार ही नहीं आता जब बंदे ने जिम ज्वाइन करना है।
0: जिम ज्वाइन करना है, करना है बाबा जी, करना है, आपने भी करना है, मैंने भी करना है।
1: मैडम मेरे को तो जरूरत नहीं है जी।
0: नहीं है, सबको जरूरत होती, करना चाहिए। जैसे अभी हमारे एक भाई है, उन्होंने मैसेज किया कि अगर आप जिम करते ना मॉर्निंग में तो आप पूरे दिन पॉजिटिव रहते हो, एनर्जेटिक रहते। पहले मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैं कहती पता नहीं क्या ऐसी बोल देते हैं लोग कि कर लो कर लो, लेकिन मैंने देखा अपनी एक कज़न को देखा, जब से उसने जिम ज्वाइन किया प्रीवियसली शी वॉज़ वेरी नेगेटिव, बहुत ज़्यादा वो थी, अब मैंने देखा वो बहुत बदल गई। तो जब मैंने उससे पूछा कि इसका राज क्या है, कि क्या क्या कोई बुक पढ़ रही हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को तुमने जो है वो रखा है, कुछ चल रहा है खास, then she told me कि मैं जो ना अब जिम ज्वाइन कर रखा है मैंने, and I feel very happy, I feel energetic, I feel very positive.
1: मैडम उनको आपने रील्स में देखा या रियल में देखा?
0: रियल में देखा भाई, मेरी कजन में अभी मिली थी वेकेशन पे।
1: ये सही है, अगर आप जिम में जाके रील्स ही बना रहे हो फिर तो मैडम क्या फिटनेस होगी। ये भी मैटर करती है
0: कि आप कितनी ज्यादा डेडिकेशन से जा रहे हैं। जाते तो बहुत प्लानिंग और डेडिकेशन के साथ हैं, फिर आप उतना लंबा टिक नहीं पाते, स्पेशली अगर इसके बारे में बात करूं
1: जी। अभी माहौल भी ऐसा होता है ना, आपको पता है सॉन्ग्स वगैरह चल रहे होते हैं तो उधर से रील्स का सेशन भी चल रहा होता है बंदे का। अच्छा। अगर आप माइंडसेट लेके गए हो भी मैंने बिल्कुल ही अपना वर्कआउट करना है, देन इट्स परफेक्ट ऑप्शन।
0: मेरा तो फर्स्ट डे अजीब सा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से मैं क्या शुरू करूँ। मैं देख रही हूँ लोग आते के साथ ही खड़ाक से वो कर रहे हैं, मैं सबको इधर उधर देख रही हूँ। और वो भी मेरे लिए इतनी टफ पड़ी कि मैं क्या बताऊँ, एक दिन गई फिर मैं गई ही नहीं, सोचिए आप। और तब से मेरी प्लानिंग आज तक चल रही है कि मैं मुझे करना है बट हो नहीं पाती। मतलब अब वो है कि प्लानिंग तो मैं कर रही हूँ लेकिन वो मैं दिल से लिख के अच्छी तरीके से प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, जहन में प्लानिंग चल रही है प्रॉपर तरीके से पेपर पे नहीं आई, या उस तरह से मेरी अपनी सोच में नहीं आ रही है जो मुझे आना चाहिए, जिस तरह का मैं मुझे लाना चाहिए अप्रोच वो नहीं आ रही है। और उसके लिए क्या चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, वो सिंसियरिटी नहीं है।
1: नहीं नहीं वो तो है मैडम आपके अंदर जी, मतलब वही तालमेल नहीं हो रहा होगा आपके समय का।
0: हाँ बस इस चीज को लेके वो नहीं आ रही है और सारे काम कर रही हूँ पूरे एक्साइटमेंट के साथ, यहाँ पता नहीं क्यों मैं एकदम सुस्त पड़ जाती हूँ। तो खैर ये है, आप अपनी लाइफ में प्लान करते हैं नहीं करते हैं कुछ भी?
1: मैडम प्लानिंग तो लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: अच्छा
1: देखिए जैसे आपने अलीगढ़ से दिल्ली में फ्लाइट लेनी है तो ऑब्वियस है आपको 6 घंटे पहले प्लानिंग करनी ही पड़ेगी।
0: सही,
1: उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है ना प्लान बी का। और हम सभी इस मैटर में मैडम ट्रैवलिंग के मैटर में हर बंदा बहुत अच्छे से प्लानिंग करता है। कोई ही बंदा होगा जिसको ये हो भी मैं भाग के फ्लाइट पकड़ूं, खैर वो तो ऑप्शन होता नहीं, वो तो फिल्मों में ही हम देखते हैं।
0: सही बात है, ये लाइफ में तो नहीं है।
1: तो मैडम लाइफ का एक और चैप्टर है, अगर आपके घर में बहुत छोटा बच्चा है तो मैडम मेरे को नहीं लगता आपकी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है।
0: हाँ ये तो है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने तो प्लान की लेकिन बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती रहती हैं, डे टू डे आप उन्हें एनकाउंटर करते हैं, आपके प्लान्स फेल हो जाते हैं, तो आप इस तरह की प्लानिंग कर ही नहीं सकते।
1: जी और मैं मैडम एक और एग्जांपल देना चाहूंगा ट्रांसपोर्ट की।
0: हाँ जी,
1: जैसे दोहा की मेट्रो है मैडम, देखिए वो कितनी अच्छी तरीके से प्लान की हुई है।
0: सही,
1: और उसका फायदा हर किसी ने 2022 में लिया और हम लोग तो अभी ले रहे हैं मैडम।
0: बिल्कुल,
1: तो जिंदगी में मैडम प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसे हम लोग सोचते हैं अभी प्लान बी भी रेडी रखना चाहिए, मगर बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें प्लान बी मैडम नहीं चलता।
0: अच्छा
1: जी,
0: क्या तो प्लान ए या फिर कोई दूसरा ही प्लान, दिस इज व्हाट यू से?
1: नो, मेरे को नहीं लगता, जहाँ पे मेरी अजम्पशन लगा लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा सोचने का तरीका लगा लीजिए, मैं सोच रहा था जैसे सर्जन कोई क्रिटिकल सर्जरी कर रहा है मैडम, तो उसमें क्या प्लान बी होगा? ना तो बंदे के पास टाइम होता है उनके पास, ना कोई और, ये तो मेरी सोच है मैडम।
0: प्लानिंग उनकी

0: खुद ही एक्स्ट्रा डॉक्टर्स रखते हैं अगर ये कॉम्प्लिकेट हुआ केस तो कैसे हमें संभालना, ये तो बहुत थोरो डिस्कशंस होते हैं सर्जरी से पहले, बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं और बहुत सारे प्लान बी और सी रखे जाते हैं
1: सर्जरी से पहले होती हैं थ्रू आउट द सर्जरी।
0: हाँ जाहिर है अब जब उसे परफॉर्म ही करने पे आ गए हैं उस काम को उस टास्क को तो अब तो जो ए प्लान है उसके साथ जाए, इफ इन केस वो फेल हो सकता है डॉक्टर को कुछ हो जाए या फिर वो उस तरह से कॉन्शियसली ना कर पाए तो और प्लान बी में दूसरे डॉक्टर्स रहें जो उसे संभाल लें, या चीज़ें रखी जाती हैं या फिर कोई ऐसा है पेशेंट जिसकी क्रॉनिक डिजीज़ है या कोई ऐसा इशू है तो उसके लिए कितनी प्लानिंग की जाती है। और आपने सही कहा कि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें बगैर प्लानिंग के तो कुछ होते नहीं, बहुत सारे क्या हर प्रोफेशन में प्लानिंग है। अब हम ही हैं अगर हम लोग अपना कोई भी शो जो है वो डिज़ाइन करते हैं, कोई स्पेशल ट्रांसमिशन होती है तो बहुत पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है, आप स्क्रिप्ट जो है वो सबमिट करो, गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करो, अगर वो नहीं मिलता है तो प्लान बी दूसरा गेस्ट कैसे है और वो भी लास्ट मिनट नहीं आएगा तो आपके पास इतना कुछ होना चाहिए कि आप पूरा शो कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपकी पूरी टेक्निकल टीम उसको एक्सप्लेन किया जाता है, फिर सारी चीज़ें सेट की जाती हैं, लॉग सारे देखे जाते हैं कि हाँ ऑन एयर जाने से पहले सब कुछ सेट है, ऐसा तो नहीं कि वो लास्ट मिनट कुछ टेक्निकल इशू हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ब्लैंक तो नहीं जाना चाहिए, तो बाहर से किस तरह से हमें तैयार रखना है पूरा सिस्टम, वहाँ पे आप बैठ के टीम से बात करते हैं, वो पूरा सिस्टम तैयार रखते हैं कि हाँ इफ इन केस यहाँ से ऑन एयर नहीं किया तो वहाँ से सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा, फिर वहाँ से नहीं किया तो एक और थर्ड प्लेस है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए प्लानिंग हर चीज़ में है, हर चीज में
1: बात है मैडम, आपने तो पूरा ही बस
0: सम बता दिया रेडियो नहीं ये सच है, ये वाकई है
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही लास्ट में मैं भी हाँ। यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के हर फील्ड में प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है मैडम,
0: बहुत ज्यादा जरूरी है,
1: क्योंकि सपोज आप ट्रेवल कर रहे हो मैडम, आपके पासपोर्ट नहीं मिल रहे आपको, फिर तो मुसीबत बन जाएगी ना आपके लिए।
0: सही, बिल्कुल प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं कहूँगी देखिए कभी कभी आप प्लानिंग नहीं करते हैं लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, जैसे किसी ने कहा कि अचानक उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई, यहाँ तो उन्होंने प्लानिंग नहीं की, बहुत अच्छी जॉब मिल गई, कई बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा आपको कोई बिजनेस का पार्टनरशिप मिल गई, ये भी आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, या कोई ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई जो आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया, अचानक से हुआ, ये सब आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, या कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई नया आइडिया एकदम से दे दिया जो आपने प्लान ही नहीं किया था और वो बेस्ट रहा।
1: बस मैडम कई बार ऐसी आप बस में या ट्रेन में ट्रेवल करते हो, किसी बंदे की ऐसी आपको सलाह मिलती है ना, वो भी अनएक्सपेक्टेड है ना, वो भी एक प्लानिंग से कम नहीं है जी।
0: वो भी प्लानिंग से कम नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपसे ही से कहूंगी गाबा जी, सबसे बड़ी बात निकल के आती है ना, लोग कहते हैं कि हर चीज प्लानिंग के मुताबिक चलती है तो बंदा जो है ना वो कम्फर्टेबल हो जाता है, कम्फर्ट जोन में आ जाता है।
1: मैडम नहीं, सब कुछ ऐसा नहीं चलता प्लानिंग के मुताबिक, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: आप सोच के जाओ भी आपने वाकरा से स्टूडियो तक जाना है भाई, मैं 30 से 35 मिनट में पहुंच जाऊंगी मैडम, ऐसा पॉसिबल कभी भी हो नहीं सकता,
0: कभी नहीं होता, सही कहा आपने,
1: तो सिग्नल रेड हो गए आपको 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे,
0: बिल्कुल सही, तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है अपनी चीजें।
1: जैसे सर्वर भाई सोच के जाए भी मैंने आज बिरयानी खानी है, भी मैं 2 बिरयानी का ऑर्डर दूंगा, हो सकता है वहाँ पे जाके 3 हो जाए, 2 से
0: 3 हो जाए, 4 भी हो सकती है, अब बहुत से बोलते बिरयानी खाने से पहले वो प्लान करते हैं अरे स्टार्टर भी तो खा लेना चाहिए, मुझे
1: स्टार्टर भी तो खा लेना चाहिए,
0: वो तो मैंने प्लान ही नहीं किया। ये तो है, बिल्कुल सही कहा, जबरदस्त सा जवाब और थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया।
1: ओके मैडम, टेक केयर,
0: ओके जी, आप ख्याल रखिए, बाय। तो आज देखिए चल रही है प्लानिंग और उसमें मैं कहीं ना कहीं आपको बता भी रही हूँ कि अनप्लान्ड थिंग्स भी आपकी लाइफ में जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए नहीं कि मैं आपको मिसलीड करूँ, लेकिन इसलिए कि दोनों चीज़ें हों और दोनों में बैलेंस हो, ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं जावेद जी आप?
2: अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल मैं खैरियत से। अच्छा नासिर जी, यहाँ पर मैं थोड़ा एक मेंशन कर दिया करे जावेद बाजवा, क्योंकि जावेद दो हैं।
0: अच्छा दो हैं।
2: वो हुआ क्या कि एक दिन जब वो शो चल रहा था कि बहनों के हवाले से, तो मुझे मैसेज आया यार आपकी कोई बहन नहीं है तो हम हैं, तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार माशाल्लाह मेरे 3 बहनें हैं, तो
0: दो जावेद। अच्छा ठीक है, मैं आपका पूरा नाम लूंगी, जावेद बाजवा जी, सही।
2: और रही बात माशाल्लाह गाबा भाई भी, गाबा भाई आई एम स्टिल

waiting for your call. और दूसरा ये है कि तमाम दोस्तों को भी सलाम मेरा दिल की गहराइयों से, और माशाल्लाह प्यारा और खूबसूरत टॉपिक जिस तरह गाबा भाई ने कहा और जिस तरह एक्सप्लेन किया, रईस भाई ने किया।

0: जिस तरह मतलब मैं यू नो माय जॉब आपको पता है ओके इट्स वेरी क्रिटिकल एंड वेरी टफ ओके लेकिन कुछ भी हो अगर कभी मतलब 19-20 का फर्क आ जाए कि मेरी डेली रूटीन की जो मैं गेम करता हूँ मैं या मतलब जो मैं गेम खेलता हूँ या मैं वॉक करता हूँ अगर मैं ना कर पाया तो दैट इज माय सिक डे.
1: अच्छा यही देखिए आपकी प्लानिंग फेल होते से आप कैसे फील करते हैं.
0: हाँ हाँ मतलब है कि मैं अपने आप को उस वक्त बीमार फील करता हूँ ज़हनी भी और जिस्मानी भी. आप ये प्लानिंग कीजिए कि मेरा दिन पूरा ना होगा मतलब आप रेडियो पे आ रही हैं शोज कर रही हैं किचन में काम कर रही हैं बच्चों को संभाल रही हैं दोस्त अहबाब से मिल रही हैं आप एक घंटा अपनी जिंदगी के लिए वो आपका अपना है जरूर निकालिए तो आपका दिन पूरा होगा. और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह गावा भाई ने कहा कि बच्चों के साथ सिचुएशन चेंज हो जाती है लेकिन चेंज होने के साथ आप फिर भी अपने वक्त को चेंज कर सकते हैं अगर आपने करना हो तो
1: कर सकते
0: हैं. बहाने बड़े हैं नाजिया जी बहाने बड़े हैं फिर
1: बहाने बस वही थोड़ी सी आदमी जो है ना वो उस तरह का डेडिकेशन नजर आता नहीं है. स्पेशली जैसे अगर मैं अपने फिटनेस रिजीम की बात करूं कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ तो वो डेडिकेशन नहीं है मुझ में. किसी ने मुझसे कहा जिस दिन आ जाएगा तुम डेफिनेटली ज्वाइन भी करोगे और तुम उसको जारी भी रखोगे पर तुम्हारे पास अभी है नहीं उस तरह का डेडिकेशन.
0: देखिए मेरी बेटी ऑफिस से आती है शाम को 5 बजे.
1: अच्छा
0: ओके तो वहाँ पर जिम पे जाती हैं. अब जिम पे उनको मतलब आके कभी वो लेट भी हो जाती हैं तो मैं कल रात को मैंने जब देखा 9:45 बजे वो लेटने लगी तो मैंने पूछा क्या हुआ बेटा आप लेटने लगी तो बोला पापा मैं सुबह 5 बजे वॉक पे जाऊंगी यानी कि ऑफिस 7 बजे शुरू होता है पता है बिल्कुल 5 o'clock इन द मॉर्निंग और मुझे अच्छी लगी ये चीज मैंने स्टॉप नहीं किया. यू शुड रिलैक्स नींद पूरी करो नो यू फील फिट उसके बाद आप फिट फील करेंगे मेंटली भी और फिजिकल भी आप फिट फील करेंगे अपने आप को. बहरहाल मैं आपके खूबसूरत से मुद्दे की तरफ आता हूँ. देखिए मेरे ख्याल में तो प्लान वाला और सिचुएशन वाला दोनों को साथ लेके चलना चाहिए दोनों को.
1: ओके
0: दूसरे सिम्मत सिचुएशन के मुताबिक चलने वाला बंदा लचकदार होता है. जो सिचुएशन को लेकर चलता है वो लचकदार होता है क्योंकि उसको पता है कि मैं इसके अंदर अपने आप को ढाल लूंगा मैं जो सिचुएशन होगी. इंसान प्लानिंग बहुत करनी भी चाहिए और वही अगर मैं बात करूं नाजिया जी के एज पर माय जॉब डिसिप्लिन जो जिंदगी के अंदर मेरे डिसिप्लिन है वो वक्त का है क्योंकि जब आप वक्त को डिसिप्लिन रखते हैं तो आपकी सारी प्लानिंग 100% एक्यूरेट होती है. दूसरा अगर सिचुएशन चेंज हो जाए और इंसान को बड़ी अच्छी बात कही थी मोहित भाई ने कि अगर चीज ना मिले तो ये अल्लाह की रजा है क्योंकि अल्लाह ताला की जात फरमाती है कि मैं तुम्हें खूब से खूब नवाजता हूँ जो तेरे नसीब में नहीं उसे खूब नवाजता हूँ ये तो हमारा ईमान भी है.
1: बिल्कुल
0: लेकिन मेरा प्लान जो है मैं ये कहता हूँ मेरे नजदीक बेहतरीन तरीका ये है नाजिया जी कि मंजिल का प्लान पक्का रखें लेकिन रास्ता हालात के मुताबिक होने चाहिए.
1: बहुत ही अच्छा.
0: और लास्ट बात करूंगा कि प्लान हार्ड बट स्टे फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल रहे.
1: प्लानिंग हार्ड यानी कि अपने
0: अपने प्लान को आप मजबूत रखें मगर अपने जहन को हमेशा खुला रखें.
1: यही चीज कि प्लानिंग विद फ्लेक्सिबिलिटी ये बेस्ट अप्रोच हो सकती है कि ठीक है जैसे आपने कहा कि आपका अल्टीमेट गोल जो है वो तो आप उस पर तो ध्यान रखे ही रखिए लेकिन हाँ कैसे उसे अचीव करना है उसमें आप जो है चेंजेस ला सकते हैं. उसकी प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए उसमें अडैप्टेबिलिटी होनी चाहिए नई चीज़ें आप अडैप्ट भी करते चलें. राइट वेरी वेल सेड बहुत ही अच्छा बहुत ज़बरदस्त क्या बात है भाई आप लोग इतने अच्छे अच्छे तरीके से इस पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं. हर कोई अपना एक एक कुछ ना कुछ एक खास एलिमेंट ऐड करता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर आदमी बात होती है एक ही जैसी है बहुत सी चीज़ें हम चेंज नहीं करो लेकिन एक खास एलिमेंट एक खास टच जो है ना वो आप लोग की तरफ से मुझे मिलता है और मुझे बड़ा फील होता है बहुत अच्छा लगता है. आई एम श्योर जितने लोग जो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे होते उनके लिए भी बड़ा यूज़फुल है. सो थैंक यू सो मच कि आप लोग आते हैं और जुड़ते हैं हमारे साथ और इतने अच्छे से टॉपिक को टॉपिक के हवाले से बात करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन.
0: थैंक यू एक मोस्ट वेलकम। एक बात यहाँ पर लास्ट में करूँगा,

0: बात ये है कि देखिए जिस वक्त आपका शो शुरू होता है माशाल्लाह 6 बजे और उसके बाद हमारी वो प्लानिंग शुरू हो जाती है कि यार हम मैसेज कर पाएं, हम कॉल करेंगे, हम कॉल को कंटिन्यूअसली दैट इज वी आर गोइंग टू प्लान, हम प्लान कर रहे हैं उसको.
1: ये कितना अच्छा.
0: अब वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि वो हमारी कॉल मिलती है या नहीं मिलती रास्ते में, मतलब वो रेडार्स आगे, हम नहीं मोबाइल को होल्ड कर पाते, बात नहीं कर पाते, वो सिचुएशन है. और उस सिचुएशन में हम टेंस भी होते हैं कि हमारी अब बात नहीं हो पा रही, हम टेंस भी होते हैं.
1: लेकिन बस यही नहीं होना है, यही हम आज बात कर भी रहे हैं कि टेंशन में नहीं आना अगर नहीं हो रही है, फेल हो रही है.
0: और जो है 9 बजे फिर कहते हैं अल्लाह तआला शुक्र है, विल ट्राई टुमारो इंशाल्लाह.
1: हाय हाय, भी सबर कर लेना, और कुछ ऑप्शन नहीं है. नहीं नहीं, ये तो ऐसी सिचुएशन है कि आप मुझे मैसेज कीजिए. ओके, इफन ये केस आपके साथ होता है तो प्लीज प्लीज प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए, आई विल कॉल यू बैक इंशाल्लाह.
0: ना जी, मेरा नहीं पता होता, मैं मैसेज तो करूं, मेरा नहीं पता होता मैं कहां होता हूं फिर.
1: हाँ, ये एक आपका इशू रहता है. चलिए खैर, बट एनीवेज हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू कि आप हमेशा इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है मेरे टॉपिक पे ऐड करते हैं, जो मेरे लिसनर्स के लिए, हम सब के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. ऑलराइट, सो बहुत मजा आता है दोस्तों जब आपकी कॉल्स आती हैं और आप कुछ नया कुछ अच्छा ऐड करते हैं. जैसे हम आज बात कर रहे हैं प्लानिंग वर्सेस यू नो स्पॉन्टेनिटी, कि आप कितने स्पॉन्टेनियस हैं, और यू लव टू प्लान थिंग्स, वी आर बाउंड टू प्लान थिंग्स. इन फैक्ट हमारे पास चॉइसेस नहीं है, हम जहाँ भी ऑफिस में जिस जगह भी काम कर रहे हैं, आपने और हमने देखा है कि भाई प्लानिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने पहले से चीज़ों को प्लान किया जाता है. और मैं कहती हूँ कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिना प्लानिंग के चल भी नहीं सकती. अब आप देखिए कि कोई कंपनी जब नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही होती है तो कितनी पहले उससे कितनी प्लानिंग शुरू हो जाती है, मार्केट रिसर्च होती है, बजट तैयार किया जाता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन रही होती है, और फिर एक टाइमलाइन सेट की जाती है. अगर ये सारी प्लानिंग ना हो तो भाई रिसोर्सेज जितने भी हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, आपकी डेडलाइंस जो है वो मिस हो जाएंगी, और हो सकता है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए. तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस तो हर हाल में है. ये हमारे गोल्स जो हैं, जो भी हमें अपना ऑब्जेक्टिव जो भी अचीव करना है एक्स वाई जी, वो एकदम क्लियर रहता है हमारी लाइफ में. फिर आपके जो टाइम और रिसोर्सेज हैं उन्हें भी आप काफ़ी इफिशेंटली इस्तेमाल कर पाते हैं, इससे आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं. और रिस्क को भी लोग, जैसे आजकल आप देखते पढ़ाई होती है ना रिस्क मैनेजमेंट, भाई हर बिजनेस में आपने देखा, अगर आपने बिजनेस की पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि बाकायदा एक होता है सब्जेक्ट, एंड दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करना, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. तो ये कितना इंपॉर्टेंट है. फिर अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप अपने टीम्स को क्या डायरेक्शन देंगे, उन्हें क्या बताएंगे, तो वो भी एक अजीब सल्यूशन में रहेंगे कि पता नहीं क्या करना है कि क्या नहीं करना है. तो प्लानिंग हमेशा ज़रूरी है, लेकिन कुछ जगहों पे प्लानिंग्स जो हैं वो फेल भी होती हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, ये मैं आपको बताऊँगी. बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हमें आपके पास एफ एम 107.
1: कैसे हैं शहजादा जी, आप खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी प्लानिंग सुबह से ही किया था लेकिन मैं लेट उठा और फिर मेरे तो कितने लिसनर्स के कॉल मिस भी हो गए, तो कंफर्टेबल मैं सुन पाया कहाँ से, अज्जू. हाँ, अज्जू भाई थे, फिर दावा भाई और अभी जावेद भाई गए. सही है, तो इनके एकदम मतलब कंफर्टेबल मैंने सुन पाया और फिर मैंने उसी दिन से ना मैसेज डाला था कि कॉल कर लीजिए. तो मैसेज तो पता ही, तो इतना फॉर्मेट, इतना बिजी होता है नाजिया मैम का शेड्यूल, तो मैसेज पढ़ेंगे जब वहां पर जाएंगे उस साइड में ना, तो मैं जब तक ट्राई पे ट्राई कर ही रहा था. हाँ, उसको मैंने ऐसे छोड़ा नहीं, मैं ट्राई पे ट्राई कर रहा था लेकिन कॉल पिक हो गई. तो कहीं बिजनेस है ना, ऐसे होते हैं ना, मैं बहुत अच्छी से प्लानिंग के साथ उसको डेकोरेट करके उसको जब ओपनिंग करते हो और उसके बाद तो कई ऐसे रीजन निकलते हैं ना कि स्पॉट अच्छा नहीं था और टेस्ट अच्छा नहीं था, इसीलिए फ्लॉप हो गया, चाहे रेस्टोरेंट हो और कोई फास्ट फूड हो वगैरह वगैरह, तो सारे ये ना रीजन निकलते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं ना कि बस हाथ प्याज रख के बैठ गए ना. तो आज के आपके सवाल इतना एक्सीलेंट है, इसके कहाँ कहाँ से जवाब आज शुरू करें. तो सबसे पहले के 24 आवर्स में ना नाजिया मैम, 24 आवर्स में स्पेशल विदाउट डिस्टर्ब, विदाउट एनी टेंशन, तुम्हारी अपने कितने हैं?

0: ठीक है ना, आपके अपने कितने हैं उसमें, ठीक है, वो जो भी है आपके अपने हैं ना, तो वो आप अपने लिए जो भी प्लानिंग जो भी सेटअप करना है ना, तो उसमें कंफर्टेबल उसमें जोन में जाके आप अपना कर सकते हो, अगर आप पर्सनल अपने लिए कर रहे हो ना, ठीक है, वो आपके अपने हैं,
1: सही
0: है, उसमें कोई हार्डवर्क का है ना, कहीं ड्यूटी पे जाना है ना, कहीं कुछ करना, वो तो आपके अपने है ना। और सेकेंड थिंग, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो विथ योर फैमिली, अगर आपके फैमिली के साथ कुछ ऐसे प्लानिंग कर रहे हो, तो आपके प्लानिंग से आपकी चाहे हाउसवाइफ हो चाहे आपके घर के बच्चे जो भी हो, वो कितना मतलब उसको सीरियस ले रहे हैं या पीसफुल फीलिंग कर रहे हैं, और कितना संजीदगी से सुन रहे हैं कि पापा ने ये ना प्लानिंग बताए तो ये बेस्ट होगा। लेकिन हर एक मेंटालिटी जो है ना, माइंडसेट अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है, और कहीं तो ऐसा है ना कि आपने शुरू भी नहीं किया तो उसका है ना एंड आ जाता है कि भाई ये नहीं नहीं नहीं ये इसको दूर रखो, ये कहाँ सोच रहे हो, ये सब थोड़ी होने वाला है। लेकिन जो एक्सप्लेन किया, प्लान लेकर आया, अरे थोड़ा सा सुन तो लो, सुन तो लो, फॉलो करना नहीं करना वो तो बात की बात है, लेकिन सुन तो लो ना, हो सकता है उसमें अच्छा, वो कब पता चलता है मालूम है, जो इग्नोर करके अपनी जब चलाने जब लग जाते हैं ना, और उसके बाद में नुकसान कोई लॉस होता है ना, तो फिर बाद में आगे जाके अरे यार वो तो पापा सही बोल रहे थे जब उसी टाइम पे, तो जब तुम्हारी टुकड़ा फेल हो गया था या फ्यूज खत्म हो गया था पता नहीं क्या था उस टाइम पे, तो ना तो प्लानिंग जो प्लानिंग की जो
1: होनी चाहिए, दिस इज व्हाट यू सेइंग ना,
0: कॉन्ट्रीब्यूशन इसके बाद ना कि वो अमल करे और वो कितना हैप्पी हो, आप कितने हैप्पी हो, उसके बाद आपको कितनी खुशी और उसको कितनी खुशी, तो ये सारा कुछ है ना मुनाफे का सौदा हो ना कि नुकसान का।
1: पर हो सकता है कि नुकसान हो भी जाए, कभी आपने बहुत अच्छा किया सौदा फिर भी।
0: हाँ हाँ, और बिल्कुल, और अच्छा करने जाते हैं तो गलत भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, तो फिर उसको फाइट कर करे ना, उसका सलूशन ना आपको अपने आप से फिर से प्रिपेयर होते, फिर से और एक प्लान है ना उसमें से ढूंढने पड़ेंगे, और फिर एक नया प्लान के लिए फिर आप उसको फिर गो हैक करेंगे और फिर सक्सेसफुल भी होते, ऐसे मसला नहीं है उसमें। तो बहरहाल अप टू यू, आप जैसा आपकी कैसी हिम्मत, आपकी आपका माइंडसेट कैसा है, किस तरह का है ना, और किस तरह से कौन सा प्लान कहाँ पर करना है, क्योंकि हर लम्हा हर मिनट हर एक इंसान की जिंदगी में है ना, हर एक वो मोमेंट है ना, वो एक नया टू नया प्लान ही प्लान है, प्लान ही प्लान है, प्लान ही, एक नहीं खत्म हुआ तो दूसरा आ गया, दूसरा नहीं गया तीसरा हुआ, तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारे कुछ है ना, एक जिंदगी है ना, प्लानिंग जिंदगी हो गई है, अभी प्लानिंग से ही चल रही है सारा कुछ जो भी है, तो बहरहाल देखते हैं अभी और आगे,
1: बहुत ही अच्छा था, थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह। हाँ जावेद बाजवा जी ने बहुत अच्छा बोला यहाँ पर, और जितने भी हमारे साथ कॉलर जुड़े सभी का कहना बहुत अच्छा, राइट फ्रॉम काशिफ जी और जितने लोग भी जुड़े हैं आज, सबने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से बात रखी। सबका मानना तो ये है कि होना चाहिए, देयर हैज़ टू बी अ प्लानिंग, देयर हैज़ टू बी गुड प्लानिंग, बट उस पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स ना हो, एंड आप दूसरे प्लान्स के साथ भी चल सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं आसानी से।
0: और कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस के हिसाब से जो प्लानिंग करते हैं वो है ना, कभी ऐसे मोमेंट पे वो फेल होता है ना, तो वो बड़ा मतलब तो चोट लगती है दिल को, बड़ा दुख होता है,
1: ये तो है,
0: लेकिन
1: ये तो
0: है। नहीं होना है ना, चलो ठीक है, लेकिन हमको अच्छा ही सोचे थे, क्योंकि रजा अल्लाह की रजा है ना, अल्लाह जिसको चाहे जब दे, जितना देना कहाँ देना कब देना वो अपने हमारे से बेहतर जानता है, तो बस है कि नहीं
1: सही, बहुत सही, जबरदस्त। चलिए थैंक यू सो मच शहजादा जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, और सॉरी अभी मैंने आपका मैसेज देखा, आपने कभी डाला था मुझे, मैंने अभी देखा है, चलिए हम आए, हम तो आए, देखते हैं अभी थोड़ी देर में देखते हैं, क्योंकि बैक टू बैक कॉल्स आ रही होती हैं तो हमारा इधर ही जहन बना रहता है, फुल फोकस इधर रहता है मेरा, लेकिन चलिए मैं कोशिश करूंगी बीच बीच में चेक करती हूँ मैसेजेस। थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, सो यहाँ पर बात चल रही है प्लानिंग वर्सेज आपकी स्पॉन्टेनियस अप्रोच, आप किस अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं एंड क्यों, डू लेट मी नो, इसी पे बात कर रहे हैं हम। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट होते हुए, हेलो, ओ कॉल ड्रॉप हो गई फॉर सम रीजन, चलिए एक और कॉलर है उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं जमाल जी, खैरियत?

0: से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप
0: कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे?
1: मुझे लगता है कि ये जो प्लान लफ्ज़ प्लान है ना, एक किसी का किस्सा नज़्म कह सकते हैं, जिससे मतलब जैसे डिसिप्लिन है ना, तो उसी जुमरे का उसी जुमरे में आता है वो।
0: हाँ हाँ, कह सकते हैं।
1: मैं ज्यादा समझता हूँ कि किसी भी काम की खूबसूरती जो निकल के आती है ना, वो शायद उसी वजह से आती है कि एक इंसान संजीदगी से बैठ कर किसी चीज पे फिक्र करता है, यानी प्लान करता है ना, उसको सोच कर जब कोई काम करता है तो उसमें इस चीज का मतलब खदशा कम होता है कि ये मेरा नुकसान होगा, और अक्सर ये देखा जाता है कि वो नुकसान होता भी नहीं है ना, क्योंकि जब आप किसी प्लान के तहत जाते हैं तो एक तरह से ये होता है कि आप उस रास्ते पर जिस पे चलने वाले हैं उसको एटलीस्ट एक बार देख के आए होते हैं, एक बार देख लेते हैं कि यही वो रास्ता जिस पर हमें चलना, तो इस तरह की दुश्वारियां आ सकती हैं, क्या चीज मतलब फेस करना पड़ सकता है, और क्या चीज उसकी भलाई में मतलब भलाई के लिए हम क्या चीज बेहतर कर सकते हैं। तो वो इसी सूरत में है कि एक जब आप पूरी तरह से यानी उसको प्लान या मशवरा जो भी कह दीजिए, जब वो करके आदमी आगे बढ़ता है, मुझे लगता है कि उसमें नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं, और वो एक इंसानी जिंदगी के लिए न सिर्फ बल्कि इंसानी जिंदगी में जितने शोभा जाते हैं वो हर चीज के लिए बड़ी नसीब होती है, एक फायदा दे जाती है इंसान को, नुकसान से बचाती है कहीं ना कहीं, और काफी हद तक बचाती है। बिना प्लान के हमारे वहाँ पता है गांव में हम मतलब अपनी जुबान में जो कहते थे लोग कहते थे कि बिना इंतजाम और बिना किसी चीज के फिक्र के अगर कोई चीज किया जाए तो राह भंग हो जाता है।
0: शायद
1: मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे।
0: सही सही।
1: राज मतलब जैसे पहले पहले के जमाने में मतलब एक राजा लोग होते थे तो उनके मतलब पूरी हर चीज उन्हीं के इख्तियार में होती थी, जैसे यही मुल्क है ना, तो एक मुल्क का एक राजा अगर बिना प्लान या बिना इंतजाम बिना नज़्म बिना मशवरे के अगर कोई काम करने बैठे तो वो भी यानी खत्म हो जाता है, भंग हो जाता है, बेकार हो जाता है, और उसकी बुनियादें चारों तरफ से ही जाती है, वो बजाय ये कि अपने मतलब रहने वाले लोगों को कुछ फायदा दे सके, उल्टा है ना, वो बिना प्लानिंग किए हुए तो फिर आदमी अगर कुछ भी करने लगे तो वो उसमें नुकसान के तो 50% से ज्यादा चांस होते ही है, 50% से ज्यादा उसमें इस बात का खतरा होता है कि यहाँ आदमी नुकसान उठा सकता है ना। और इस तरह से तो देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर इसको एक दूसरे नुक्ते नजर से देखा जाए तो भी ये है कि बैठ के बाकायदा तौर पर हर चीज में मशवरा करने की एक आदत है, और मशवरा करने का हुक्म दे दिया गया
0: है,
1: एक सलाह प्लान मतलब वही हुआ ना कि आदमी सलाह करे, मशवरा करे,
0: मशवरा करे, प्लान करे चीजें,
1: सही। अगर कुछ करना है तो उसको बितरतीब अपने से चंद दान मशवरों के बीच में उसको डिस्कस करे, है ना,
0: सही।
1: तो उसके तहत जो काम किया जाता है आई थिंक मुझे लगता है कि वो फिर बरूए कार मुकम्मल कामयाबी के साथ होता है, और उसमें एक तरह से उस काम में खूबसूरती निखर के आती है और भरपूर कामयाबी के चांस होते हैं, नुकसान के खर्चा होते हैं,
0: सही बिल्कुल सही,
1: उसका रिजल्ट बेहतर आता है, नतीजा बेहतर मिल जाता है।
0: तो ये तो प्लानिंग होनी चाहिए, दैट्स राइट।
1: प्लानिंग मुझे लगता है कि होनी नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए।
0: हाँ,
1: छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ मैं
0: जी जी।
1: अब यहाँ पे तो नहीं, या यहाँ पर क्या करिए, दुनिया की किसी कोने में कोई शादी अगर आदमी ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, तो अगर बिना प्लान के वो पहुंच जाए, अपने सारी चीजें तरतीब कर दे, 200 आ गए, 100 का खाना बनाओ, तो फिर आपकी इज्जत लग गई बट्टा है ना, तो वो एक प्लान होता है जो आपको कहीं ना कहीं सुरखरू भी करता है, बिना प्लान के आज वो तो ऐसे हुआ कि जैसे मतलब ये है कि आदमी आंख बंद करके और फिर तीर चला रहा है हवा में, कहाँ जाएगा उसका कुछ पता नहीं है।
0: सही बात है,
1: है ना,
0: सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल। ये वैसे ही है कि आप हवा में तीर तुक्का लग गया नहीं होता,
1: हवा में तीर चला रहे हैं आंख बंद करके, वो इसी तरह से होता है, छोटी छोटी चीजों में चीजें लागू होती है, नाज़िम मैम, जैसे हम मैं अपना खुद देखता हूँ, मैं जो मेरा रोज का रूटीन है,
0: हाँ जी,
1: तो प्लान सेट है, रोज का रूटीन है, कभी कभी अगर इसमें होती है कि हम उसके अंदर तगैयुर करते हैं, तब्दीलियां कर लेते हैं, है ना, तो वो पहले से करना पड़ता है कि नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आज अगर मैं सो के थोड़ा सा 15-20 मिनट ज्यादा लेट होता, अब मुझे पता है कि किस कस्टमर की कौन सी टाइमिंग है, मुझे घर कब पहुंचना है, तो फिर वो रास्ता चलते चलते भी अपने मतलब दिमाग से ये होता है कि नहीं, एक काम करते हैं, जहाँ टाइम का इश्यू नहीं है वहाँ बाद में देख लेते हैं, जैसे वो हमारे रास्ते में पहले पड़ता है, तो हम वही चलते चलते प्लान कर लेते हैं कि नहीं ये कर लेते हैं,
0: ये कर लेते
1: हैं, बेहतर होगा, और ऐसा करने पर काम हमारे लिए बेहतर भी होता है।
0: हाँ बिल्कुल सही, तो प्लानिंग इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी,
0: बहुत जरूरी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात, बहुत जबरदस्त, थैंक यू जमाल जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे बात की, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस टॉपिक पे थोड़ी सी और बातचीत जो है वो कर लेंगे, फिर इस टॉपिक को जो है हम कंक्लूड भी करेंगे, बट बिफोर दैट जी, और अभी के लिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में रुकी रुकी थी जिंदगी, ये एंजॉय कीजिए एंड स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:02।
0: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: कितनी प्लानिंग कर रखी थी कि ये करना है मुझे, ये करना है सेगमेंट्स में, लेकिन देखिए बहुत सारी प्लानिंग आप करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। होता वही है जो हमारे लिसनर्स चाहते हैं, मेरा मतलब जिस तरह का आपका कमाल का रिस्पांस मिल रहा होता है। कुछ चीज़ें मैंने प्लान की थी कि ये वाले एलिमेंट्स भी रखें, ये सेगमेंट भी होगा, ये भी होगा, पर वैसा हो नहीं पाया। तो प्लानिंग नहीं होती, लेकिन आप फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप जब प्लानिंग ना भी हो फिर भी आप इंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिलहाल मेरे साथ एक कॉलर यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सवर जी आप? खैरियत से?
2: मैं ठीक हूँ नाजिया मैडम, आप कैसे हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज हमारा टॉपिक इज प्लानिंग, नहीं नहीं, प्लानिंग वर्सेस स्पॉन्टेनियस अप्रोच। आपकी क्या अप्रोच रहती है?
2: सारे लोग ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, जितनी टाइम से मैं सुन रहा हूँ गालिबन एक काफिल ओवर हो चुका है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा कुछ एक जो है अपोजिट ही रहा मैं, लेकिन छोटा सा बताऊंगा कि प्लानिंग मैंने अपनी जिंदगी में कभी की नहीं है।
1: लेकिन आप ही को मैं ढूंढ रही थी सुबह से।
2: नहीं नहीं सच्ची में बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अच्छा। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तो जिससे कि मुझे ये सीखने को मिला के नहीं भाई प्लानिंग करनी जरूरी भी होती है। ऐसा नहीं है कि खाली फर्जी बस क्यों आ गए और धड़ाल से डिसीजन ले लिए, लेकिन वो जिराशिम अभी भी है डिसीजन लेने वाले, लेकिन मुझे जो है वो जो अच्छा हो गया अच्छा हो गया, बुरा हो गया कोई बात नहीं, दूसरा देखेंगे फिर वैसा वाला टाइप। तो प्लानिंग जो है अभी अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ करने के, मगर अपनी जिंदगी में मैंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कि ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, बस जैसा फ्लो करते चलते चला गया वैसे, मतलब वो बहती नदी होती है ना उसी तरीके से, जहाँ पानी टकरा है वहां से निकले और फिर आगे बढ़े।
1: बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हुआ या हुआ? प्लानिंग ना
2: लॉसेस वगैरह तो होते रहते, मगर मैं गौर नहीं किया, मैं बोला ये मेरे मुकद्दर में नहीं था, होगा शायद, चलो कोई बात नहीं दूसरा कोई और।
1: सही कहा, ये तो प्लान करने वालों के भी लॉस होते हैं जो बहुत प्लानिंग करते हैं।
2: नहीं वो तो मैं हमेशा से ये सोचा था कि जो है प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा जाती है भाई, कि ऐसे वैसे कुछ हो के, तो जो है जब वो नहीं होता है तो हम कितना भी कह लो बाहुबली बन के कह मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो साला कहीं ना कहीं दिल में ना एक चोट पहुंचाता ही है, तो बेहतर है कि जो है वो दिल को चोटों से बचा के रखें तो बेहतर होगा मेरे लिए।
1: दिल को मजबूत रखने के लिए
2: प्लानिंग कमजोर रखें, बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
1: बिल्कुल सही,
2: मेरा कुछ ऐसा है कि बट फिर मैं जब परदेश आया उसके बाद में मुझे जो है यहाँ पर का तौर तरीके, और उसके बाद में जो है मैं तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, तो बस तक तौर तरीके सब सारी चीजें जब देखा मैंने सब चीज समझ में आई, तो मैंने कहा कि यहाँ पर छुट्टी प्लान हो रही है और फिनेंशियल थिंग्स को प्लान किया जा रहा है और जो है अपनी जिंदगी को प्लान कर रहे हैं कि आगे जाके जिंदगी कैसे रहेगी, वो किस तरीके से हमको जिंदगी को बनाना है। तो मैं ये सब चीज देखा देखकर जो है मुझे लगा कि हाँ कुछ हद तक प्लानिंग भी करनी चाहिए वरना फिर आगे जाके मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक चीज सीखने को मिली और बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है इंसान को जो है प्लान बनाना और जो अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना, लेकिन उसके ऊपर में स्टिक नहीं हो जाना कि भाई मैं अब ये बना लिया हूँ तो ये इसी हिसाब से, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो बनाए हो वही चलेगा, आप जो खाना बनाए वही खा सकते हो, उससे हटके कुछ नहीं मिले। और कभी कभी तो होता है कि वो भी

0: नहीं होता है. तो प्लानिंग अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर में अपना पूरा मन लगा लेना वो गंदी बात है मेरी नजर में. कर तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, बाकी अल्लाह करीम. मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा तो वही सिंपल फंडा है, मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं.
1: कोई बात नहीं, आपको ही मैं तलाश कर रही थी कि कोई आए और कहे आके कि भाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में प्लानिंग, चल जाएगा. अगर प्लानिंग बहुत अच्छी तगड़ी नहीं की, ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ भी प्लान नहीं करता, आप भी हम श्योर करते तो हैं ही, बहुत सी चीज़ें तो हमें प्लान करनी ही करनी है विद नो चॉइसेस लेफ्ट फॉर अस. लेकिन हाँ, उतना ज़्यादा प्लानिंग के चक्कर में जो लाइफ का जो एक्साइटमेंट है, जो चार्म है, उसे कहीं हम लूज़ ना करें, वो इंटैक्ट रहना चाहिए.
0: लाइफ का चार्म और एक्साइटमेंट तो मैंने बहुत लिए भाई, मतलब कि भाई अपनी जिंदगी में जितनी मौज मारी है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि मतलब मेरे घर वाले सारे लोग सब, मतलब मेरे खानदान वाले तक भी परेशान थे, मतलब ये कौन सी दुनिया में जीता है, सारी प्लानिंग में लगे पड़े हैं, ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, ये 40 के बाद जिंदगी ऐसी होगी, 50 के बाद ऐसी होगी, 60 के बाद. अरे घंटा होगी भाई, कल का भरोसा नहीं है, थोड़ी देर का भरोसा नहीं है, क्या प्लानिंग लेके बैठे हो. उन्होंने कहा छोड़ो मट्टी डालो, जितनी जिंदगी है उतनी जीऊंगा, जब तक हूँ उतना तो ऊपर वाला खिलाएगा ही, और मेरे जब बच्चे आएंगे, शादी है सब है, तब जो सारी चीजें निपटी जाएंगी, सब हो
1: जाएगी.
0: दुनिया में इतने सारे लोग दुनिया में आए हैं, गए हैं, सब ने क्या क्या नहीं प्लानिंग करके रखे. खबर में जाकर देखो, कब्रिस्तान में कितने बड़े बड़े प्लान्स पड़े रखे, और आर्किटेक्टर्स है, इंजीनियर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, क्या नहीं लेटे हुए हैं खबरों में, उन्होंने क्या नहीं प्लानिंग करी थी. हाँ, प्लानिंग अच्छी चीज है, वो थोड़ी बहुत प्लानिंग से ही जो है एक निजाम चलता है, लेकिन एज आई सेड के उसके ऊपर ज्यादा वो नहीं हो जाना. तो मैं उन लोगों में से हूँ जो डिसीजन फटाफट के फटाफट ले लेते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, लटक जाओ, उल्टा लटक जाओ, मैं नहीं लूंगा डिसीजन.
1: नहीं, बहुत ही अच्छी अप्रोच, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच
0: है. मुझे समझ में आ गया तो मैं फौरन से ले लूंगा, अगर चाहे नुकसान भी हो जाए, मगर मुझे दिखा के भाई ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए मेरा खुद का डिसीजन, मेरी खुद की खुशी बड़ी इम्पोर्टेंट है.
1: सही, आई रियली लाइक दिस अप्रोच, बहुत ही आपकी अच्छी वाली अप्रोच है और बड़ी डिफरेंट और यूनिक भी है.
0: इसलिए
1: उन सबकी शादी हो गई, उनके बच्चे उनके पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी.
0: हमारी भी शादी हो चुकी है, हमारे भी बच्चे हो चुके हैं मैडम, ऐसा नहीं है.
1: मैंने कहा इसीलिए आप अच्छी अच्छी खासी चल रहे हैं. नहीं, मैं कुछ प्लानिंग करूँ, अकेले दम पे तो कुछ भी प्लान ना करो चल जाएगा, पर आपके साथ कुछ लोगों की लाइफ एसोसिएट करे तब प्रॉब्लम है. लेकिन आई रियली एडमायर योर अप्रोच. मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% आपकी अप्रोच जो है वो सही है या 100% आपकी अप्रोच सही नहीं है, बट आपकी जो अप्रोच है इज गुड फॉर यू, एज फार एज आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, देन दैट्स बेस्ट. ये होना चाहिए कि हम उसे एंजॉय करें.
0: मैं तो मेरे वाइफ को भी यही कहूँ, और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो मैंने भी उन्हें ये कहूंगा कि जो भी ये आपके भलाई के लिए जो प्लानिंग है वो ठीक है, लेकिन ज्यादा प्लान में ना डिसीजन लेने वाले हौसले दब जाते हैं उसमें. आप डिसीजन नहीं ले पाते हो आगे जाके, क्या करना है, कैसे कर, मतलब आप फिर प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट होते हो, फिर प्लान सी पे शिफ्ट होते हो, यानी प्लानिंग में रह जाते हो, कोई और उड़ा ले जाता है. तो ये चीजें जो है थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो अपनी वाइफ को बोला
1: बहुत अच्छे
0: जैसे दिन है जियो,
1: ये तो मैं कहूँ
0: मजे करो. आज 10 रुपया जेब में है, उसके 2 रुपए बाहर कल रख, अच्छा। कल के लिए रख लो.
1: ये प्लान किया नहीं आपने, 2 रुपए रख लिए, बचा लिए. मैंने कहा आज है ना, सब उड़ा दो,
0: बचाना नहीं है. मैं बोलता हूँ कि भाई 10 रुपया है, 2 रुपया आप कल के लिए रख लो, बाकी 8 रुपए में से 4 रुपए अपने पे खर्च करो, 2 रुपए जो है गरीबों में खर्च कर दो, और 2 रुपए अपने दोस्तों को अपने खर्च कर दो, रिश्तेदारों में. खत्म हो गई जिंदगी, इतनी थी अपनी, अपने को जितना मिला उसमें से सबको बांटो, करो अपने, खाओ पियो, खुश रहो.
1: भाई शहजादा जी, जावेद बाजवा जी, जितने लोग हैं सब आपका नंबर मैं उन्हें फॉरवर्ड करने वाली हूँ. वो ऐसे ही दोस्त को ढूंढ रहे थे जो दोस्तों पे खर्च करें, आपका नंबर मैं उन सबको भेजने वाली हूँ.
0: अरे मैडम, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि फिर घर वाले मुझे बोलेंगे तुमने मुझसे शादी की, दोस्तों से कर ली.
1: नहीं, आपने फैमिली के लिए भी रखा है ना पैसा, वो आपका प्लानिंग कैसा है, कुछ आपने कहा मैं दोस्तों के लिए भी रखता हूँ, तो वो दोस्त मैं आपको चुन के दे देती हूँ, ठीक है. लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान है, ये सीरियस कह रहे हैं.
0: कंजूस वाले नहीं चाहिए मुझे,
1: अरे जावेद बाजवा जी, अभी आप मिले नहीं है उनसे, मिलिए तो बिल्कुल कंजूस नहीं है शहजादा जी, मुझे पूरे पूरी उम्मीद है वो भी नहीं है। तौफीक जी का तो वैसे ही दिल बड़ा है, वो तो कभी नोट दिखा रहे हैं।

0: माशाल्लाह उनके अंदर सुनते रहता हूँ मैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान
1: है। वो भी भेजें, गाबा जी का दिल बहुत बड़ा है और जितने लिसनर्स जुड़ेंगे ना, रईस जी कहते हैं मेरा दिल बहुत ही लंबा चौड़ा है, सो डोंट वरी, सब अच्छे दोस्त हैं।
0: जितने हमारे 107 के चाहने वाले हैं सबका दिल बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे हमारे ह्यूमर में हम बात कर रहे हैं, जोक्स अपार्ट, लेकिन सब माशाल्लाह से अपने अपने नजरियात रखते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है, वक्त का पता नहीं चलता, 5-10 मिनट हम जो है एक खुशहाली के माहौल से निकल जाते हैं और सबके अपने नजरियात देखने को भी मिलते हैं जिंदगी को, कौन किस तरह नजर से देख रहा है करके।
1: सही, और आपने थोड़ा सा डिफरेंट रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे कोई देखा नहीं।
0: करने के लिए मैंने नहीं कहा है,
1: मैंने पता है आप ऐसे ही हैं
0: जैसे वैसा।
1: हाँ नहीं, मुझे मालूम है आप इसी तरह के हैं।
0: अब्बा जान अभी तक परेशान है, मालूम आपको,
1: आपसे
0: बोलते हैं इसकी शादी हो चुकी है, ये कुछ प्लानिंग नहीं करता है, मेरे दोस्त बोलते हैं ये कोई प्लानिंग नहीं करता है, ये करता क्या है, तनख्वाह आती है उड़ा देता है, खाता है पीता है, घर वालों को भेज देता है, कर लेता है। मैंने बोला कल कौन देखा भाई, वो ऊपर वाले ने जो भिजाया है, जो चिड़िया जो है इससे आसमान में उड़ रही है, वो फिक्र करती है दानी की, कोई फिकर करता है, खाना ही तो है ना, बाकी की फिकर क्यों थी उसकी,
1: आप सबसे कहा कीजिए, सबसे कहिए कि लोग जो है ना दिमाग से प्लानिंग करते हैं, मैं दिल से प्लानिंग करता हूँ, प्लानिंग मेरी भी है, लोगों की लिख के प्लानिंग होती है, मेरे दिल में होती है और बस मेरे रहती है दिल में कि ये चीजें मुझे करनी है और मैं करता हूँ दिल से।
0: ये तो है ही है, बट मैं जो है मैं ये करता हूँ कि आप जो दुनिया में खर्च करते हो ना, जब अल्लाह के लिए खर्च करते हो और अच्छी चीजों के लिए खर्च करते हो, वो कहीं ना कहीं से रिटर्न होके मिल जाता
1: है,
0: वो अल्लाह है आपको लौटा के दे देता है, वो किसी का कर्ज नहीं रखता, वो आपके बच्चे भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे। आज आप जो है ना, एक सुलेमान अलैहिस्सलाम की हदीस याद आ गई मुझे, फौरन से कह के रखूंगा मैं, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ने उनको इतनी कुव्वत और कुदरत दी थी कि वो जो है चरिंद परिंद जानवर हर चीज से बात कर सकते थे, सही है। तो चींटी जा रही थी, तो चींटी को रास्ते में देखा उन्होंने, चींटी को अपने उठाया, हाथ में उठाकर पूछा कि दिन में तो कितना खाना खा लेती है क्या है? तो बोले सुलेमान मैं एक जो है शक्कर का दाना जो छोटा वाला होता है ना वो खा लेती हूँ। तो महीने के कितने हो गए, साल के इतने हो गए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं पर जा रहे थे, हिजरत कर रहे थे कुछ वक्त के लिए, तो उन्होंने क्या किया, तो वो जो एक बॉल होता है ना छोटा सा, वो बॉल में उस हिसाब से दाने डाल दिए, दाने डालकर चींटी को जो है उसमें छोड़ दिया, छोड़ के बोला कि अब तेरे नसीब का जितना रिस्क है मैंने उसमें डाल दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। आने के बाद में जब देखा उन्होंने चींटी को, एक क्यूरियोसिटी रहती कि भाई पूरा खाली होगी, वो बाहर भी आ गई होगी करके, तो वह चींटी डिप्रेशन में आ गई थी। किस चीज के डिप्रेशन में आ गई थी, कि अब ये खा लूंगी मैं तो ये खत्म हो जाएगा, तो हम जो जमा कर रहे हैं ना हमारा दिल उसी में उड़ा पड़ा, अरे ये इतना हो गया तो खत्म हो जाएगा, उतना हो गया अगर कल क्या करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा फलाना डिमका, अरे ना करो यार, दो रोटी खाओ, हंसी
1: अपनी जरूरत पूरा कीजिए और जो आसपास के लोग हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं।
0: आप जो है आप फजूल खर्चियों में जा रहे हो, आपके पास जो है वो नहीं है, तो फजूल खर्चियां भी मैंने की है, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं क्यों तरकीब देने तो अब जो मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं अब जो कर रहा हूँ वो नहीं बोल रहा हूँ, फजूल खर्चियों से बचें बस, वो फजूल खर्चियां हाँ थोड़ा तकलीफ देती है, मतलब आपके पास में है अच्छे, आपने जो है कपड़े खरीदे महीने में 2-3 ऐसा अच्छे अपने जोड़े खरीद लिए, आपको जरूरत नहीं है अगले महीने में खरीदने के, फर्जी जा रहे हैं बस लोगों को बताने के लिए कि मैंने ये ब्रांड लिया है, मैंने वो ब्रांड लिया, वहां में जो आपके पेट में मरोड़ होगा ना, वो जो दस्त लगेंगे वो नहीं बर्दाश्त हो गया, क्योंकि आपकी पॉकेट फट जाएगी तो आपकी भी फट जाएगी, तो इससे बेहतर है कि आप अपने जो है हिसाब किताब में चले तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, फजूल खर्चों से बचें। एक गाड़ी है दूसरी लेने की जरूरत नहीं है,
1: हाँ एक में ही आप बैठ पाएंगे, दो तो चलाना
0: मुश्किल है, एक मस्कारा है तो दूसरा नहीं लेना चाहिए,
1: एक लिपस्टिक है तो उसी पर टिको, 2-3 खरीदने की जरूरत नहीं है, सही का बहुत जबरदस्त समझ
0: के काम चला जी, मैच के शेड्स हैं तो लेने की जरूरत नहीं है
1: या अपनी वाइफ को भी सुना रहे, चलिए खैर साथ खैरियत की शाम में पहुंचिए घर, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत मजा आया आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई कि मुझे लगता है बहुत ही प्यारा सा गाना पहले आपको सुनाते हैं, फिर वापस आएंगे कुछ और बातें, एंड इस टॉपिक को ऑफ कोर्स कंक्लूड भी करेंगे।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

खत्म हो गया। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। मैं हूँ नासिया आपके साथ 8:25 ऑन द क्लॉक। और अब फाइनली इस टॉपिक को कंक्लूड करने का वक्त आ गया है। आप में से इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े और सब ने बड़े कमाल के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर किए इस टॉपिक के हवाले से। आज हम बात कर रहे थे प्लानिंग वर्सेज स्पॉन्टेनियस अप्रोच पर। दोनों ही अप्रोचेज बेस्ट हैं, लेकिन हाँ मेजॉरिटी जो है वो प्लानिंग के साथ है, क्योंकि हमें सिखाए वैसे जा रहा है, वी आर कंडीशन्ड दैट वे। ये हम कह सकते हैं कि मजबूरी है, प्लानिंग तो करना ज़रूरी है, दिल चाहे ना चाहे। लेकिन हाँ, अनप्लान मोमेंट्स जो होते हैं ना, वो कई बार हमारी और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं, हमारी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, और हाँ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अडॉप्ट करने लगते हैं नेचुरली। उसके लिए हमें कोई वर्कशॉप अटेंड करनी नहीं पड़ती। तो अगर हर चीज़ प्लान के मुताबिक चलेगी तो कई बार आप जो है वो कंफर्ट जोन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब नए नए चेंजेस या चीज़ें प्लान नहीं होती तो कहीं ना कहीं इनोवेशन और कहीं ना कहीं आप खुद को चैलेंज करके नया अपना खुद का बेहतर वर्जन जो है उससे आपकी मुलाकात हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो हम सबके जहन में होता है कि अगर हम प्लानिंग भी कर रहे हैं लेकिन वो फेल हो जाए तो क्या? ये तो होता ही होता है, अक्सर लोग प्लान करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। उसमें पैनिक नहीं करना है। जैसे आपने भी कहा, ठीक है जितने कामयाब लोग हैं वो प्लानिंग करते हैं, फेल भी होना पड़ता है, लेकिन उस फेलियर से सीखना होता है, अपनी अप्रोच को चेंज करना है कि ये प्लान मेरा काम नहीं कर रहा, दूसरा प्लान हमें उसको दूसरे प्लान को अपनाना है जिससे हम अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकें। और आपको अपनी सिचुएशन को टाइम टू टाइम एनालाइज करना है। बहुत बार हमने प्लानिंग की होती है कि हम ना ये वाला प्रोग्राम करेंगे उस सीज़न में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना रेडियो को बताऊं, लेकिन उस सीज़न में उस टॉपिक की उतनी रेलिवेंस ही नहीं रही। अब मैंने तो बहुत तगड़ी प्लानिंग की, मैंने बहुत अच्छी इसकी स्क्रिप्ट तैयार की, मैंने परमिशंस लिए, अप्रूवल्स लिए, सब कुछ हो गया, और कई बार हो सकता है मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली, मतलब जो मैंने उसकी तैयारी करनी थी वो सारी चीज़ें कर डाली। और मुझे पता चलता है कि जब ये रिलीज़ होगा, जब ये ऑन एयर जाएगा, तब उस वक्त कुछ और चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं या लोग जो हैं उस टॉपिक के साथ ज़्यादा कनेक्ट होंगे, तो ये प्लानिंग आपकी फेल हो गई। तो ये आपकी मिस्टेक नहीं है, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्न, कि ये नहीं अब मैं जल्दी से कुछ और क्या तैयारी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आई हैव टू थिंक ऑन माई टोज, और ये मुझे खुद को चैलेंज करने का मौका भी देता है। और मैं कहती हूँ ये करना चाहिए, हर बार हर चीज़ प्लान होगी तो पर आपकी लाइफ का जो एक्साइटमेंट है, जो चार्म है, वो कहीं ना कहीं रह जाएगा। और इनमें क्या है, आप फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आते हो। आप जब दूसरा प्लान जब दूसरा तैयार करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली सीख रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, प्लानिंग भी आपको तगड़ी करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्लानिंग ज़रूरी नहीं है, प्लानिंग मैं वापस बार बार कहती हूँ कि हर जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर प्लानिंग मैंडेटरी है, जैसे आप एजुकेशन है, आपका करियर है, यहाँ पर आपको तैयारी करनी ही करनी है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी, अदरवाइज आपका करियर, आपको डिग्री हासिल नहीं होगी, करियर दाव पे लगेगा, आपको अपनी लाइफ का जो रोड मैप है वो बिना डायरेक्शन के किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ तो आपकी प्लानिंग चाहिए। जैसे मैंने आते के साथ ही कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट्स है बनाना, सेविंग है, आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, अपने लिए घर खरीदना है या और अपने फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की प्लानिंग है। बिजनेस वर्ल्ड में बात करें या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करें, यहाँ तो प्लानिंग चलती ही चलती है, आपका ताल्लुक है आप जानते ही जानते हैं। वहीं पर कुछ आपकी ज़िंदगी के मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे शादी है, जैसे रीलोकेशन है, एक नई जॉब है, या कोई बड़ा फैमिली इवेंट है, इनमें भी प्लानिंग चाहिए होती है। ठीक है, इनमें प्लानिंग इसलिए चाहिए होती है कि आप खुद को कन्फ्यूजन से बचाएं, खुद को जो है स्ट्रेस से बचाएं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां प्लानिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे आपका डेली रूटीन, ठीक है पार्शली आप उसको प्लान कीजिए लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, फैमिली के लिए कोई अच्छा मोमेंट, ऑल ऑफ सडन यू नो स्पॉन्टेनियस आउटिंग आपने कर ली अपनी वाइफ के साथ, चाय पीने चले गए, एक बेहतरीन मेमोरी आपने जो है वो बना ली, ये आपने प्लान नहीं की थी, आपके रूटीन का हिस्सा भी नहीं था, बट आपने ऐसे ही कि आप लंच पे आए अपने घर और आपने कहा चलो लेट्स हैव आउटिंग, लेट्स गो फॉर अ टी और समथिंग, वट एवर यू कैन। कई बार आप देखिए लोग जो हैं, चाहे राइटर्स हों, चाहे म्यूजिशंस हों, चाहे पेंटर्स हों, वो कभी भी प्लान करके चीज़ें तैयार नहीं करते, उनके जहन में आता है ऑल ऑफ सडन वो ब्रश उठाते हैं एंड दे पेंट,
तो ये जो क्रिएटिविटी का प्रोसेस है जो आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा मैंडेटरी रहेगा, वो आपका आता है अनप्लान्ड मोमेंट में, वहीं से निकल के आता है। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा स्केड्यूल बना के यू नो हम मुलाकात करेंगे, नो इट्स नॉट दैट रिक्वायर्ड। कभी आप अचानक यूँ ही चले गए, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार दोस्त के साथ जाके जो है खाना ही खाएं, बस यूँ ही गए, मिले, उसका हालचाल लिया, हक किया, कुछ हल्की फुल्की बात की, एंड देन यू आर डन। तो जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उन्हें मैं कहूँगी कि प्लान ना करें, उन्हें यूं ही बस इसी तरह से इंजॉय करें। जितना रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उन चीज़ों को हमें ज़रूर प्लान करना होता है, लेकिन जब आप आपके रिश्तों की हो, क्रिएटिविटी की हो, इंजॉयमेंट की हो, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत भरपूर गुंजाइश होती है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि देयर हैज़ टू बी अ गुड बैलेंस। जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो ये अप्रोच कि 50% प्लानिंग एंड 50% आपकी स्पॉन्टेनियस अप्रोच, विल इट वर्क? नो। बैलेंस का मतलब है कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को प्लान करें, लेकिन उन चीज़ों को पाने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डालें। जो इम्पॉर्टेंट गोल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि 50% किया और बाकी आपने डिसाइड ही नहीं किया। वो चीज़ें आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है। जैसे आपकी जो सैलरी आई उसकी आपको प्लानिंग करनी ही करनी है कि आप जो है एक्सीड ना कर जाएं। ऑफिस की या बिजनेस की जो डेडलाइंस हैं उन्हें तो आपको प्लान करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने काम करने ही करने हैं। लेकिन हाँ, जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं उन्हें कंट्रोल या प्लान करने की कोशिश मत कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो भी स्केड्यूल है उसमें आपके लिए फ्री स्पेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग अपना पूरा दिन फिल करते रहते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमारे पास तो फ्री टाइम ही नहीं है। जो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ जो उन्हें दिख सकती थी वो उन्हें नज़र ही नहीं आती, क्योंकि वो कभी रिलैक्स ही नहीं रहे, वो फुल टाइम फोकस रहे, और वो रिलैक्सेशन जो उन्हें मिलता, जो उनकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करता, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का उन्हें मौका देता, वो उनके पास से चला जाता है। इसलिए यहाँ भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा हल्का सा लेस रिजिड अप्रोच इज़ ऑलवेज गुड। इसके साथ और चीज़ें जो हैं वो ये कि कई बार आप जो है अपनी लाइफ में सरप्राइजेस को अहमियत ही नहीं देते। कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते सरप्राइजेस, होता है ना कि कोई नहीं दे, बट दे डोंट इन्जॉय मच, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। जबकि मैं ये कहूँगी ये जो अनप्लान्ड सरप्राइजेस हैं दे आर लाइक अ गिफ्ट्स, ये गिफ्ट की तरह है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, कोई एक अनएक्सपेक्टेड सी फैमिली गैदरिंग या अनएक्सपेक्टेड सी छुट्टी आ जाती है, देखिए कितना अच्छा लगता है हर किसी को, जो है ना हर किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो जितने कामयाब लोग हैं आई कम्प्लीटली एक्सीड कि हाँ वो प्लान ए बी सी इन सब पे काम करते हैं, उनके लिए है, ये होना भी चाहिए। जब आपके पास प्लान ए फेल हो तो बी आपके पास हो या सी हो, तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है और लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आपके गोल्स एकदम क्लियर होते हैं। लेकिन हाँ, हर चीज़ आपके मुताबिक एकदम परफेक्ट हो ये कभी नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, डन इज़ ऑफन बेटर देन परफेक्ट। तो कर लो, एक कदम उठाओ। हो सकता है कि इस प्लान में थोड़ी सी आपको लेकर आपके पास आपको स्ट्रगल करनी पड़े, बट देन अगेन चीज़ें आप सीख रहे हैं। सो इट्स लाइक अ वे, कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन ही है। प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती ही देती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस अप्रोच हमें नए एक्सपीरियंसेस भी देती है। और मैं तो कहूँगी कि ज़िंदगी का जो बेस्ट फॉर्मूला है वो ये है कि हम अपनी मंजिल प्लान करें। जैसे कि जावेद बाजवा जी ने भी कहा, हम अपनी मंजिल प्लान ज़रूर करें लेकिन सफ़र को इंजॉय करने के लिए। सरप्राइजेस को जो है वो छोड़ना ज़रूरी नहीं है, उनको भी साथ में रखिए। ये कह सकते हैं आपके दोनों चीज़ें जो हैं, आई मीन प्लानिंग एंड स्पॉन्टेनियस अप्रोच, ये दोनों मिलकर ही आपकी ज़िंदगी को जो है वो खूबसूरत और मज़बूत बनाती हैं। तो बस इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। प्लान इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट डोंट प्लान एवरी सिंगल मोमेंट। कुछ लम्हे कैलेंडर में लिखे तो जाते हैं, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे हैं जो कैलेंडर तक नहीं होने चाहिए, जो रिमाइंडर्स में या नोटिफिकेशंस में नहीं, आपके दिल में होने चाहिए। तो बस यही आज का हमारा टॉपिक है, जिसे अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ। अब थोड़ी देर बाद हम जो हैं वो आपके साथ गेम का आगाज़ करेंगे, जस्ट बिकॉज आज है ट्यूसडेज एंड वी से दैट इट्स टर्निंग बैक ट्यूसडेज। इस तरह से होता है कि हम 90s के सॉन्ग्स प्ले करते हैं, तो आज मैंने आपके लिए कुछ 90s के सॉन्ग्स ही रखे हैं जिन्हें आपको पहचानना है। ये गाने बीच से होंगे, बस आपको पहचानना है सुन के कि गाना जो है ये है कौन सा। सो इट्स दैट वे, 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होगा। टू ऑल द बॉलीवुड लवर्स, जितने भी हैं दोस्त, वो जितने लोग हैं वो सारे के सारे आज मेरे साथ जुड़िए ज़रूर। नंबर है 4434377, यहाँ पर आप कॉल करेंगे और हम और आप मिलकर गेम खेलेंगे। इफ़ इन केस आप चाहते हैं मैं आपको कॉल करूं तो मैसेज कीजिए 666-22-107 पर, यहां आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए
अभी फिलहाल के लिए नुसरत फतेह अली खान की आवाज में बहुत ही कमाल का ये ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट. एंजॉय दिस एंड स्टे हुक्ड टू FM 107.

0: Right guys, एक बार वापस आप सबको कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ और अब फाइनली हम जो है वो गेम खेलने की तरफ आ चुके हैं और एक कॉलर मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो,
1: सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मैडम नाजिया।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कौन है मेरे साथ, आपका नाम? राज, रियली रियली सॉरी, वाओ मैंने खड़ाक से सही संभाल लिया अपने को, पहचान लिया आपकी आवाज। चलिए आज तो आपका फेवरेट वाला वो है कि आज हमें गाने आपको पहचानने हैं और यहाँ आप माहिर तो हैं ही, वैसे नदीम माहिर जी का भी मैसेज है तो वो भी

दिन बताऊंगी लेकिन आपकी यहाँ पे एक्सपर्टीज तो है, तो मैं आपको गाना जो है कहीं बीच से सुनाऊंगी, ठीक है? और आपको पहचानना है कि गाना है कौन सा, उसका टाइटल. ऑलराइट, ठीक है? चलो जी, एक्सेलेंट हो गया. तो आपके साथ गेम का आगाज करते हैं. 30 सेकंड्स आपके पास है. इन केस कोई गाना समझ में नहीं आता तो आप मुझे बोल सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है? चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. अखियों से गोली इज राइट. छम्मा छम्मा इज द राइट आंसर.

0: द राइट आंसर. यहाँ पे टाइम अप हो गया, बट जितने भी मैंने आपके लिए कार्ड्स पे प्ले किए वो सारे के सारे आपने बताए. एंड दैट्स हाउ इट्स लाइक 4 का स्कोर. क्या बात है, जबरदस्त 4 का स्कोर आपने किया है और 4 ही प्ले हो सके, 4 के 4 आपने सही पहचान लिए. क्या बात है राज, थोड़ा सा आपने टाइम हल्का सा लिया लेकिन यहाँ सारे के सारे सही पहचाने. सो वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छी शुरुआत.
1: जो जो क्वेश्चन देते हैं आप जरा थोड़ा कभी कभी टफ देते हैं ना, इजी तो देते नहीं
0: है. ये टफ
1: थे दिल से रे, रेस्ट ऑल वाज हां बीच में जो चलाया, दैट इज नॉट इजी.
0: ओडली वाली, हाँ अच्छा, मुझे लगा मैंने तो सारे हिट गाने पिक किए हैं. नहीं है,
1: साथ पे जो धुन रहता है वो थोड़ा इजी होता है, लेकिन बीच में जो चलाते ना इट इज नॉट दैट इजी.
0: हाँ ये तो है, ये तो है, बीच में थोड़ा टफ पड़ता है, बट आपने तो बहुत अच्छा खेला, बहुत जबरदस्त.
1: आप पेपर हमेशा मस्त सेट करके लेके आते हैं.
0: पेपर देखिए मैं बहुत टफ नहीं सेट कर रही हूँ, मैं आसान भी कर रही हूँ लेकिन लगना चाहिए टफ है.
1: स्मार्टली,
0: ठीक है, स्मार्टली सेट कर रही हूँ. नाइस, दैट्स रियली नाइस. बट थैंक यू राज, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू एना,
0: यू टू हैव अ ग्रेट डे, ठीक है, बाय. ऑलराइट, यहाँ पर एक और कॉलर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो,
2: सलाम अलैकुम. आज हमारी प्लानिंग को फेल मत कर दीजिए.
0: रईस जी, आज मुझे लगता है कि मैं आपकी प्लानिंग बिल्कुल फेल नहीं करूंगी और आप अच्छा
2: लेकिन हार के जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं.
0: भैया आप तो असली बाजी कर रहे हैं हमारे, और क्या इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. अरे आप बहुत अच्छा करेंगे.
2: प्लानिंग फेल हो जाए नो प्रॉब्लम. आपने मतलब पूरा टेंशन में और उसमें नहीं जाना चाहिए बंदे को, बस
0: खुद को समझाते रहो कि है आपके पास जो कुछ है, अभी हाथ पैर सलामत है आपका, जिसमें आप जिंदा है. बहुत सही बात है,
2: कभी कभी बंदा हारता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ही जीतो, जो भी सामने वाला आपके वो भी यही प्लान करके आया कि मैं जीतूंगा,
0: मैं जीतूंगा,
2: तो ये भी जीतेगा ना. दो खेलने वाले, ये दोनों तो नहीं जीत सकते, एक को हारना पड़ेगा.
0: एक नहीं, हारता कोई भी नहीं है, एक जीत जाता है. ये
2: मतलब एक प्लानिंग आदमी का होता है कि मेरा गोल सबसे ऊपर हो, मेरा रन सबसे ज्यादा हो, मतलब यही हो, ये प्लानिंग तो यही होता है. लेकिन आदमी को
0: जबरदस्त, चलिए बहुत ही अच्छी सोच के साथ इस गेम का आगाज करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट, 30 सेकेंड आपके पास है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.

0: अरे रईस जी पूरा टाइम इसी में निकाल देंगे.
1: नेक्स्ट
0: नेक्स्ट. गाइए गाइए बस गाइए आराम से पूरा.
1: अरे घूमने करने का राज भाई ने सही कहा कि बीच से कट करके स्टार्टिंग में ला रहा है, ये बहुत बड़ा मुसीबत. और वे जिसके इस मामले में बड़े तेज है माशाल्लाह, उसको दांत देना पड़ेगा. आप चले आते हैं थोड़ा गप सप करने के लिए, सुनने के लिए, बस कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हम.
0: थैंक यू जी इस बात के लिए, आपके लिए ताली. बहुत अच्छी बात है कि आप कोशिश करने आते हैं. ये हैट्स ऑफ सैल्यूट है.
1: खुश है भाई,
0: हम बहुत खुश है आपके इस अप्रोच पे. नाइस, वेरी नाइस. चलिए वालेकुम अस्सलाम. देखिए कितनी अच्छी बात की हम आते हैं. गेम खेलना इज नॉट अ पर्पस, ये है कि खुद को सिचुएशन में डाल के देखना क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा. और मेरे लिए अगर टफ है तो डेफिनेटली मुझे ट्राई करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है. एक और कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं, आई थिंक दिस गोइंग टू बी द लास्ट कॉल. लेट्स सी कौन है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. शहजादा जी मेरे पास टाइम कम है तो जल्दी से मैं आपके साथ गेम स्टार्ट करूँ.
2: हाँ हाँ करो करो करो.
0: चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.

तो आज के अगेन वी हैव थ्री चैंपियंस, लेकिन हाँ आज लकी है राज विद 4. क्या बात है राज. कुछ लोगों ने यहाँ पे हाई हेलो जरूर लिख के मुझे भेजा है कि हम खेलना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक अभी मेरे पास टाइम है, तो इंशाल्लाह कल वापस यही रखेंगे. ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आपको ज़्यादा मज़ा इसी में आ रहा है, तो इसी को खेलते हैं. अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के मैसेजेस रह गए, जैसे सी बी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. नदीम माहिर जी का बहुत ही प्यारा सा मैसेज, थैंक यू सो मच. जसविंदर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का, एंड इंशाल्लाह वी कैन से दैट. गुल मोहम्मद जी, थैंक यू. मुबीन बुखारी जी, कहाँ थे आप आज मैंने इनकी बहुत जमाने बाद जो है वो देखा मैसेज. मकसूद जी, थैंक यू. और भी हमारे पास जितने भी लिसनर्स हैं, प्रिंसन थैंक यू, यूसुफ जी थैंक यू, यहाँ पर राजू मोहम्मद जी थैंक यू सो मच, एंड यहाँ पर है सुधाकर जी थैंक यू सो मच. विद दिस अब मेरा टाइम है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ. इंशाल्लाह कल सुबह 6 बजे आपकी हमारी मुलाकात होती है इसी शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107. दिल से दिल.

0: 30.062 कतरी रियाल रही। इसके नतीजे में 20 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा हुआ, 28 कंपनीज के शेयर्स में कमी आई, जबकि 4 कंपनीज के शेयर्स अपनी पिछली क्लोजिंग पर बरकरार रहे। सामिन खबरों के इस मरहले में समाप्त कीजिए स्पोर्ट्स न्यूज।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस फुरकान शाहिद के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
2: कतरे को पैमा शेख आसमा बिन तिसानी अल थानी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में शामिल गशर ब्रोम 2 सर कर ली है, जो पाकिस्तान और चीन की सरहद पर वाक़ कराकुरम के पहाड़ियों में मौजूद है। वाजर है, इस चोटी को सर करने के बाद शेख आसमा बिन तिसानी अल थानी ने 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंद सर की जाने वाली चोटियों की तादाद 11 कर ली है। कतर स्टार्स लीग ने एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन के साथ शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वाज़ह रहे, मुआहदे के तहत एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन कतर स्टार्स लीग की आइंदा दो सीजन्स यानी 2026-2027 और 2027-2028 के लिए समाजी जिम्मेदारी की शराकत दार होगी। ये शराकत दारी कतर स्टार्स लीग की जानिब से माशरे में अपना मुस्बत किरदार मजबूत बनाने और पायदार असरात मुरतब करने वाले इकदामात की हिमायत के अज़्म का हिस्सा है। अश्माल क्लब ने ट्यूनिस के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद अली बिन रमज़ान के साथ बाज़ाब्ता मुआहदा कर लिया है। मोहम्मद अली बिन रमज़ान मिस्री क्लब अल अहली से अश्माल क्लब में शामिल हुए हैं। ये मुआहदा नए फुटबॉल सीज़न से कबल अश्माल क्लब की जानिब से अपनी टीम को मज़ीद मजबूत बनाने और नए सीज़न के लिए बेहतरीन तैयारी करने की अक्कासी करता है। दुनिया भर में फुटबॉल के शायकीन 2026-2027 यूरोपीय सुपर कप के मैच के मुंतजर हैं, जिसमें चैंपियंस लीग की फातह फ्रांसीसी टीम पेरिस से नेट जर्मियन और यूरोप लीग की फातह इंग्लिश टीम एस्टन वला आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला आइंदा बुध को ऑस्ट्रिया के शहर साल्ज़बर्ग में वाक़ रेडबुल एरिना में खेला जाएगा, जिसमें तकरीबन 30,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। याद रहे, मैच मक्का मुकर्रमा और दोहा के मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। स्पोर्ट्स न्यूज में इतना ही, अब समाप्त कीजिए न्यूज हेडलाइंस।
1: न्यूज हेडलाइंस आरजे सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
0: वज़ीर माहौलियात व मौसमियाती तब्दीली ने कतर में सूदान के सफ़ीर बदरुद्दीन अब्दुल्ला मोहम्मद अहमद से मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में तआवुन को मज़ीद फ़रोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। आबनाए हरमूज के मुतालिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशी कम करने की कोशिशें जारी हैं, जहां ट्रंप ने बारूदी सुरंगें हटाने, फौजी कार्रवाइयां पोस्टपोन करने का ऐलान किया है, जबकि ईरान ने ओमान के साथ मुजाकरात आखिरी मराहिल में पहुंचने की तस्दीक करते हुए आबनाए हरमूज खोलने के लिए मुआवजे पाबंदियों और फौजी धमकियों के खात्मे का मुतालबा किया है। इसराइल की जानिब से गजा अमन मंसूबे के रोड मैप को मुस्तरद किए जाने के बावजूद हमास ने इसे कबूल कर लिया है, जबकि अमन काउंसिल के मुताबिक मंसूबा बदस्तूर नाफिज व अमल है और इसराइल समेत मुतालिक फरीकैन से मुज़ाकरात जारी हैं। तुर्की की पार्लियामेंट ने पीकेके के जंगजूहों को शहरी ज़िंदगी में दोबारा शामिल करने और कई दहाइयों पुराने तनाज़ों के खात्मे की राह हमवार करने वाले तरीकों और तारीखी कानूनों मंजूर कर लिए हैं। इसमें बाज़ जराइम के

0: इसमें बाज़ जराइम की मुकदमात और कैद की सजाओं को 5 से 10 साल तक मुअत्तल करने की गुंजाइश भी रखी गई है। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन नूर, सोशल मीडिया टीम से यूसरा महमूद, न्यूज रूम से फुरकान शाहिद और मुझे सफा सफदर को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी। स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, आदिल खामिस कतर और एशिया के बेहतरीन मिडफील्डर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्हें द ब्राउन गेजल के नाम से जाना जाता था। 1965 में पैदा होने वाले आदिल खामिस ने 1983 में अलगराफा को ज्वाइन किया और क्लब के लिए कई यादगार कामयाबियां हासिल की। आदिल खामिस ने कतर की कौमी टीम की 1984 से 2000 तक नुमाइंदगी की और गल्फ कप, एशियन और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कई अहम गोल स्कोर किए। 1992 में दोहा में गल्फ कप जीतना उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक माना जाता है, जब कतर ने पहली मर्तबा ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। अलगराफा क्लब के साथ उन्होंने दो लीग टाइटल्स, अमीर कप और 1999 में कुवैत में अरब क्लब चैंपियनशिप जीती। 1997-1998 सीजन में उन्होंने कुवैत के अल कत्सिया के लिए भी खेला और फिर वापस आकर अलगराफा क्लब को ज्वाइन किया। बेहतरीन पासिंग, टेक्निकल स्किल्स और कंसिस्टेंसी की वजह से आदिल खामिस आज भी कतर फुटबॉल के लेजेंड तसव्वुर किए जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक

0: तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल

0: और पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फवक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन या मुराकबा के जो जहनी फवायद हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और जानेंगे कि मुराकबा हमारी जज्बाती सेहत और रोजमर्रा जिंदगी को कैसे बेहतर बनाता है। जज्बाती सेहत का मतलब है कि हम अपने एहसासात को समझ सकें और उन पर कंट्रोल रख सकें, जिंदगी के चैलेंजेस का मुस्बत अंदाज में सामना कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि गुस्से, परेशानी, मायूसी या खौफ हमारे बिहेवियर, हमारे रवैयों पर असरअंदाज होते हैं। मेडिटेशन हमें अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में समझने और संभालने की सलाहियत रखता है। बाकायदा मुराकबा करने वाले अफराद में सब्र ज़्यादा होता है, गुस्सा कम आता है उन्हें, खुद एतमादी बेहतर होती है उनकी, और इसी तरह से जो नेगेटिविटी है वो भी कम होती है, यानी जो मनफी ख्यालात हैं उनमें भी कमी आती है। दूसरों के लिए हमदर्दी और बर्दाश्त बढ़ती चली जाती है। मुराकबा इंसान को अपने अंदर झांकने और अपनी कैफियत को समझने का मौका देता है, जिससे जज्बाती तवाजुन पैदा होता है और मुश्किल हालात में बेहतर फैसला करने में मदद मिलती है। नींद और जज्बाती सेहत का भी गहरा ताल्लुक है। जब जहन पुरसकून होता है तो नींद बेहतर आती है, और अच्छी नींद अगले दिन इंसान को ज़्यादा खुश, पुरसकून और एक्टिव रखती है। मुराकबा हर उम्र के अफराद के लिए बेहतरीन है और मुफीद है। स्टूडेंट्स के लिए तवज्जो और याददाश्त बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है, और इसी तरह से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए जहनी दबाव कम करने में मुफीद होता है। बुजुर्ग अफराद के लिए जहनी सुकून और मुस्बत सोच बरकरार रखने में बेहतरीन है। इसी तरह अगर आप और हम रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट मुराकबे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो उसके फवायद बहुत जल्द महसूस होने लगते हैं। याद रखिए, अच्छी जहनी और जज्बाती सेहत खुशहाल ज़िंदगी की बुनियाद है। मुराकबा ना सिर्फ जहन को सुकून देता है बल्कि इंसान को जिंदगी के नशीब व फराज का सामना एतमाद और तहम्मुल के साथ करने के काबिल भी बनाता है। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और अपनी जहनी और जज्बाती सेहत का खास ख्याल रखिए।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: हमारा बड़ा ही खास सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाएंगे। आज हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एंड दैट टू हियर इन कतर। वैसे तो आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा है, लेकिन चलिए आज एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आज की जरूरियात को पूरा करना बिना इस बात के कि आने वाली नस्लों के रिसोर्सेज नुकसान में ना पड़े, यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना और एक हेल्दी फ्यूचर बनाना। कतर ने पिछले चंद सालों में ना सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में बहुत अहम कदम उठाए हैं।

हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की यानी क्लीन एनर्जी। दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से एनवायरमेंट पर असर पड़ रहा है, इसीलिए कतर सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है। सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये क्लीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स है। सूरज की रोशनी से बिजली पैदा की जाती है जो कार्बन इमिशंस को कम कर देते हैं। वहीं दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन भी कतर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कतर एक डेजर्ट कंट्री है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ रेगिस्तान ही है और यहाँ पानी की अहमियत सबसे ज्यादा है। डेजर्ट होने की या डेजर्ट कंट्री होने की वजह से पानी की अहमियत और बढ़ जाती है और इसीलिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी को बचाना और एफिशिएंटली इस्तेमाल करने पर काफी जोर यहाँ दिया जा रहा है। दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इरिगेशन सिस्टम्स और वाटर रिसाइकलिंग मेथड्स यूज किए जा रहे हैं ताकि पानी ज्यादा जाया ना हो। और अब बात करती हूँ ग्रीन बिल्डिंग्स की। कतर में कई नई बिल्डिंग्स हैं और ऐसी फैसिलिटीज डिजाइन की जा रही हैं जो कम एनर्जी कंज्यूम करें। इन बिल्डिंग्स में नेचुरल लाइट, एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम और एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे एनर्जी की बचत होती है और एनवायरमेंट पर कम प्रेशर पड़ता है। और एक और अहम फील्ड है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। जब ज्यादा लोग प्राइवेट कार्स इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों बढ़ता है। इस चैलेंज को देखते हुए कतर ने मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। जियांग मेट्रो सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बेहतर ऑप्शन है और लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो शेयर ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करें। इससे फ्यूल कंजम्पशन और पोल्यूशन दोनों में कमी आती है।

0: रोजाना हम बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और अगर इसका सही इस्तेमाल हो सही तरीके से मैनेज हो तो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कतर में रिसाइकलिंग और वेस्ट रिडक्शन पर खास तवज्जो दी जा रही है। लोगों को भी एनकरेज किया जा रहा है कि वो प्लास्टिक और दूसरे मटेरियल्स को रिसाइकिल करें और अननेसेसरी जो है वो वेस्ट उसे कम करें। डियर सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तक महदूद नहीं रहती, हर सिटीजन भी इसमें एक अहम रोल अदा करता है जिस पर हमने हमेशा बात की। छोटी छोटी आदतें मिसाल के तौर पर लाइट्स का सही इस्तेमाल, पानी बचाना, रीयूजेबल बैग्स का इस्तेमाल करना, रिसाइकलिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना कितनी अच्छी आदत है। जिया कतर का नेशनल विजन 2030 भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है और इस विजन का मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए बेहतर जिंदगी का इंतजाम करना। ये हमें ये भी पैगाम देता है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों एक साथ चल सकती हैं। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट या पॉलिसी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है और ये लाइफस्टाइल हमें और आपको अडॉप्ट करनी है। जब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और आम लोग मिलकर साथ में काम करने लगे ना तो बड़ा ही पॉजिटिव चेंज आता है। कतर के सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हमें ये दिखाते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट का ख्याल भी रखा जा सकता है। तो लिसनर्स, आज हमने जाना कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कतर के एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए कितने अहम हैं। हम सबका फर्ज है कि हम भी इस मिशन का हिस्सा बनें और अपने डेली लाइफ में सस्टेनेबल हैबिट्स को अपनाएं। मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया, आपसे इजाजत लूंगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एनवायरमेंट का भी बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
3: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे. सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड. आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी,
3: दिल से देसी. दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है. अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है. हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए. अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें. स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें. याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है. साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं. FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है.
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर. लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात. स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक. सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी. याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM107 कतर। साथियों, गिफ्ट देना और लेना भाई हम सबको पसंद है, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरीज हो, ईद का मौका हो या किसी की अचीवमेंट सेलिब्रेट करनी हो। भाई एक खूबसूरत गिफ्ट किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है, मेरे चेहरे पर तो लाता है भाई। और हाँ, गिफ्ट को स्पेशल बनाने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, उसे अच्छे से रैप करते हैं या करवाते हैं। कलरफुल रैपिंग पेपर हो गया, रिबन्स हो गई, बोज हो गई और शाइनी किस्म की जो डेकोरेशंस उसके ऊपर लगती हैं, वो गिफ्ट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गिफ्ट खोलने के कुछ मिनट्स बाद वो खूबसूरत रैपिंग कहाँ चली जाती है? वो कोने में पड़े हुए डस्टबिन के अंदर, अक्सर वो सीधा डस्टबिन में चली जाती है। जी हाँ, तो भाई आज के इको स्विच में बात करते हैं सस्टेनेबल गिफ्ट रैपिंग के बारे में, यानी तोहफा भी खूबसूरत हो और उसकी पैकेजिंग एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो। चलिए भाई, यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले ना प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए साथियों, गिफ्ट रैपिंग एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन जब हजारों लोग रोजाना गिफ्ट रैप करते हैं तो इसका वेस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ट्रेडिशनल गिफ्ट रैपिंग में ना अक्सर औकात आपको क्या नजर आएगा, प्लास्टिक कोटेड रैपिंग पेपर्स, शाइनी मटेरियल्स जो रिसाइकल नहीं होते, प्लास्टिक रिबन और बोज, सिंगल यूज गिफ्ट बैग्स, इसका इस्तेमाल होता है भाई, इन सारी चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। गिफ्ट खोलने के बाद ये चीजें अक्सर औकात दोबारा यूज नहीं होती और क्या होता है, कचरे का हिस्सा बन जाती है। जरा सोचिए, एक बर्थडे पार्टी में अगर कह लें मिनिमम आपको 20 गिफ्ट्स आए और हर गिफ्ट अलग अलग प्लास्टिक या नॉन रिसाइकलेबल रैपिंग में हो, तो भाई कितना सारा वेस्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गिफ्ट की खूबसूरती सिर्फ एक्सपेंसिव रैपिंग से नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक क्रिएटिव आइडिया ज्यादा यादगार बन जाता है साथियों। तो भाई सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन यहाँ ये है साथियों कि सस्टेनेबल गिफ्ट रैपिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज ये कि रीयूजेबल गिफ्ट बैग्स चूज करें। एक खूबसूरत कपड़े का बैग या रीयूजेबल गिफ्ट बैग को बार बार यूज किया जा सकता है, ये स्टाइलिश भी होता है और इससे वेस्ट भी कम होता है, बता रही हूँ। और एक और ना अलग से गिफ्ट टाइप आइटम भी बन जाता है कि बंदा उसको बाद में भी, जिसको आपने गिफ्ट दिया है, वो लेकर शोबाजी में घूम सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पुराने मटेरियल्स को रीयूज करें। घर में मौजूद चीजें जो दोबारा यूज करें, वो अगर मैं मिसाल के तौर पर दूं तो पुराने न्यूज़पेपर्स हो गए, ओल्ड मैप्स हो गए, फैब्रिक पीसेस हो गए, डेकोरेटिव बॉक्सेस हो गए, इनको क्रिएटिव रैपिंग के लिए यूज किया जा सकता है। बस थोड़ा सा आपका जो पिकासो है ना अंदर वाला, उसको जगाना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि सिंपल डेकोरेशंस यूज करें ना, प्लास्टिक रिबन्स की जगह ज्यूड स्ट्रिंग्स हो गई, नेचुरल डेकोरेशंस हो गए, रीयूजेबल रिबन्स हो गए, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, चौथी चीज ये कि गिफ्ट बॉक्स को दोबारा यूज करें। अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस को फेंकने के बजाय संभाल कर रखें और अगली दफा किसी और को गिफ्ट देने के लिए यूज कर लें। मैं तो ये करती हूँ भाई, मेरी फेवरेट चीज है ग्लास की बॉटल्स और बॉक्सेस, मैं इन्हें दिल खोल के रीयूज करती हूँ। अच्छा भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपीरियंस गिफ्ट्स। कभी कभी गिफ्ट रैपिंग की जरूरत ही नहीं होती साथियों। आप किसी को डिनर एक्सपीरियंस पे लेकर जा सकते हैं, एक्टिविटी टिकट्स दे सकते हैं, लर्निंग कोर्सेज दे सकते हैं, फैमिली आउटिंग करवा सकते हैं, इनमें से कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हैं जो यादगार भी होता है और वेस्ट भी कम क्रिएट करता है। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल दी जाए ना साथियों,

0: तो आजकल बहुत से लोग क्रिएटिव और सस्टेनेबल गिफ्ट रैप आइडियाज अपना रहे हैं। कुछ लोग कपड़े के टुकड़ों से ट्रेडिशनल स्टाइल रैपिंग करते हैं जो दोबारा यूज हो सकती है। कुछ फैमिलीज गिफ्ट बैग्स का कलेक्शन बना लेती हैं और हर ओकेजन पर उन्हें रीयूज करती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ भाई। कुछ लोग बच्चों के गिफ्ट्स को कलरफुल ओल्ड न्यूज़पेपर या हैंडमेड डेकोरेशन से रैप करवा लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जब रैपिंग यूनिक होती है तो गिफ्ट और भी ज्यादा पर्सनल फील होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि क्रिएटिविटी और केयर भी शामिल होती है। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगली बार जब आप कोई गिफ्ट दें तो ट्रेडिशनल रैपिंग के बजाय सस्टेनेबल ऑप्शन ट्राई करें और हमें बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो करें और मैसेज करें। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar और हमें बताएं आपने कभी किसी गिफ्ट को क्रिएटिव तरीके से रैप किया है, या आपके पास कोई पुराना गिफ्ट बॉक्स है जो आप आज भी रीयूज कर रहे हैं। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, तोहफा सिर्फ अंदर की चीज से खास नहीं होता बल्कि उसे देने के तरीके से भी यादगार बनता है। तो भाई, छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। हमारा आज का टॉपिक है इख्तलाफ का एहतराम करना। हर इंसान की सोच और नजरिया मुख्तलिफ होता है। इख्तलाफ होना फितरी बात है, लेकिन उसका तरीका बहुत अहम होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम दूसरों की राय का एहतराम करें, चाहे हम उससे मुख्तलिफ ही क्यों ना सोचते हों। अक्सर लोग अपनी बात मनवाने के लिए सख्ती और बहस का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब हम इख्तलाफ को तहम्मुल और अदब के साथ हैंडल करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। ये रवैया एक मैच्योर और समझदार इंसान की निशानी है। आज का अमल ये है कि किसी भी डिसएग्रीमेंट में अपनी आवाज बुलंद करने के बजाय नरमी से अपनी बात रखें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक।

0: हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 Time Check अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साथियों इस वक्त FM 107 की घड़ी में बज रहे हैं ठीक 11:01 और आपका टाइम माशाल्लाह है सफा के साथ जुड़ने का यानी के सन एंड साउंड सुनने का
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: जी हाँ आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड और भाई देखें हमारे जो है ना 11:02 हो गए अरे वाह मैंने कहा एक दफ़ा फिर से बता दूं फिर कहेंगे सफा ने टाइम गलत बता दिया था तो वो कुछ सेकंड में टाइम चेंज हो जाता है तो मैंने सोचा सेकंड्स का जो फ़र्क है वो बता दूं आपको 11:02 हो गए हैं मेरा और आपका साथ रहेगा 11 से लेकर 1 तक का तो गोभी दें आप फूलों आ जाओ खुशबू लगा के लेकिन मैं एक बात बता दूं कि वो वाला परफ्यूम नहीं लगाना ऑयल बेस्ड परफ्यूम लगा कर आना मुलाकात करने क्योंकि मुझे बाकी परफ्यूमों से एलर्जी है हाँ तोहफे में अगर कुछ लेकर आना चाहो तो खाली परफ्यूम की बोतलें जरूर लेकर आ जाना खाली डब्बे खाली परफ्यूम की बोतलें पेपर बैग्स ये चीजें मुझे बड़ी खुश करती हैं देखो अपने लिए ये मैटर नहीं करता कि डब्बा खाली है या थैले के अंदर कुछ है कि नहीं थैला लग्जरी होना चाहिए बाकी सब खैर है छोटी छोटी खुशियां ना हम तो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं गोभी दया पुल्लो है कि नहीं बिल्कुल जी यही है ऐसा ही कुछ सीन है तो भाई मेरा और आपका साथ रहेगा 1 बजे तक का और इस 1 बजे के दौरान तक मतलब इस दौरानिया में हम जो हैं वो ढेर सारी बातें करेंगे कुछ गेम्स वगैरह भी खेलेंगे आपके साथ और आपसे आपका हाल दिल जो मुद्दा होगा हमारा उसके ऊपर जानेंगे ठीक है आपको मजे मजे की इंटरेस्टिंग बातें इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देते ही चलेंगे इन्फॉर्मेशन से याद आया गोभी दया पुल्लो आज का टेम्परेचर इत्तफाक से कल की तरह कल वाला इत्तफाक आज भी हो गया है पता है क्या आज मेरी मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप वेदर की आज फिर मैच कर

रही है, मतलब बिल्कुल सही बता रहा है, एक्यूरेट एक जैसा बता रहा है. वैसे कभी भी ये दोनों चीजें एक्यूरेट नहीं बताती मुझे, एक हाई बता रहा होता है एक लो बता रहा होता है. लेकिन आज इत्तफाक से भाई देखो, मेरा वेदर रिपोर्ट ये बता रहा है कि आज जो है वेदर इस वक्त जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस पर है. आप में से जितने लोग ये कह रहे हैं ना कि 43 डिग्री सेल्सियस, ओ माय गॉड सफा इतनी गर्मी है, ये है वो है, ओ भाई पिछले से पिछले हफ्ते का वेदर रिपोर्ट याद है ना, 48 अराउंड 49, तो उसके कदरे निस्बत तो ये बेहतर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. पढ़ो नीचे आया है कुछ टेम्परेचर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो. अच्छा मैं देख रही थी कल परसों ना यूएई वालों के पास, वो मैं रील्स में देख रही थी, तो लाइव फीड में ना यूएई वालों के पास बारिश हो रही थी भाई. बहुत जलन हुई मुझे उनसे, बहुत जलन हुई. अपने पास पता नहीं कहाँ है अभी, देखते हैं रस्ते में उम्मीद पे दुनिया कायम है. तो खैर अगर आज के वेदर के बारे में बात की जाए तो आज हमें ये लग रहा है कि जनरली जो है वो क्लियर स्काई है और जो है टेम्परेचर मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने का खदशा है और मिनिमम जो टेम्परेचर नीचे आएगा वो है 34 डिग्री सेल्सियस का. ठीक है, इस वक्त फील्स लाइक 49 हो रहा है. अब फील्स लाइक में ना थोड़ा सा आ जाता है 49 टू 50 फील्स लाइक टेम्परेचर हो रहा है. और मैं आपको ये बताती चलूँ कि देखें ह्यूमिडिटी जो है उसको हमारे ऊपर थोड़ा बहुत तरस आया है, तो कल से कदर नस्बत कल से थोड़ी सी कम है, यानी कि 29 टू आप कह लेंगे 35 के बीच के अंदर जो है ना 29% से 35% के बीच के अंदर की ह्यूमिडिटी चल रही है. अगर हवाओं के बारे में बात की जाए तो हवाएं आज बिल्कुल मूड में नहीं है, कह रही हैं हम एक दिन हमने मेहनत की है आज हम सोने जा रहे हैं. तो मतलब ये कि हवाएं जो हैं वो इस वक्त 3 या 4 या आप कह लें ज़्यादा से ज़्यादा 9 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर कहीं से चल रही हैं तो चल रही हैं, वरना हवाएं जो हैं वो वेकेशन मोड पर हैं आज के लिए. तो भाई ये बातें मैंने आपको बता दी हैं महकमा मौसमियात से रुजू कर. ठीक है, मैंने अपने पास से नहीं बताई, देखो मैं कोई यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं बैठी हुई वेदर रिपोर्टर, लेकिन मैंने भी महकमा मौसमियात से हेल्प लेकर आपको बता दी. ठीक है, अच्छा भाई गोविंद पुल्लो, क्योंकि एक इंटरैक्टिव शो है तो आप लोगों से ये अर्ज है कि आप जल्दी से आएँ और अटेंडेंस लगवा लें. कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, ये करने के लिए आपने करना ये है कि आपने मुझे मैसेज करना है. मैसेज करने के लिए नंबर है 666-22107. क्या नंबर है? 666-22107. 666-22107 पर आपने हमें मैसेज भेज देना है. और भाई कल मैंने बड़े मज़े की रील देखी. रील में पता क्या था, वो मैं उसे छोटा नहीं कहूँगी, मतलब मीडियम भी नहीं, मतलब कुछ टाइप का ना मैंने वो देखा कि कतर में शुमाल की साइड पर कहीं पर वहाँ पर दिखा रहा था कि वो अपना छोटा सा टोर्नेडो बनता है ना सैंड का, हम सिंधी में क्या कहते हैं वाछूड़ो, सिंधी में कहते हैं वाछूड़ा, वो टोर्नेडो टाइप बनता है, ट्विस्टर टाइप बनता है, वो नज़र आ रहा था. अच्छा मज़े की बात है, मैंने खुद शुमाल साइड पर ये बनते हुए चीज़ देखी है. मैं लास्ट टाइम जब उमरा करके वापस आ रही थी बाय रोड, तो वो जो अबू समरा की साइड वाला एरिया है ना, क्योंकि वहाँ पे पूरा वो है ग्राउंड है, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ बनते हुए देखी थी. मैंने जिंदगी लाइफ टाइम में पहली दफ़ा लाइव देखी थी ये चीज़ बनते हुए. मैंने कहा अरे भाई वो क्या है, तो फिर मैंने बताया कि ये तो सैंड स्टॉर्म टाइप कुछ बन रहा है और ये साइक्लोन टाइप कुछ बन रहा है, कुछ टोर्नेडो टाइप बन रहा है कुछ, और वो सैंड का देखा था मैंने. बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जब तक छोटे साइज की हो तब तक खूबसूरत लगती है, अगर खुदा ना खास्ता बड़े साइज की हो तो उससे दूरी भागा जाए. लेकिन मैंने देखी थी, आप में से किसने देखा है ये छोटा सा सैंड टोर्नेडो टाइप बनता है, देखा है आपने कभी? और ये मोस्टली सिटी साइड पर नहीं होता, अगर आप मतलब बड़े ग्राउंड्स वाले एरिया की साइड पर जाएँ ना जहाँ पर आबादी कम हो, ये उस साइड पर बनता है, देखा है आप में से किसी ने? मैंने कल रील में देखा था और मुझे एकदम से मैंने कहा अरे भाई नॉस्टैल्जिया, मैंने इसको असल में देखा था, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा अरे ये तो मैंने असल में देखा था. आप में से किसने देखा है चाहे तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं 666-22107 पर, मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर. याद आया मुझे कि अरे भाई मैंने आज जो है ना, अच्छा मैं बचपन से ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब आप लोगों के लिए इतनी जो है ना वो रिसर्च की जाती है कि कुछ चीज़ें बचपन से क्वेश्चन मार्क होती हैं दिमाग में, लेकिन उनको वक्त नहीं मिल रहा होता सॉर्ट आउट करने का. आज मैंने एक ऐसी चीज़ का पता लगा लिया जिसका मैं बचपन से नाम लगा पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ना फुर्सत नहीं मिलती थी. तो मैंने गर्मियों की एक ड्रिंक ऐसी ढूंढी जो कि मैं बचपन में पीती थी ऑनेस्टली, लेकिन मुझे ना

अब मेरे कुछ अरबी दोस्त थे बचपन में, पड़ोसी वगैरह थे, तो वो जो है ना जब हम उनके घर जाते थे तो वो ये ड्रिंक हमें बनाकर पिलाते थे. लेकिन मुझे अब वो बचपन में भी, फिर बड़े होते होते ना वो दोस्त कहीं गुम हो गए, तो वो चीज़, वो हमारे मशरूब जो है ना, जो ड्रिंक था वो कहीं गुम हो गया, उसके बाद मैंने पिया नहीं. लेकिन वो इतना अच्छा लगता था मुझे कि बचपन से लेकर अभी तक मुझे याद था. अब मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या चीज़ थी जो ये देते थे बनाकर और इतने मज़े की थी. अब जाकर जब मैं ढूंढने लगी ना, तो एकदम से मेरे सामने मैंने कहा, अरे भाई ये तो वही चीज़ है. और फिर मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करती हूँ. अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं ना, अगर आपका अरबिक लोगों से के साथ उठना बैठना है या अरबिक कल्चर में आप रह रहे हैं और आपने ये अभी तक नहीं ट्राई की, ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द थिंग विच यू आर मिसिंग आउट.

और इसको कहा जाता है जलाब, जलाब कहते हैं इसे। और ये मिडल ईस्टर्न शरबत है एक, जो खास तौर पर, खास तौर पर इसके बारे में कहा जाता है लेबनान, सीरिया और फलस्तीन में ना ये पिया जाता है, और क्योंकि ये अरबिक ड्रिंक है तो अरब कंट्रीज में ये पिया जाता है आमतौर पर। इसको बनाया जाता है, एक बड़ी रिफ्रेशिंग, भाई बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है, इसको बनाया जाता है खजूर की शीर से, अंगूर की शीर से और कैरोब सिरप से। और ये बड़ा बड़ा बड़ी खूबसूरत, भाई बड़ी बेहतरीन ड्रिंक होती है, इतनी लाइट, इतनी लाइट। इसका ना अक्सर औकात मार्केट में सिरप भी मिलता है। आपने करना ये होता है कि इसका वो सिरप आप खरीदें, ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना और अपने लिए एक जल्दी से जलाब की जो है ना आपने ड्रिंक बनानी है, तो आपने करना ये कि आपने वो सिरप जो है ना वो मार्केट से ले लेना, इट्स अ ब्राउन कलर्ड सिरप। और आपने करना ये है कि आपने 4 टेबलस्पून जलाब सिरप लेना है, 2 कप चिल्ड वाटर लेना है आपने। अच्छा, मज़े की बात ये, जितना ठंडा होगा ना उतना मज़ा आएगा भाई, बेहतरीन होगा, जिन लोगों ने पिया है वो इस बात को मानेंगे। आपने करना ये कि 4 टेबलस्पून जलाब सिरप लेना है, 2 कप चिल्ड वाटर लेना है, आपने 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर भी लेना है, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसका तो ना जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता है, तो आपने क्या करना है इसको बैलेंस करने के लिए ना, ऑप्शनल है वैसे, लेकिन 1-2 टेबलस्पून अगर इसके अंदर लेमन जूस या लाइम जूस डाल देंगे ना तो वो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और भाई आइस क्यूब तो भर भर के लेनी है ना। फिर इसकी एक और ख़ासियत ये कि अक्सर औकात लोग इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, तो अगर आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालने, अगर आप पसंद हैं ड्राई फ्रूट्स, तो आप इसके अंदर भाई किशमिश डाल दो, आप इसके अंदर चॉप्ड आमंड्स डाल दो, आप इसके अंदर, अगर बहुत ज़्यादा आप अमीर चल रहे हो तो आप इसके अंदर जो है ना वो अपना क्या कहते हैं चिलगोज़ा डाल दो, तो बड़ा मज़े का लगता है। आपने एक जग में ये चिल्ड वाटर डालना है, जलाब का सिरप डालना है, रोज़ वाटर ऐड करना है और भाई बस घुमा देना है इसे सेट वाला, और ठंडा ठंडा आपने इसको पीना है। मैं बता रही हूँ भाई, गर्मियों के मौसम में ऐसा लगेगा, कतर की गर्मी में जलाब को एक्स्ट्रा चिल्ड पिए ना तो ऐसा लगता है कि आप फ्रिज के अंदर चले गए हो। हाय हाय हाय, बस आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप जब इसको पियोगे ना तो आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, बस इससे ज़्यादा मज़े की और चीज़ आपके मुँह से कोई निकलेगी नहीं। आपको क्या चस आ गई, मज़ा आ गया, ओहो भाई, ये जिसने नहीं पिया ना पी कर देखना भाई। मुझे वापस से अपने बचपन की ड्रिंक मिल गई है, तो मुझे अब लगता है कि मेरी अलमारी में अब यही भरा हुआ होगा, तो मैं तो जाने लगी हूँ आजकल मैं इसको खरीदने, और मैं तो लेकर आऊँगी भाई, मुझे क्योंकि मुझे याद है ये कितना मज़े का होता है। तो भाई आप लोगों को आज की ड्रिंक भी बता दी गई है, हाइड्रेटेड रहने का तरीका बता दिया गया है, पानी अगर हो सके तो पियो। अगर मेरी तरह कुछ लोगों से पानी नहीं पिया जाता, खाली सादा पानी नहीं पिया जाता ज़्यादा, तो उसको किसी चीज़ में मिक्स करके पी लो ना, ताकि आपका बैलेंस रहे, हाइड्रेटेड रहो, आप कहीं गिरे पड़े नहीं हो भाई गर्मी में। तो भाई आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं, एक छोटू सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे फन ट्रिविया के बारे में बात करेंगे। आज का फन ट्रिविया हमारे पास बहुत फन है, तो भाई आज के फन ट्रिविया को लेकर आपसे, आपको एक जो है ना वो अपना कहते हैं ना, एक सवाल पे छोड़ जा रही हूँ। बचपन में क्या कितनी चीज़ों, कितने लोग बचपन में उससे खेले हैं, ये अपना होता है ना क्ले कह लें, या आजकल के ज़माने में क्ले को ये भी कहा जाता है अपना प्लेडो भी कहा जाता है, कितने लोग खेले इससे, खेला है कोई? प्लेडो भी होता है, एक तो वो ऑयल बेस्ड भी होता है, एक वो पेस्ट टाइप का भी होता है। आप लोगों ने कभी ऐसी चीज़ों से खेला है बचपन में? अगर खेला है तो मुझे ज़रूर बताएं, 666-22-107 पर, 666-22-107 पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने किसी ऐसी चीज़ से खेला है जिससे आप चीज़ें बना सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना वो जैसे चिकनी मिट्टी टाइप का नहीं होता, जैसे हम लोग जिससे अक्सर होगा, वैसे अगर पुराने वक्तों में चले जाएं तो उस टाइम पर तो ये चीज़ नहीं थी इतनी, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने क्ले से खेला है। क्ले, कलरफुल क्लेज आते थे ना, वो ऑयल बेस्ड होते थे उस ज़माने में। तो आप में से किसी ने खेला है? मैंने तो खेला है और मुझे बहुत पसंद है वो, तो उसी के बारे में कुछ एक आधा आपको फन ट्रिविया बताएंगे। आप मुझे मैसेज करके बताएं 666-22-107।

07 पर कि आपने उनके साथ खेला है ये जो अपने क्ले प्लेडो वगैरह होते हैं. तो भाई 666221107 पर मैसेज करके बताओ. फिलहाल तो हाय हाय हाय हाय दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़कर आ गए हो, वो भी मेरे लिए, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान. हाय हाय हाय हाय भाई शुरुआत इस गाने से हो रही है. मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए छोड़ के चलो भाई, मैं खुश हो जाती हूँ गाने को सुनकर. अपने लिए सुनते रहे 107 पर सफा के साथ सन एंड साउंड, दिल से देसी.

0: चुल।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
2: किसी ने क्या सैड बात कही है, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन द रॉन्ग प्लेस यू वोंट बी वैल्यूड। तो भाई वेलकम बैक। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 11:22 और साथियों किसी ने बखूब क्या सैड बात कही है। देखो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, इफ यू आर स्टैंडिंग इन द रॉन्ग रूम विद द रॉन्ग पीपल, आपकी वैल्यू उनको समझ में नहीं आने वाली। अच्छा ये मैं विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट किस बारे में बात कर रही हूँ। देखो भाई दुनिया में ऐसी 50,000 चीज़ें होती हैं और ऐसी 50,000 स्कीमें निकलती हैं जो फ्लॉप हो जाती हैं। वो इसलिए फ्लॉप नहीं होती, बज़ाहिर वो फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन सबकी सब इसलिए फ्लॉप नहीं होती कि वो बिल्कुल नाकारा होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ, क्या पता अपना अपनी वक्त साथ प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, सिचुएशन चेंज आती हैं, तो उसकी वजह से वो पीछे चली जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रॉन्ग मार्केट प्लेस में सेल आउट हो रही होती हैं। अब मैं आपको जो फन ट्रिविया बताने वाली हूँ साथियों, वो ऐसी एक चीज़ से रिलेटेड है। इस चीज़ को सुन करना, अपने दिमाग में याद रखना कि आइडियाज़ जो आपके दिमाग में आ रहे होते हैं ना, और आप कहते तो नहीं ये फ्लॉप हो जाएगा, वो फ्लॉप इसलिए नहीं होगा कि वो आइडिया ही फ्लॉप है, नॉट नेसेसरीली। वो फ्लॉप शायद इसलिए हो जाए कि आप उसे रॉन्ग मार्केट में प्लेस कर रहे हो। मैंने जब बिजनेस पढ़ा था ना, तो उसके अंदर 3 P's सिखाए जाते हैं बिजनेस के, प्लेस, प्राइस एंड प्रोडक्ट। 3 P's होते हैं मार्केटिंग के, और वो 3 P's यहाँ पर अप्लाई होते हैं। मैं आपको अगर ये बात बताऊँ कि एक चीज़ जिससे आज बच्चे बहुत कलरफुल फ्लावर्स बनाते हैं, डायनासोर्स बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, मतलब ये कि XYZ आपको खेलते बच्चे नज़र आते हैं ना, फन कैरेक्टर्स बनाते हुए अपनी मर्जी का, उसको उसका उसको कहा ही जाता है, वो एक आप जब उसको हाथ लगाते हैं तो वो करियर फ्लिप मारा था। सोचिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में आया, आज जो बच्चों की क्रिएटिविटी का सुपरस्टार है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसकी दीवारों पर या जिसकी जिसके जो घरों में एक 1930s में ना, उस वक्त इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम्स जो है ना वो इतने नहीं थे, बने हुए नहीं थे, तो 1930s में

लोग क्या करते थे कि कोयले जलाकर या लकड़ियां जलाकर ना वो हीटिंग सिस्टम एक होता था इंटरनली, तो उसी वजह से क्या होता था कि दीवारों पर ना, घर की दीवारों पर धुआं जम जाता था, वो कालक होती है ना एक, हाँ एग्जैक्टली वो जम जाती थी काली वाली। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंपनी ने ये किया कि एक सॉफ्ट सा डो टाइप मटेरियल बनाया, एक चीज बनाई जो सॉफ्ट से डो टाइप की थी, और उसको रगड़ रगड़ के ना वॉलपेपर साफ किए जाते थे, उसको एज अ क्लीनर, वॉलपेपर क्लीनर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आजकल का जो स्लाइम है ना, स्लाइम को भी अक्सर औकात लोग क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे ही वॉलपेपर क्लीनर के तौर पर इस चीज को यूज किया जाता था। यानी उस वक्त प्लेडो का सीवी कुछ ऐसा था कि अगर आप उसकी सीवी देते ना, प्लेडो की सीवी बनाते, तो उसकी स्किल्स में लिखा होता दीवार साफ करने वाला। लेकिन फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बदली, ठीक है, टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, गेम बदला, सब कुछ, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। घरों में कोयले की जगह गैस ने ले ली, गैस आने लगी, तो क्या हुआ, वॉलपेपर क्लीनर की डिमांड कम होने लगी और प्रोडक्ट की सेल्स क्या हुई, ऑब्वियसली गिरना शुरू हो गई। अब बजाहिर तो इन लोग को क्या करना चाहिए था, भाई बोरिया बिस्तर पैक करो, कंपनी बंद करो और चल पड़ो। जब प्रोडक्शन इतनी लो हो गई कि अभी सोच ही रहे थे कि भाई बोरिया बिस्तर पैक करो, एंड हो गया, मामला खत्म हो गया, कहानी में आ गया ट्विस्ट। अब अल्लाह ताला जब कहीं से मदद भेजता है तो वो ऐसे ही भेजता है भाई, जब किसी की कश्ती तैरनी होती है तो वो ऐसे ही तैरती है। मामला ये हुआ कि कुछ नर्सरी स्कूल्स की टीचर्स थे जिन्होंने ये देखा कि भाई ये जो डो टाइप मटेरियल है ना, ये बच्चों के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। उन्हें पता चला कि बच्चे इससे शेप्स बना सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से ना अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, ये कॉग्निटिव स्किल्स में बहुत काम आता है। तो क्या हुआ भाई, कंपनी ने फौरन समझ लिया, इसे कहते हैं मार्केट, मार्केट का जो लूप होता है ना उसको पकड़ लेना। कंपनी ने समझ लिया कि अरे भाई ये दीवार साफ करने से ज्यादा बच्चों की इमेजिनेशन को रंग दे सकता है, तो कंपनी ने इस प्रोडक्ट को दिया 180 डिग्री का टर्न, लगाई इन्होंने जंप। जो चीज कभी दीवारों को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी वो बच्चों की क्रिएटिविटी फैक्ट्री में तब्दील हो गई। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी एक्टर ने बैकग्राउंड रोल में शुरू किया हो अपने आप को, वो जो छोटे मोटे रोल होते हैं ना और दूसरे वाले, और एकदम से कुछ साल बाद ब्लॉकबस्टर हीरो बन जाए, वो लिटरली ये वाला सीन हुआ। और फिर क्या होना था भाई, फिर ये हुआ कि कहानी बिल्कुल, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। प्लेटो की कहानी हमें एक इंटरेस्टिंग लेसन देती है साथियों। देखिए कभी कभी ना जिंदगी में हमारा पहला पर्पस ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता। अब ये चीज़ ऐसी है बच्चों के खेलने के लिहाज से, इसे कुछ लोग प्लेडो भी कहते हैं, इसे क्ले भी कहते हैं, तो ये वो चीज़ है जो ये सिखा देती है कि कभी कभी एक छोटा सा चेंज, एक नया आइडिया या किसी और की नज़र, जैसे वो नर्सरी की टीचर्स ने पकड़ लिया था ना, किसी और की नज़र आपकी पूरी की पूरी डायरेक्शन तब्दील कर कर रख सकती है। तो अगली बार जब आपके बच्चे किसी ऐसी चीज से खेल रहे हो ना जिससे वो कलरफुल डायनासोर बना रहे हो, केक बना रहे हो, कार्टून बना रहे हो, तो याद रखिए ये वो चीज़ है जो कभी दीवारों की कालक साफ करने में काम आती थी। वॉल क्लीनर से चाइल्डहुड क्रिएटर तक का सफर, इसने ये प्रूव कर दिया कि कभी कभी करियर चेंज करना कोई बुरी बात नहीं होती साथियों। कंपनी बनना हुई, कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड्स चेंज कर दिए और कंपनी ने ऐसा 180 डिग्री फ्लिप मारा कि मार्केट के लूप को, जरूरत को पकड़ा और कहा ये लो। वैसे एक बात है, हकीकत बात है, ये जो टॉय और बच्चों की चीज़ें बनाने वाले जो कंपनीज है ना भाई, ये बड़े मुनाफे में रहते हैं क्योंकि ये 24/7 इन रहते हैं भाई। नेक्स्ट जनरेशन आती रहती है, 24/7 इन रहते हैं। इनका कारोबार कभी मुझे नहीं लगता ठप नहीं हो सकता, इनका कारोबार खिलौनों का खास तौर पर। तो भाई इसी फन ट्रिविया के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर साथियों आपसे करेंगे और भी मजीद बातें, मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे पर, क्या कहते हो, मुद्दे पर बात करनी है। अच्छा वैसे अगर आपके पास भी ऐसी कोई मज़े की चीज़ है ना मेरे साथ शेयर करने वाली, कोई फन ट्रिविया हुआ करे तो मेरे साथ शेयर किया करें, आप मुझे बताएंगे तो मैं आगे
चार लोगों के साथ और शेयर कर लूंगी। अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले ना मैं सोच रही थी आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लूं, क्योंकि मैसेजेस फिर सब जाना नाराज हो जाते हैं कि देखो सफा तुमने मैसेज नहीं पढ़े हमारे। देखो भाई मैसेजेस की भरमार शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सफा नूर जी, कैसी हैं आप? रोयल भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। और जी क्या है जी, नहीं क्या नहीं कौन है जी? रेहान भाई, रेहान भाई क्या करें? अस्सलाम वालेकुम जी, भेज दिया मैसेज सलूट मारते हुए। भाई मैंने कमांड नहीं दी थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी। कौन है कौन है कौन है कौन है? हाँ रेहान भाई, मैसेज पढ़ा। देखा गजनी होने का ये मसला है ना, अभी नाम पढ़ा और अभी भूल गई। अच्छा मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ, मोहम्मद यूसुफ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और कह रहे हैं कि भाई वेलकम सन एंड साउंड, ये भी कह रहे हैं आपको भी ढेर सारा वेलकम है जी, हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग। अच्छा मेरा जो मामला है ना यूसुफ भाई, थैंक यू आप मुझे याद दिलाते हैं आज कौन सा दिन चल रहा है। मेरे जितने काम है ना यूसुफ भाई ने कैलेंडर की तरह हैं, जिसके अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रोज़ लेकर भेजते रहते हैं, तो मुझे पता है, मुझे मैं अपडेटेड रहती हूँ। अच्छा और क्या कह रहे हैं आप, कितने टाइप्स की अरेबिक ड्रिंक्स पीती हैं? माशाल्लाह ये जलाब मैंने पहली बार सुना। अरे ये कितने टाइप की अरेबिक? अच्छा मामला पता है क्या है, मुझे ना अब कैसे बोला जाए इसको अच्छे तरीके से ऐसे बोला जाए कि मुझे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का शौक है। तो मैं ना एक तो शुरू से मामला ये भी रहा है कि कुछ मल्टी कल्चर दोस्त भी रहे हैं, कुछ कतर में भी माशाल्लाह मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है, तो जो मुख्तलिफ जगहों के दोस्त बनते हैं तो उनके कल्चर से कोई ना कोई अच्छी चीज़ हम उठा ही लेते हैं। कभी वो कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं तो हम खा पी लेते हैं, हलाल होती है तो कोई मसला नहीं है। तो वो एक साथ बैठते हैं, अच्छा तुमने ये चीज़ खाई है, तुमने ये चीज़ पी है, अच्छा तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो उससे जो है ना बहुत सारी चीज़ें, मैंने कई ऐसे जर्मन फूड भी ट्राई किए हैं जो लोग सुनकर परेशान हो जाते हैं कि एग्जिस्ट भी करते हैं, तो क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जर्मन भी रह चुके हैं। तो नेदरलैंड्स के खाने भी ट्राई किए, मतलब मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें ट्राई किए हैं। तो ख़ास तौर पर क्योंकि रहते हम अरब में ना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ के ना, तो अरबिक कल्चर से ज़्यादा वास्ता पड़ा है। तो मेरा तो ये मानना है, मैं तो धड़ल्ले से कहती हूँ भाई आप जहाँ पे रहते हो ना, जहाँ का देश वैसा भेस, आप जहाँ पे रहते हो अगर आपने उनके खाने पीने को ट्राई ना किया तो ये तो अपने साथ जुल्म हुआ भाई। अक्सर लोग पाकिस्तान से आते हैं, मेरा तो पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानियों से एक साथ उठना बैठना होता है, घर वालों से भी अक्सर औकात होता है, तो जो विज़िट पर आता है या कोई मामू चाचू वगैरह आते हैं तो वो कहते हैं भाई हरीस क्या चीज़ है, ये तो हलीम जैसी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आई। और हम जो हैं वो हरीस के बगैर रह नहीं सकते भाई, हमें लोगों को हलीम पसंद होगा, हमें हरीस पसंद है, क्योंकि हम यहाँ के बॉर्न बॉटम हैं, हम यहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, हमें हलीम समझ में ना आता, आता है लेकिन हमें हलीम से कहीं ज़्यादा अच्छा हरीस लगता है। तो हमारा मामला ये चल रहा है कि हम लोग अरबिक कल्चर में टू मच इंटू हैं। तो और कौन है हमारे साथ मैसेज में? तौफीक भाई हैं, तौफीक भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वाकरा से तौफीक भाई बताएं, वाकरा वालों मैंने सुना है मौसम बड़ा अच्छा चलता है वाकरा में जब ये बादल छादल आए हुए होते हैं, तो आपके पास मौसम कैसा चल रहा है तौफीक भाई? सेट चल रहा है मौसम? बताइएगा जरूर। तौफीक भाई मुझे आपसे एक आधा काम भी है, मैंने सोचा आपसे रुजू करती हूँ, मैसेज करूँगी मैं आपको, ठीक है बाद में मैसेज करती हूँ, बहुत ज़रूरी काम है मेरे मुझे। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ? नदीम माहिर क्या कह रहे हैं? ये भी अच्छा, नदीम माहिर का पुराना मैसेज आया भाई, ठीक है। बाकी सब के मैसेजेस भाई, बाकी सब ने जिसने सलाम लिखा हुआ है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, इज्तमाही सलाम आप सभी को। शहजादा सलीम वालेकुम अस्सलाम, हम हैं आपके साथ FM 107। शहजादा सलीम जी आपको भी हमारी तरफ से सलाम, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। अच्छा आप में से मैंने एक बात पूछनी थी, आप में से कितने लोग हैं जिनको डिबेट का शौक है, ये तो बताओ ज़रा, ज़रा मुझे मैसेज करके बताओ, जिनको एक्टिव ट्रेंडिंग मौजुओं पर डिबेट का शौक है और वो रेडियो पर आकर डिबेट कर सकते हैं, अच्छी वाली जिसे मैं कह रही हूँ ना, अच्छी वाली डिबेट। मतलब ये कि अगर आपसे कहा जाए कि आज की जनरेशन के साथ बैठकर मुद्दों पे बात करो तो कर लोगे? ज़रा मुझे मैसेज करके तो बताओ 666-22107 पर, आप में से किस किस को शौक है डिबेट का ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर, कर लोगे डिबेट? ज़रा बताओ मुझे कौन कौन चीता बैठा हुआ है आज, मुझे देखना है क्लास में कितने चीते हैं जिनको अपना मुद्दा या अपनी बात रखने का शौक है। 666-22107 पे मैसेज करके ज़रा बताओ। और मैं जा रही हूँ एक छोटे से ब्रेक पर, सोचो और फिर मुझे मैसेज करो। और अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त भी है ना जिसको आप कहते हो भाई ये बड़ा बातूनी है,
इससे आप किसी डिबेट में जीत नहीं सकते, इसके पास इतने फैक्चुअल लॉजिक्स हैं। तो जरा मुझे जरूर बताओ कि किस किस के पास ऐसे कोई कॉन्टेक्ट्स हैं कि जो रेडियो पर आकर बात करने में इंटरेस्टेड हो। 666-22107 पर 666-22107 मैसेज करो और बाकी के मुद्दे पे बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं लेकिन ब्रेक से आने के बाद। को भी ध्यान भूलो, मैसेज करो 666-22107 पर। अभी के लिए रंग कौन सा वाला रंग है भाई? चलो मुझे भी नहीं पता है कौन सा वाला रंग है, दोनों मिलकर देख लेते हैं कौन सा वाला रंग है। वैसे आज आपने अपनी शर्ट में कौन सा रंग पहना हुआ है, काला नीला पीला? मैंने क्या पहना है? मेरा कुछ मिक्स कलर चल रहा है, पैटर्न वाला। आप सुन रहे हैं सफा के साथ साइलेंट साउंड ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: हवाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM
1: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी एक एहसास उनकी जुबानी हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर

0: भाई देखो, मेरा ख्याल तो सबके जहन में आता है, मेरी आवाज ही ऐसी है, छा जाती हूँ मैं दिमाग पे, छा जाती हूँ ऑन अ लाइट मोड।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देश।

जिंदगी में ना साथियों ऐसे बहुत सारे लम्हात होते हैं जिनको हम बाद में याद करते हैं तो मुस्कुरा उठते हैं। तो भाई वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107। देसी लोगों आ जाओ जरा खुशबू लगा के, गोभी दिया फूलों आ जाओ जरा खुशबू लगा वगा के, अच्छी वाली परफ्यूम लगाना। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, मुझे बहुत सख्त किस्म की एलर्जी है, जिस जिसकी परफ्यूम की खुशबू से मुझे छींकें शुरू हो गई ना, उसको मैंने बाहर निकाल के फेंक देना है, ठीक है। तो भाई साथियों आप सभी को ढेर सारा वेलकम है। इस वक्त अगर मैं टाइम की बात करूं तो 11:49 ऑन द क्लॉक हो रहे हैं, अभी तकरीबन 5 सेकंड बाद 50 हो जाएंगे। तो भाई मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर। देखो सफ़ा वक्त ज़ाया नहीं करते, वक्त एक बहुत कीमती चीज़ होता है, गजनी हूँ कहीं से कहीं निकल जाती हूँ मैं। तो भाई देखो आज मुद्दे पर अगर बात की जाए ना, तो ज़रा इमेजिन कीजिए, इमेजिन करें। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपने पहली दफ़ा इमेजिन किया होगा जो मैं आपसे इमेजिन करवाने वाली हूँ। मुझे लगता है मैं तो हर तीसरे दिन ये बात इमेजिन कर रही होती हूँ, और हर तीसरे दिन एक नया मुद्दा मेरे दिमाग में आ रहा होता है कि भाई ये भी। देखिए मैं बात कर रही हूँ कि थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर एक दिन आपको ऐसा लगे, आपकी आंखें बंद हो, आंखें खुलें सुबह के टाइम, ठीक है, और जब आपकी आंखें खुलें तो आपको ऐसा लगे कि जैसे किसी आप मशीन में बैठ कर ना, एक बटन दबा, टाइम मशीन में बैठे और सीधा अपनी वो टीन वाली एज में चले गए, जहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे मोड़ पर हैं, 18 प्लस पे चले गए आप, और आप जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ एक साथ सर्वाइव कर रहे हैं। अब जाहिर ही बात है जो हमारी 20 25 24 वाली जो एज होती है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें क्रॉस कर रहे होते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी होती है, न्यू ग्रेजुएट होते हैं, काम ढूंढना होता है, फ्रेशर्स होते हैं, घर के अलग अलग मसले मसाइल चल रहे होते हैं, एक्स वाई जेड बहुत कुछ चल रहा होता है लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आप चले गए हैं अपने यंगर वर्जन में। फेस आपका वही है लेकिन बेटर लुकिंग है, आंखें आपकी वही हैं लेकिन उनके अंदर ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ बस आपका थोड़ा सा जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, उस टाइम पे जो हेयर स्टाइल और जो फैशन सेंस हमारे होते हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे, अगर हम अपनी खुद की तस्वीरें देख लें तो हम कहेंगे हम अपने आप से फिर मुलाकात करना पसंद ना करें। शुक्र है बेगम ने उस एरा में नहीं देखा, वरना तो बेगम रिजेक्ट कर देती। हाँ उस वक्त का मामला ये है कि कॉन्फिडेंस का जो चश्मा है ना, उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने अभी बाकी है। मतलब आप चले गए अपनी जवानी के टाइम पर, आप उस शख्स को देखते हैं और सोचते हैं कि भाई तुम्हें पता भी है कि कुछ सालों बाद तुम्हारे साथ होने क्या वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सिर्फ एक एडवाइस देने का चांस है। कुछ मिनट हैं आपके पास, और आपके पास सिर्फ कुछ मिनट के अंदर ना, यूं समझ लो कि उस एक से दो मिनट के अंदर आपने अपनी जवान सेल्फ को, अपनी यंगर सेल्फ को कहना है कि भाई जल्दी से मेरी बात सुन ले, जल्दी जल्दी बोलकर निकल रहा हूं मैं। तो आप क्या कहेंगे अपने यंगर सेल्फ को, क्या एडवाइस देंगे उस इंटेंस मोमेंट में जब आपके पास सिर्फ 2 से 3 मिनट हैं कि आपने बस बात बोलनी और निकल जाना है। शायद सबसे पहले आप ये कहेंगे कि भाई रिलैक्स कर जाओ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हर छोटी प्रॉब्लम पर दुनिया का एंड नहीं हो जाता, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो बात आज तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज लग रही है ना, कुछ सालों बाद वो सिर्फ एक फनी फ्लैशबैक बन जाएगी। आज किसी का रिप्लाई ना आना, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाना, एग्जाम में कम मार्क्स आ जाना, या किसी दोस्त स्टैंडिंग्स पर उस वक्त ऐसा लगता है कि भाई जैसे जिंदगी क्राइसिस में चली गई, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन वक्त ना एक अजीब एडिटर है, वो सीरियस सीन्स को भी ना आहिस्ता आहिस्ता कर हमारी मेमोरी में फनी बना देता है। वो जो फॉल्स मेमोरी होती है ना हमारी, उसके नाम फनी बन जाती है भाई। या शायद आप अपनी यंगर सेल्फ को ये कहना शुरू कर देंगे कि भाई सेविंग कर, ए भाई ए हेलो बहुत उड़ा लिया, अयाशियां बंद करो, पैसे सेव करो, पैसे बचाओ। ये एक छोटे से बीज की तरह होते हैं जो बड़े होकर फिर टाइम के साथ साथ ये बड़ा दरख्त बन जाते हैं। आज थोड़ा सा सेव कर लो, कल वही तुम्हारी एक अच्छी आदत बन जाएगी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत हो जाएगा तुम्हारा। हाँ क्या पता आप अपनी यंगर सेल्फ को, कुछ लोग मोस्टली स्पेशली गर्ल्स अपने आप को ये भी कह रही हूँ कि भाई ये जो सेल लग रही होती है ना, हर 50 रुपए की सेल के पीछे नहीं भागा करो। ये शॉपिंग बैग्स भरने के बजाय, ये डिस्काउंट के पीछे भागने के बजाय देखो अपना अकाउंट बना लो, ये 50 रियाल सेव कर लो। कुछ होता है, कुछ लोग अपने आप को अलग अलग मुख्तलिफ एडवाइस देने की कोशिश

0: करेंगे. कुछ लोग अपने आप को ये एडवाइस भी दे सकते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस का चश्मा अपना अच्छे तरीके से टाइट वाला पहन के रखो. कॉन्फिडेंस, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, जिस दिन वो आया ना उस दिन तुमने सब अचीव कर लिया. क्या कहते हैं, क्या सेंटेंसेस बोलेंगे उन दो मिनट में अपने आप को, अपनी यंगर सेल्फ को? कुछ दिमाग में आ रहा है बताएं मुझे जरा. 666-22-107 पर मैसेज कर 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज. और आपने मुझे ये बताना है कि अगर आपको जिंदगी ये चांस देती है कि किसी तरह आप अपनी यंगर सेल्फ से आज मिलते हैं, तो उसको एक पीस ऑफ एडवाइस क्या देंगे? सुनहरे वर्ड आपके क्या होंगे? उसको क्या बोलोगे भाई? बैठकर क्या बोलोगे उसे? मैं बोलूँ ना तो मैं अपने आप को बोलूँगी कि भाई सफा रिलैक्स, सांस लो. देयर इज अ लाइट इन द एंड ऑफ द टनल. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. मैं अपने आप को यही बोलूँगी. आप क्या बोलेंगे? 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल. 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल. कॉल करके बताएं कि आप अपने आप को क्या बोलना पसंद करेंगे. अपने आप से मुलाकात करेंगे, अपने आप से, किसी से नहीं. क्योंकि इंसान जितना आप कह लें कि मुखलिस अपने साथ होता है ना, उतना किसी और के साथ हो ही नहीं सकता. अपने आप को बचाओ, बोलो अपने आप को, कुछ कुछ कुछ सजेशन दो, कुछ एडवाइस दो. देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: हेलो मिस्टर अजू, हाउ आर यू?
1: वेरी वेल सर, हाउ आर यू?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, ऑल फिट, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द वेदर टू.
1: 65
0: it's what does it say? It say in Celsius it says 43, maybe 44, 43 to 44 degrees Celsius.
1: I hear around 10-10:30 the heat index is 65.
0: Oi, which area are you right now?
1: Dukan.
0: It's hot. I hope it becomes a bit better. I hope. बस गर्मी है भाई, क्या करें, झेलना है गर्मी को. सितंबर के एंड तक तो ये ऐसी रहेगी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस सितंबर के बाद. आफ्टर अ मंथ, वन एंड अ हाफ मंथ
1: गाड़ी ऑन करके गाड़ी में बैठेगा.
0: अरे वाह, टेंशन नहीं लें, गाड़ी में एसी है ना, टेंशन नॉट, इट्स ओके. वो कौन से वो मूवी थी ना, उसको कहता है जस्ट चिल. अच्छा भाई अज्जू भाई,
1: कंपनी ने बोला ज्यादा हीट इंडेक्स है तो 10 मिनट काम करो, 10 मिनट गाड़ी के अंदर जाकर बैठो.
0: ब्रो ये कौन सी वाली कंपनी है भाई, ये कौन सी वाली कंपनी है? दिस इज गुड. कब हायर कर रहे हैं इनकी हायरिंग कब से शुरू होगी जरा बताना मुझे. नेक्स्ट हायरिंग इनकी कब से शुरू हो रही है? फिक्र हूँ, इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं एम्प्लॉयज का. ओ माई गॉड, बस मसला ये है कि मेरी इंजीनियरिंग वाली डिग्री नहीं है ना भाई. एक चीज रह गई मुझसे, इंजीनियरिंग नहीं की मैंने, बाकी सारी डिग्री है मेरे पास. मेडिसिन से लेकर बैचलर्स, ये अपना बिजनेस तक की डिग्रीज है, बस इंजीनियरिंग नहीं की मैंने. मैथ्स आ गया ना उसके अंदर, मैथ्स नहीं अच्छा लगता मुझे.
1: No problem. Women can work any field.
0: Oh my God, that is the women power. Oh my God, thank you, Ajit bhai, thank you. लेकिन मैं इतना भी overconfident नहीं होती Ajit bhai, मैं इतना overconfident नहीं होती, मैं इतनी बड़ी-बड़ी छलांगे नहीं लगाती. अच्छा Ajit bhai,
1: मैं इंडिया में काम करने के टाइम मेरे साथ 2-3 women से काम किया था.
0: अच्छा अब जो है ना, अब relatable ratio अगर हमारे टाइम का देखे ना, वो 90s के बच्चों का, तो अब उससे ज्यादा गर्ल्स आर. पहले तो ये होता था ना भाई, लड़कियां सिर्फ मेडिसिन फील्ड में जाएंगी, लड़कियां सिर्फ मेडिसिन. इवन इन माय एरा माय फादर वाज नो गो इन मेडिसिन फील्ड. अब्बा ने भेज दिया धक्के मार के मेडिसिन फील्ड में. बट नाउ आई एम सीइंग मोर गर्ल्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो. मुझे ये बात अच्छी लगी.
1: एग्जैक्टली,
0: आई लाइक दैट थिंग. क्योंकि मेरे अपने एक फ्रेंड है, उनकी अपनी बहन जो है ना,
1: कोई कोई आदमी को मेडिकल फील्ड थोड़ा पसंद नहीं रहता ना.
0: मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे
1: मेडिकल फील्ड में प्योर इंटरेस्टिंग मेडिकल फील्ड आदमी थोड़ा काइंड होने का.
0: नहीं अज्जू भाई, नहीं चलता. ये सुनने में आपको लग रहा है मैं मेडिकल फील्ड से यूं होकर गुजर कर आ रही हूँ, मैं क्लिनिक्स और इनसे सबसे होकर गुजर कर आ रही हूँ. असल में मामला ये कि यू हैव टू बी वेरी

0: वेरी, आई वुडंट से मीन मशीन, लेकिन अगर आप उस टाइप का सख्ती नहीं दिखाते ना तो वो आपके प्रोफेशन में भी अफेक्ट करती है, और जिन लोगों से, अपने पेशेंट से जिनसे आप डील कर रहे होते हैं ना, कुछ मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं ना, हाँ कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आप लीनियंसी के साथ कर सकते हो, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जब तक आप उनसे सीरियस मोड पर आकर बात नहीं करोगे ना, दैट मीननेस से बात नहीं करोगे, भाई वो नहीं सुनते.
1: नो प्रॉब्लम सफा, हमारा एरिया में एक काउंटी वर्ड है, जस्ट से यू किल 100 पेशेंट देन वी विल बिकम अ गुड डॉक्टर.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कहें भाई, हमारे इंडिया पाकिस्तान के बहुत बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो भाई, बहुत बेस्ट डॉक्टर्स.
1: नहीं नहीं, दिस इज जस्ट फनी काउंटी.
0: हाँ हाँ हाँ, वहाँ में बताइए, ये हम भी कहते हैं मजाक में, हम कहते हैं पाकिस्तानी डॉक्टर ना गए. बट आई नो, आई हैव वर्कड बिटवीन देम एंड आई नो, आई वुड, मैं कहती हूँ नहीं भाई, ऑन अ सीरियस नोट, the people coming from our countries, the doctors coming from our countries, मैं आँख बंद करके जाऊँगी भाई, इंडिया पाकिस्तान का डॉक्टर होगा ना, मैं कहूँगी हाँ, आई वुड गो टू दिस डॉक्टर, आई टोटली डू एम्ब्रेस देम. ब्रांडेड डॉक्टर हैं अपने भाई, अच्छे वाले. अच्छा भाई अज्जू भाई, आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट से यू सिट इन अ टाइम मशीन, रोल बैक एंड मीट योर यंगर वर्जन, वो हमारी टीन एज से थोड़ा 20s, 24, यूनिवर्सिटी क्रॉस की हुई एज, 25, ऐसी वाली एज, ठीक है, उससे मिलते हो, व्हाट वुड बी दैट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड गिव योरसेल्फ एट दैट टाइम?
1: डोंट जंप फ्रंट.
0: मतलब क्या, व्हाई वुड दैट बी? मतलब आप इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं?
1: नहीं, कोई बुलाएगा तो मैं पहले जाएगा.
0: अच्छा, बहुत ज्यादा ओवर काइंड नहीं हो जाओ, बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर अपने आप को कहते ना, नॉट ओवर काइंड.
1: कोई फ्रेंड्स बुलाएगा, बाहर जाएगा, बोलेगा तो मैं सीधा जाएगा.
0: ये अज्जू भाई,
1: लड़ाई करने का शुरू होगा.
0: ये मेरे साथ भी यही है अज्जू भाई, आई फील यू अज्जू भाई, ये मेरे साथ भी यही है. मेरे दोस्त पता है कैसे हैं, मुझे बुलाएंगे, आ जाओ सफा, ब्रेकफास्ट करने चलते हैं. अरे भाई, मैं गई ब्रेकफास्ट करने, मैं सबको छोड़ छाड़ के गई, 3 घंटा वेट किया मैंने, 3 घंटा, पता चला मेरे दोस्त घर में बैठे हुए सो रहे हैं, ऐसे दोस्त हैं मेरे. मैं चली गई टाइम पर, 3 घंटा अज्जू भाई, ऐसे दोस्त हैं मेरे, अल्लाह माफ़ करे. तो ये बात तो मैं भी, आई फील यू अज्जू भाई, दोस्त ऐसे भी होते हैं, और कुछ दोस्त ना सिर्फ उस वक्त तक के लिए दोस्त होते हैं जब तक आपकी जेब में माल होता है भाई, जब तक आपके पास पैसा है ना, एंड द टिल द टाइम यू आर अग्रीइंग ऑन देयर यस यस यस यस, द मोमेंट यू से नो ऑन समथिंग, देयर नो मोर योर फ्रेंड्स. यस, दिस हैपेंस, आई डू अग्री विद यू, ये होता है. तो भाई अज्जू भाई, आज की गेम के लिए रेडी हैं आप?
1: आज भी गेम है. ओके,
0: गेम खेलेंगे अज्जू भाई. देखिए, कल आपने जो है ना, पता है क्या मिस्टेक कर दी थी, देर इज नो नो, देर इज नो यस, देर इज नो एंड देर इज नो पॉज ऑल्सो. पॉज नहीं करना, मतलब आपने जो ना ब्रेक नहीं लेना बीच में, सोचना नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी अ बिट क्रिएटिव एंड यू हैव टू यू नो, जल्दी जल्दी से सवालों के जवाब दे देने हैं आपने, ठीक है?
1: ओके,
0: चले, आपको दिया जाएगा 1 मिनट का टाइम, और उस 1 मिनट में आपने जल्दी जल्दी आंसर देने, ठीक है? क्या रूल क्या है? रूल ये है, हाँ नहीं बोलना, ना नहीं बोलना, हम नहीं बोलना, पॉज नहीं लेना.
1: पॉज नहीं करना. ओके,
0: ठीक है. अब अज्जू भाई के लिए कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. 1, 2, 3, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ. क्या आप नर्वस हैं?
1: एग्जैक्टली.
0: अज्जू भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: no,
0: मेरी?
1: I'm tired.
0: आपको लगता है कि मैं आपको फंसाने की कोशिश कर रही हूँ?
1: I think so.
0: आप अभी सेफ जगह पर हैं कि नहीं?
1: I believe I'm in.
0: आपको यकीन है कि आप सेफ जगह पर हैं?
1: Not exactly.
0: अच्छा, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं?
1: Eating.

0: क्या आप रेडी हैं?
1: नॉट रेडी.
0: नॉट रेडी. चलें भाई एक और सवाल आपसे कर लेते हैं. क्या आपको यकीन है कि आप ये गेम जीत जाएंगे?
1: ट्रस्ट ऑन माय सेल्फ.
0: चले भाई ये भाई भाई को तालियां बजा दी जाए. तालियां तालियां. वेरी गुड वेरी गुड. शॉर्ट जवाब देते बड़े शॉर्ट. अजू भाई वैसे एक बात बताएं, आप टॉकेटिव, आपको घर वाले क्या कहते हैं? आर यू अ टॉकेटिव पर्सन और नो? क्या
1: गेम खत्म हो गया ना?
0: हाँ गेम खत्म हो गया. तालियां बजा दी मैंने. गुड गुड गुड.
1: ओके
0: तो आपको घर वाले क्या कहते हैं? यू आर अ टॉकेटिव पर्सन और नो?
1: नो नो नो. मैं मेरा मदर कभी भी नहीं बोलते. यू आर गुड. नो
0: मतलब यू आर नॉट टॉकेटिव टू द पॉइंट. बात
1: नॉट टॉकेटिव. या पॉइंट पर
0: वो तो मुझे पता चल रहा था गेम में. सिर्फ एक एक वर्ड बोलकर निकल जा रहे थे. एक एक वर्ड बोलकर. वाह वाह वाह वाह भाई अज्जू भाई वाह. क्लैपिंग क्लैपिंग. चलिए भाई 10 सवालों के दो.
1: एक मिनट में जीतने के लिए एक सेंटेंस इज इनफ.
0: एक सेंटेंस भी नहीं बोल रहे थे ना आप तो एक एक वर्ड बोलकर निकल जा रहे थे.
1: सॉरी एक मिनट के लिए एक वर्ड इज इनफ. ओके इट इज अराउंड हाफ एन आवर मींस. ओके एक एक दो सेंटेंस इज इनफ.
0: अज्जू भाई फिर तो जब आप मुझसे कॉल पे बात करते होंगे ना तो आपको तो ओवर टाइम लग जाता होगा फिर. चले जी
1: कल कल सेम गेम है तो आई विल प्रिपेयर.
0: यस यस यस यस. वीक एक वीक का एक गेम होता है हमारा तो इस वीक यही गेम चलेगा.
1: नहीं सकता है.
0: देखते अज्जू भाई देखेंगे कल फिर देखेंगे अज्जू भाई. चले जी
1: मैं आज याद किया था. आज सेम जैसे गेम है तो यस नो उसका वर्ड का ऑपोजिट वर्ड.
0: देखो जरा अज्जू भाई ये देखो ट्रिके निकाल कर आ रहे हैं. अच्छा जी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अज्जू भाई. सेंसिबल
1: उसका हिसाब से कौन से वर्ड सूटेबल है. सी नॉट एग्जैक्टली मींस इट लुक लाइक मोर राइट.
0: ओके ओके ओके. नॉट एग्जैक्टली इज या इट्स इट्स अ यू कैन से सिनोनिम ऑफ नो बट इट्स नॉट अ डायरेक्ट नो. इट्स इनडायरेक्ट नो.
1: आई नो इट्स इनडायरेक्ट नो. या गेम इज
0: या ना नहीं कहता. या या या या. चलिए भाई कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस. अपना ढेर सारा ख्याल रखें जो भाई. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज.
0: अच्छा मैं अपने आप से रोज यही सवाल करती हूँ साथियों कि अगर मैं अपनी यंगर सेल्फ से मिलती तो मैं उसे क्या एडवाइस देती. और मेरे पास यकीन जाने रोज एक नई एडवाइस निकल कर आती है. मैंने इतने कारनामे अंजाम दिए. तौबा तौबा तौबा तौबा. अच्छा भाई हमारा जो नंबर है 4434377 हमारा नंबर है 4434377 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मुद्दा आज का हमारा ये चल रहा है. मैं रिपीट आपको फिर से और कर देती हूँ एक दफ़ा. क्या आपने करना ये है कि मुझे बताना है अगर आप अपनी यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देते तो वो क्या एडवाइस होती. तो भाई आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर और शायद तो मैसेज भी भेज सकते हैं 6622107 पर. अच्छा मैं जाने लगी हूँ एक छोटे से ब्रेक पर. मुझे कॉल आ रही है लेकिन मैं आपकी कॉल ब्रेक के बाद रिसीव करूँगी. तो भाई देखिए ब्रेक पर जाने से पहले ना मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन ऑन आवर प्लेटफॉर्म. कन्वर्सेशन के लिए प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं. टॉपिक हम आपको दे रहे हैं. आपको बैठकर अगर बात करने का शौक है ना तो मुझे मैसेज करके बताएं 6622107 पर 6622107. यूं समझ लें कि आपने एक डिबेट में हिस्सा लेना है और आपने इट्स नॉट कि कौन जीतेगा कौन हारेगा. डिबेट का हमारा मुद्दा ये नहीं होने वाला कि कौन जीतेगा कौन हारेगा. आपने बस अपना नज़रिया रखना है उसके अंदर. ठीक है अगर किसी को शौक है डिबेट में हिस्सा लेने का तो मुझे ज़रूर मैसेज करें 6622107 पर. मैसेज करें 6622107 पर. और फिलहाल के लिए रीमिक्स भी सुन लेना चाहिए कभी कभी. आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड एफएम 107 दिल से देसी. ब्रेक के बाद मुद्दे पे बात. अपने आप को अपनी यंगर सेल्फ को क्या बोलोगे भाई सोचो सोचो.

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड सफा के साथ ऑन FM 107। और भाई इस वक्त घड़ी में कितने बज रहे हैं? 12:18 हो रहे हैं, 12:18। तो भाई गोभी दया फुल्लो आ जाओ खुशबू लगा के, और देखो खुशबू लगा के आना जरूर, क्योंकि 12 बजे का टाइम इस वक्त हो रहा है और दोपहर के 12 बजे की हीट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो समझ जॉकलमन के लिए इशारा काफ़ी होता है भाई। जाने से पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि अगर आपको मौका मिले ज़िंदगी में अपने यंगर से मिलने का, तो आप अपने आप को क्या पीस ऑफ एडवाइस दोगे? समझ रहे हो बात? देखो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अप डाउन होते हैं। आपके पास ऐसा नहीं कि आपने कोई एडवाइस की डायरी निकाल लेनी है, या जैसे वो निकालते ना हम लोग ग्रॉसरी का बिल इतना लंबा चौड़ा सा, वो नहीं करना आपने। बस एक पीस ऑफ एडवाइस जो वाइज आपको लगता है ये वाइसेस्ट थिंग एवर है, अगर ये एक बात मैंने अपने आप को समझा दी ना तो ज़िंदगी बहाल हो जाएगी। मतलब इसके बाद फिर जो होगा ना वो मैं बहुत आसानी से निपट लूँगा उससे। अपने आप को एक सिंगल सेंटेंस में क्या एडवाइस होगी, लॉजिकल एडवाइस क्या दोगे? अज्जू भाई

0: बोला मैं यही करूंगा कि मैं अपने आप को बोलूंगा कि दोस्तों के बीच ना भागो, हर किसी के बुलाने पर चले ना जाया करो। ये जो नरम दिल वाले लोग होते हैं ना, इनके साथ ये होता है मसला। हमारे लिए ना दोस्त जो होते हैं ना बड़े भाई, ये दोस्तों वाला मामला जरा इमोशनल कर दिया जो भाई ने मुझे। तो भाई आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और मैसेज करने के लिए नंबर है 6622107। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ?
1: मेरा नाम शोएब।
0: शोएब भाई हैं
1: जी?
0: शोएब भाई, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे चाचू का नाम है शोएब। तो क्या आप मेरे चाचू बात कर रहे हैं?
1: नहीं,
0: चाचू जवान। मैंने तो कहा था इमेजिन करें कि आप यंगर सेल्फ से मिलें, आप तो वाकई में जवान होकर आ गए चाचू।
1: नहीं,
0: चाचू चाची कैसी चल रही हैं? अच्छी हैं? अब लड़ाई वगैरह तो नहीं करती?
1: बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, हर चीज में लड़ाई है।
0: देखो वक्त बदल गया लेकिन चाची ना बदली चाचू।
1: वो बदलेंगे भी नहीं।
0: बहुत भारी भरकम चाची पड़ी है चाचू। चलो उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी तो सही हो ही जाएंगी।
1: बीवियां कभी चेंज नहीं होती मैम।
0: देखें चाचू, जितना आसानी से आप ये बात अपने आप को, अपनी यंगर सेल्फ को ये एडवाइस दें कि मैंने बस हर हाँ में हाँ मिलाना है तो मैं खुशहाल जिंदगी गुजार सकता हूँ।
1: कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमें हाँ में हाँ नहीं मिला सकते।
0: नहीं चाचू, मिलाना पड़ेगी, जिंदगी चाहिए, जिंदगी अजीज है ना चाचू। चाचू देखो देखो चाचू, बता रहे हैं
1: अजीज है, इसीलिए तो हर मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ में हाँ मिलाओ, लेकिन अभी जो चीज पॉसिबल ही नहीं है तो उसको हाँ में हाँ कैसे मिलाओ। अभी चाची को पसंद आ गया है एक हार जिसकी जो है ना प्राइस बहुत कॉस्टली है, अभी मेरे पास इतना ही ना नहीं है बैलेंस, तो मैं कैसे हाँ में हाँ मिलाऊं।
0: चाचू देखो, जान है तो जहान है, खाना चाची बनाकर खिलाती, कपड़े चाची धोकर देती, घर चाची सफाई करती
1: है कि वो आपको जब मुझे खाना बना के खिलाएंगे, मुझे बनाना पड़ता है।
0: तो भाई ये तो फिर जुल्म है हमारे भाई, ये हमारे, मेरी अम्मा बिल्कुल सही कहती हैं, हमारे चाचू बड़े मासूम हैं, हमारी चाची में ही मसला है। हमारे चाचू बड़े मासूम हैं। शोएब चाचू मैं आपके साथ हूँ।
1: जल्दी पार्टी बदल ली।
0: देखिए ये देखिए, मैं कहीं सुनी बात के ऊपर यकीन नहीं करती ना, मेरी अम्मा मुझे बचपन से बोलती आ रही कि हमारे चाचू बड़े मासूम हैं, चाची ने जो है ना सारी गड़बड़े करके रखी हुई है, ये सारे जो फसाद हो रहे हैं ना चाची की वजह से हो रही। मैं मानती नहीं थी अम्मा की बात, आज मुझे चाचू ने मुंह पे बता दिया। आज चाचू बेचारे अपनी यंगर सेल्फ में गए और आज उन्होंने हिम्मत की, कॉन्फिडेंस पैदा किया कि मैं बोलूं दुनिया के आगे।
1: आपकी चाची बदलने ही नहीं चाह रही है, आपकी चाची मराठी है और मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो कुछ नॉर्थ इंडियन बनाए, लेकिन उनको हमेशा सिर्फ और सिर्फ मराठी, मतलब जो मुंबई का जो खाना है वो ही बनाना है, स्पाइसी वाला।
0: अच्छा ये मैंने एक बात देखी है, हमारे पास ऑफिस में सना भी है ना, उसका भी मसला है, वो कहती है भाई मेरे को जो है ना, मैं मराठी खाना और ये जो वो होता है ना वो उनका वो खाने से नहीं हटते, उनको चाहिए स्पाइसी खाना भाई, धुआंधार खाना, कानों से धुएं निकल रहे हो। हमारे कराची वालों का ये हाल है, हम कहते हैं खाने के अंदर मिर्चे ना हो ना, कानों से धुएं ना निकल रहे हो और आंखों के अंदर से पानी ना आ रहा हो, तब तक मजा नहीं आता।
1: मिर्चे स्पाइसी होने चाहिए लेकिन एक लिमिट में होने चाहिए, ओवर लिमिट बहुत प्रॉब्लम करते हैं।
0: नहीं नहीं देखें शोएब भाई, मसला ये है कि हम खाने में मिर्चे नहीं डालते, हम मिर्चों में खाना डालते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मराठियों का सिस्टम ऐसा ही है, जितने भी मुंबई वाले हैं उनका सिस्टम यही है।
0: अरे भाई मुंबई का खाना तो अच्छा होता है, खाया है मैंने, खाया है
1: अच्छा, मैं खाता हूँ बहुत अच्छे से खाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है
0: कि बाद वाले असर, आफ्टर इफेक्ट्स,
1: मतलब अभी रेगुलर एक चीज नहीं खा सकते ना, थोड़ा चेंज भी चाहिए। अब मुझे कल समटाइम मुझे नॉर्थ इंडियन खाना है अपना दिल्ली वाला,
0: सही,
1: तो उसके लिए जाना फिर मुझे ही बनाना पड़ता है, वो मैं उनसे होती है लेकिन उनका हाथों टेस्ट नहीं आ पाता।
0: देखिए मैं अब जो ना आपको एक आइडिया देती हूँ, हमारी जो चाची है ना चाचू, उनके साथ एक काम कीजिएगा, आप मास्टर शेफ है ना, आप तो अपनी स्किल्स आजमाएं ना, आप क्या करें वो जैसे वो मास्टर शेफ्स बनाते हैं ना केक से और पता नहीं किन किन चीजों से, सब्जियों से, एक अच्छा सा हार बना के पेश करें उन्हें। क्या पता राजी हो जाए, वैसे मुझे तो पता है वो राजी नहीं होंगी, उनसे कहें मैं वो वाला हार नहीं ले सका तो क्या हुआ, मैं इन बजट वाला हार लेकर आया हूँ।
1: इसके अंदर नहीं, वो एक चीज है, कुछ डिशेज है बड़ी

0: अच्छी बनाती हैं, जैसे कि फिश होती है ना, फिश करी, फिश फ्राई, और श्रिम्स, श्रिम्स जानते हो ना आप?
1: हाँ,
0: श्रिम्स और
1: बिरयानी, मतलब सी फूड अच्छा बनाती है, सी फूड अच्छा होती है।
0: हाँ, सी फूड मतलब वो है एकदम जबरदस्त, मतलब आप यकीन माने उस जब कतर से पहले, मतलब जब मैं दिल्ली में था, मैं सी फूड में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, कतर में आने के बाद मैं सी फूड की तरफ को मेरा लगाव इतना ज्यादा हो गया, हद से ज्यादा। अब तो मैं खुद, मतलब एवरी वीक मैं फिशिंग के लिए जाता हूँ, फिश पकड़ के लेके आता हूँ, मैं खुद भी बनाता हूँ, और जैसे कि उनको टाइम मिलता है, मैं यार तू कुछ अपना मुंबई वाले स्टाइल में बना के दो, वो एकदम जबरदस्त, मतलब एक नंबर है उनका सी फूड जो है ना, बहुत जबरदस्त।
1: मतलब ये हमारी चाची और मैं इस मुद्दे पर एक साथ आके खड़े हो जाते हैं कि हमने घर वालों को सी फूड की चस लगा दी है, सी फूड होना चाहिए। वाह,
0: बिल्कुल,
1: आई लाइक इट,
0: बहुत जरूरी
1: है। हेल्दी खाना खिला रही है चाची आपको,
0: हेल्दी होता है लेकिन वो बहुत सारा स्पाइसेस भी होता है, मतलब आप बताओ मैं
1: आप खुश ना होंगे, ये बहुत गलत बात है।
0: मैं कसम से बहुत ज्यादा खुश हूँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहे,
1: बस चलता रहे, सर्वाइव कर जाए,
0: बस चलता रहे,
1: सर्वाइव कर जाए।
0: हाँ, बहुत जरूरी है।
1: हाँ, बस देखें, खुशहाल जिंदगी का यही एक मोटो होना चाहिए, बस हाँ में हाँ मिलाओ, बस फिर खुश रहोगे। अच्छा, ये तो बताएं, मुद्दा हमारा ये चल रहा है आज का कि अगर आपने अपनी यंगर सेल्फ को कोई एक एडवाइस देनी है तो वो एडवाइस क्या होगी?
0: बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा निगेटिविटी से दूर रहो भाई।
1: सही,
0: और एक पुरानी कहावत थी कि जैसे हमारे दादा और पापा पुराने में लोग बोलते थे कि आप जैसी संगति में बैठोगे आपको वैसे ही मिलेगा। सोसाइटी बहुत जरूरी है, अच्छी सोसाइटी में आप बैठे, अभी गलत सोसाइटी में जाके ना बैठे, और बड़े के पास बैठोगे तो स्याही लगेगी,
1: बड़े के पास बैठोगे।
0: हाँ, मतलब
1: जब बुरे के पास बैठोगे, बुरे के पास, अच्छा तवे के पास बैठोगे तो अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई।
0: चूल्हे के पास अगर आप बैठोगे तो स्याही जरूर लगेगी। तो सोसाइटी अब जैसे कि मतलब सोसाइटी अच्छी देखे, गलत सोसाइटी में ना जाए,
1: अच्छी कम्युनिटी,
0: अच्छी सोसाइटी में जाए,
1: एनवायरमेंट अच्छा रखो। सही,
0: हाँ, अपने आसपास का एनवायरमेंट अच्छा रखो, और अपने थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखो, निगेटिविटी से दूर रहो, और हर चीज में मतलब जैसे भी अगर आपको मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी, और उसमें सब अल्लाह का शुक्र अदा करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। देखो जिंदगी जो है ना, बहुत कुछ सिखाती है, कभी आपके दिन बहुत अच्छे जाते हैं, कभी आपके दिन बहुत बुरे जाते हैं, तो वो एक ये एक लेसन है जिंदगी का, एक लेसन है।
1: हाँ, एग्जैक्टली,
0: ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो यही सबको एडवाइस देता हूँ, अपने आप को भी, अपने यंगर सेल्फ को भी, सबको।
1: सही, ये वाकई में एक अच्छी बात है, ये हर इंसान को, ये बड़ी बड़ी मसला, पता है क्या शोएब भाई, ये जो बात है ना, ये बहुत बहुत उम्र बाद जाके समझ में आती है, पक्की उम्र होने के बाद समझ में आता है कि भाई हर चीज का एक वक्त होता है, अपने आसपास का माहौल, आसमान देखने वालों के साथ बैठोगे आसमान दिखेगा, जमीन देखने वालों के साथ बैठोगे जमीन दिखेगी, और मसला ये होता है कि खाक छानने वालों के साथ बैठोगे तो खाक ही छानते रह जाओगे। ये बहुत मसले का काम है, और ये बहुत एक पक्की उम्र के बाद जाके समझ में आता है। अल्लाह करे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, उसके दिमाग में पहले ही आ जाए।
0: नेक्स्ट जनरेशन बहुत एडवांस है, अच्छा ज्यादा है, हमारी सोच से बहुत परे है वो।
1: ये बात मैं मानती हूँ। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है, ये जो आने वाली जनरेशन है ना, ये वो जनरेशन है जिनसे हमें सीखना पड़ जाएंगी चीजें। मैं इस बात पे बहुत
0: सीख रहे हैं, मैं बहुत सीख रहा हूँ अभी, जो ये जेन जी जो है और जेन अल्फा है, मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ये हो सकता है कि फिजिकली इतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन ये इनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्मार्ट जनरेशन है, बहुत ज्यादा स्मार्ट जनरेशन है। वो किसी चीज के, आप मान लो किसी, जैसे कि और भी दुनिया भर में प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो इस चीज के बारे में ना सोचे, लेकिन उनका जो माइंड है ना, वो बहुत ज्यादा शार्प है, सबसे ज्यादा शार्प है। एक तरह का आप समझ लो कि अब जो जितने भी बच्चे आ रहे हैं, वो एआई एकदम उनमें लगा हुआ है डिवाइस।
1: मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे टाइम पर ना, हमें फिजिकली और मेंटली इतना टफ बनाने के चक्कर में ना, हमारे दिमाग को वो सोल्यूशन बेस्ड टेक्निक्स सिखाई नहीं गई। आजकल के बच्चों के पास, हम कहते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा लग्जरी दे दी है, इनको बहुत ज़्यादा हाइप दे दी है, इनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन दे दी है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी आ रहा है कि हाँ मैं मानती हूँ उनको बहुत ज़्यादा लग्जरी दे दी है, उनको काउच पोटेटोज बना दिया ये वो, लेकिन उनका थिंकिंग का जो पैटर्न है ना वो डाइवर्ट होके सोल्यूशन बेस्ड हो गया. अब हमारा जो था हमारा सर्वाइवल मोड पर था, हम सर्वाइवल मोड पर चलते थे.
0: अभी भी सर्वाइवल मोड पर हम अभी आप ज्यादातर मुझे देखो कुछ लोग इतने ज्यादा मतलब अभी कुछ जो सक्सेसफुल हो चुके हैं वो अपने आप को मतलब उनके थिंकिंग अभी चेंज हो चुकी है. ठीक है कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया, जबकि वो सब चीजें जो है ना एक भ्रम है. हम लोग एक भ्रम में जी रहे हैं हमने सब कुछ पा लिया ऐसा नहीं है. अभी भी हम सर्वाइवल मोड पर ही हैं. हम अगर अपने आप की अपनी तुलना अगर हम जेन जी या जेन अल्फा से करें तो हम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है जनरेशन में.
1: ये बात मैं मानती हूँ. अब मैं अगर देखूं रेशो देखूं ना तो आज का मैं एक वो पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन मैंने फिर एक रिसर्च पढ़ी और वो रिसर्च ये कहती है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना ये जो 20 से 30 साल वाली एज है ना इनकी, ये उसके अंदर पैसा छाप रहे हैं भाई. अच्छा आज के दौर में तो पैसा सब कुछ चल रहा है ना, तो इंसान की सक्सेस को पैसे से नापा जाता है, तो वो पैसा छाप रहे हैं. और हमारे दौर में एक आता था कि अच्छा जब तुम अपने 30 क्रॉस करोगे 40 तक पहुंचोगे तब तुम स्टेबल होगे. ये ऑलरेडी उस लिहाज से स्टेबल चल रहे हैं.
0: हमें तो ये सिखाया जाता था जितने मोस्टली मैं जैसे मिलेनियल्स की बात करूँ आप और हमें ये सिखाया जाता था कि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे और आपकी एक अच्छी जॉब लगेगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपकी लाइफ जो है ना वो सेट हो जाएगी. किसी ने हमें बाहर की दुनिया के बारे में बताया ही नहीं.
1: अरे भाई
0: वो तो हमें बाद में आके पता चला कि ये सब चीजें बहुत ईजी नहीं है.
1: लेकिन हमने जो है आगे वो कहते ना वो टाइज कट किए, हमने अपने बच्चों को ऐसा दिया है माहौल के इंशाल्लाह जो हम नहीं कर पाए वो करेंगे इंशाल्लाह, झंडे गाड़ेंगे
0: इंशाल्लाह वो करेंगे. अभी आज की जो जेन जी है आप उसको देखो फिटनेस पे कितना ध्यान रखते हैं.
1: अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं. बात सारी ये कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आप दूसरों को क्या ही तवज्जो दोगे, दूसरे तो बाद में आते हैं. तो ये बात तो
0: ठीक है, थोड़ा सा गैप है, लेकिन ये है कि देखो हम अपनी जगह पे ठीक है.
1: उनका तरीकेकार बड़ा डिफरेंट, बड़े
0: बस थोड़ा सा फर्क हो गया है. चलो कोई नहीं,
1: हमें ये बताया जाता था, हमें ये सिखाया जाता था कि शुगर कोट करके पेश करो ना चीजों को, थोड़ा मतलब किसी को बुरा ना लग जाए, इसका ख्याल रखो उसका ख्याल रखो, चाचू का मामू का पुप्पी का फलाने का कजन का इसका ख्याल रखो फिर बात करो. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहते हैं ये लोग हमारे आगे बिल भरेंगे खली बल्ली, ये थोड़ी रह रहे हैं हमारे साथ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ आजकल के बच्चे ये कहते हैं. कहते क्यों?
0: एक चीज है
1: जी
0: जेन जी हमारी जनरेशन मिलेनियल्स जिनको बोलते हैं उनके बिना अधूरी है.
1: हमने ही तो उन्हें मॉडिफाई करके आगे किया भाई. कहीं ना कहीं हमारा डीएनए है ना इनके अंदर, तो हमने मॉडिफाई करके आगे हमने अपना अपग्रेडेड वर्जन दिया है.
0: जी बिल्कुल आपकी बात एकदम सच है,
1: ये हमारा अपग्रेडेड वर्जन है, जो हम नहीं कर पाए ना ये वो कर जाएंगे.
0: जी कर रहे हैं बहुत सी जगह चीज जगह पे देख रहा हूँ मैं, वो लोग वही कर रहे हैं.
1: इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको सबकी औलाद को सबको अच्छा रखे. हर किसी का अपना एक एरा होता है और उस एरा के मुताबिक ही जीना पड़ता है, वरना तो इंसान खुश भी नहीं रहता. अच्छा भाई ये बताएं शोएब चाचू गेम खेलेंगे शोएब चाचू
0: जी, कोई किस तरह का गेम होगा मैम?
1: भाई देखें ये वो वाला गेम है, चाची वाला गेम नहीं है. चाची तो हर चीज में यस यस मांगती है. हमने कहा है ना आपने यस बोलना है, ना आपने नो बोलना है, ना आपने हम बोलना है. हाँ ना हम और पॉज नहीं लेना, ठीक है?
0: ओके मैं समझाने दोबारा समझाइए.
1: बहुत सिंपल है, एक मिनट आपको मिलेगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, रैपिडली सवाल पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है?
0: अच्छा बस ये समझ गया मैं, रैपिडली ये करना
1: बस आपने हाँ ना हम और पॉज नहीं लेना कहीं पर भी, जल्दी जल्दी जवाब देते जाने, लेकिन हाँ ना नहीं बोलना आपने.
0: ठीक है मैं समझ गया, रैपिडली क्वेश्चन, चलिए ठीक है
1: ठीक है. और अब से नेक्स्ट सवाल जो भी होगा वो गेम का हिस्सा होगा. 1 2 3 टाइम स्टार्ट्स नाउ. तैयार हैं?
0: यस मैम.
1: यस क्यों बोला आपने? यस क्यों बोला? पहले सवाल पे अटक गए आप. मैंने कहा था यस नो नहीं बोलना, तो मैंने आपसे कहा इसके बाद जो सवाल होगा वो. अरे भाई पहला सवाल में फंस गए.
0: हाँ मैं फंस गया, मैं समझा ही नहीं मैं बात.
1: यही तो बात थी, यही तो बात थी सारी.
0: यस और नो में जवाब देना है ना?
1: यस और नो में जवाब नहीं देना. नहीं देना जवाब यस और नो में. यस, चले एक और दफा समझाती हूँ, एक और दफा समझाती हूँ, ठीक है. आपको मैं सवाल दूंगी, आपने ना नहीं बोलना यानी कि नो नहीं बोलना, यस यानी कि हाँ नहीं बोलना,
0: ओके
1: में भी जवाब नहीं देना, पॉज भी नहीं लेना, ठीक है. एक और दफा ट्राई करते हैं, चले चले एक और दफा फंसाते हैं आपको. चले 1 2 3 योर टाइम स्टार्ट नाउ. आप कॉन्फिडेंट हैं?
0: जी.
1: डर लग रहा है?
0: बहुत ज्यादा.
1: आप मुझे सुन सकते हैं?
0: आपसे ज्यादा.
1: मेरी आवाज क्लियर आ रही है?
0: हाँ.
1: बोल दिया हाँ, बोल दिया हाँ.
0: साफ बोला? नहीं हाँ नहीं बोला मैंने. साफ
1: हाँ बोला था? नहीं हाँ बोला था.
0: नहीं सच में हाँ नहीं बोला मैंने, बोला
1: अच्छा,
0: साफ.
1: अच्छा, आपको सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा है?
0: साफ.
1: आपको रूल्स याद है?
0: हाँ.
1: फंस गए. हाँ इतना बड़ा हाँ, पांच सवाल मत फंस गए. हाँ हाँ बोले. चलिए पांच सवाल भी गुड, नॉट बैड नॉट बैड. चले भाई पांच सवाल गुड हो गया, गुड हो गया, नॉट बैड नॉट बैड. चले भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें. इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है, बात होती है. अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज.
1: अच्छा भाई साथियों, अगर आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं गेम में और हमारे मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, मुद्दा ये चल रहा है कि जरा बताएं अपनी यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे. 4434377 इज द नंबर टू कॉल. 4434377 इज द नंबर टू कॉल. और चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं 6662107 पर. देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी. कौन है हमारे साथ?
2: मुबशर बात कर रहा हूँ.
1: मुबशर भाई कैसे हैं आप? ठीक

0: बताएं विंटर वेदर कैसा गुजर रहा है?
1: बिल्कुल ग्लव्स पहने हुए हैं मैंने, इतनी मुझे सर्दी लग रही है इस टाइम.
0: मोशन भाई ये सेट है, मैंने ग्लव्स पहने हुए मोशन.
1: आपने अभी पता है क्या काम किया?
0: हाँ जी.
1: मेरे कजन है वो पाकिस्तान में इस टाइम पे नरान का गान जा रहे हैं.
0: अरे भाई
1: थोड़ी देर पहले मुझे उसने वीडियो कॉल की और मुझे दिखा रहे, कहता बहुत अच्छा मौसम है, कहते तुम्हारे पास कितनी अच्छी सर्दी जा रही है. तो मैंने बोला मैंने ग्लव्स पहने में इतनी सर्दी है.
0: हम देखिए उनके ग्लव्स में और हमारे ग्लव्स में फर्क होता है. उनके ग्लव्स सर्दी से बचाने के लिए होते हैं, हमारे ग्लव्स यूवी रेस से बचाने के लिए होते हैं.
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है.
0: अच्छा मुबशिर भाई पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगी, जरा बताएं डिबेट का शौक है आपको?
1: बिल्कुल मुझे बहस करने का बहुत ज्यादा शौक.
0: मुबशिर भाई फिर तो आपको जो है ना आपको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है. चले आपको कॉन्टेक्ट करेंगे हम बाद में. मैं लोग ढूंढ रही हूँ डिबेट के लिए, तो अच्छी डिबेट जो कर सके ना. चलें आपसे इंशाल्लाह डिबेट के मामले में बाद में बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल ये बताएं मुद्दे पर आते हैं. तो मुद्दा हमारा ये चल रहा है, जरा मुझे ये बताएं कि अगर आप अपनी यंगर सेल्फ से मिलते तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देते?
1: मैं अभी अगर सिचुएशन पे देख के चलूं तो मैं यही एडवाइस देता कि भाई किसी पे बिना आंखें बंद करके आपको इतबार नहीं करना चाहिए. और जो किया है वो गलतियां थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे कभी भी नहीं होगा. और हाँ बस आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए.
0: अरे भाई ये भाई सारी एडवाइस ऐसी वाली क्यों दे रहे हो जो मैं रोज अपने आप को देती हूँ. रोज मैं ये काम करती हूँ.
1: लाइफ इस टाइम पे असल में एक वो दौर इस तरह का चल रहा है कि सबकी जो लाइफ है वो एक ही पटरी पे सीधी सीधी जा रही है. कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, कुछ अप एंड डाउन होगी, वरना सब एक ही लाइन में फंसे हुए हैं.
0: मुबशिर भाई कितनी अजीब बात है, मुझे आपसे बात करके ना एकदम से दिमाग में बात आई कि कितनी अजीब बात है कि हम सब अपने आप को यही एडवाइसेस देते हैं यूजुअली, लेकिन फिर वो शख्स कौन है जो सही चल रहा है? अगर हम सभी एक ही एडवाइस दे रहे हैं अपने आप को, मतलब हम सब गलत चल रहे हैं.
1: असल में रीजन ये है कि हम सब गलत नहीं चल रहे. जब हम वो सुना ही आपने इंसान ठोकर खा खा के ना सीधे चलना शुरू हो जाता है, तो फिर वही सीधे चल रहा था जिन्होंने जिंदगी में ठोकरें खाई भी होती, तो वो सामने सेट नहीं आ रहे होते कि भाई यार हमने इतनी ठोकरें खाई भी है, हम क्या ही किसी को बोले कि भाई हमने जिंदगी में ये कारनामे सर अंजाम दिए हुए.
0: चले मुझे आज बड़ा मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अपने साथ, अपनी जात के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट, एक और नया कॉन्फ्लिक्ट आ गया मार्केट में. चलो भाई
1: जी.
0: मतलब ये कि सबकी एडवाइसेस एक जैसी निकल रही हैं जो हम लोग अपने आप को दे रहे हैं, तो मतलब आधी दुनिया ऐसी चल रही है क्या भाई, क्या हो गया है? इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स हो गया सब कुछ. चले भाई मुबशिर भाई आगे बढ़ेंगे और एडवाइस के साथ साथ गेम भी खेलेंगे, ठीक है? गेम ये है कि आप गेम जो है ना ये है कि एक मिनट आपको दिया जाएगा, एक मिनट के अंदर अंदर आपने आपको सवाल फेंके जाएंगे आपकी तरफ रैपिड फायर, ठीक है? तो आपने करना ये है कि आपने उन जवाब जो है

0: जी जी बिल्कुल।
1: अच्छा जी, आपका पहला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि मैं आपको एक गेम जीतने दूंगी?
0: आप ट्राई कर सकती हैं।
1: अच्छा जी, आप जीतना चाहते हैं?
0: मैं ये ट्राई कर सकता हूँ।
1: आपको गेम समझ में आ गया?
0: हाँ मुझे समझ आ रहा है काइंड ऑफ।
1: अच्छा आपने हाँ बोल दिया?
0: नहीं मैंने आखिर में काइंड ऑफ भी बोला।
1: नहीं ना हाँ तो बोल दिया, सेंटेंस में आना ही नहीं चाहिए था। अरे भाई सेंटेंस में आना ही नहीं चाहिए था।
0: आपने यस नो बोला ना।
1: मैंने ये नो हाँ नहीं, मैंने सब कुछ बोला था। मैंने ये सारा विद इंग्लिश एंड विद उर्दू बोला था।
0: अच्छा इंग्लिश उर्दू में भी जाना
1: था। हाँ ना तो मैंने बोला हाँ नो यस, ये चीजें नहीं बोलनी। चले कोई बात नहीं, अभी के लिए हमने तीन पता नहीं चार सवाल हमने सही बोले, तो नेक्स्ट कल फिर से ट्राई करेंगे। क्या कहते हैं, नेक्स्ट फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है कल?
0: ठीक
1: है। चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आपसे बात करिए लगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी चलते हैं एक और कॉलर की तरफ, जो जो हमें कॉल करना चाह रहा है वो कॉल कर सकता है। 4434377 इज द नंबर टू कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। केड़ी गल चलदी पई है भाई? गेम दा
1: गेम जेकी आ अज एड़ी गेम आ, तो ताके हां भी ना चेणवा ना भी ना चेणवा, ताके एड़ी गेम खेलनी आ तो ताके हां या ना ना गलाइनवा पांच सेंटेंस में।
2: ओ मैनू पता सी, चलो आगे चलो।
1: अब पंजाबी आ गई, पंजाबी में मैं बहुत बुरी हूं, मुझे अफजी आती है पंजाबी की।
2: बुरी नहीं हो तुम, बड़ी चंगी। और गल के चालू करो पहले बात।
1: अच्छा भाई है कौन हमारे साथ अभी? है कौन हमारे साथ? रईस भाई। रईस भाई आपके साथ ना लैंग्वेजेस में नहीं जीत सकती मैं। देखें ये वाला गेम ना खेलें, अभी डच बोलना शुरू हो जाऊंगी मैं।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं भैया, ये बांधे जीतने आते हैं ना थोड़े थोड़े कि फिर वो जवाब नहीं दे पाएगी, बहुत इसमें फिर बहस हो जाएगा ये।
1: अच्छा भाई रईस भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
1: रईस भाई पहला सवाल
2: आज उस पे था, अभी मैं थोड़ा सा असल में गाड़ी पे बैठा था लाइन में तो नींद थोड़ा आ गया था, मैं अभी नहीं सो था, अभी एक भाई से शायद कुछ कर रहा था कि हाँ ना नहीं कहना, मैं बोला यार चलो मैं ये लगा लेता हूं कॉल।
1: देखिए हम आपको जगाने के लिए तो बैठे हुए, आपको एंटरटेन करने के लिए बैठे हैं भाई।
2: बिल्कुल एंटरटेन होता रहता है, थोड़ा सा सुन बात कर लेते हैं तो मजा आता है सुनने के।
1: अच्छा रईस भाई पहले तो मुद्दा हमारा ये चल रहा है कि जरा बताएं, अगर आप अपनी यंगर सेल्फ से मिलते हैं, अपने आप से लेकिन एक यंगर वर्जन में मिलते हैं, तो अपने आप को क्या एडवाइस देंगे?
2: अरे भैया कहाँ, हम तो सुने भी नहीं, आज हमको तो फंसा रहे हो।
1: नहीं नहीं नहीं एक सवाल है, सवाल है आपसे, आपसे नॉर्मल सवाल है।
2: आप पुराने उसमें लेके जा रहे हो।
1: हाँ हाँ अपने आप को आप क्या एडवाइस देंगे ये बताएं जरा। गेम तो हम बाद में खेलेंगे ना, पहले तो बताएं अपने आप को एडवाइस क्या देंगे।
2: भैया एडवाइस देंगे कि हम बड़ों की इज्जत करें, और जो अगर हमारे लिए जो हमारे मफाद के लिए कोई रास्ता दिखा रहा है तो उसकी कदर करें, और अपने फ्यूचर के लिए कुछ मतलब ऐसा अपने लिए अपने अंदर स्किल मतलब पैदा करें कि तो ताकि मतलब हमारे अंदर तालीम तो फर्स्ट है, तालीम भी हाँ, और उसके बाद में अपने अंदर कुछ ऐसा स्किल को डेवलप करें कि ताकि हमारे फ्यूचर में हमारे काम आवे, और फिर हमको मतलब उसका जरिया बन के हमारी रोजी रोटी अल्लाह ताला उसके जरिए ये करे, हम तो यही कहेंगे। और तालीम सबसे जरूरी है कि तालीम को भी हम ख्याल करें, तालीम अगर नहीं है तो फिर आदमी एक अंधे के मानिंद है दुनिया में, कि जिस तरीके से आप दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं।
1: सही।
2: तो तालीम जरूरी है, तालीम को मतलब, और हम अपने पहले बात की मतलब जो अच्छे लोगों के साथ उठा बैठ करें, हम बुरे लोगों के सोहबत से बचें, खासकर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ता है वो बहुत तालीम याफ्ता लोग भी बुरे लोगों के सोहबत से बिगड़ जाते हैं। तो मैं यही ये करूंगा अपने आप को भी और अपने सुनने वालों को भी, मतलब कि जो है बुरे लोगों के सोहबत से बचें,
1: सही,
2: अच्छे लोगों के सोहबत में बैठें ताकि वो आप ये मतलब वही है कि लाख मतलब ये हो जाए तो खुशबू आपके कपड़े में छोड़ जाए, और ऐसे के साथ में ना बैठें कि मतलब जो आपके कपड़े को जला दे।
1: सही।
2: तो ये सब चीजें बहुत अहम है कि मतलब हमें फैसला मेन चीज है कि मतलब अपने अंदर इखलाक और बड़े छोटे की कदर ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और कोई अगर बात कर रहा है तो उसकी बात को ख्याल से हम सुने, बीच बीच में बोलना और ये सब करना हर जगह अपनी बात को करना ये सब अच्छी बात नहीं है।
1: चलें भाई, ये तो ग्रोसरी लिस्ट हो गई।

0: रईस भाई ने इतनी लंबी चौड़ी मैंने एक एक एडवाइस बोली थी, रईस भाई ने पूरा पलंदा खोल दिया पूरी। रईस भाई इसके ऊपर तो पूरी थीसिस लिख दी जाएगी,
1: आरजे बन जाएंगे हम,
0: पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी अभी बैठे बिठाए,
1: आरजे बन जाएंगे
0: भाई, हमारी रोजी रोटी मिला लग जाएगी भाई इतनी लंबी चौड़ी।
1: अरे नहीं यार, दुनिया बहुत बड़ी है,
0: रईस भाई को तंग कर रहे।
1: हम सोचते थे ना, पहले हम लोग सोचते थे कि यार एक दुकान खुला है तो हमारे बगल में किसी ने खोल दिया तो हमारी हमारा मतलब, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला उसी हिसाब से दुनिया में कस्टमर जिस तरीके से जरूरी
0: है। ये अरे भाई मार्केट वाले बंदे आप, सेट मार्केट वाले बंदे आप, मार्केटिंग वाले, ये जो सोच रखता है ना बंदा कि भाई जो दुकानें चाहे 36 खुल जाए
1: वो मिलेगा जी।
0: अरे भाई ये
1: जरूरियात बढ़ता है और फिर एक कंपटीशन बनता है कि यार चलो मतलब वहाँ पे मार्केट, अब ये सोचे कि हम अकेले दुकानदार बन के बैठे रहे,
0: बिजनेस माइंड चल रहे हैं रईस भाई, बिजनेस माइंड
1: जी।
0: रईस भाई चलें गेम की तरफ आते हैं, ठीक है, एक मिनट दिया जाएगा आपको और उस एक मिनट में आपने करना ये है कि यस नो यानी कि हाँ या ना, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो उर्दू में हो, और हूँ भी नहीं बोलना और जल्दी जल्दी जवाब देना है, पॉज नहीं लेना लंबा, ठीक है। अब आपकी नींद उड़ाते हैं हम, इसके दिमाग इस्तेमाल कर, दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, हाँ ना चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो उर्दू में हो, नहीं बोलना हूँ भी नहीं बोलना,
1: फारसी में बोल सकते
0: नहीं, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, कोई नहीं कोई नहीं, फारसी नहीं आती मुझे, चले अगर बोल भी तो मुझे समझ में ना आएगा क्योंकि मुझे फारसी नहीं आती। चले भाई चले आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम शुरू होता है अब
1: जी।
0: आप जीतना चाहते हैं?
1: कोशिश करते हैं इंशाल्लाह।
0: आप हारना नहीं चाहते?
1: क्यों हारेंगे?
0: अच्छा आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे?
1: कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी तो बस हमारा, अगर हम कोशिश करेंगे तो कामयाबी हमारा कदम चूमेगी जरूर।
0: अच्छा जी, आपको ये पूरा भरोसा है कि आप जीत जाएंगे?
1: कोशिश कर रहे हैं भैया, आपके साथ में बहस और मुबाहसा चलते रहेगा तो हो सकता है कि आप हार जाएं।
0: अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि मैं आपको फ्रेम करने की कोशिश कर रही हूं कि आप किसी तरह से हार जाएं?
1: कोशिश तो कर रही हैं आप, घुमा फिरा के हमारे सर पे थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद हमें पता है गेम का ये सारा शेड्यूल तो हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आप कोशिश कर रही हैं बेहतरीन, आपका अंदाज सही है, आपको घुमा फिरा के हमारे सर पे पहनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद आज मैं हो सकता कुछ कामयाब हो जाऊं।
0: अच्छा आपको लगता है कि मैं आपको फंसा लूंगी गेम में? आप क्या
1: फंसाने की कोशिश तो कर रही हैं आप, लेकिन हो सकता है कि मैं ना फंसूं।
0: अरे भाई तालियां तालियां, वेरी गुड वेरी गुड रईस भाई, वेरी गुड वेरी गुड भाई। चीजें चल रहे हैं क्या, मतलब कौन से स्कूल से प्रैक्टिस कर आए थे?
1: सारी तालीम यफियम 107 का ही ये दिया हुआ है सारा चीज, और खास कर हाँ आपकी अब नाम नहीं लूंगा, उनका भी बहुत बड़ा मतलब था कि वो भी बड़े उर्दू की माहिर थी, अब आप समझ गई होंगी माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता था।
0: जी हाँ
1: जी बिल्कुल, बहुत हम मिस कर रहे हैं, वो कहाँ चली गई, अब कभी कभार तो आना चाहिए, कभी कभी मेहमान बन के आ जाए, हम लोग उनको मिस करते हैं। जी बिल्कुल
0: आपका मैसेज पहुंचा दिया जाएगा इंशाल्लाह रईस भाई।
1: जी इंशाल्लाह हमारे तरफ से सलाम और आदाब बोलना उनको,
0: आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें।
1: ओके सलाम अलैकुम,
0: अल्लाह हाफिज। तो भाई साथियों आज हमारा गेम ये चल रहा है कि आपने मुझे यस और नो स्किप करके जवाब देना है, यू कैन नॉट से यस यू कैन नॉट से नो, चाहे वो उर्दू में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, ठीक है। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
2: काशिफ।
0: काशिफ काशिफ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है काशिफ हमारे पास पहली दफा कॉल करें, मुझे एटलीस्ट मेरी एटलीस्ट आपसे पहली दफा बात हो रही है,
2: मैं भी पहली बार हो रही है, सुबह बात हुई थी लेकिन सुबह शायद आप नहीं थी।
0: हाँ सुबह नाजिया थी, नाजिया
2: मेरा कॉल किस्मत इतना खराब है ना कि मैं 10 बार भी ट्राई करूँ ना तो मेरा कॉल नहीं लगता।
0: ऐसे तो ना कहते ऐसे, ए भाई हर चीज हम किस्मत के ऊपर क्यों डाल देते हैं? कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं हम कि चले शायद किस्मत में कुछ अच्छा था तब नहीं लगी। कुछ कुछ यू नेवर नो यू नेवर नो.
2: बंदा एक चीज ट्राई कर रहा है और वो नहीं हो रही है, तो फिर उसके ऊपर कैसे कह सकता है बंदा कि अच्छा हुआ है.
0: काजी भाई मसला पता है क्या होता है, इंसान का अब कैसे समझाया जाए, इंसान की आंखों के आगे ना एक पर्दा है, उस पर्दे से हटकर वो देख नहीं सकता और उस पर्दे के पीछे क्या है वो वजूहात होती हैं. कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ट्रैफिक में लेट हो जाता है, कभी हमें ऐसा होता है खाना लेट मिलता है, कभी कुछ एक्स वाई जेड चीज़ें ऐसी होती हैं. फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में आप लेट हो गए, ठीक है, एक बड़ी यूजुअल सी मिसाल जो मैं अपने आप को देती हूँ तसल्ली के लिए, ट्रैफिक में मैं लेट हो गई और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर मैं लेट हो गई हूँ, मैं अगर 5 मिनट पहले उस रोड पर होती तो जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसकी बजाय मेरी गाड़ी ऑन द ट्रैक होती. ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मैंने 5 मिनट 2 मिनट के गैप से अपनी आंखों से देखा है और वो दिन मेरे लिए इतना बड़ा आप कहें 360 टर्न था ना मेरी सोच का, कि मैंने कहा अभी ये जो हादसा हुआ है, अगर मैं जो इतनी गाड़ी दौड़ा रही थी और आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, ये तो कुछ सेकंड्स का मामला था भाई, ये कुछ सेकंड्स का मामला था, कुछ मिनटों का मामला था और मैं इसकी जगह पर होती. तो उस दिन के बाद से मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि भाई ये जब मैं जो मैं सोच रही होती वो होता क्यों नहीं है.
2: ये तो अक्सर होता है ना.
0: तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं. देखें आपकी सफा से बात होनी थी, सफा से ऑन अ वेरी लाइट नोट, तो आपकी सफा से बात हो गई. फिर आपकी कॉल उस वक्त इसलिए लगी क्योंकि नहीं लगनी थी.
2: आरजे नाजिया से बात
0: हुई. आरजे नाजिया, अच्छा बात हो गई थी आपकी नाजिया से.
2: हां सुबह हुई थी.
0: हां तो फिर हो गई थी ना बात. अच्छा अभी की बात, चलें अभी बात हो गई. अरे क्या पता आपसे कोई अच्छी सी एडवाइस सुननी थी मैंने तभी. अब हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया है तो मैं मुद्दे पर आती हूँ, ठीक है काशी भाई. मुद्दा हमारा ये चल रहा है आज का कि मुझे बताएं, अगर इफ यू मीट योर यंगर सेल्फ व्हाट पीस ऑफ एडवाइस विड यू गिव टू योर सेल्फ.
2: मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि बचपन में जो उम्र है वो जो उम्र गुजार आए हम लोग, वो उम्र बड़ी नादान सी है. उसमें जब भी हमें कोई एडवाइस देता है या कोई बड़ा हमें समझाने की कोशिश करता है तो वो चीज़ हमें बड़ी बुरी लगती है कि यार ये शायद से मेरे ऊपर पाबंदी लगा रहा है.
0: सर के ऊपर से जहाज घूम जाता है ना, समझ में नहीं आती. सर के ऊपर से जहाज घूम जाता है, उनकी बात समझ में नहीं आती.
2: नहीं नहीं मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि वो जो एज गुजर चुकी है उसमें नादान सी उम्र है, उसमें हमें जब भी कोई बड़ा कोई एडवाइस देता है या कोई अच्छी बात बताता है या कुछ रोक टोक करता है तो वो चीज हमें बड़ी बुरी लगती है.
0: हाँ.
2: वो जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी अपने छोटे भाई को कोई चीज बोलता हूँ कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बताता हूँ तो वो बड़ा अजीब सा रिएक्ट देता है.
0: सही.
2: वो चीज बताऊँ की यार वो गलत था.
0: सही.
2: ये ऐसे नहीं करना चाहिए. अभी मेरा मशवरा ये एडवाइस यही है उन लोगों के लिए कि भाई जो आपको को बता रहा है अच्छी बात बता रहा है, अच्छा काम दिखा रहा है, सुने आप उसकी माने उसकी, वो आपको गलत नहीं बताएगा इंशाल्लाह.
0: सही सही सही सही सही. चलें भाई ये एक अच्छी बात हो गई, दूसरों की बातें सुन लिया करो, एडवाइस सुन लिया करो बड़ों की.
2: मानो ना मानो वो अलग चीज है.
0: सही
2: करो आप बेशक अपनी, लेकिन एक बार उनकी बात सुननी चाहिए, क्या वो अच्छी बताएंगे आपको, जाहिर सी बात है.
0: चले जी.
2: स्पेशली तौर पर बड़ा भाई हो गया या फिर डैडी हो गए, क्योंकि इन लोगों की बातें जो है ना वो चुप जाती हैं यार, कि शायद ये मेरे ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, मुझे कैद कर रहे हैं.
0: ये तो है, ये बात तो मैं मानती हूँ. वो टाइम बस कुछ नादानी का होता है.
2: हाँ बस वो तो अब नहीं सुनी तो आज हम भुगत रहे हैं.
0: चले मैं दुआ करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह एवरीबॉडी लर्न्स देयर लेसंस. Sometimes some people learn it the hard way, some people learn it the easy way. अब हम क्या करें, हम hard way learn करने वाले लोगों में से. तो चले भाई काशी भाई, मैंने आपके साथ गेम खेलनी थी लेकिन बस टाइम इतना थोड़ा सा रह गया कि गेम खेली नहीं जा सकती इस वक्त. तो इंशाल्लाह कल आप कोशिश कीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी कॉल मैं रिसीव करूँगी, फिर गेम खेलेंगे. ठीक है, आप सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.
2: अल्लाह हाफिज.
0: तो साथियों मेरा जो है वो जाने का टाइम हो गया. जाने से पहले मैं शो को इस बात पे कंक्लूड करना चाहूँगी कि आज के जो हमारा टॉपिक था ना उसको ऐसे कंक्लूड करूँगी कि भाई पास्ट को चेंज नहीं कर सकते लेकिन उससे सीख कर फ्यूचर को ज़रूर बेहतर बनाया जा सकता है. जो एडवाइस आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहते थे ना, शायद वही एडवाइस आज के आपको भी चाहिए. इसीलिए टेंशन कम करें, खुद पर ट्रस्ट ज़्यादा करें और ज़िंदगी को थोड़ा सा انجوائے کر کے جئیں. سب سے زیادہ خیال اپنا رکھیں, کیونکہ جو اپنا خیال نہیں رکھتا وہ دوسروں کا کیا ہی خیال رکھے گا. تو بھائی میری طرف سے آئی ایم سائننگ آؤٹ. سنتے رہیں FM 107.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107
2: टाइम चेक। हां जी, टाइम चेक। FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 1:01।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हां जी हबीबी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 के इस खास शो द समर स्पोर्ट्स में, जहां पर आपको स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। और ये स्पोर्ट्स की खबरें, आज क्या मैच हो रहे हैं, उसके अलावा कहां कहां आज फुटबॉल के मैचेस होने हैं, क्रिकेट कहां होना है, क्या कुछ हो रहा है, या फिर जो मैच आधे चल चुके हैं या टेस्ट मैच में 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तो उसके बाद के हिसाब किताब क्या हो रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है गेम में, सारी जानकारी FM 107 के इस में, यानी कि आपको स्पोर्ट्स समर स्पोर्ट्स में मिलती है। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले होता है सवाल समर स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम में। और आज का सवाल, मुझे लगता है कि आज का सवाल भी बड़ा आसान होगा। 2 हफ्ते पहले, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले, एक सवाल आपसे पूछा था 2026 के फीफा को लेकर, आज है 2022 के फीफा को लेकर। वेल, कई लोगों को इसका जवाब उम्मीदन पता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था हमारे खूबसूरत मुल्क यानी कि कंट्री कतर में हुआ था। और आज जो है हम सवाल इसी से रिलेटेड करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल जो है मुझे लगता है आसान है, उम्मीद है जवाब आज आप दे पाएंगे। सवाल ये कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता था? 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता था, यह आपको बताना है। नंबर है 6622107, 6622107। बड़ा आसान सा ये सवाल है और मुझे लगता है कि इसका जवाब आप दे पाएंगे। 2022 में फीफा गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? नंबर 6622107, इसका जवाब आपको देना है। और आज बाकी खबरें भी हम लेकर आए हैं, जैसे कि क्रिकेट के दी 100 2026 में क्या कुछ चल रहा है। वेल, ये बहुत ही यूनिक गेम है दी 100, जैसे T20 गेम आया ना कि 20 ओवर का गेम होगा जहां पर टीमों को स्कोर करना है, 3 घंटे की लिमिट होती है, लेकिन दी 100 अलग तरह का गेम है। यहां पर टोटल 100 बॉलें फेंकी जाएंगी, 100 बॉल में कितने रन बना पाती है एक टीम, फिर उसको चेज करने के लिए अगेन दूसरी टीम को 100 बॉल में चेज करना है। पावर प्ले जो है वो 25 बॉलों का होता है। ये भी एक खेल है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक ओवर में 5 बॉल यहां पर फेंकी जा रही है और 25 बॉलों का पावर प्ले। कुछ यूनिक इंक्लूड करने की शिद्दत से कोशिश की गई है, लेकिन आई फील कि यार इसको 20 बॉल और बढ़ा लो, T20 ठीक था। उसके अलावा नेशनल चैंपियंस कप चल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग में क्या कुछ हो रहा है, और फिर लीग 2 में अफ्रीका क्वालिफायर्स, और फिर हम फुटबॉल के लिए बात करेंगे प्री सीजन एंड डोमेस्टिक लीग्स के बारे में, और

खैर आपको आखिर में मिलेगा जवाब कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला, किसने जीता। नंबर 666-221-07। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बातचीत दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. टॉप 10 काउंटडाउन. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 PM से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं.
2: सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
3: हाँ जी हबीब एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे और ये शो समर स्पोर्ट्स जहां पर स्पोर्ट्स की आपको तमाम खबरें मिलती हैं. वेल शुरू करते हैं आज क्या कुछ है स्पोर्ट्स की दुनिया में, लेकिन उससे पहले एक बार सवाल जो है वो फिर से कर लेते हैं. सवाल ये कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला था, ये आपको बताना है.
2: सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
3: होना तो आसान चाहिए, बाकी जवाब पर डिपेंड करता है. देखते हैं सबसे पहले ये मैसेज किसका है. फलाने के कैप्टन एहतराम साहब ने जवाब तो नहीं लिखा लेकिन लिख दिया कि फलाने के कैप्टन. ऊपर नाम लिखने की ठीक है ओके. ये नाम इसको माना जा सकता है, ये नाम माना जा सकता है ठीक है. फिर फज्जू भाई सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई. फलाने ने गोल्डन बूट जीता था ये कहना है KM खान का. ओके बहुत ही उम्दा. फजील आई डिडंट सर्च इंजन आई जस्ट आंसर इट. यूसुफ भाई मैं आपसे ये उम्मीद तो कर ही सकता हूँ इतने दिनों के बाद कि सर्च इंजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. और देखिए क्या फेयर प्ले में ही मजा आता है, नहीं पता तो नहीं पता ना, एक्सेप्ट कर लो, खत्म हो गई बात कि भाई मेरे को आइडिया नहीं है. जैसे मुझे लगता है यूसुफ भाई को जब जब नहीं पता हो तो सिंपल बोलते हैं नहीं पता. काहे के लिए उंगली का मेहनत करके अपने आप को हीरो दिखाना है कि नहीं देखो हमें पता है, जबरदस्ती सर्च इंजन कर लेते हैं. तो यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है. 2022 के फीफा में गोल्डन बूट अवार्ड फलाने को मिला था. ये फलाना कोई नाम नहीं है, जिनको नहीं पता है पता चला, फुटबॉल नहीं फॉलो करते हैं सोच रहे होंगे अरे फलाना भी नाम होता है. फलाना कोई नाम नहीं है. Just guessing, not sure. यूसुफ भाई आपने सही guess किया है. बाकी गोकू साहब ने भी जवाब दिया. ये गोकू नाम पहली बार सुन रहा हूँ यार. सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, I am Ali from Bangladesh. अच्छा गोकू प्रोफाइल पे लिखा है, कोई और निकनेम होगा, घर में बुलाते होंगे अरे गोकू 12 बज रहे उठ जाओ, हो सकता ये होता हो. लेकिन अली भाई आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, बहुत ही अमदा. फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम कैसे हो भाईजान, मैं बहुत अच्छा हूँ. और दिलबर अली ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट सही जवाब दिया है, बाकी अस्सलाम वालेकुम. फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम फजू भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या हाल. मकसूद साहब आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, खिलाड़ी तो हैं हमें सुनने वाले जो अपने FM 107 के शो यानी कि समर स्पोर्ट्स को सुनने वाले लोग हैं, खिलाड़ी हैं, अच्छा फॉलो करते हैं. वेल जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है मैं उनको एक बार फिर से बता दूं सवाल क्या है. सवाल यह है कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में में किसने गोल्डन बूट अवार्ड जीता था, ये आपको बताना है. बाकी जवाब दीजिए 666-22107 पे. और अब बात कर लेते हैं बाकी चीजों के बारे में, बाकी खेल के बारे में जो चल रहा है. आज के जो ग्लोबल स्पोर्ट्स कैलेंडर में क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है, ये जो सारी चीजें चल रही हैं वो आपको एक एक करके बताते हैं. सबसे पहले दी 100 के बारे में बात कर लेते हैं. आज 30वां मैच है, रेगुलर सीजन का ग्रुप स्टेज अब अपने

आखिरी दौर में है और 16 अगस्त को ग्रैंड फिनाले होने वाला है, आज 11 तारीख है। और आज हेडिंगली यानी कि लीड्स के मैदान में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और सनराइजर्स लीड्स के बीच जोरदार टक्कर है। ये डबल हेडर है यानी मेंस और विमेंस दोनों टीम्स के मैचेस होने वाले हैं हेडिंगली के लीड्स के मैदान पर, ठीक है। सो यहाँ के नाम जो है ऐसे ही है जैसे PSL होता है या IPL होता है, वहाँ के जिस तरह के नाम होते हैं ना उस तरह के नाम डालने की कोशिश की गई है, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और सनराइजर्स लीड्स। ट्रेंट रॉकेट्स ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली है, सो उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब बचे हुए दो जो स्पॉट्स हैं जैसे कि मैनचेस्टर और लीड्स, MI लंदन और वेल्स फायर के जो बीच टक्कर होने वाले है, इसमें डिसाइड होगा कि टॉप फोर में कौन कौन पहुंचेगा। तो ये मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑल्दो दी 100 को इतना ज्यादा मुझे ऐसा लगता है लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो क्रिकेट के जो शौकीन हैं वो तो फिर कैसा भी क्रिकेट चल रहा हो उनके फीड पे आ जाती है, सोशल मीडिया पे आ जाती है, वो अच्छे से फॉलो करते भी हैं, उनको काफी कुछ पता भी है। 100 बॉल खिलाई जाएंगी और एक टीम अगर 100 स्कोर कर लेगी उसके बाद दूसरी टीम को चेज करना है। ऑल्दो ओवरऑल अच्छा है। अब ये ना हो कि कहीं इसको क्रिकेट में ही शामिल कर लिया जाए, T20 हटाकर फिर इसको ले आया जाए, जैसे कि ODI को थोड़ा कम किया गया, T20 को ज्यादा शामिल कर लिया गया, तो ODI का एक अलग मजा है। तो दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं PCB नेशनल चैंपियंस कप के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB का एक नया और बड़ा डोमेस्टिक 50 ओवर का List A टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में है। ये डे नाइट मैचेस जो है वो खेले जाएंगे, लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर के 3 बजे से शुरू होगा। इसमें पाकिस्तान के टॉप स्टार्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान ग्रीन्स, गोल्ड, व्हाइट्स और ब्लूज नाम की 4 टीमें हैं, जिन्हें शादाब खान, शाहीन अफरीदी, सैम अयूब और साहिब ज़ादा फरहान लीड कर रहे हैं। इसका मकसद है 2027 के ODI वर्ल्ड कप के लिए नए खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। और अब जो PCB ने फैसला लिया है, मुझे लगता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा परफेक्ट फैसला है ताकि ODI 2027 के लिए अच्छे प्लेयर्स मिल पाए। क्या है कि डोमेस्टिक के जो गेम्स होते हैं, लिस्ट ए के जो गेम्स होते हैं, उनमें से आप खिलाड़ियों को पिक तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ODI के असली खिलाड़ी कौन है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे इंडिया में आजकल हो रहा है कि T20 के अलग खिलाड़ी हैं, ODI के अलग खिलाड़ी हैं और टेस्ट के अलग खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये तीनों टीमें अलग अलग है। पहले क्या होता था, सहवाग T20 भी खेल रहे हैं, सचिन ODI भी खेल रहे हैं और टेस्ट भी खेल रहे हैं, सेम विथ विराट कोहली। तो अब ये तो स्टार प्लेयर थे भी क्योंकि ये एडजस्ट कर लेते थे अपना गेम। पाकिस्तान में भी ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो अपना गेम एडजस्ट कर पाए अकॉर्डिंगली। तो ये ODI 2027 के वर्ल्ड कप के लिए जो नए खिलाड़ी ढूंढे जा रहे हैं वो इस तरीके से ढूंढे जाएंगे, जहां पर 4 टीमें रहेंगी, पाकिस्तान ग्रीन्स, गोल्ड, व्हाइट्स और ब्लू। अब 4 टीमें हैं, शादाब, शाहीन, सैम और फरहान है जो लीड कर रहे हैं। यहां से अब पता चलेगा असली खिलाड़ी कौन है जो ODI में परफेक्टली 50 ओवर का गेम खेलने के बाद अच्छा 2027 में कर सकता है। तो ये एक खेल है। बाकी UAE वर्सेस कनाडा का आज मैच है। और ये क्या है पहले आपको ये बता देते हैं, ICC वर्ल्ड कप लीग 2 और चैलेंज लीग है UAE वर्सेस कनाडा 2027 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए। ये वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा है। ये मैच स्कॉटलैंड के फोर्थहिल ग्राउंड पर हो रहा है, जहां कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। UAE की बैटिंग शुरू हो भी चुकी है। बहुत ज्यादा कुछ खेल आगे नहीं बढ़ा है फिलहाल। अगर देखा जाए तो 3.5 ओवर यानी कि 3.4 ओवर्स कंप्लीट हो गए हैं। UAE सिर्फ 11 रन बना पाई है, एक भी विकेट नहीं खोया है। यार 4 ओवर खेलने के बाद 11 रन, ये हजम नहीं होता है। अब इसमें खेल ये है कि एक विकेट दो विकेट गिर जाता तो समझ में आता, लेकिन ये यही वाली बात है कि कनाडा ने या तो फील्डिंग बहुत ही गर्री लगा रखी है या फिर UAE के बैट्समैन अभी इतने ज्यादा तगड़े नहीं खेल रहे। 11 बॉल पे 2 रन बना के शर्मा खेल रहे हैं और फिर उस्मानी जो है 11 बॉल पे 8 रन। ओवरऑल कुछ तो मसला चल रहा है। बाकी आर्यन शदीप दोनों को खेल को थोड़ा सा और तेज करना पड़ेगा ताकि कनाडा से इस मैच को जीत पाए, और क्योंकि ये क्वालिफिकेशन मैच है। फिर उसके बाद चैलेंज लीग के बारे में बात करें तो छोटी टीम्स का 50 ओवर टूर्नामेंट चल रहा है। मैच 66 यानी कि 66वां मैच जो है बहरीन वर्सेस सिंगापुर के दरमियान होगा, और जो 67वां मैच यानी 67th मैच होगा चैलेंज लीग में वो हांगकांग वर्सेस युगांडा का मुकाबला उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो सोशल मीडिया पे आपके फीड पे आ ही जाना है। अब बात कर लेते हैं ACA अफ्रीकन क्वालिफायर्स के बारे में। मलावी के ब्लांतार में
T20 मैचेस हो रहे हैं। आज पहला मैच रवांडा वर्सेस जाम्बिया का है और दूसरा मैच होस्ट होगा मालवी वर्सेस जाम्बिया के बीच। लेट्स सी के क्या होता है। वेल अभी तो इसमें बहुत ही खेल जो है वो बाकी है। टेनिस के बारे में बात कर ले, सिनसिनाटी ओपन हो रहा है, यूएस ओपन जो साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है वो शुरू होने से पहले ये एक आखिरी बड़ा ATP मास्टर 1000 और WTA 1000 ज्वाइंट टूर्नामेंट है। सिनसिनाटी ओहायो में अर्ली राउंड के मेन ड्रॉ मैचेस शुरू हो चुके हैं। टॉप टेनिस स्टार यहाँ हार्ड कोर्ट पर अपनी फॉर्म और रिदम वापस पाने के लिए खेल रहे हैं ताकि यूएस ओपन में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो जब मैंने शुरू करा था तो बीच में एक सवाल किया था, एक बार फिर से सवाल रिपीट कर देते हैं ताकि आपको जवाब देना हो तो आप दे दें। नंबर है 666-221-07। सवाल यह है कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता था। इसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों फुटबॉल के बारे में और प्री सीजन डोमेस्टिक लीग्स में क्या कुछ चल रहा है। पहला बड़ा यूरोपियन लीग चल रहा है, इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी कि EPL, और बाकी बड़ी यूरोपियन लीग्स अगस्त के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाली हैं। अभी सारी बड़ी क्लब्स प्री सीजन ट्रेनिंग और फ्रेंडलीज खेल रही हैं ताकि नए खिलाड़ियों को टीम में सेट किया जा सके कि उनको कहां खिलाना है, फ्रंट में खिलाना है, स्ट्राइकर खिलाना है या फिर डिफेंडिंग में खिलाना है। वेल, नॉर्दर्न यूरोपियन लीग्स भी चल रही है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में उनका मेन फुटबॉल सीजन अभी फुल स्विंग में चल रहा है और टीम्स चैंपियनशिप के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, भिड़ रही हैं ऑब्वियसली। बाकी स्कोर जो है वो आपको मैं एक बार फिर से जल्दी से अपडेट कर देता हूँ। UAE वर्सेस कनाडा के मैच जो है वो चल रहे हैं और PCB का फुल स्क्वाड क्या है वो भी आपको बता देते हैं। PCB बोले तो जो ग्रीन्स वाइट्स ये जो खेल रही है, ग्रीन्स ब्लूज गोल्ड जो ये टीमें खेल रही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले UAE वर्सेस कनाडा का स्कोर। वेल, 4 ओवर कंप्लीट हो गए हैं, 12 से बढ़े हैं आगे धीरे धीरे, 14 रन बना लिए हैं और 3.23 का करंट रन रेट जो है वो चल रहा है। और क्वालिफिकेशन का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये जो मैच है लीग 2 का वो UAE वर्सेस कनाडा के दरमियान चल रहा है। कनाडा बहुत अच्छा कर रहा है, 4 ओवर कंप्लीट, 14 रन बनाए हैं अभी सिर्फ, और बाकी गेम जो है वो अभी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाकी कलीम बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और जाहिद शिरजाद भी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा वो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्क्वाड है उसमें जो कैप्टन है यानी कि पाकिस्तान ग्रीन्स के बारे में, उसमें कैप्टन है शादाब खान, जिसमें फखर जमान है, उमैर है, समीर मिनहस है, फरहान यूसुफ है, साद बेग हैं जो कि विकेट कीपर है, फहीम अशरफ, महराज मुमताज, नसीम शाह अच्छे बॉलर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद सलमान मिर्जा। बाकी रिजर्व्स के बारे में बात नहीं करेंगे, मेन जो स्क्वाड है उस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान वाइट्स को लीड कर रहे हैं सैम अयूब जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसमें शाहजीब खान है, हसन नवाज हैं, उस्मान खान विकेट कीपर, वैसे उस्मान खान ने अच्छा दिल जीता है जब वो टीम में खेल भी रहे थे, खुर्शीद शाह हैं, मोहसिन रियाज हैं, साद मसूद हैं, मोहम्मद वसीम हैं, आकिफ जावेद, अली रजा और हारिस रऊफ। पाकिस्तान ब्लूज को लीड कर रहे हैं शाहिब ज़ादा फरहान, जिसमें तैयब ताहिर हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, मामुल हक हैं, मोहम्मद अखलाक हैं जो कि विकेट कीपर हैं, मुबशिर खान, अराफत, हसन अली, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, मोहम्मद जीशान और फैसल अकरम। अब बात कर लेते हैं आखिरी और चौथे स्क्वाड के बारे में यानी कि पाकिस्तान गोल्ड, जिसे लीड कर रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस, हैदर अली हसीबुल्ला जो कि विकेट कीपर हैं, कामरान गुलाम, इरफान खान नियाजी, यामीन जहानदाद खान, मोहम्मद अली, शहनवाज दहान और जमान खान के साथ सूफियान मुखीम। तो ये जो प्लेयर हैं रेडी हैं कि ODI में कोई अपनी छाप छोड़ सके और मज़ा भी आएगा ये 50 ओवर का लिस्ट ए का जो गेम है वो देखने में, क्योंकि यहाँ से तय होगा कि ODI 2027 का स्क्वाड क्या होने वाला है। मेरे पास बस एक सवाल है कि क्या अगर शाहिबजादा फरहान जो कि लीड कर रहे हैं टीम को, सैम अयूब, शादाब खान, अगर इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया
तो क्या ये टीम में आएंगे 2027 में? पीसीबी यानी कि सेलेक्टर्स क्या इनको सेलेक्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, वो वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं आज के जवाब के बारे में। सवाल मैंने आपसे बड़ा आसान सा किया था, उम्मीद है कि जवाब अब तक आप लोगों ने और दे दिया होगा। बिल्कुल सही जवाब इमरान खान की तरफ से। फज्जू भाई कैरी ऑन टिल फाइव।

यू कैन स्टार्ट पहचान कौन, वी विल एंजॉय। केएम खान साहब इतनी जल्दी, थोड़ा मेरे को भी राहत दो भाई, पानी की जरूरत पड़ती बीच बीच में। अस्सलाम वालेकुम, सेम गाय हु वॉन इन 2026। देखो भाई अपना स्मार्ट है, शेख साहब ने बड़े स्मार्टली जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा। फिर उसके बाद यूसुफ भाई ने कहा है, अच्छा सही हो गया मेरा आंसर, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है क्योंकि FM 107 पे 2022 फुल कवर्ड किया था। हाँ यार, हम हर आरजे अपडेट कर रहे थे, हेड्स ऑफ टू ऑल, आई वुड से दैट वाज गोल्डन स्पोर्ट्स नॉस्टैल्जिक। बिल्कुल यार, मजा तो आया था। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से फीफा यहीं पर हो जाए। सलाम फजील भाई, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है मेरा भाई, नाम है आपका अरमान मलिक, बहुत ही उम्दा। फिर भाई डोंट गो टिल 5, वी आर विथ यू। अरे अरे देखो, कोड़े मैन जो है वो अभी आ जाएगा, अगर मैं नहीं गया तो कोड़ा लेकर आएगा वो पीठ पे लादता हुआ। अस्सलाम वालेकुम, काशिफ फ्रॉम कश्मीर, 2022 गोल्डन बूट अवार्ड मिला, बिल्कुल सही जवाब। आरिफ खान ने भी, सैयद आरिफ ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और भाई सवाल क्या ले भाई, बहुत ही उम्दा। वकरा से अलखोर होकर चले आए हम, पूछ रहे कतर कब आएगा, देख रहे हो। शेख इरफान साहब, अब आपको बस जवाब सुनने की देरी है। मैंने सवाल पूछा था गोल्डन बूट अवार्ड 2022 में किस प्लेयर को मिला था, सही जवाब है एम्बाप्पे। केलियन एम्बाप्पे को 2022 में भी, 2026 में भी गोल्डन बूट अवार्ड मिला था क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया था। 2022 में इन्होंने 8 गोल्स किए थे पूरे टूर्नामेंट में जो कि कतर में हुआ था, हैट्रिक भी की थी अगेंस्ट अर्जेंटीना जो कि लाजवाब गेम चल रहा था, और लियोनेल मेसी ने 7 गोल किए थे, ये तो मजे की बात है। और उसके अलावा 2026 में भी 10 गोल के साथ केलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप में 2026 में गोल्डन बूट अवार्ड जीता है, और मेसी अगेन पीछे रह गए 8 गोल से। तो ये थे आज के कुछ खास अपडेट। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दोस्तों दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे शाम को 4 बजे, जैसे कि लोग आपको बता रहे हैं, आए ऐसे ही गानों के साथ, आपकी अपने मर्जी के गानों के साथ द रिक्वेस्ट शो में। तब तक मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक चेक चेक चेक टाइम चेक इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के डेढ़ यानी ये वक्त हो चला है
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: हाँ जी तो मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है अस्सलाम वालेकुम आफ्टरनून आई होप कि आज आप बिल्कुल मजे में होंगे हमें देखो 3-2-1 ये इंडिकेशन होता है कि देखो अब आपको तैयार हो जाना है क्योंकि अब दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करने वाले हैं क्योंकि ये भाई पूरा जो एक घंटा होता है ना ये पूरे हमारे दिमाग की वर्जिश होती है आहा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है बट यस मज़ा भी उतना ही होता है क्योंकि चैलेंज लेने का जो मज़ा है ना और जब उसे जीत कर हम एस्केप कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन को तो वो बात कुछ और ही होती है कि नहीं तो चलिए इस फुल ऑन एनर्जी से अपने आप को भरते हैं और दो गानों के एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आज की सिचुएशन आपके सामने आएगी कि आज आप कहाँ कैद होने वाले हैं वैसे देखो जिन्हें भी शॉपिंग करने का बहुत शौक है ना उन्हें बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज आप शॉपिंग करते करते करते कुछ तो होगा आपके साथ कहीं तो फंसेंगे आप चलिए बताऊंगी आज के एस्केप रूम की सिचुएशन कुछ ही देर में बट अभी के लिए आप हमारा नंबर नोट कीजिए 666-22107 666-22107 इस नंबर पर अपने नाम के साथ मुझे सारे सही जवाब भेजिएगा और अपने दिल की बात भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं फिलहाल गेम शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को लूजन अप करें बिल्कुल अपने आप को रेडी करें और अभी के लिए बी प्राग एंड हार्डी संधू का ग्रेट कॉम्बिनेशन है लेट्स एंजॉय द सॉन्ग स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन

चल रहा है। अब आपने सोचा कि फटाफट जाके जो जो दिल कर रहा है वो खरीद लें और जो नहीं भी दिल कर रहा है, अच्छे दाम में मिल रहा है, वो भी ले लें। और जैसे ही आपने शॉपिंग मार्ट में कदम रखा, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, एक आयल से दूसरे आयल आप जा रहे हैं, बट कुछ अजीब सा हुआ। सारे दरवाजे खिड़कियां ऑटोमेटिक बंद होने लगे। आपको लगा यार ये क्या हो रहा है, और लोग भी गायब होने लगे। हाँ मतलब इतने सारे लोग थे, अब आप ही अकेले रह रहे हैं वहां पे। अब आगे क्या हुआ, सारे दरवाजे बंद हो गए, लोग गायब होने लगे, तो आयल नंबर 4 की जो शॉपिंग कार्ट थी वो खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ने लगी। ओ हो हो हो हो। वैसे अगर इस एक्सप्रेस लेन से हमें बाहर निकलना है और गहरी रात, मतलब और भी ज़्यादा रात हो, वो शुरू होने से पहले घर पहुंचना है, तो हमें इस मार्केट प्लेस का सीक्रेट मैथ समझना होगा। ये सिर्फ ग्रॉसरी लेने का मौका नहीं है, ये अपनी जान बचा के दौड़ने का भी मौका है। यस, तो हम भागते हुए अब सेल्फ चेकआउट कियोस्क तक पहुँचे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कुछ क्लू मिल जाए, किसी तरह बाहर निकलें। तो जो स्क्रीन है बिल्कुल सुर्ख लाल है। आपने देखा, अरे यार अब क्या करें, अब ये हमसे एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड मांग रहा है। एंड देयर कम्स आवर क्लू नंबर 1। सीरियल का या हर डब्बे का या चिप्स का हर पैकेट एक हिडन पहचान रखता है। ठीक है, अब आप सुने, मैं काली मोटी और पतली लकीरों का एक ऐसा पैटर्न हूँ जिसे लेजर रीड करता है ताकि पता चल सके कि आइटम क्या है और उसकी कीमत क्या है। इस डिजिटल फिंगरप्रिंट को क्या कहते हैं? भाई देखो, आप सभी शॉपिंग करते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि जवाब क्या है। सो 666-22107 इज आर नंबर, 666-22107। इस पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब भेजें। एक बार क्लू नंबर 1 मैं फिर से दोहराऊंगी कि मैं काली मोटी और पतली लकीरों का एक ऐसा पैटर्न हूँ जिसे लेजर रीड करता है ताकि पता चल सके कि क्या ये प्रोडक्ट है, या यूँ कहे क्या आइटम है और इसकी कीमत क्या है। इस डिजिटल फिंगरप्रिंट को हम क्या कहते हैं? ये चाहे सीरियल हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट, खाने पीने का आइटम, उसका डब्बा हो, चिप्स का कोई भी पैकेट हो, एक हिडन पहचान रखते हैं ये सारे पैकेट्स, और काली मोटी पतली लकीरें इनके पीछे रहती हैं। ठीक है, तो बताएं उस चीज़ को क्या कहते हैं। 666-22107, 666-22107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए। और अभी के लिए ये कहना तो बनता है, दिमाग को जब दौड़ाते हैं तो वाव तो निकल ही जाता है, क्योंकि अभी टाइम है इस क्लू नंबर 1 को पार करने का। तो बी रेडी, स्टे ट्यून्ड टू एफएम।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो आज एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। क्या कर रहे हैं आज आप? आज आप बेसिकली शॉपिंग करने के लिए निकले, मतलब रात का आलम है, काफ़ी परेशान थे, थके हुए थे और कुछ चीज़ें रह गई थी, तो आपने कहा चलो एक बड़े से शॉपिंग मार्ट में जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। और आप वो करने के लिए गए, बतेरे ऑफर्स हैं, अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स हैं और इन सब के चलते आपने अपना मन बना लिया कि अब तो भाई मज़े की शॉपिंग होगी। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि जैसे ही आप उस शॉपिंग मार्ट में थोड़ा अंदर आगे गए तो सारे दरवाजे अपने आप बंद होना शुरू हो गए, जो लोग थे वो भी गायब होना शुरू हो गए। अब आइल नंबर 4 की जो शॉपिंग कार्ट थी वो खुद ब खुद हमारी तरफ आने लग गई। उफ, गड़बड़े बहुत होने लगी। अब आप भागते हुए सेल्फ चेकआउट कियोस्क तक पहुंच गए, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल सुर्ख लाल है। ये हमसे एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड मांग रहा है और क्लू हमारे लिए क्या था कि मैं काली मोटी और पतली लकीरों का एक ऐसा पैटर्न हूँ जिसे लेज़र रीड करता है ताकि पता चल सके कि प्रोडक्ट या आइटम क्या है और उसकी कीमत क्या है। अब इस डिजिटल फिंगरप्रिंट को हम क्या कहते हैं? ये अक्सर सीरियल्स या अभी कोई भी खाने पीने के पीछे के जो डब्बे, चिप्स के पीछे के पैकेट, उसमें ये पहचान रखता है। बताइए क्या है? ठीक है, तो हमारे लिसनर्स अलग अलग चीज़ें लिख रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं कोड, कुछ लिख रहे हैं QR कोड, कुछ लिख रहे हैं बार कोड। देखो कोड तो क्या है ये आपको स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बार कोड और QR कोड दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। बार कोड वन डायमेंशनल कोड होता है जो कि वर्टिकल पैरेलल लाइंस एंड स्पेसेस से बना होता है, और QR कोड टू डायमेंशनल होता है जो कि ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स अरेंज किए जाते हैं, उससे बना होता है, स्क्वायर ग्रिड होती है। आप समझ में आ गया? तो ये QR कोड भी नहीं है, कोड भी नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? डेफिनेटली दिस इज बार कोड। जोरदार तालियां हमारे सारे लिसनर्स के लिए, और जिन्होंने सही जवाब दिया है वही अपनी पीठ थपथपाओ भाई, फटाफट करो करो, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। अच्छा फील करना हर किसी का हक है कि नहीं? तो देखिए अब जिन्होंने हमें सही जवाब दिए हैं उनके नाम क्या है, आइए देखते हैं एक एक करके। राशिद है हमारे साथ, अनवर ने भी हमें सही जवाब दिया है, असद ने सही जवाब दिया है, इन जनाब का क्या नाम है, ये है हिशाम, इन्होंने भी हमें सही जवाब दिया है, हमज़ा ने सही जवाब दिया है, इसरार ने सही जवाब दिया है, सुलेमान ने सही जवाब दिया है, साद नूर ने सही जवाब दिया है, एंड मिस्टर खान है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा पर मिस्टर खान है, उन्होंने भी सही जवाब दिया है, काशिफ अली ने भी हमें सही जवाब दिया है। इनके नाम के आगे क्या लिखा? ओके, नाम है निगत ताहिरा, इन्होंने भी सही जवाब हमें देने की कोशिश की है, काशिफ फ्रॉम कश्मीर ने भी हमें सही जवाब देने की कोशिश की है, और कौन है भाई जिन्होंने सही जवाब दिया है? ये हैं अनीस अहमद, ओके, फ्रॉम अलखोर, फैंटास्टिक। तो भाई देखिए आप सभी ने कमाल कर दिया, सही जवाब देकर क्लू नंबर 1 सॉल्व किया और पहला पड़ाव पार किया। और जैसे ही आपने ये किया पहला गेट खुल गया, लेकिन अब आइल नंबर 5 में जो सीरियल्स है जो अक्सर हम नहीं खाते हैं दूध में डाल के, है ना, सीरियल्स का एक पहाड़ है, उसने हमारा रास्ता रोक लिया है। उफ, अब इससे आगे निकलने के लिए हमें इस सौदागर की पहेली सुलझानी होगी। अब ये पहेली क्या होगी, ध्यान से सुनिए, क्लू नंबर 2 हमारी राहों में आ रहा है। ऑलराइट, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसे कोई खरीदना ना चाहे तो कीमत गिर जाती है। ये एक नाजुक बैलेंस है उस चीज़ के बीच जो मौजूद है और उसके बीच जिसे लोग चाहते हैं। तो इस कानून को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई एंड डैश। यस, ये डैश में कौन सा वर्ड आएगा वो आपको हमें लिख कर बताना है। 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ हमको जवाब दीजिए। एक बार फिर से क्लू नंबर टू आपके लिए है कि इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसे कोई खरीदना ना चाहे तो कीमत गिर जाती है। ये एक नाजुक बैलेंस है उस चीज़ के बीच जो मौजूद है और उसके बीच जिसे लोग चाहते हैं। इस कानून को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डैश। इस ब्लैंक को हमें फिल करना है एक वर्ड से और हमें सही जवाब आप भेजिए। देखते हैं आप में से कितने लोग क्लू नंबर टू सॉल्व करते हैं और दूसरे पड़ाव को पार कर पाते हैं। और अभी भाई म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है, लेट्स एंजॉय द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: चेक। इस वक्त हमारे एस्केप रूम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है और हमारे स्टूडियो क्लॉक पे बज चुके हैं दोपहर के 2:02। दो एक लाइन पे जब आते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक विश करें कि एस्केप रूम की आज की इस शॉपिंग मार्ट की सिचुएशन से हम बाहर निकल पाए।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देखे।
2: Yes, जनाब, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी A for Amita. Excitement में थोड़ा माइक यहाँ हिल गया, माजरा चाहेंगे, लेकिन अभी जो वक्त है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक बहुत ही शानदार से शॉपिंग मार्ट में फंस गए यार। मतलब शॉपिंग करने गए, सोचा कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे, ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंट चल रहे हैं, और ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर कुछ घोसली हो जाएगा, सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे, लोग अपने आप गायब हो जाएंगे। मतलब डर भी लग रहा है, और मतलब एक बड़ा सा शॉपिंग मार्ट हो तो आप सोचो मतलब कैसी फीलिंग आती होगी, है कि नहीं? तो ये फील हम कर रहे हैं। अब एक ही जरिया है बाहर निकलने का, बंद दरवाज़ों को खोलने का, कि एक एक करके हम क्लूज सॉल्व करते जाएं। तो बस क्लू नंबर वन हमने सॉल्व किया, सही जवाब था बारकोड। और जब हमने सॉल्व किया तो आगे जब हम चले आइल नंबर 5 पर, तो जो सीरियल्स होते हैं ना जिन्हें हम दूध में डाल के खाते हैं, उसके डिब्बे, इसके डिब्बों ने एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा कर दिया और रास्ता रोक लिया। अब ये रास्ता जो है तभी खुलेगा जब हम क्लू नंबर 2 का सही जवाब देंगे। तो क्लू नंबर 2 हमारे लिए था, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसे कोई ख़रीदना ना चाहे तो कीमत गिर जाती है। ये एक नाजुक बैलेंस है उस चीज़ के बीच जो मौजूद है और उसके बीच जिसे लोग चाहते हैं। ना इस कानून को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई एंड क्या हो सकता है? कुछ हमारे लिसनर्स लिख रहे हैं डिस्काउंट्स कुछ ने लिखा है ऑफर्स। नहीं, ये दोनों ही जवाब गलत है। सही जवाब है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यस जनाब, जिन्होंने भी ये लिखा है खूब लिखा है, कंग्रेचुलेशंस, आप सब ने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया, फैंटास्टिक। आइए जानते हैं जिन्होंने हमें सही जवाब दिए हैं उनके नाम क्या है। तो हमारे रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान ने हमें सही जवाब दिया है, राशिद अनवर असद ने सही जवाब दिया है हमें, और ये जनाब कौन है, सुलेमान ने भी हमको सही जवाब दिया है, और हमज़ा ने हमको सही जवाब दिया है, इरफान ने हमें सही जवाब दिया है, मिस्टर खान ने भी हमें सही जवाब दिया है, और काशिफ जो कि कश्मीर से, उन्होंने ख़ास तौर से ये स्पेसिफाई किया है, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। सो फैंटास्टिक, आप सब के सही जवाब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और जैसे ही आपने डिमांड कहा, आइए बताती हूँ आगे क्या हुआ। देखिए, डिमांड के बिना सप्लाई का कोई वजूद नहीं है, और जैसे ही आपने डिमांड कहा तो वो सीरियल्स का जो पहाड़ बन गया था वो ढेर हो गया। अब हम आखिरी रुकावट पर हैं, स्टोर के पीछे बना फार्मेसी काउंटर। यहाँ प्राइस टैग्स इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि हर सेकेंड कीमत बढ़ती जा रही है। सो क्लू नंबर 3 हमारे लिए क्या है, मैं वो इकोनॉमिक भूत हूँ, यस, इसे इकोनॉमिक भूत भी कुछ लोग कहते हैं, जो आपकी पॉकेट मनी को छोटा कर देता है। जब पूरे मुल्क में सामान और सर्विसेज की कीमतें वक्त के साथ बढ़ने लगती हैं और आपके पैसे की ताकत कम हो जाती है, तो इस अंग्रेजी में 10-letter word को क्या कहते हैं? ओह, वेरी इंटरेस्टिंग, सोचे इसका सही जवाब दे 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, ये वर्ड क्या है? ठीक है, सोचे क्या हो सकता है। काफ़ी कहते हैं ना कि अरे जॉब्स मिलना बंद हो गई है, हर चीज़ महंगी हो रही है, क्योंकि ये हो रहा है, तो वो चीज़ क्या है? चले क्लू नंबर 3 एक बार फिर से आपके लिए, कि मैं वो इकोनॉमिक भूत हूँ जो आपकी पॉकेट मनी को छोटा कर देता है। जब पूरे मुल्क में सामान और सर्विसेज की कीमतें वक्त के साथ बढ़ने लगती हैं और आपके पैसे की ताकत कम हो जाती है, तो इस अंग्रेजी के 10 लेटर वर्ड को हम क्या कहते हैं? कम ऑन, थिंक और सही जवाब देने की कोशिश करें. देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं. और गुरु रंधावा क्या लेकर आ गए? बेहतरीन सा गाना आपके लिए. एंजॉय करते हैं ना. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.
1: Yo, lavish.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो.
1: Yes, जनाब, वेलकम वंस अगेन. एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी फॉर अमिता. आई एम वेरी सर्टन कि ये जो शानदार हमने म्यूजिकल ब्रेक आपको दिया, आप थोड़े से रिफ्रेश्ड हो ही गए होंगे. देखिए, हम बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच गए हमारे शो के, जहां पर हमको सोच समझ के सही जवाब देना है और क्लू नंबर 3 सॉल्व करना है. आज हम कहां फंसे? आज हम बड़ी खूबसूरती से, बड़ी खुशी से गए थे शॉपिंग करने. सिचुएशन रात की थी, लेकिन अफसोस ये हुआ कि जैसे ही हम शॉपिंग मार्ट में अंदर गए, बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन क्या करें, एकदम से दरवाजे बंद होना शुरू हो गए, लोग गायब होना शुरू हो गए, कुछ डिफरेंट ही हो गया हमारे साथ. और फिर घबराए, लेकिन फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, क्लूज को सॉल्व किया. क्लू नंबर 1 का सही जवाब था बारकोड. क्लू नंबर 2 का सही जवाब था डिमांड. उसके बाद हमें आगे बढ़ना था और हम आगे बढ़े. आखिरी रुकावट पर है स्टोर के पीछे बना फार्मेसी काउंटर. अब यहाँ प्राइस टैग्स इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि हर सेकंड कीमत बढ़ती जा रही है. क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा है. तो क्लू नंबर 3 हमारे लिए ये था कि मैं वो इकोनॉमिक भूत हूँ. ठीक है, मैं वो इकोनॉमिक भूत हूँ जो आपकी पॉकेट मनी को छोटा कर देता है, जब पूरे मुल्क में सामान और सर्विसेज की कीमतें वक्त के साथ बढ़ने लगती हैं और आपके पैसे की ताकत कम हो जाती है. तो अंग्रेजी में एक वर्ड है 10 लेटर्स का, उसे क्या कहते हैं? बस वही सही जवाब है. 666-22107, 666-22107 हमारा नंबर है. इस पर आप अपने नाम के साथ सही जवाब दें. कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं महंगाई. मैंने अंग्रेजी के 10 लेटर वर्ड की बात की है. क्या कहते हैं अगर महंगाई हो तो, मतलब वो वर्ड, वो टर्म क्या है इकोनॉमिक में, उसे क्या कहते हैं? कम ऑन, थिंक एंड गिव मी द राइट आंसर, क्योंकि आखिरी पड़ाव है और इसी के जरिए हम बाहर निकल पाएंगे. अगर हमने सही जवाब नहीं दिया तो इस बड़े से शॉपिंग मार्ट में फंस जाएंगे. तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है? और अभी आपको बाहर निकालने के लिए बस एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक है, इसके बाद मौका नहीं है बॉस. तो सोचो और सही जवाब दो 666-22107 पर अपने नाम के साथ. और भाई हाड़ी संधु आ गए आपको थोड़ा सा नचाने के लिए. बेहतरीन सा गाना. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से महला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से दी।
4: Yes, welcome once again, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है भाई हमारे शो का, और इस वक्त हम बहुत बड़े से शॉपिंग मार्ट के अंदर कैद हो गए हैं। यहाँ से निकलने की हमने बतेरी कोशिशें की हुई हैं, ठीक है, एक से बढ़कर एक हमने क्लू सॉल्व किए। पहले क्लू का सही जवाब था बारकोड, दूसरे क्लू का सही जवाब था डिमांड, तीसरे क्लू में आके थोड़ा सा हम अटके हुए हैं क्योंकि ये जवाब नहीं दिया तो अटक ही जाएंगे। हाँ, तो क्लू नंबर 3 था कि मैं वो इकोनॉमिक भूत हूँ जो आपकी पॉकेट मनी को छोटा कर देता है। जब पूरे मुल्क में सामान और सर्विसेज की कीमतें वक्त के साथ बढ़ने लगती हैं और आपके पैसे की जो ताकत है वो कम हो जाती है, तो अंग्रेजी में इस 10-letter word को क्या कहते हैं? तो हमें अधिकतर सही जवाब मिले हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स थोड़े कंफ्यूज भी हुए तो कुछ अलग तरह के भी जवाब आए हैं, लेकिन अभी क्योंकि वक्त कम है तो हम सीधा सही जवाब की तरफ चलेंगे। सही जवाब है इन्फ्लेशन। तो जोरदार तालियां भाई हमारे उन सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें सही जवाब लिखकर भेजा है। आम भाषा में उसे महंगाई कहते हैं, है कि नहीं? आइए जरा देखें जिन्होंने सही सही जवाब हमको देने की कोशिश की है। तो राशिद है जो नॉनस्टॉप हमें मैसेजेस करते जा रहे हैं, अनवर ने भी हमें सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी हमें सही जवाब दिया है, असद ने भी सही जवाब दिया है, मिस्टर खान ने सही जवाब दिया है, और कौन है? अच्छा, अभी कुछ मैसेजेस लिखकर हमारे लिसनर डिलीट मार रहे हैं। देखिए, सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। सुलेमान ने हमें सही जवाब दिया है और मोहम्मद ने सही जवाब दिया है। चलिए, इसी बात के साथ आपको बता दें कि हमारा जो लकी विनर है वो कौन होगा जिन्होंने हर एक चीज़ का सही जवाब दिया और सबसे पहले सही जवाब देने की कोशिश की। उनका नाम है असद। क्या बात है असद भाई, कंग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत सारी मुबारकबाद, आपने बिल्कुल

सही जवाब दिया नॉन स्टॉप. तो आज के लकी विनर आप हुए, लेकिन हमारे सारे लिसनर्स जो नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़ते रहे, जवाब देने की कोशिशों में लगे रहे, उनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके बिना हमारे एस्केप रूम में जान नहीं रहती जब तक आपके मैसेजेस नहीं आते. तो भाई जैसे ही हमने ये जवाब भेजा, कियोस ने एक लंबा और सुनहरा रिसीट बाहर फेंका जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था एक्सेस ग्रांटेड. हमने वो कोड फ्रंट डोर पर स्वाइप किया, बस ऊपर वाले का शुक्र किया, हम आजाद हो गए. आप चाहे कहीं भी फंस जाए, बड़े से बड़े शॉपिंग मार्ट की गलियों में ही क्यों ना फंस जाए, जरूरी है कि हमारा जो इल्म है, हमारी नॉलेज है, अगर उसका हम सही इस्तेमाल करेंगे तो हर एक मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे, है कि नहीं. तो भाई आज के एपिसोड में हमारा इतना ही साथ था. अब कल आपकी मेरी मुलाकात होगी दोपहर 1:30 बजे एस्केप रूम के एक नए चैलेंज के साथ. ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FM 107 पर जुड़ जाइए. अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. और अभी जाते जाते कहना तो बनता है कि हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107 कतर। साथियों, गिफ्ट देना और लेना भाई हम सबको पसंद है, चाहे बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, ईद का मौका हो या किसी अचीवमेंट सेलिब्रेट करनी हो भाई। एक खूबसूरत गिफ्ट किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है, मेरे चेहरे पर तो लाता है भाई। और हाँ, गिफ्ट को स्पेशल बनाने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, उसे अच्छे से रैप करते हैं या करवाते हैं। कलरफुल रैपिंग पेपर हो गया, रिबन्स हो गई, बोज हो गई और शाइनी किस्म की जो डेकोरेशंस है उसके ऊपर लगती हैं, वो गिफ्ट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गिफ्ट खोलने के कुछ मिनट्स बाद वो खूबसूरत रैपिंग कहाँ चली जाती है? फ्यू, वो कोने में पड़े हुए डस्टबिन के अंदर, अक्सर वो सीधा डस्टबिन में चली जाती है। जी हाँ, तो भाई आज के इको स्विच में बात करते हैं सस्टेनेबल गिफ्ट रैपिंग के बारे में, यानी तोहफा भी खूबसूरत हो और उसकी पैकेजिंग एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो। चले भाई यहाँ पर एक करते हैं, सबसे पहले ना प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए साथियों, गिफ्ट रैपिंग एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन जब हजारों लोग रोजाना गिफ्ट रैप करते हैं तो इसका वेस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ट्रेडिशनल गिफ्ट रैपिंग में ना अक्सर औकात आपको क्या नजर आएगा, प्लास्टिक कोटेड रैपिंग पेपर्स, शाइनी मटेरियल्स जो रिसाइकल नहीं होते, प्लास्टिक रिबन्स और बोज, सिंगल यूज गिफ्ट बैग्स, इसका इस्तेमाल होता है भाई, इन सारी चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। गिफ्ट खोलने के बाद ये चीजें अक्सर का दोबारा यूज नहीं होती और क्या होता है, कचरे का हिस्सा बन जाती हैं। जरा सोचिए, एक बर्थडे पार्टी में अगर कह लें मिनिमम आपको 20 गिफ्ट आए और हर गिफ्ट अलग अलग प्लास्टिक या नॉन रिसाइकलेबल रैपिंग में हो, तो भाई कितना सारा वेस्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गिफ्ट की खूबसूरती सिर्फ एक्सपेंसिव रैपिंग से नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक क्रिएटिव आइडिया ज्यादा यादगार बन जाता है साथ।

0: तो भाई सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन यहाँ ये है साथियों के सस्टेनेबल गिफ्ट रैपिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज ये कि रीयूजेबल गिफ्ट बैग्स चूज करें। एक खूबसूरत कपड़े का बैग या रीयूजेबल गिफ्ट बैग को बार बार यूज किया जा सकता है, ये स्टाइलिश भी होता है और इससे वेस्ट भी कम होता है, बता रही हूँ। और एक और ना अलग से गिफ्ट टाइप आइटम भी बन जाता है कि बंदा उसको बाद में भी जिसको आपने गिफ्ट दिया है वो लेकर शोबाजी में घूम सकता है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि पुराने मटेरियल्स को रीयूज करें। घर में मौजूद चीजें जो दोबारा यूज करें वो अगर मैं मिसाल के तौर पर दूं तो पुराने न्यूज़पेपर्स हो गए, ओल्ड मैप्स हो गए, फैब्रिक पीसेस हो गए, डेकोरेटिव बॉक्सेस हो गए, इनको क्रिएटिव रैपिंग के लिए यूज किया जा सकता है। बस थोड़ा सा आपका जो पिकासो है ना अंदर वाला उसको जगाना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि सिंपल डेकोरेशंस यूज करें ना, प्लास्टिक रिबन्स की जगह ज्यूड स्ट्रिंग्स हो गई, नेचुरल डेकोरेशंस हो गए, रीयूजेबल रिबन्स हो गए, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा चौथी चीज ये कि गिफ्ट बॉक्स को दोबारा यूज करें। अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस को फेंकने के बजाय संभाल कर रखें और अगली दफा किसी और को गिफ्ट देने के लिए यूज कर लें। मैं तो ये करती हूँ भाई, मेरी फेवरेट चीज है ग्लास की बॉटल्स और सिस, मैं इन्हें दिल खोल के रीयूज करती हूँ। अच्छा भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपीरियंस गिफ्ट्स। कभी कभी गिफ्ट रैपिंग की जरूरत ही नहीं होती साथियों। आप किसी को डिनर एक्सपीरियंस पे लेकर जा सकते हैं, एक्टिविटी टिकट्स दे सकते हैं, लर्निंग कोर्सेज दे सकते हैं, फैमिली आउटिंग करवा सकते हैं। इनमें से कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हैं जो यादगार भी होता है और वेस्ट भी कम क्रिएट करता है। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल दी जाए ना साथियों, तो आजकल बहुत से लोग क्रिएटिव और सस्टेनेबल गिफ्ट रैप आइडियाज अपना रहे हैं। कुछ लोग कपड़े के टुकड़ों से ट्रेडिशनल स्टाइल रैपिंग करते हैं जो दोबारा यूज हो सकती है। कुछ फैमिलीज गिफ्ट बैग्स का कलेक्शन बना लेती हैं और हर ओकेजन पर उन्हें रीयूज करती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ भाई। कुछ लोग बच्चों के गिफ्ट्स को कलरफुल ओल्ड न्यूज़पेपर या हैंडमेड डेकोरेशन से रैप करवा लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जब रैपिंग यूनिक होती है तो गिफ्ट और भी ज्यादा पर्सनल फील होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि क्रिएटिविटी और केयर भी शामिल होती है। तो साथियों आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगली बार जब आप कोई गिफ्ट दें तो ट्रेडिशनल रैपिंग के बजाय सस्टेनेबल ऑप्शन ट्राई करें और हमें बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो करें और मैसेज करें। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar और हमें बताएं आपने कभी किसी गिफ्ट को क्रिएटिव तरीके से रैप किया है या आपके पास कोई पुराना गिफ्ट बॉक्स है जो आप आज भी रीयूज कर रहे हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए तोहफा सिर्फ अंदर की चीज से खास नहीं होता बल्कि उसे देने के तरीके से भी यादगार बनता है। तो भाई छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर। मैं हूँ आपकी RJ माविश खान। हमारा आज का टॉपिक है इख्तलाफ का एहतराम करना। हर इंसान की सोच और नजरिया मुख्तलिफ होता है। इख्तलाफ होना फितरी बात है, लेकिन उसका तरीका बहुत अहम होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम दूसरों की राय का एहतराम करें, चाहे हम उससे मुख्तलिफ ही क्यों ना सोचते हों। अक्सर लोग अपनी बात मनवाने के लिए सख्ती और बहस का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब हम इख्तलाफ को तहम्मुल और अदब के साथ हैंडल करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। ये रवैया एक मैच्योर और समझदार इंसान की निशानी है। आज का अमल ये है कि किसी भी डिसएग्रीमेंट में अपनी आवाज बुलंद करने के बजाय नरमी से अपनी बात रखें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to
2: 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।

0: Step to 2030.
1: वेल, हमारा बड़ा ही खास सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाएंगे. आज हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल प्रोजेक्ट. Sustainable project and that too here in Qatar. वैसे तो आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे projects हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा है, लेकिन चलिए आज एक quick revision कर लेते हैं. Sustainability का मतलब है आज की जरूरियात को पूरा करना बिना इस बात के कि आने वाली नस्लों के resources नुकसान में ना पड़े. यानी environment को protect करना, resources का सही इस्तेमाल करना और एक हेल्दी फ्यूचर बनाना. कतर ने पिछले चंद सालों में ना सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में बहुत अहम कदम उठाए हैं. आज हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की, यानी क्लीन एनर्जी. दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से एनवायरमेंट पर असर पड़ रहा है, इसीलिए कतर सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है. सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये क्लीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स है. सूरज की रोशनी से बिजली पैदा की जाती है जो कार्बन इमिशंस को कम कर देती है. वहीं दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन भी कतर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. कतर एक डेजर्ट कंट्री है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ रेगिस्तान ही है और यहाँ पानी की अहमियत सबसे ज्यादा है. डेजर्ट होने की या डेजर्ट कंट्री होने की वजह से पानी की अहमियत और बढ़ जाती है और इसीलिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी को बचाना और एफिशिएंटली इस्तेमाल करने पर काफी जोर यहाँ दिया जा रहा है. दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इरिगेशन सिस्टम्स और वाटर रिसाइकलिंग मेथड्स यूज किए जा रहे हैं ताकि पानी ज्यादा जाया ना हो. और अब बात करती हूँ ग्रीन बिल्डिंग्स की. कतर में कई नई बिल्डिंग्स हैं और ऐसी फैसिलिटीज डिजाइन की जा रही हैं जो कम एनर्जी कंज्यूम करें. इन बिल्डिंग्स में नेचुरल लाइट, एनर्जी इफिशियंट कूलिंग सिस्टम और एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है. इससे एनर्जी की बचत होती है और एनवायरमेंट पर कम प्रेशर पड़ता है. और एक और अहम फील्ड है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. जब ज्यादा लोग प्राइवेट कार्स इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों बढ़ता है. इस चैलेंज को देखते हुए कतर ने मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है. जी हाँ, मेट्रो सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बेहतर ऑप्शन है और लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो शेयर ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करें. इससे फ्यूल कंजम्पशन और पोल्यूशन दोनों में कमी आती है. सो बस डियर लिसनर्स, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वेस्ट मैनेजमेंट भी सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. जी हाँ, रोजाना हम बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और अगर इसका सही इस्तेमाल हो, सही तरीके से मैनेज हो तो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा. कतर में रिसाइकलिंग और वेस्ट रिडक्शन पर खास तवज्जो दी जा रही है. लोगों को भी एनकरेज किया जा रहा है कि वो प्लास्टिक और दूसरे मटेरियल्स को रिसाइकल करें और अननेसेसरली जो है वो वेस्ट उसे कम करें. डियर, सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तक महदूद नहीं रहती. हर सिटीजन भी इसमें एक अहम रोल अदा करता है जिस पर हमने हमेशा बात की. छोटी छोटी आदतें, मिसाल के तौर पर लाइट्स का सही इस्तेमाल, पानी बचाना, रीयूजेबल बैग्स का इस्तेमाल करना, रीसाइक्लिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना, कितनी अच्छी आदत है. जिया कतर का नेशनल विजन 2030 भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है और इस विजन का मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए बेहतर जिंदगी का इंतजाम करना. ये हमें ये भी पैगाम देता है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों एक साथ चल सकती हैं. दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट या पॉलिसी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है और ये लाइफस्टाइल हमें और आपको अडॉप्ट करनी है. जब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और आम लोग मिलकर साथ में काम करने लगे ना, तो बड़ा ही पॉजिटिव चेंज आता है. कतर के सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हमें ये दिखाते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट का ख्याल भी रखा जा सकता है. तो लिसनर्स, आज हमने जाना कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कतर के एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए कितने अहम हैं. हम सबका फर्ज है कि हम भी इस मिशन का हिस्सा बने और अपने डेली लाइफ में सस्टेनेबल हैबिट्स को अपनाएं. मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया, आपसे इजाजत लूंगी. अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एनवायरमेंट का भी बहुत ख्याल रखिए. फिलहाल के लिए बस इतना ही. सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी.
0: One step to 2030.
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: FM 107
1: दिल से देसी.

एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: जाता है तो कोई बिखर जाता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हर किसी को बुरे वक्त से महफूज रखे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107।
1: दिल से देसी।
3: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन, ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे? हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? From smart cities to saving precious water, desert को green करने के ideas से लेकर sustainable living तक, हम explore करेंगे हर green corner of Qatar. मतलब simple tips, cool hacks, inspiring stories from Qatar.
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, be part of the conversation जो Qatar को बना रहा है leader in sustainability. Tune into Qatar Green Beat with A for Amita. फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ कतर ग्रीन बीट पर। तो आज की कतर ग्रीन बीट की बीट्स क्या कहती है, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगी कि कैसे हैं आप, कैसा गुजर रहा है आपका ये वीक? हाँ, पर मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और आज की जो बात है ना वो कुछ इस तरह से है कि आज हम अपनी उस लेगेसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जिक्र अभी सिर्फ हमारे कतर में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में हो रहा है। कभी कभी जब मैं शाम को लुसैल या अल जनूब के पास से गुजरती हूँ ना, तो मुझे अब भी वही पुरानी इंटेंसिटी महसूस होती है, वो लोगों का जुनून, स्टेडियम में गूंजते फैंस की

0: चुके हैं ना, तब एक नया सफर शुरू हुआ है। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि इन बड़े बड़े जायंट्स का क्या होगा, क्या ये स्टेडियम सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? नहीं जनाब, कतर ने सिर्फ स्टेडियम्स नहीं बनाए, हमने एक मिराज या यूं कहे हमने एक लेगेसी तैयार की है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज हम बात करेंगे स्टेडियम लेगेसी की। हम देखेंगे कि कैसे हर एक ईंट और हर एक सीट को 2030 के फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो चलिए इस खूबसूरत खेल के जरिए एक खूबसूरत फ्यूचर की तरफ बढ़ाते हैं हम अपने कदम और अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं कतर ग्रीन बीट पर। तो कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ। और अब कतर ग्रीन बीट पर चलिए बात करते हैं द ग्रीन वायर की। तो जनाब, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेडियम का DNA कैसा होता है? अक्सर स्टेडियम पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट से बनते हैं, भारी भरकम और हमेशा के लिए एक ही जगह टेके हुए। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी इंजीनियरिंग की कहानी है जो किसी साईफाई मूवी या मार्वल फिल्म से कम नहीं लगेगी। मैं बात कर रही हूँ हमारे सबसे अनोखे, सबसे वाइब्रेंट और सबसे स्मार्ट स्टेडियम की, स्टेडियम 974। जब मैं पहली बार रास अबू अबूद के पास से गुजरी और दूर से इस स्टेडियम को देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया। वो कलरफुल कंटेनर्स, वो स्टील का फ्रेमवर्क, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समुंदर के किनारे एक जायंट, वो जो बच्चों के ब्लॉक्स गेम होते हैं ना, उसका सेट तैयार कर दिया हो। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये कतर के माइंडसेट का एक जीता जागता सबूत है। आपने कभी सोचा है कि इसका नाम 974 ही क्यों रखा गया? इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी है। सबसे पहले तो ये हमारा इंटरनेशनल डायलिंग कोड है, कतर की पहचान है। जब भी कोई बाहर से फोन करता है तो 974 डायल करता है। लेकिन इसका दूसरा राज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टेडियम को बनाने में एग्जैक्ट 974 रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर्स का इस्तेमाल हुआ है। इमेजिन कीजिए वो कंटेनर्स जो कभी समुंदर में बड़े बड़े जहाजों पर सामान ढोते थे, आज उन्होंने मिलकर एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम बना दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा कवर्ड फुटबॉल स्टेडियम है जो पूरी तरह डीमाउंटेबल है, यानी इसका एक एक हिस्सा, एक एक कंटेनर और स्टील का एक एक बोल्ट खोला जा सकता है। ये कोई परमानेंट बर्डन नहीं है हमारे ज़मीन पर, बल्कि एक टेम्प्ररी इंतज़ाम है या एक टेम्प्ररी अरेंजमेंट है जो बेमिसाल है। इसने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम में 5-star रेटिंग हासिल की है। क्या कमाल की बात है। और ये रेटिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ट्रेडिशनल स्टेडियम को बनाने में जितना कंक्रीट और पानी जाया होता है, 974 ने उसका एक छोटा सा हिस्सा ही यूज किया। इसने कार्बन फुटप्रिंट को इतना कम कर दिया कि दुनिया भर के इंजीनियर्स आज कतर की मिसाल दे रहे हैं। तो जनाब, असली करिश्मा इसकी कंस्ट्रक्शन में नहीं बल्कि इसकी लेगेसी में है। अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स के बड़े स्टेडियम वाइट एलिफेंट्स बन जाते हैं, यानी ऐसी इमारतें जो खाली पड़ी रहती हैं और जिनका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है। लेकिन स्टेडियम 974 का डेस्टिनी कुछ और ही है। इसके हिस्सों को बिल्कुल जैसे बच्चों के ब्लॉक गेम्स होते हैं, उसकी तरह अलग किया जाएगा। और पता है क्या होगा, ये कंटेनर्स और ये स्टील फ्रेम्स डेवलपिंग नेशंस में भेज दिए जाएंगे ताकि वहाँ के बच्चों के लिए छोटे स्पोर्टिंग वेन्यू, स्टेडियम या हेल्थ सेंटर्स बनाए जा सकें। हमने सिर्फ कतर के लिए स्टेडियम नहीं बनाया, हमने दुनिया के लिए एक स्टेडियम इन अ बॉक्स तैयार किया है। तसव्वुर कीजिए, आज जो कंटेनर हमारे दोहा में बैठकर हमें मैच दिखा रहा है, कल वही कंटेनर किसी और मुल्क में एक नया स्पोर्ट्स स्टार पैदा कर रहा होगा। क्या ये एनवायरनमेंट और इंसानियत के प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतरीन कदम नहीं है? ये है कतर की असली पावर, सोच और अमल का सही

0: मेल। जब मैं 974 के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी जिंदगी में थोड़ा 974 होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, रिसोर्सफुल और हमेशा कुछ नया देने के लिए तैयार। हम अक्सर चीजों को परमानेंट समझ लेते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तब है जब हम रिसोर्सेज को इतने ध्यान से यूज करें कि हमारे जाने के बाद भी वो किसी और के काम आ सके। तो आज का मेरा सवाल आप सबसे यही है कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में क्या रीयूज कर सकते हैं? क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जो आज आपका काम कर रही है लेकिन कल किसी और की जिंदगी बदल सकती है? स्टेडियम 974 ने हमें सिखाया है कि इंजीनियरिंग सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का खेल नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस हमारी आने वाली नस्लों से है। कीप दिस थॉट इन योर हार्ट, हाँ जी, कि स्टे सस्टेनेबल, स्टे ग्रीन, बिल्कुल। और ये जो वादा हमने अभी किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जरिए, मुझे लगता है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसे एक मिसाल की तरह इस्तेमाल करेगी और अपनी लाइफ को और सूदिंग बनाएगी। और मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट। आगे भी हमारी बातें बहुत सारी हैं बाकी, सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट, वेलकम वंस अगेन, आप सुन रहे हैं अपनी अमिता को कतर ग्रीन बीट पर। अब वक्त है हमारे प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट का। जी हाँ, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। याद कीजिए, जब कतर को होस्ट चूज किया गया था इन 2022, तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? सब एक ही बात कर रहे थे कि इतनी गर्मी में फुटबॉल कैसे खेला जाएगा। उफ, लोग कह रहे थे कि इस डेजर्ट की धूप में प्लेयर्स थक जाएंगे और फैंस बेहाल हो जाएंगे। लेकिन कतर ने एक बहुत बड़ा वादा किया था, हम ना सिर्फ कूलिंग देंगे बल्कि हमारा टूर्नामेंट कार्बन न्यूट्रल होगा। अब ये तो वही बात हो गई कि आपको आग भी जलानी है और धुआं भी नहीं निकालना। हाँ, बहुत से लोगों को लगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कतर की मिट्टी में ऐसे जीनेसिस बेस है जो नामुमकिन को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। और यहाँ एंट्री होती है हमारे रियल लाइफ सुपर हीरो की, जिन्हें दुनिया आज डॉक्टर कूल के नाम से जानती है, यानी डॉक्टर साउथ घानी। उनकी और गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ने दिन रात एक कर दिए, एक ऐसा रास्ता निकाला जो सस्टेनेबल भी हो और असरदार भी। इन्होंने कूलिंग के पुराने तरीकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। डॉक्टर साउद ने सोचा, हमें पूरे आसमान को ठंडा करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वहां ठंडक चाहिए जहां लोग हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पॉट कूलिंग। ये एक रेवोल्यूशनरी सोलर पावर्ड सिस्टम है जो कन्वेंशनल एसी मेथड से पूरे 40% कम एनर्जी कंज्यूम करता है। डॉक्टर साउद ने एरोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करके स्टेडियम को एक असली ठंडी थैली या यूं कहें कूल बबल में बदल दिया, जहां बाहर की गर्म हवा अंदर आ ही नहीं सकती। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी जनाब, ये स्ट्रैटेजी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता ये काम कैसे करता है, तो चलिए मेरे साथ इमेजिन कीजिए और अब आगे बढ़ के थोड़ा सा और डिटेल में हम इसकी जानकारी लेते हैं। जैसे कि अल जनूब और एजुकेशन सिटी इनके स्टेडियम्स हैं। स्टेडियम से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा सोलर फार्म लगा है, ठीक है, वहाँ कतर की तेज सूरज की रोशनी से बिजली बनती है। वही बिजली ठंडा पानी जनरेट करती है जो स्टेडियम के अंदर पाइपिंग के जरिए आता है, लेकिन असली मैजिक सीट्स के नीचे है। अगर आप कभी स्टेडियम गए हैं तो आपने देखा होगा कि हर सीट के नीचे छोटे छोटे वेंट्स हैं, वहां से ठंडी हवा बिल्कुल धीरे से निकलती है, इतने धीरे कि प्लेयर्स को या फैन को डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इतनी असरदार कि आपको पसीना ना आए। और सबसे बेहतरीन बात, ये सिस्टम हवा को रीसाइकल करता है। ठंडी हवा स्पेक्टेटर लेवल पर आती है, फिर ऊपर जाती है, वहां से मशीन उसे वापस खींच लेती है, दोबारा ठंडा करती है और वापस भेज देती है। कुछ भी

जाया नहीं होता ये एक इटर्नल साइकिल है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हमें सुकून देता है तो जनाब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फुटबॉल स्टेडियम के 90 मिनट्स तक लिमिटेड नहीं है इसकी असली यूटिलिटी तो अब नजर आ रही है आज यही टेक्नोलॉजी हमारे लोकल ग्रीन हाउसेस में यूज हो रही है सोचिए हमारे जो फार्मर्स हैं जो कतर की गर्मी में भी साल भर सब्जियां और फ्रूट्स या यूं कहें फल उगा सकते हैं वो भी कम एनर्जी खर्च किए इसका मतलब है हमारी फूड सिक्योरिटी और भी मजबूत हो रही है इतना ही नहीं अगर आप कटारा गए हैं या 21 हाई स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हैं तो वहाँ की आउटडोर कूलिंग इसी टेक्नोलॉजी की देन है कतर ने दुनिया को लीड करके दिखा दिया है कि डेजर्ट में रहने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बंद कमरों में रहें हमने आउटडोर स्पेसेस को सस्टेनेबल बनाया है ताकि हमारी नेचर हमारा लाइफस्टाइल दोनों साथ साथ चल सके और जनाब डॉक्टर कोल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान की लगन और साइंस मिलते हैं ना तो कोई भी मौसम हमें रोक नहीं सकता हमने सूरज की गर्मी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया सनलाइट से ही ठंडक पैदा की ये कतर नेशनल विजन 2030 का एक बहुत बड़ा पिलर है हम दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ कंज्यूम नहीं करते हम इनोवेट करते हैं हमने दिखा दिया कि साइंस और नेचर जब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है तो अगली बार जब आप स्टेडियम में बैठकर वो ठंडी हवा महसूस करें तो याद रखिएगा वो सिर्फ एसी नहीं है वो कतर का एक वादा है एक बेहतर और ठंडे फ्यूचर के लिए हाँ जी मैं हूँ अमिता आपके साथ आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की आज हमारे स्टेडियम्स का एक ही कहना है हाँ रीयूज रीयूज और रीयूज और यही सबक हमें अपने घरों तक ले जाना है चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इस स्टेडियम लेगेसी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो द गियर गिव बैक हाँ जी आपके पुराने फुटबॉल बूट्स या जर्सी जो अब छोटे हो गए हैं उन्हें डस्टबिन में मत फेंकिए कतर चैरिटी और एजुकेशन अबव ऑल के ऐसे ही प्रोग्राम्स हैं जो इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को उन बच्चों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आपकी पुरानी चीज किसी का ख्वाब बन सकती है लोकल पिच लव हाँ जी हम सब कम्युनिटी पार्क्स और पिचेस यूज करते हैं याद रखिए इनमें से कई वेन्यूज वर्ल्ड कप के मटेरियल से ही बने हैं इन्हें इज्जत दीजिए वहां रिसाइकल बिन्स का इस्तेमाल कीजिए और हमारे ग्रीन स्पेसेस को हमेशा साफ रखिए होस्ट सस्टेनेबल गेम्स यानी कि अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ मैच ऑर्गेनाइज करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को बाय बाय कहिए सब लोग अपनी रीयूजेबल फ्लास्क साथ लेकर आए अगर सिर्फ 22 प्लेयर्स एक गैलन पानी का यूज करते हैं तो हम साल के 1000 प्लास्टिक बॉटल्स बचा सकते हैं तो सोचिए कितना बड़ा फर्क है लुसेल का वो डेजर्ट रोज डिजाइन हो या अल्बेत का टेंट लाइक कैनोपी हमारे स्टेडियम्स सिर्फ आर्किटेक्चर के नमूने नहीं है ये एक प्रॉमिस है ये एक वादा है जो पूरा किया गया है इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मेगा इवेंट्स का मतलब मेगा वेस्ट होना जरूरी नहीं है जैसे जैसे हम कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं ये स्टेडियम्स हमारी इनोवेशन के मॉन्यूमेंट्स बनकर खड़े रहेंगे ये हमें याद दिलाते रहेंगे कि सबसे बड़ी जीत स्कोरबोर्ड पर नहीं होती असली जीत वो है जो लेगेसी है जो हमें आने वाली नस्लों को जनरेशंस को देनी है और उनके लिए बनानी है वेल मैं हूँ अमिता आपके साथ एंड आई एम वेरी सर्टेन कि आज का जो हमारा कतर ग्रीन बीट है उसका एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो क्या करना है आपको अपने फीडबैक्स अपने सजेशंस अपने व्यूज हमसे शेयर करने हैं 666-22-107 पर 666-22-107 पर अपने नाम के साथ और डेफिनेटली हम उन्हें ज़रूर कंसिडर करेंगे और इसी के साथ अब आपको मुझे देना होगी इजाज़त क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का आपकी मेरी मुलाकात होगी कतर ग्रीन बीट के अब अगले एपिसोड में तो जाने से पहले कहूँगी हमारे सोशल मीडिया FM 107 से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी RJ अमिता को सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं

0: और अभी के लिए ना खूब सारा ख्याल रखिए और याद रखिए कि ये जो गेम की हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल है. रिस्पेक्ट द फील्ड, स्टे ग्रीन और कीप द बीट. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107. Time check.
1: Habibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका. 4:01 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और दोपहर में और फिर अभी वापस द रिक्वेस्ट शो में. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी. कर लो तैयारी भाई, अपने मर्जी के गाने प्ले करवाना है ना, तो तैयारी कर लो और थीम से लो. आज की क्या है FM 107 के आज के शो में, द रिक्वेस्ट शो में थीम है 2015 से लेकर 2020 तक के हिट सॉन्ग आज मैं प्ले करने वाला हूं और आप किसी के भी गाने मुझसे आज प्ले करवा सकते हैं. बीट सोनू निगम, शान, नेहा कक्कड़, उदित नारायण,

0: नारायण ने तो नहीं गाया 15 से 20 के दौर दरमियान, लेकिन उसके बाद सोनू निगम तो हैं, और फिर आतिफ असलम ने बहुत से गाने गाए हैं, राहत फतेह अली खान साहब उनके गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं, जुबिन नौटियाल के गाने आप सुन सकते हैं, किस के गाने, अरिजीत सिंह के गाने आप सुन सकते हैं। तो आज हिट सॉन्ग चलेंगे, आपके अपने मर्जी के सिंगर, आपके अपने मर्जी के स्टार सिंगर, बॉलीवुड का कोई गाना सुनना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कोई एल्बम का गाना सुनना चाहते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। नंबर जहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो है 666-22-107, ये वो खिड़की है जहां आप पासवर्ड यानी कि 666-22-107 का पासवर्ड डाल के एंट्री ले सकते हैं और आप अपने गाने बता सकते हैं। तैयारी बुरी है भाई, और मैंने भी क्या है ना, आजकल अपने को जिम करना पड़ता और ये जिम में सिर्फ उंगलियों का जिमिंग कर रहा हूं मैं कि जल्दी से, हाँ ये वाला गाना ऐसे जल्दी जल्दी करना पड़ता मेरे को, तो इसलिए उंगली जल्दी चलनी चाहिए तो इसलिए मैं जिम कर रहा हूँ भाई, जिम दूसरा वाला। तो बाकी 666-22-107 इस पर आ जाओ और फिर आपके रिक्वेस्ट में प्ले करता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: जी अभी भी दिल से देसी और शुरुआत भी हो गई है लोगों के मैसेज की, और सबसे पहले ये मैसेज आया है मोहम्मद यूसुफ का, सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग। देखो कितना सीधा काम है इनका, गाना इन्होंने बता दिया परम सुंदरी का फलाना गाना, ये होता है तरीका। ठीक है तो यूसुफ भाई, मैं जिम जो किया है ना उसका फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा। फिलहाल हिशाम का सलाम है, वालेकुम अस्सलाम, और यो का लगा दो कोई भी, हमज़ा का भी सिंपल सा तरीका है कि अपने को ज़्यादा मेहनत करने का नहीं है। हनी सिंह उस वक्त यार बहुत ज़्यादा गा तो नहीं रहे थे कि आ गए थे, हनी सिंह का गाना ये तो अभी जिंदा हुए वापस से मतलब, लेकिन पीछे हट गए थे हनी सिंह साहब, लेकिन लेकिन लेकिन अगर ढूंढना पड़े 2020 से तो मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा यार, मेहनत करवा देते हो तुम लोग, कर लेंगे, थोड़ी तो बुद्धि लगाना ही पड़ता है। 2015 से तो 2016 का मैं गाना ढूंढने की कोशिश करता हूँ, हनी सिंह का गाना 2016 का नहीं है, 2017 नहीं है, 2017 का भी गाना है ठीक है, चलो अभी तो मिल जाएगा, फिर उसका मसला नहीं है। तो अपने को थोड़ा और ढूंढवाना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आप भी बता सकते हैं, बाकी लोग 666-22-107 पे। फिर हॉलीवुड का सॉन्ग कौन सुनना चाह रहा है, हाउ आर यू हॉलीवुड का सॉन्ग, सलाम वालेकुम फजल भाई, अजहर भाई ये क्या हो गया भाई, गलत राह पे चल गए आप हैं हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड आप कहीं और चले गए, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, आए हाय ये गाना यूसुफ भाई, अबू यूसुफ हैं ये जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन ये गाना दोबारा 2.0 बन गया हो तो बन गया हो, दिल लगा लिया ये गाना अच्छा है, बट 2015 से 2020 तक के ही गाने अपन प्ले कर सकते हैं। ये 2002 का गाना आपने बताया है, उदित का है और शायद खास से अलका ने गाया है। फिर 7 सेकंड का ऑडियो कुछ देर में, जदू तेरे नैना तकिया, ओहो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, दिलबर साहब कहते हैं सॉन्ग नेम शमा हो गया उड़ीक तेरी करके हैं, क्या लिख जाते कभी कभार पता ही नहीं चलता। खालिम साहब कहते हैं धीरे धीरे आप मेरे फ्रॉम बाजी, बाजी कौन सी मूवी आई थी यार 2015 से 20 के दरमियान, एक गाना तो है लेकिन देखना पड़ेगा, इसकी टाइमिंग देखनी पड़ेगी किस साल में ये रिलीज़ हुआ, बाकी बाजी के कुछ गाने तो अपने पास हैं। खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, सरफराज आलम कैसे हैं, उम्मीद अच्छे होंगे। फिर उसके बाद एक और सलाम, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या हाल चाल, परम सुंदरी का परदेसिया सबसे पहले मैं गाना लगाने वाला हूँ, परम सुंदरी जो रिक्वेस्ट किया यूसुफ भाई ने, और ये गाना यहाँ पर आ गया। बाकी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक एक करके गाना अपन निकालते हैं, सबसे पहले सुन निगम सचिन जिगर और कृष्ण कली की आवाज में FM 107 पे परदेसिया।
2: परदेसिया है तेरे प्यार में।
0: अच्छा मैं ये गाना प्ले करने ही वाला था कि

इधर सामने वाले कोड़े वाले भाई ने वो तेल निकाल लिया यार। मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्यों। अभी मैं देख रहा हूं 2025 का है ये परम सुंदरी मूवी यार, अभी तो कुट जाता मैं, बच गया मैं। सो राइट अवे मैं इस गाने को शुरुआत से कैंसिल करता हूं यूसुफ भाई, परम सुंदरी आई कैन नॉट प्ले। बाकी और कोई गाना अगर आप प्ले करवाना चाहते हैं तो अपन जरूर 2015 से 2020 तक, 25 तो नहीं बोल दिया मैंने गलती से कि आपने सुन लिया हो, बताओ बीच रास्ते से वापस बुलाना पड़ा है। ये गाना प्ले हो चुका था लगभग, हो सकता है मैंने 2025 बोल दिया, एक बार फिर से देख लेता हूँ 2015 से 2020। हाँ यार थीम है आज की 2015 से 2020 तक के गाने, तो अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो इट्स ओके, नो वरीज, हम यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे और आपको 2020 से 2019 तक के 2015 से 2020 बताइए। और गाने बहुत से हैं ऐसे, बाकी लोगों के मैसेज पे आ जाते हैं जिन्होंने गाने की रिक्वेस्ट की हो, फिर उसके बाद अपन जो है देखेंगे। फिलहाल एक और है मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या नाम है आपका? नाम बहुत ज़्यादा मेहनत करवा देते हो भाई, नाम नहीं लिखा है और केपी लिखा हुआ है, कृष्णपाल। के से और क्या नाम होते हैं भाई, खातून। 2025 2024 ये गाने अपन नहीं प्ले कर सकते, 15 16 17 18 19 20 इसके गाने आप मुझसे प्ले करवा सकते हैं। फिर एक और जिंगाट गाना, जिंगाट गाना यार, जिंगाट कब, जिंगाट वो जिंग जिंग जिंग जिंग जिंगाट अजय वाला गाना, देखना पड़ेगा यार मेरे को। जिंगाट जिंगाट ये गाना कौन सा है? ओ धड़क मूवी का, अजय गोगावाले। हाँ अजय गोगावाले और 2018 में धड़क मूवी, ओके जिंगाट जिंग जिंग जिंग जिंग, ये तो गाना अपन प्ले कर सकते हैं एफएम 107 पे। चलो पहला गाना तो अपने को मिल गया और 2020 तक के गाने, 15 से 20 तक के गाने अपन यहाँ पर प्ले कर सकते हैं एफएम 107 पे। फिलहाल ये गाने एंजॉय करें, धड़क का ये ट्रैक एफएम 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अंजी दिल से देसी एफएम 107 बिस तक बात सभी को ये गाना जिंगा डजे वाली की आवाज में। फिलहाल बाकी के तीन गाने अपन तैयार कर चुके हैं और हमजा ने कहा था हनी सिंह का कोई भी गाना प्ले कर दो, तो हमजा भाई मैं गाना प्ले कर रहा हूँ हनी सिंह का बहुत ही ज्यादा वायरल ट्रैक। अनुराधा पौडवाल कुमार सानू ने इस गाने को गाया था और यह है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, लेकिन इसका एक और वर्जन था जो गाया हनी सिंह ने, तो जिसमें वो थे मैं अपने नाम लो अपने वो थे ना, नाम नहीं याद आ रहा, ऋतिक रोशन, हाँ वो भी भाई जो है थे। तो अपन ढूंढ रहे ले, अगर वो वाला गाना मिल जाता है तो अपन जरूर प्ले करेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो भी गाना है। बाकी अपन देखते हैं एक और जो है ये गाना, हाँ चल घर चले अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना है। और एक और सबसे तड़क भड़क वाला मोहम्मद बिलाल ने ये रिक्वेस्ट किया अफगान जलेबी सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद चल घर चले। और अगर हनी सिंह वाला गाना मिल गया धीरे धीरे से, वैसे तो वो अनुराधा और कुमार सानू का पुराना वाला है, लेकिन अगर नया मिल गया तो वो, वरना और भी है वो वाला गाना अपन प्ले करेंगे। लेकिन अगर नहीं मिला तो एक और जबरदस्त गाना आ रहा है साचनन की आवाज में, कॉल्ड कबीर सिंह का ट्रैक का ये गाना बेख्याली में भी, ये भी गाना बड़ा ही लाजवाब है। तो सबसे पहले अफगान भी और ये रिक्वेस्ट है बिलाल की, फिर उसके बाद चल घर चले यूसुफ की, अगर मिल गया तो हमजा की रिक्वेस्ट पे हनी सिंह का गाना, और वरना फिर बेख्याली। बाकी और भी रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट भी तैयार है, बेख्याली वाला जो भाई है वो है सरफराज आलम, तो सरफराज आलम की रिक्वेस्ट पर भी ये गाना अपन प्ले करेंगे। लेकिन आय हाय असरार भाई ने इस गाने में जो जान डाली है, कॉम्पोजिशन किसने की मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन चुम्बेश्वरी अफगान जलेबी, एंजॉय करें इस गाने को FM 107 पे वापस कुछ देर में दिल से।

हाय हाय तू बड़ी जचे Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का 4:25 और एक बहुत ताजी और बेहतरीन खबर आ रही है दोस्तों एक जो शख्स है पिछले 3 महीने से लगातार एक गाने की रिक्वेस्ट कर रहा है और आज वो दिन आ गया है आतिफ असलम का टाइगर जिंदा है से जो गाना सुनना चाह रहे हैं उस्मान भाई की रिक्वेस्ट दिल दिया गल्ला आज प्ले होगा ही होगा वाह भाई वाह मुबारक हो उस्मान भाई कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में देर है देर नहीं ये वाली नहीं है दूसरी वाली कहावत है शायद ना कि ऐसा रस्सी में मजबूती होती है रस्सी जल जाती बल क्या कहावत है यार जो भी है क्या ऊपर वाला कहता है ना कि अरे सब्र का फल कड़वा मीठा होता है तो बस सब्र का फल दिल दिया गल्ला होगा आज आतिफ असलम की आवाज में क्योंकि आतिफ असलम की आवाज मीठी आय आय क्या कवर किया है तो वो गाना प्ले होगा लेकिन उसमें अभी टाइम है पहले तो काशिफ भाई है ना जिनकी रिक्वेस्ट पे बेख्याली सॉन्ग जो है वो प्ले होना बाकी था और ये है साचे टंडन की आवाज में सरफराज काशिफ ने सरफराज पर उसके बाद गाना आएगा हसीना पागल दीवानी ये है मेका सिंह असीस कौर की आवाज में 2017 का ये ट्रैक है और जिस बंदे ने इसकी रिक्वेस्ट की थी वो कहां गया इधर ही था भी उन्होंने कहा है और इनका नाम है साद साद भाई ने रिक्वेस्ट किया है बहुत ही उम्दा सलाम भेजा है वालेकुम अस्सलाम कहां कहां से गाने ढूंढ के लेके आ रहे हैं मेरे को तो पता भी

जिंदगी ये गाना कोई है, इनने उल्टा मूवी का नाम भी लिख दिया इंदु की जवानी। ओम भो, अपनी जवानी में इन्होंने सारी मूवीज देखी हैं यार, कमाल है। फिर उसके बाद एक और गाना आएगा और वो है सयोनी बाय सलमान अहमद, राहत फतेह अली खान और अली नूर। ये कौन सा गाना है लोगों का सवाल, ये एक्चुअली में गाना है को स्टूडियो का और ये भी जो थीम है उसी के आसपास है, तो बहुत ही उम्दा। तीन गाने बैक टू बैक आ रहे हैं, बेख्याली पहले आएगा, फिर हसीना पागल दीवानी, फिर सयोनी और फिर आएगा दिल दिया गल्ला। तो इन चार के बाद अपने पास और तो गाने प्ले करने के वक्त नहीं बचेंगे, लेकिन अगर वक्त बच गया तो तुम्हारा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, जिद्दी आदमी मैं भी कम नहीं, मैं प्ले जरूर करूंगा। फिलहाल साचे टंडन की आवाज़ में ये गाना सुनिए, कबीर सिंह मूवी का ट्रैक बेख्याली। वापस आएंगे कुछ देर में और जब वापस आएंगे तो उम्मीद है क्योंकि ऑलरेडी टाइम तब तक हो चुका होगा, फिर हम गेम खेलेंगे और गेम का नाम पहचान कौन। बाकी आपको दिख नहीं रहा होगा मैंने इधर से हाथ जोड़ लिया है, जिनके में अपन नहीं प्ले कर पाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, दिल में ऐसा गुब्ज नहीं देख के रखना, ठीक है। कल पक्का, कल मैं तो खुश कर दूंगा, खुशी से मैं प्ले करूंगा कल तुम्हारा गाना, ठीक है। आज वाला रहने दो, अब ये मत कि मुझे 2021 का गाना या कल थीम से हट के गाना प्ले करवा दिया और फिर कोड़े जो है लेकर तैयार है कोड़ा मैन।

सयोनी कोक स्टूडियो का ये ट्रैक सलमान राहत और अली नूर की आवाज में FM 107 पे सुना आपने। और खींच तान के मैं टाइम तो बचा ही लेता हूँ, क्या कर रहे हैं भाई, काम ही अपना यही है, तो काम तो धीरे धीरे क्या है सीख चुके हैं, तो अभी पता है कि क्या करने का है। फिलहाल टाइम अपन पाकिस्तान के यहाँ पर ले आए कि अपन दो गाने और प्ले कर सकते हैं जल्दी से। और आतिफ असलम की आवाज में अगला जो गाना आ रहा है वो है दिल ने गल्ला। उस्मान भाई ये आप ही है ना जो दो तीन महीने से कोशिश कर रहे हैं, मुबारक हो, आज वो दिन आ गया। देखा देर है अंदर नहीं, किसका फल मीठा होता है, इंतजार का, आज मिल गया है आपको। बाकी एक और ये अभी अभी आया है ताज़ा मैसेज, और बहुत से ताज़े मैसेज आए हैं, उनके गाने प्ले नहीं कर सकते। एहसान अली ने कहा है कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, वक्त निकल चुका है, आखिरी हम गाने प्ले कर रहे हैं, प्लीज़ प्ले वास्ते सिंगर ध्वनि। ये देखिए वक्त निकल चुका है, माजरत। और आपका नाम यहाँ पर लिखा कहाँ है, आबिद, ओके, ये वही वाले न्यूजीलैंड वाले दोस्तों, ये न्यूजीलैंड वाले जो 11 मुल्क गिनवाए थे ना न्यूजीलैंड, फिर बाद में काट दिया था, ये देखो आबिद भाई न्यूजीलैंड वाले हैं ये। बाकी खलील पारचा कहते हैं फजील भाई मैं गाना चाहता हूँ। आप गाना गाना चाहते हैं क्यों भाई, आपने सोच ही लिया है कि कोड़ा पिटवा ही देंगे फजील को? रहन दो मेरा भाई, जिस दिन वो चल रहा होगा ना सिंगर हंट तो अपन आपसे जरूर गवाएंगे। बाकी मुमताज भाई ने कहा है प्रेम रतन धन पायो, ओ हो, गुजिया वुजिया लेते चलो, बिस्किट विस्किट लेते चलो, चलो ठीक है। ये गाना वैसे तो मुश्किल है कि अपन प्ले कर पाएं, बट फिलहाल अभी हम दो गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। उस्मान भाई की रिक्वेस्ट दिल दिया गल्ला पहला गाना, और फिर मुमताज की रिक्वेस्ट प्रेम रतन धन पायो, इन पर आ रहे हैं फिलहाल। और खूबसूरत सा म्यूजिक, बेहतरीन गाना, आतिफ असलम की आवाज, मूवी जबरदस्त, और क्या चाहिए।

मुमताज भाई की रिक्वेस्ट आज फाइनली प्ले हो गई है पलक मुच्छल की आवाज में गाना प्रेम रतन धन पायो। गाना तो फिर भी चल गया, मूवी तो ऐसी चली थी कि जितने भी ऑडियंसेस थी ना वो थिएटर से जैसे ही एंट्री लेती थी फिर वो चल के बाहर आ जाती थी। उनका ये था कि अरे भैया इतना टॉर्चर कहाँ नहीं झेल पाएंगे। लोगों के लिए मूवी ऐसी थी कि भाई अगर हमने इसको देख लिया तो कोड़ा मैन फजील को कोड़ा मारे ना मारे, ये मूवी अगर पूरी देख ली तो कोड़े जैसा फील जरूर होगा। ऐसी आफत से

दूर रहने के लिए, ऐसे ऐसे मूवीज से दूर रहने के लिए सुनिए रिव्यू ऑफ द वीक फजील के साथ। हल्के हाथ से देख रहे हो कैसे प्रमोशन हो जाता है बातों बातों में। पैसे बचाने हो तो सुनिए रिव्यू ऑफ द वीक अगस्त के महीने से हर थर्सडे रात को 9 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। फजील भाई तुम्हारी बात अलग है यार, कुछ तो है। मेरा हाथ नहीं पहुंचता है पीठ तक, वरना मैं शाबाशी तो दे ही लूं। 4:48 हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त आ गया है पहचान कौन गेम खेलने का, जहां पर लिरिक्स को जो है बीच से काट पीट के मैं यहां पर तैयार कर लेता हूं और आपको बताना होता असली गाने का नाम। पहचान कौन में यही होता है, लिरिक्स बीच से कहीं से भी प्ले हो जाएंगी। कोशिश करूंगा कि ऐसी टफ हो के थोड़ा सा आपको सोचना पड़े, लेकिन 2015 से 2020 तक का जो थीम था, यानी कि इसी बीच जितने गाने आए वही यहां पर प्ले किए जाएंगे एफएम 107 के शो द रिक्वेस्ट शो में। तो आज थीम पर ही रहते हुए अपन पहचान कौन के गाने तैयार कर चुके हैं। अब ये तीन गाने प्ले कर रहे हैं और आपको पहचानना होगा, गाने का नाम बताना होगा। नंबर है 666-22107। तैयार, रेडी, उंगली तैयार, गाड़ी पार्किंग में लग गई है, शुरू करते हैं। पहला गाना वो है ये।

बस बाबू मोशाय, इससे ज्यादा अपन नहीं प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फलक एसगर के ने सबसे पहले इस गेम में हाथ जो है आजमा लिया है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। यूसुफ भाई ने भी कहा है कि पुराने खिलाड़ी हैं वो। हुसैन साहब ने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया, बहुत ही उम्दा। फिर ये किसका जवाब है, यहाँ पर नाम तो है आबिद, न्यूजीलैंड वाले। अब मैं आबिद न्यूजीलैंड यही लिखूंगा, मैं इनका नाम भी ऐसे ही सेव करूंगा, आबिद न्यूजीलैंड वाले। मजा आता है भाई, ये कुछ दिन पहले मैंने इनका नाम भी लिया था। हाँ, न्यूजीलैंड वाले लिख लिया मैंने। और एक और ये जवाब है सर साहब का, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही उम्दा। फिर एक और सही जवाब आ गया है, नाम है इनका अरमान खान, उम्दा। और फैसल साहब ने जवाब गलत दिया भाई आपने, ये तो मूवी कि मैं कह पाऊं कि हाँ यार मूवी आपने सही दिया है। जालिमा सॉन्ग ये कहाँ से ले रहा है मिस्टर खान साहब, ये गलत है, बहुत लंबे और बहुत दूर निकल गए आप। हिशाम साहब बिल्कुल सही जवाब देते हैं। और फिर सलाम करने के बाद तैमूर रहमान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और जुनैद ने कहा है दिल वाले, दिल वाले मूवी का ये ट्रैक है एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड।

अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की आवाज में ट्रैक और बहुत लाजवाब गाया। असल में मूवी अगेन ऐसी थी कि जैसे ही मूवी देखने के लिए आप एंट्री लें, आधे घंटे बाद आपको समझ में आता है कि जेब पे चूना पड़ चुका है। दिलवाले ये मूवी थी नहीं चली, लेकिन गा तो बहुत तगड़ा चला। गेरुआ इज द करेक्ट आंसर। दूसरे सॉन्ग पे आ जाते हैं। दूसरे सॉन्ग को आपको गेस करना है, बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे। बताइए गाने का नाम क्या है, ये आपको बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 666-22-107। बताइए असली नाम क्या है। बाकी मूवी वूवी तो इसमें मजा नहीं है, फिर ये नहीं कर सकते आप। वैसे दिल वाले एक और शख्स ने जवाब दिया था, हीरू भाई ने जवाब दिया था, और एक ने कहा है रंग दे तुम ओहे गेरुआ। एहसान अली लेट कर दिया जवाब, मैंने बता दिया था उसके बाद आपने शायद दिया है। गुड आफ्टरनून काइंडली विश माय फ्रेंड। अरे वाह भाई, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम सैयद इस्माइल। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। 600 700 800 साल आप जिए, आपके दाढ़ी भी सफ़ेद ना हो, इतना जिए कि कभी कभार आपको बोरियत महसूस हो कि अरे हमारे वाले सारे दोस्त चले गए, अब क्या करें, इस्माइल भाई है ही नहीं बचे। इतनी ज्यादा नहीं देनी थी क्या, सॉरी, लेकिन आपकी उम्र जो है इंशाल्लाह लंबी होगी। बाकी खलील ने कहा है राजा राजा

अरे ये राजा की दिल से है दुआ, रे मेरा भाई ये गेरुआ के गेरुआ लिख देते यार, अब तक तो वक्त भी निकल चुका है। यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, शुरुआत हो गई है। फलक एसआर के ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, फिर उसके बाद तैमूर रहमान ने सही जवाब दिया है, और एक और भाई है ये नए वाले क्या, अबू यूसुफ, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा। फिर फैसल भाई ने भी खेल में अपना मुजाहरा दिखाया है अपने खिलाड़ी होने का। एंड देन साद ने बिल्कुल सही जवाब दिया, दोनों जवाब सही है। एक ऑडियो है, कुछ देर में सुनेंगे फिर बताएंगे सही जवाब है या नहीं। कैसर साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शाम ने सही जवाब दिया है, हुसैन साहब, हुसैन साहब के साथ साथ ये हैं एहसान साहब, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और फाइनली एहसान अली ने सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा। सो गाने का नाम है नशे से चढ़ गई, नशे से चढ़ गई।

0: पहचाना और अब आपको पहचानना है तीसरा गाना, गाने का नाम बताइए 666-22107 पे, और तीसरा गाना है ये।
1: हर जहां जहां जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे।
0: बस दो लाइन से ऊपर नहीं प्ले करूंगा इस वाले का, एक बार फिर से सुन लो।
1: हर जहां जहां जाए तेरे पीछे पीछे आए,
0: आपको बता दूं, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हुसैन साहब ने जवाब दे दिया, और शुरुआत के अगर तीन रैंकिंग करें तो हुसैन साहब है, फिर कैसर साहब है, फिर यूसुफ भाई है। बिल्कुल सही जवाब है, तीनों जवाब इन्होंने सही बताए हैं। फिर उसके बाद एहसान अली ने एग्जैक्ट वो नाम नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, ये माना जा सकता है। हिशाम ने सही जवाब बताया है, फिर नाम भाई का है। हीरू साहब ने बिल्कुल सही जवाब बताया है। फलक एस आर के ने थोड़ा लेट जरूर कर दिया, लेकिन सही जवाब है। वेल, रैंकिंग तो वैसे भी नहीं हो रही, सही जवाब होना चाहिए। एहसान साहब हैं ये, दो सही जवाब के साथ बिल्कुल सही खेल का मुजाहरा किया है। तैमूर रहमान ने सही जवाब दिया है, और दिल धड़का है बस इतना लिखा है अबू यूसुफ ने। गाने का नाम लेकिन असल में कुछ और है, नेहा मेका और कुमार सानू ने मिलकर गाया है, गाने का नाम है आँख मार।

बिल्कुल सही जवाब लोगों का, और अब इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, लेकिन एक आखिरी काम आप कर दीजिए। तीन गाने मेरे पास हैं, गेरुआ, नशे से चढ़ गई और आंख मारे, ये हैं 2015 से 2020 तक के ट्रैक। इनमें से कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, गेरुआ, नशे से चढ़ गई या आंख मारे? थोड़ा मैं तो चाह रहा हूं गेरुआ छोड़ दो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, वोटिंग पर बेस्ड है कि लोग ज्यादा कौन सा कहते हैं। सबसे पहले मेरे पास जवाब आया है सीटी बजाए, ये मकसूद साहब ने जवाब दिया है, ओके अस्सलाम वालेकुम, मेरा जवाब यूसुफ भाई वाला। अरे ये कोई बात कि जवाब पता नहीं है लेकिन यूसुफ भाई वाला। फलक एसआर के ने कहा है गेरुआ प्ले कर दो, और फिर नशे सी चढ़ गई ये कहा है किस भाई ने, फैसल साहब ने, नशे सी नशे सी नशे सी ये कौन कह रहा है, सैयद इस्माइल भी कह रहे हैं, ठीक है तो मोस्टली नशे सी ही आ रही है। मंदीप भाई भी कह रहे हैं नशे सी, ठीक है तो अपन गाना चला रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। पाले हो नशे सी चढ़ गई, ये गाना एंजॉय करें FM 107 पे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे FM 107 के इसी स्टूडियो से डायरेक्टली लाइव। कोड़े मैन कह रहा मेरी मेरी मेरी बात भी कर दो, अच्छा हाँ ठीक है आपके साथ भी, यानी कि फजील और कोड़े मैन के साथ हम मिलेंगे कल शाम को 4 बजे आपके अपने मर्जी के गाने के साथ। दिल से दही से अपना ख्याल रखिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: मैं टाइम बता दूं सुकून से अभी। रोने अब कोई फायदा रोने का?
3: ये बोल रहा था कहानी अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगती कहानी, मैंने इसको ट्रीटमेंट दे दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया मैंने इसका।
2: रोना नहीं, अब मैं दूसरी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? अब भी अच्छी नहीं लगी फिर बताऊंगा तेरे को।
3: पूरा अपडेट कर दिया मैंने इसको, आपको तो अच्छी लगती है ना
2: मेरे से यार रोना। नहीं नहीं दूर हट के रो भाई प्लीज, आंसू गिर रहे इधर।

Şabaş, şabaş, şabaş. Assalamualaikum, 5:30 मिनट और हाजिर है आपका एंटरटेनमेंट का भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड और भाई साहब लट गाड़ देंगे, धुआं उड़ा देंगे, मौसम बदल देंगे। मैं कबीर हाजिर हूँ एफएम 107 पे। और क्या हाल है? बढ़िया। देखो कल जो मैंने कहानी सुनाई थी उस पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया था। आज मेरे पे बहुत प्रेशर है। नाजिब बहन वालेकुम सलाम कह रही है, वीडियो स्टोरी कुछ मैसेजेस आ चुके हैं। आपने नहीं किया मैसेज अभी तक? व्हाट्सएप उठाइए, मतलब ईशो में तो करना पड़ा। कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ तो करना पड़ेगा आपको मैसेज भाई साहब। नहीं यहाँ नहीं चलता, यहाँ वो ठीक है, आप साइलेंट लिसनर होंगे, कभी कभार कर दिया करो यार एक मैसेज। अस्सलाम वालेकुम भाई, 3 मिनट लेट आए ये लोग, या मेरे पे जुर्माना लगा रहे हैं। सफ़ीर भाई कह रहे हैं 3 मिनट लेट आए हो, क्या मुखालफा लगाओगे सफ़ीर भाई? वालेकुम अस्सलाम फलक भाई, राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, एम के भाई वालेकुम अस्सलाम। और नाजिया बहन के बाद गाबा जी लिख रहे हैं, गाबा भाई कह रहे हैं कैप्टन साहब फ्लाइट कदा जावेगी भाई? आज भाई फ्लाइट ना उड़ेगी, आज उड़न तस्तरी बना देंगे भाई। सईद खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम, और वालेकुम अस्सलाम। एक और मैसेज आया है मेरे पास, इनका नाम है रोहू प्रवीण साहब, थैंक यू सो मच। और मैसेज क्या है, अस्सलाम वालेकुम चाचू कह रहे हैं। और भजी जी क्या हाल है? मिस्टर खान साहब का मैसेज है। इनके बाद फ्रॉम पाकिस्तान पेशावर से मैसेज आया मेरे पास सलमान भाई, सलमान भाई भाई। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका मैं नाम नहीं जानता लेकिन फिर भी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, दो मैसेज पढ़ दूं। क्या आपने परसों की स्टोरी सेंड नहीं की? क्या बात हो गई भाई, सेंड तो की होगी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई सेंड की होगी, आपको मेरी नहीं होगी। मैं एक बारी और सेंड कर देता हूँ, ये लू। ठीक है जी, मौज करो। एक मैसेज है मनदीप, आई एम ऑन टाइम। मनदीप भाई लेट्स गो। मनदीप भाई आज पहली बार तो आए हैं क्या आप शो में यार? मेरे भाई मनदीप भाई, आप इससे पहले मैं नाम लिया नहीं आपका, मुझे याद नहीं आ रहा। मनदीप भाई किधर से हैं आप मेरी जान? और अब आ गए हैं तो इस शो में रहना है आपको। ये फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ नहीं मनदीप भाई, एकदम फील आएगी आपको, लगेगा आप नेपाल इंडिया के आसपास ही रहते हैं, ठीक है यहीं पर रहने का। एक भाई हुसैन भाई का, अस्सलाम वालेकुम भाई, उड़नदस्तरी में पकौड़े होंगे कि नहीं भाई? इनको अलग मौज आ रही है भाई, पकौड़े चाहिए इनको उड़नदस्तरी में। हाँ भाई सब होगा, बढ़िया करके लूडो शूडो खेलेंगे भाई। एक मैं कल की स्टोरी, कल की स्टोरी नहीं मिल गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ये लिखते हैं बाकी कल वाली स्टोरी में तो कहते हैं ना कि लसन लगाना वही हुआ बंदे के। बाकी एंड में मुझे ये क्या लग रहा था कि दोस्त ड्रैकुला बना के दरिया था, वो हार्ट अटैक से मर गया होगा, लेकिन लसन ना। देखो लसन कितनी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है मलिक वकास साहब, ये आपको कल की स्टोरी ने समझा दिया है। ढोल मेरी जान, मैं ढोल थोड़ी देर में बजाऊंगा। एक मैसेज, कबीर ये किसके रोने की आवाज़ है? कह रहे लग रहा है शकीब भाई की आवाज़ है। नहीं नहीं नहीं शकीब भाई की नहीं, ये मेरा सस्ता था साउंड इफेक्ट, तो भाई डाउनलोड किया था मैंने ये। कहो तो शकीब भाई की असली आवाज़ चाहिए क्या आपको? हुसैन भाई कहना मायू टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग। वालेकुम अस्सलाम नियाज भाई, कैसे हैं भाई? संडे को जो स्टोरी थी उस पर मूवी है भाई, मने तो दिखी ना एक भाई। वालेकुम अस्सलाम बासित भाई, सीधा यूएसए से मैसेज कर रहे हैं, बताया आपको, देख रहे हैं आपके भाई को कहाँ कहाँ से मैसेज आ रहे हैं, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई इतनी दूर से मैसेज। हाजिर दुलादी भाई लिखते हैं, कबीर भाई व्हाट इज़ द स्पेशल प्रोग्राम टुडे? मैं बताता हूँ, एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम कब्बू भाई। अरे कब्बू भाई के एम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इट्स अ वेरी क्यूट नेम। जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, ओके थैंक यू सो मच। तो और ख्याल भाई ने मैसेज, ख्याल भाई तो मच एन क्या हाल है जी? मैं बढ़िया। और कोई मैसेज आया, फाइन क्या फाइन तो होना है भाई, 5 रियाल का ढोल बजा तो बजाना ही पड़ेगा भाई, अब तो बजाना ही पड़ेगा पब्लिक की हाई डिमांड पे। आज कबीर साहब खुद ढोल लेके निकले, इधर गया ढोल, आज ही पब्लिक तैयार है भाई, बजाओ 10 रियाल। ये तमाम जनता को जो एफएम 107 सुनती है 5 बजे, बहुत सारा प्यार है। मैं क्या रुक जाओ अभी, तो मैं जरा आज का प्रोग्राम बता दूं आपको। देखो जो मेरे पास कहानी है ना, मैं आपसे देखो मैं दिख रहा है, देख भी तो नहीं सकते आप, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं आज की कहानी लाइव सुन लेना। इस कहानी ने मेरा खून चूस लिया भाई, 6-7 घंटे की मेहनत लगी है आज की कहानी पे, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट स्टोरीज एवर। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबी ना हो ताकि आप ये ना समझे कि ये तो पका रहा है, बट ये सबसे लंबी कहानी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, एंड प्रोबेबली सबसे कॉम्प्लेक्स कहानी भी।

0: सकती है. बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं आज, इस कहानी ने मेरे बहुत टाइम खाया भाई, बहुत टाइम खाया. इतनी शो की तैयारी नहीं करता जितनी इस स्टोरी के चक्कर में मुझे तैयारी करनी पड़ी है. सो जस्ट गेट रेडी फॉर समथिंग रियली रियली रियली रियली स्पेशल. ये ऐसी कहानी है जो मैं चाहता था कि वीकेंड स्पेशल हो, पर मुझसे रुका नहीं रहा. एंड आई कैन नॉट वेट टू मेक यू लिसन दिस. तो बहुत स्पेशल कहानी है एंड आई होप कि आप इसके लिए तैयार हैं. ठीक है, 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलते हैं और उसके बाद कहानी कुछ देर में स्टार्ट कर देंगे. जाना आपने नहीं, बेस्ट जगह पर हैं आप, हाँ यहीं रहो.
1: की मसरूफियात और थका के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं. आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर.

भाई कितने लोग हैं, साफ सीधी बात बता दो, लंबी सुनने के लिए तैयार हैं जो लाइव सुनने वाले हैं? आई वुड लव टू नो। आज नर्वसनेस थोड़ी सी ज्यादा है, आज मुझे डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा क्या नहीं आएगा, बट आई एम सो इनटू इट आज की स्टोरी में। अबू मैसन साहब, वालेकुम अस्सलाम, मैं बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। खैर भाई ने भी बहुत प्यारा सा मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया लिखा है और बहुत सारी दुआएं दी हैं और बहुत सारी तारीफें करी मेरे भाई ने, थैंक यू भाई। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी इज्जत दी, अल्लाह ने आपके जरिए इतनी इज्जत बख्शी मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मेरी जान फॉर द स्वीटेस्ट मैसेज एवर। ओके, तो अगर आप लाइव सुनने वाले हैं ना मुझे आज, तो जस्ट लेट मी नो, बिकॉज आज मेरे पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है। आज की कहानी हिस्टोरिकल भी है और आज की कहानी थोड़ी लंबी भी है और आज की कहानी कॉम्प्लेक्स भी है, एंड दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट बिजार स्टोरी एवर। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इस कहानी के बारे में कभी सुना हो, पढ़ा हो, जाना हो, पर आई अस्यूमिंग के 95% जो जनता भी सुन रही है उसको इस कहानी के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं जो हूँ आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आज मैं सोच रहा हूँ कि आज की कहानी मैं शुरू कर ही दूँ अभी, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। तो पब्लिक तैयार है तो, और मैं भी ज़रा तैयारी लेता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं थोड़ी देर शुरू करूँ। और भाई कह रहे हैं नजीम भाई कि डरो नहीं भाई, डर लगता है भाई, इतनी बड़ी तैयारी करिए आज की स्टोरी के लिए। सो मैं तैयार हो जा रहा हूँ।

0: के बाद कहानी शुरू कर देते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम आज क्योंकि इट विल गोइंग टू टेक टाइम। ये बीच में कितने मिनट का 57 सेकंड के बाद आज का किस्सा शुरू करते हैं, ठीक है? ओनली 57 सेकंड्स, तो प्लीज आ जाइए और मैसेज कर दीजिएगा इफ यू आर लिसनिंग टू मी लाइव। आ जाओ।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी बल्कि भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और भी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए दोहा डायरी विद आर एस सर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दो डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
0: ओके, अब आज की कहानी कितनी यादगार बनेगी ये तो पता लगेगा। अब फाइनली मेरे एग्जाम देने का वक्त आ गया है और आप भाई साहब इनविजिलेटर, आपका वक्त आगे इस कहानी को जज करें, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगी। सो प्लीज फोकस के साथ सुनिएगा और मेरे साथ साथ रहेगा, मैं बोलूंगा और आपको नजर आना चाहिए। ऑलराइट, चलो जी रिकॉर्ड देता हूं मैं भी अपनी तरफ के लिए। कहानी को शुरू करते हैं। सॉरी डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा। आज का किस्सा इज वन ऑफ द मोस्ट, रहने दो कुछ नहीं बोलना मुझे, वर्ड्स ही नहीं मेरे पास। लेट्स बिगिन, वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। ओके, तो आज का जो किस्सा है इसे शुरू करने के लिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। लेट मी टेक यू बैक इन टाइम, वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और ले चलता हूं आपको साल 1919 में, 1919। जगह बार्सिलोना स्पेन, और बार्सिलोना स्पेन एक लड़का था 7 साल का, उसका नाम था हुआन पुहोल गार्सिया। हुआन ऐसा था जो अपने ही आसपास की कंडीशन में फिट नहीं होता था। उसके जो वालिद साहब थे, जो फादर थे, उनकी टेक्सटाइल फैक्ट्री थी खुद की, वो बहुत ही लिबरल और सेकुलर टाइप के पास था। वो मानता था कि प्रोग्रेशन जरूरी है, लोग रीजनिंग आनी चाहिए, और जो माँ थी वो थोड़ी सी ऑपोजिट थी, वो काफ़ी रिलीजियस थी, डिसिप्लिन में, ट्रेडिशन में बहुत यकीन रखती थी। और जब भी डिनर पे बैठते थे तो बीच में हुआन बैठता था, उसके राइट हैंड साइड पे उसकी माँ बैठती थी और लेफ्ट हैंड साइड पे उसके फादर बैठते थे, और दोनों के दोनों बहस करते थे अपने अपनी आइडियोलॉजीज को लेकर। और जो यंग हुआन था, बीच में बैठ के एक तो पक जाता था और वो ये सीख रहा था कि दो सिस्टम के बीच में जिंदा कैसे रहा जाए। कुछ दिनों बाद ही 7 साल के इस हुआन को उसके माँ बाप ने बोर्डिंग स्कूल में दिया। वो ऑलरेडी अभी तैयार कर रहा था अपनी जिंदगी से, ऑलरेडी 3-4 कर रहा था, 2-5 का था, और उसे जिस बोर्डिंग स्कूल में भेजा वो और भी स्ट्रिक्ट स्कूल था। ये जो स्कूल था यहाँ पे लगातार डिसिप्लिन में रहो, रूल फॉलो करो, ये मत करो, वो मत करो, और ऊपर से एक निवाला लेने से पहले भी प्रेयर्स करो, साथ में बैठो, और ये सब हुआन को समझ में नहीं आ रहा था। उस भाग जाना चाहता था और इसी वजह से उसकी हर रोज लड़ाई होती थी बाकी स्टूडेंट्स कभी टीचर से, और काफी चिड़चिड़ा हो चुका था। और इस बहसबाजी का नतीजा ये आया कि एक मरतबा एक टीचर ने उसे भी क्लास के सामने बहुत जलील किया, इनफैक्ट उसको चांटा भी मार दिया। और जब बात यहां तक पहुंची तो सब क्लास वाले कुछ चुप थे, कुछ हंस रहे थे, और हुआन जो था वो इसके बाद यहां पे एक सेकंड नहीं बिता सकता था। वो वहां से क्लास से भागा और भी लौट कर वापस नहीं आया, वो घर गया अपने। माँ बाप ने उसको ज्यादा भाव नहीं दिया, माँ बाप ने कहा ठीक है जो मर्जी आए कर, एंड दे वर रियली रूड टू हिम, बिकॉज उसके होने ना होने से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, जबकि वो उनकी खुद की औलाद थी। दोनों माँ बाप अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर लड़ रहे थे। जब 13 साल का हुआ तो उसे लगा कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, और वो एक हार्डवेयर स्टोर में नौकरी ढूंढने के लिए निकला। उसके पास कोई हाई स्कूल का डिप्लोमा नहीं था, किसी किस्म के कनेक्शंस नहीं थे,

वो बस एक बच्चा था, पर आम बच्चा नहीं था। वो लैंग्वेजेस बहुत जल्दी पकड़ लेता था और ये टैलेंट उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा इस हार्डवेयर की दुकान पे काम करते करते। एक तो उसकी घर की भाषा थी कैटलन, उसके अलावा वो स्पेनिश बोल लेता था जो उसने सड़कों से सीखी थी, फ्रेंच भाषा जो थी वो कस्टमर से सीख लेता था, और अंग्रेजी, अंग्रेजी वो किताबों से पढ़ के सीख लेता था। ये जो उसकी स्किल थी भाषाएं जल्दी पकड़ने की, ये उसकी मेन स्किल भी नहीं थी। मेन स्किल उसकी ये थी कि वो लोगों को पढ़ लेता था, उसे समझ में आता था कि कौन सा इंसान क्या चाहता है। अंडरस्टैंडिंग उसकी बड़ी जबरदस्त थी और जिस बंदे को जैसा चाहिए वो वैसा ही बन जाता था। अगर सामने वाला जो है वो थोड़ा गुस्सैल है और वो कुछ चाह रहा है तो हुआन बिल्कुल उसके लिए रिएक्ट करेगा, उसके ऑपोजिट रिएक्शन नहीं देगा, विच इज अगेन अ वेरी सुपीरियर टैलेंट। बहरहाल जरा वक्त को आगे ले चलते हैं। 1936 आया और ये साल बहुत अहम है। स्पेन में एक सिविल वॉर थी दो भाइयों के बीच में, फैसिस्ट और रिपब्लिकन पार्टी दोनों आपस में बढ़ रहे थे। हुआन को रिपब्लिकन पार्टी में ड्राफ्ट कर लिया गया मगर फिर उसको जेल हो गई। अब आप सोचिए जेल किस बात पे हुई? जेल इस बात पे कि तुम्हारे फादर जो हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टी क्यों है, इस बात पे उसे सजा दे दी। तो समझ नहीं पाया क्या हो रहा है उसके साथ। उसके बाद वो वहां से छूटा तो फ्रैंको नरिस्ट आर्मी में भर्ती हो गया। अब यहां उसको इस बात पे मार पड़ी कि तुम रिपब्लिकन के साथ क्यों थे, हर साइड से मार पड़ी उसे। वो बाहर निकल गया, वॉर ये वाली खत्म हो गई 1939 में जाके। हुआन जो था वो इतना ज्यादा सीख चुका था इन तमाशों से कि उसे समझ में आ गया था लड़ाई आइडियोलॉजी की है, मतलब जो इंसान की सोच होती है उस आइडियोलॉजी की लड़ाई है, लोगों के बीच में लड़ाई नहीं है। अगर किसी इंसान की आइडियोलॉजी है ही नहीं तो वो बच जाएगा, वो ये मानता था। आइडिया मैं आपको समझा देता हूं देसी भाषा में। जैसे आपकी कोई आइडियोलॉजी है, आप मानते हैं मेरे उसूल है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, आप बहुत चीजें मानते हैं, ठीक है। मैं आपके ऑपोजिट कुछ मानता हूं, जो आप सोचते हैं उसका बिल्कुल उल्टा सोचता हूं, तो आपकी और मेरी बहस हो जाएगी, राइट। लेकिन आप कुछ मानते हैं और मैं कह रहा हूं हाँ ठीक है, ठीक है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता मुझसे और आप मुझसे कहेंगे। एग्जैक्टली यही हुआन सीख गया था। मगर फिर कुछ बहुत बदलने वाला था और ये बदला वर्ल्ड वॉर टू के साथ। 1941 में जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई तो लिस्बन पोर्चुगल वो जगह थी जो इस वॉर के लिए न्यूट्रल थे, इनको किसी से लेना देना नहीं था। और हुआन इस वक्त एक मामूली स्पेनिश चिकन फार्मर था, मामूली सा बंदा, अपनी जिंदगी से हारा हुआ थका वो बेचारा अपनी मुर्गी के फार्म पे काम कर रहा था। लेकिन कुछ लोग आए जिनका कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए हुआन से, लेकिन उन्होंने इस आम आदमी को छेड़ दिया और वो इतना छिड़ चुका था ऑलरेडी कि वो भरा बैठा था। जब उसके साथ इन सब कुछ हो गया, इन्होंने भी उसके फार्म में थोड़ी तबाही मचाई, तो उससे लगा अब तो कुछ करना चाहिए। और हुआन गार्सिया इसके बाद जो करने वाला था उसके लिए शायद दुनिया तैयार नहीं थी। तो हुआन ने इसके बाद क्या किया, हुआन जो था इसके बाद सीधा गया ब्रिटिश एम्बे और वहां पर जाके बोला कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में है ना ये, और मैं आपके लिए स्पाई बनना चाहता हूं, मुझे आप रख लीजिए, आपका जासूस बन जाऊंगा मैं। जस्ट इमेजिन कि एक आम आदमी पहुंच जाता है अचानक से एम्बेसी, बोले मुझे स्पाई रख लो, तो क्या रिएक्शन आएगा वहां पे जो ऑफिस बोले कि क्या बात करो भाई, स्पाई रख लो, ऐसा थोड़ी होता है, कोई एक्सपीरियंस है तुम्हें? तो बोला नहीं, मुझे रख लीजिए। तो बोले भाई तू जा यार, और उसको भगा दिया वहां से। दोबारा आया वो, उन्होंने दूसरे ऑफिसर से कांटेक्ट किया, उसने बोला कोई इंटेलिजेंस ट्रेनिंग है तुम्हारे पास, कुछ कांटेक्ट है जर्मनी में? बोला नहीं सर, किसी को नहीं जानता मैं। और फिर उन एक ऑफिसर ने पूछा, उन्हें लगा कि शायद पोटेंशियल है, उन्होंने बोला हाँ भाई क्या मदद कर सकते हो तुम हमारी? और जब ये सवाल पूछा तो हुआन ने एक पॉज लिया, उसके बाद बोला सर इमेजिनेशन। वो ऑफिसर बुरी तरह से हंसने लगा। तीन बार ट्राई किया हुआन ने लेकिन रिजेक्ट हो गया। ये जो ब्रिटिश एम्बेसी वाले थे इन्हें लग रहा था कि ये तो यार आदमी कोई बावला सा है और मुझे

करा कि जर्मनी ने प्लांट किया होगा, हिटलर ने भेजा होगा इसको हमारी तरफ, इसको लेना नहीं है, और उसको भगा दिया। अब हुआन को उधर से मार पड़ गई। हुआन ने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हुआन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हुआन ने कहा अच्छा ये नहीं तो फिर ये सही, और हुआन चला गया जर्मन एम्बेसी। ये एम्बेसी थी मैड्रिड में, और वहां पे जाके इस बार उसने अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया। बोला देखिए मैं एक स्पेनिश नेशनलिस्ट हूं, स्पेन का रहने वाला हूं, और मुझे ना ब्रिटिशर्स से सख्त नफरत है सर, मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं इंग्लैंड में। और साथ में अपनी स्पीच में, उसने सो कॉल्ड स्पीच में ये भी जोड़ दिया कि सर एक बार मौका दीजिए आप, बताता हूं मैं इनको। और सामने बैठा जो बंदा था वो हिटलर की सोच वाला था, थोड़ा एरोगेंट था, पर उसे इस लड़के में कुछ पोटेंशियल दिख रहा था। जर्मनी मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, उन्हें शक तो हुआ पर उन्होंने कहा ठीक है टेस्ट लेंगे हम तुम्हारा। और अगर कोई भी होता इस टेस्ट में फेल हो जाता, स्पेशली हुआन जैसा लड़का जो बेइंतहानों से गया था, मतलब वो एक मुर्गी फार्म में काम करता था, तो उसको टेस्ट तो आप और मैं ये सोचेंगे कि फेल ही होगा। तो इन जर्मन एम्बेसी वालों ने उसको एक किट दी जिसमें इनविजिबल इंक थी, इसमें एक कोड की थी और इंस्ट्रक्शन थे। कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई मेंटरशिप नहीं दी, कोई बैकअप नहीं दिया, और बोले जाओ तुरंत इंग्लैंड और इंग्लैंड जाके हमें रिपोर्ट्स दो। मैंने कहा कि कोई भी होगा तो फेल हो जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो पकड़ा जाएगा, मगर हुआन ने यहां से जो किया वो है इस मेन कहानी का मुद्दा। हुआन ने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं इंग्लैंड, किसी को नहीं पता भी जर्मन सोच रहे हैं तो इंग्लैंड जाके रिपोर्ट करेगा। हुआन गया ही नहीं। 1941 से 1942 के बीच में अपने ही शहर में लिस्बन में पोर्चुगल में हुआन गार्सिया पहुंचा एक पब्लिक लाइब्रेरी में। वहां पे जाके ब्रिटेन से जुड़ी हुई सारी किताबें छान मारी उसने, ट्रेन के शेड्यूल कब होते हैं, कौन सी गाड़ी कब चलती है, कौन सी जगह में है, इंग्लैंड की सारी खबरें, उसके अखबार, उसकी मूवीज, एक एक चीज, इनफैक्ट वहां का लिवरपूल का मैप सब रट लिया, सब अपने पास रख लिया। वो कभी ब्रिटेन गया ही नहीं, पर उसने दूर बैठे बैठे इस आम आदमी ने हिटलर को और पूरी फौज को कन्विंस कर लिया कि वो उनका बेस्ट एजेंट है लंदन में। कैसे ये मैं बताता हूं, ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, एक आम आदमी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑफिसर से भिड़ रहा है, पर उसने एक चीज क्रैक कर ली थी। वो चीज ये थी कि इंटेलिजेंस में काम करने वालों का काम बड़ा बोरिंग सा होता है, ये उसने सीख लिया था। अब उससे बोला गया था रिपोर्ट दो, तो वो समझ गया था अगर मैं ज्यादा ही जोशो खरोश में रिपोर्ट दे दूंगा तो फंस जाऊंगा। तो उसने क्या किया, नॉर्मल रिपोर्ट तैयार करी, जैसे कौन सी फैक्ट्री की लाइट रात में जाती है लंदन में, कौन सी गाड़ी कितने बजे जाती है, ये सब। और पहली रिपोर्ट में हुआन ने डिस्क्राइब करे लिवरपूल के डॉक, जहां पे जहाज नहीं रुकते वो वाली जगह। इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिली उसे, न्यूज़पेपर से, ब्रिटेन के अखबारों से। वहां पे जहाज के नाम वाम नोट करी उसने, वहां से चेप दिया पूरा और एक रिपोर्ट करी। और इस सच में थोड़ा झूठ मिला दिया, जानबूझकर इंफॉर्मेशन को इतना बोर कर दिया, इतना बोरिंग बना दिया कि जब इंफॉर्मेशन भेजी तो वो तो इंप्रेस हो गए। वो नॉर्मल रिपोर्ट दे रहा था, उसमें लिखा बारिश हो रही है, विजिबिलिटी खराब है, वो जो डॉक है वहां पे जहाज जो है मूवमेंट नजर आ रही है। और जर्मन्स को लगा क्या ऑथेंटिक एजेंट है भाई अपना, क्योंकि उसने कुछ भी ड्रामेटिक नहीं किया, कुछ एक्साइटिंग नहीं लिखा, मगर उसने वो चीजें लिखी जो नोटिस करने में इंसान को मेहनत लगेगी। अब मैं आपको बोलूं जाओ जरा गिन के आओ कितनी कैब्स घूम रही हैं बाहर, तो लोगे भाई कैसी बातें कर रहे हो, राइट। ये हुआन ने किया, हुआन ने बताया इतने इतने जहाज खड़े हैं सर, बारिश हो रही है, ये वाला जहाज मूव कर रहा है। दिस वॉज द डिटेल जिसे पढ़ के जर्मन्स को लगा भाई वाह क्या एजेंट हाथ लगा है। उसके बाद सेकेंड रिपोर्ट थी, हुआन ने रिपोर्ट में कहा कि उसे एक एजेंट हायर करना है, उसे एक बंदा मिला है जो सेलर है, जहाज का सेलर है वो, और वो ब्रिटिश मर्चेंट शिप पे काम करता है। पैसा कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था, हुआन ने अपने मन से बोल दिया। जर्मन्स को बोला सर एक बंदा है ब्रिटिश जहाज पे सेलर है वो, बहुत बढ़िया है वो। और हुआन ने जो ये ख्याली पुलाव बनाया, इस पुलाव को उसने बहुत अच्छे से पकाया, इस एजेंट का उसने नाम

भी रख दिया, नकली नाम, उसके पीछे की पूरी पूरी बैक स्टोरी लिख डाली, उसको नाम भी दे दिया होजे, और उसके पीछे की कहानी में ये डिटेल तक दे दी कि अरे ये जो सेलर है इसका एक कम्युनिस्ट भाई था, मर गया वो। बोला सर बदले की भावना में है, बहुत पसंद करता है ब्रिटेन को, बस सर होजे के पास ना पैसे नहीं है, उसे पैसे चाहिए। मंस ने बोला ओए पैसे चाहिए, बिल्कुल हम भिजवाते। और जर्मन्स ने हुआन को उस एजेंट के लिए पैसे भिजवाए जो एजेंट है ही नहीं। इट इज ऑल रिटन इन अ रूम, वो रूम में बैठे बैठे उनको अपने ख्याली पुलाव सर्व कर रहा था और ये खा रहे थे। हुआन यहां पे रुका नहीं, हुआन ने एजेंट्स की पूरी पूरी लिस्ट बनाई, हर एजेंट को उसने एक नाम दिया खुद से, हर एजेंट की बैक स्टोरी बनाई, जैसे कि एजेंट टू जो है बताया कि भाई स्विट्जरलैंड का है, न्यूट्रल कंट्री का है, आराम से ट्रेवल कर सकता है सर, वो पेशे बिजनेसमैन है, बहुत भरोसेमंद है। फिर लिखा एजेंट थ्री है सर, ये बंदा वेनेजुएलन स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है ग्लासगो में, ग्लासगो में। अब आप सोचेंगे वेनेजुएलन क्यों रैंडमली बोल दिया होगा, ना ना ना ना ना, उसने उसकी भी वजह लिखी, कह रहा सर ये एक्ट फेक कर सकता और स्टूडेंट है ना, तो इसका पैसे वैसे है नहीं, ये पैसे के लिए सारी डिटेल दे देगा हमें। ये सारी चीजें वो बस ऐसी हवा में फेंके जा रहा था और इतने कन्विक्शन के साथ एक एक डिटेल दे रहा था कि जर्मन्स को यकीन होता ही चला जा रहा था। वो हर एक झूठ को सोच के ऐसे कपड़े पहना रहा था कि दे कुड नॉट सी इट थ्रू। तीनों एजेंट जो उसने मेंशन किए वो है ही नहीं, और तीनों एजेंट को उसने मेंशन नहीं किया, तीनों एजेंट्स की बकायदा रिपोर्ट तक हुआ बनाई, उनको एक पर्सनैलिटी दी, उनके फैमिली बैकग्राउंड को लिखा, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम को लिखा, उनके खर्चे बताए। ये कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई कथाकार कोई सुनाने वाला लिखे जा रहा है। पर एक बार वो फंसते फंसते बचा, हुआ ये कि उसने एक रिपोर्ट तैयार करी, रिपोर्ट में लिखा कि काफिला है और पूल से निकला है और नॉर्थ तरफ जा रहा है सर, शिप नाम भी बता दिया, मगर ये नाम उसने एक पुराने अखबार उठाया था और उसमें एक डिटेल वो मिस कर गया। ये इंफॉर्मेशन जब उसने जर्मनी को दी तो जर्मनी वालों ने कहा भाई हमारा एजेंट कह रहा है काफिला निकला, तो उन्होंने अपनी सारी की सारी बोट सबमरीन सारे खर्चे करके वहां पे फौज खड़ी कर दी, पर कुछ मिले पूरा का पूरा समुद्र खाली, कोई काफिला नहीं आया। अब ये जर्मन को समझ जाना चाहिए था कि हमारे साथ कोई खेल रहा है, मगर हुआन यहां पे बहुत किस्मतवार निकला। इनफैक्ट ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट ये जो उसने गलती करी जिसकी वजह से वो पकड़ा जा रहा था, ये गलती उसके सच होने का सबूत बन गई। जर्मन इंटेलिजेंस ने बोला कि यार इसकी इंफॉर्मेशन तो एकदम ठीक है, ये ना हम तक आने में लेट हो गई है, लड़का बहुत तेज है, हाँ वो हम तक इंफॉर्मेशन लेट आई है। एंड यू नो द जीनियस पार्ट, ये एक बारी की गलती उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। वो समझ गया कि मैं इंफॉर्मेशन दूंगा लेट दूंगा, ये जो वायरस होना चाहिए ये फीचर बन गया, यूं समझ लीजिए टेक्नोलॉजी की भाषा में। जर्मन्स उल्टा उसे भारी रकम देने लगे। जर्मन्स ने बोला हुआन को कि और एजेंट हायर करो, इंफॉर्मेशन दो हमें ताकि जल्दी जल्दी हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, और हुआन ने उनके कहने पर एक बहुत ही बड़ा सिस्टम तैयार कर दिया था कि इंफॉर्मेशन लेट दो, जो पहुंचने पर सच तो होगी मगर किसी काम की नहीं होगी, और कोई सवाल करे तो बोल दो भाई कम्युनिकेशन का मसला है, मैं क्या करूं लेट आई है तुम तक इंफॉर्मेशन। तो फिर आया साल 1942, जर्मन्स ने कुल मिला के, एंड बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट हिटलर राइट नाउ, जर्मन्स ने 600 पाउंड पर महीना देना शुरू कर दिया था हुआन को, आज की तारीख में 30,000 पाउंड होते हैं पर महीने। किस चीज के लिए? किसी चीज के लिए नहीं, एक बंदा लिस्बन में एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठा हुआ रिपोर्ट्स बना रहा था जिनके कोई मायने नहीं है, जो इंटेलिजेंस दे रहा है उस कंट्री की जहां वो रहता भी नहीं है। तभी चलता रहा तो बाकी कंट्रीज को थोड़ा सा शक हुआ, अमेरिका थे उन्होंने इसके मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया और उन्होंने जाके चुगली कर दी ब्रिटेन में, बोले अरे ये कोई है बंदा खेल रहा है भाई साहब,

0: उछल के
1: हमारे लिए काम करोगे? अब MI5 के लोग कह रहे हैं हमारे लिए काम करोगे, तो हुआन गार्सिया ने कहा बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और फिर उसे ये लोग इंग्लैंड ले गए और साथ में एक बंदा दे दिया थॉमस हैरिस नाम का, बोला ये एक आर्ट डीलर है, पैसे वाला है, सोफिस्टिकेटेड है, स्पेनिश बोलना जानता है, और अब तुम हमारे लिए मदद करो। फिर आया साल 1944। हुआन ने जानते कितने ख्याली पुलाव पकाए थे, 27 एजेंट्स बनाए थे उसने अपने दिमाग से, 27 एजेंट्स जो हैं ही नहीं। हर एजेंट की अपनी अपनी बायोग्राफी थी, हर एजेंट के पीछे उनकी बिलीव्स, उनकी फैमिली सिस्टम, उनकी पॉलिटिकल साइड, हर किसी एजेंट की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनकी मेडिकल इश्यूज, उनकी उधारी, हर एक चीज। फिर बोला कि सर एक एजेंट है, वो स्टूडेंट है सर, उसे अपने प्रोफेसर से थोड़ी नफरत है, उस चक्कर में ना वो थोड़ा बेचारा ऐसे पैसे लगा देता है इधर उधर। जनमंस ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, उसे खर्चा हम देंगे। फिर बोला सर एक एजेंट है, वो ना एक फॉर्मर सोल्जर है सर, बेचारा वो ऐसे ना गैम्बलिंग की आदत की वजह से ना बहुत उधारी चढ़ गई है, उस मदद कर देंगे ना तो हमारी मदद करेगा। जर्मन्स ने कहा हाँ बिल्कुल सही सही है, हम देंगे ना पैसे। बोला सर एक एजेंट है, उसकी वाइफ बहुत बीमार है सर, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मेडिकल का बिल आ गया है, और जर्मन्स ने एक्स्ट्रा और रकम भेजी। फिर बोला सर एजेंट सर एक वो कॉम्बैट में लिवरपूल में सर वो मर गया, उसकी बीवी ना सर 3 बच्चों के साथ है, पेंशन दिलवा दो ना। जर्मन्स ने वो भी भिजवा दी। और जब इतने सारे रकम वो भिजवा थे, ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है इसको लेने दो, हाँ कौन सा कुछ जा रहा है, और वो लेता रहा जर्मनी से पैसे। मगर पता है मसला क्या है, आप जरा सोचिए कि आप अगर 27 एजेंट्स नकली बनाते हैं अपने दिमाग से और किसी को एक बैक स्टोरी देते हैं, हर किसी के पीछे की पूरी पूरी कहानी लिखते हैं, तो सारी कहानियां याद करना कोई हलवा नहीं है, आपकी एक गलती सब खराब कर सकती है। 27 एजेंट जो है ही नहीं, उन सब की कहानी बनाई, उनका झूठ मेंटेन बहुत मुश्किल काम है जो हुआन ने किया, और फिर उनकी रिपोर्ट्स भी बनानी है, फिर ये भी याद रखना है कौन से एजेंट को क्या चाहिए, कौन सा एजेंट किधर है, कौन से एजेंट को किस चीज से नफरत है, कौन से एजेंट को क्या बीमारी है, और कौन से एजेंट कौन से तीसरे एजेंट को क्या दे रहा है इन्फॉर्मेशन। और इन सब के लिए हुआन ने अपने अपार्टमेंट में नोटबुक्स, चार्ट्स, पूरा एक नकली यूनिवर्स तैयार कर रखा था। उसमें रिलेशनशिप चार्ट्स भी थे, इस एजेंट की फैमिली में कितने कितने लोग हैं, जबकि कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि जर्मन ऑडिट करेंगे, और जब वो ऑडिट करते थे तो एक एक चीज जो हुआन ने बनाया वो सच निकलती थी कि हाँ यार ये इंफॉर्मेशन तो मैच हो रही है, हाँ ये भी मैच हो रही है, बल्कि सारे एजेंट नकली थे। हुआन जर्मन्स के टेस्ट में पास हो रहा था और बहुत ही ब्राइट कलर्स से। हुआन एक दुनिया लिख रहा था, एक ऐसी दुना चुका था जिसके बारे में जर्मन्स को पता भी नहीं था। हुआन की ट्रिक बड़ी सिंपल थी, 98% सच दो और 2% की मिलावट कर दो। मोस्टली इंटेलिजेंस को वो दे रहा था जो उनको चाहिए, लेकिन लेट, थोड़ा सा लेट, ताकि जब इंफॉर्मेशन पहुंचे तो उसका मतलब ना रह जाए। फिर आया साल 1943। हुआन को MI5 यानी ब्रिटेन के एक बंदे ने इंफॉर्मेशन दी, वो एक काफिला है वो निकलने वाला है ग्लासगांव से जनवरी की 15 तारीख को, और नॉर्थ अफ्रीका की तरफ जाएगा, इसमें बहुत सारे टैंक्स हैं, एम्यूनिशन है, और ये बात एकदम सच थी कि एक काफिला निकलने वाला है। अब उसे ये रिपोर्ट जर्मन्स को ही नहीं है, तो उसने क्या किया, 15 तारीख को काफिला निकलेगा, उसने 14 तारीख को बैठ के पूरी रिपोर्ट बनाई, मगर रिपोर्ट को भेजा नहीं, इंतजार किया। 16 जनवरी को जाके उसने ये रिपोर्ट दी जब काफिला पूरा जा चुका था। उसने लिखा, मेरे एजेंट ने ग्लासगांव में देखा एक बड़ा काफिला जनवरी की 15 को, उसमें 12 शिप्स थी, कार्गोस थे, और ये साउथ की तरफ जा रही थी मेडिटेरेनियन में। इसमें सब सच था, रिपोर्ट एकदम सच्ची थी, मगर ये 24 घंटे लेट थी। जर्मन जब तक जाके रिस्पॉन्ड करते तब तक तो काफिला कब का गायब। जर्मन ने रिपोर्ट देखी और बोले यार क्या क्या इंटेलिजेंट

आदमी है हमारे पास यार, क्या बढ़िया बंदा है, बस डिले हो जा रहा है काम, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन बंदा क्या गोल्ड है, हीरा हीरा। उन्हें नहीं पता ये जानबूझकर लेट कर रहा है, क्योंकि हुआन ने एक सिस्टमेटिकल अप्रोच शुरू दी थी। उसने अगली बार भी ये किया, काफिला निकला लिवरपूल से मार्च की 3 तारीख को, हुआन ने बताया 5 मार्च को, रियल ट्रूप की मूवमेंट हुई 10 अप्रैल को, रिपोर्ट बना के भेजी कब, सीधा 12 तारीख को, रियल एयरक्राफ्ट डिलीवरी स्कॉटलैंड में 20 को होगी, लेकिन हुआन ने कब बताया, 22 मई को। हर रिपोर्ट एकदम सही है, मगर जब पहुंच रही है तो किसी काम की नहीं है। इससे एक चीज हुई, हुआन पर जर्मन्स का भरोसा बहुत बढ़ चुका था, और वो कोई ब्लेम नहीं कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं आ पा रही, क्योंकि वो समझ रहे थे कि भाई मुश्किल काम है, इन्फॉर्मेशन तो सच्ची है। वो ये सोच रहे थे कि यार इन्फॉर्मेशन अगर टाइम पे मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। फिर आया साल का आखिर 1943 का, हिटलर खुद अडोल्फ हिटलर ने अपने चीफ को बोला कि सब इंपॉर्टेंट बंदा है हमारा एजेंट हुआन, इसकी सैलरी बढ़ा दो। उसकी सैलरी बढ़ाई, अवार्ड दिया गया, अवार्ड भी वहीं बैठे बैठे, और उसको प्रीमियम पैकेज रखा गया। उसको कहा गया कि इन्फॉर्मेशन अपनी देते रहो और एज हायर करो। हुआन सिर्फ होसा नहीं बढ़ा रहा था, क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा था। और इन सब के बीच में हुआन ने यूं समझ लीजिए कि मुहावरे के तौर पर एक किस्म का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। उसने अपने सच में झूठ मिलाना शुरू कर दिया। जैसे उसने कहा कि मेरा एजेंट उनके पास, उसने बताया कि 15 नए डिविजन इकट्ठा हो रहे हैं सर, रेल ट्रैफिक बढ़ रहा है, कुछ तो होगा। पर ये झूठ था, कुछ नहीं था ऐसा, खाम खाम उसने दिमाग में ऐसे ही उनके प्लांट कर दिया, ये फेक इन्फॉर्मेशन के पास उनके पास उसने पहुंचा दी, और जर्मन्स ने ये मान लिया। जैसे हमारे आपके साथ होता है, अब कोई बंदा आपके साथ जो है वो 2-2.5 साल तक 98% टाइम सच बोल रहा है ना, यूं समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर वो 2% झूठ भी बोलेगा तो आप आंख मूंद के उस पर यकीन कर लेंगे। बस हुआन यही कर रहा था, वो बहुत लंबा चौड़ा गेम खेल रहा था, और मकसद था डी डे के आने का। जून 5, 1944, 5th of June 1944, रात के 11 बज रहे थे, और इसके अगले दिन इतिहास का बहुत बड़ा चैप्टर लिखा जाना था। अगले ही दिन 1,56,000 एलाइड सोल्जर्स, यानी ब्रिटेन की तरफ से सोल्जर्स पहुंचने वाले थे नॉर्मंड बीच पर, लार्जेस्ट समुद्री कब्जा आज तक का। इसमें सालों की प्लानिंग थी, यूरोप अपनी जगह वापस लेने वाला था, और हुआन फुहोल गार्सा अपने ट्रांसमीटर के सामने बैठा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो एक भेजने वाला था जो बहुत जरूरी था, पर अगर ये मैसेज गलत हो गया और जर्मन ने उसे इस बार पकड़ लिया तो ये इन्वेजन फेल हो जाएगा, फिर बहुत खतरनाक था। उसे यकीन दिलाना है, और यकीन भी किसको दिलाना है, सीधा हिटलर को यकीन दिलाना है कि ये तो सर फालतू की बातें, नौकरी बीच पे कोई भी नहीं आ रहा है, ये महज आपको भटकाने के लिए, कोई आएगा भी तो भटकाने के लिए है, असली इन्वेजन तो 150 किलोमीटर दूर हो रहा है, आप अपने सोल्जर्स को मत भेजिए। ये उसे इन्फॉर्मेशन देनी थी ट्रांसमीटर के थ्रू जर्मन्स को, और अप्रूवल आना था खुद अडोल्फ हिटलर की तरफ से। रात के 11:47 हुए तकरीबन, तरह उसने ट्रांसमीटर शुरू किया और जर्मन को इन्फॉर्मेशन देना शुरू करी, तो जवाब ही नहीं आया कि उस तरफ जर्मनी की साइड में रेडियो सुनने वाले और ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले लोग सो रहे थे, वो थे ही नहीं वहां पे, अपने अपने घर चले गए थे। और वहां लगातार कोशिश कर रहा, अबे यार इस टाइम तो इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है, अगर नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। हुआन ने दिमाग लगाया, उसने बोला मुझे कुछ करना पड़ेगा, और फिर 6 जून 1944 सुबह के 3 बज चुके थे, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन वो पहुंचा नहीं पा रहा था, डी डे हो चुका था, जो एलाइड ब्रिटेन के सोल्जर्स थे सारे नॉर्मंडी की तरफ आ चुके थे, जर्मन डिफेंडर जो जर्मन साइड के बचे कुचे सोल्जर्स थे वो लड़ रहे थे, बड़ा क्योटिक सिचुएशन थी। जर्मन रेडियो फाइनली ऑनलाइन हुआ, और हुआन ने अपने आप को संभाला, एक्टिंग के लिए तैयारी की, और उसने सोचा अब मैं गुस्सा करूंगा बढ़िया वाला, उसने गुस्सा किया, बोला यार तुम लोग क्या कर

0: रहे हो ये हैं? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे, कुछ बताना चाह रहा हूं तुम्हें मैं।
1: और उधर से जर्मनी वाले माफी मांग रहे थे, अरे रे साहब साहब सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, अरे वो ये हो गया वो हो गया। और वान ने बोला मेरी बात सुनो, ये सब भटकाने का प्लान है समझे, कोई नहीं आ रहा उधर, वो आएंगे भी तो 150 किलोमीटर दूर उनका मेन टारगेट है, सिर्फ भटकाने के लिए, जाओ बता दो 50 डिवीजन समझो 50 डिवीजन सोल्जर लेके पहुंच रहे हैं वो दूसरी जगह। 50 डिवीजन समझने कितना हुआ, 750,000 सोल्जर्स, सबके सब नकली, कोई है ही नहीं। हुआन का नेटवर्क क्योंकि 3 साल से आया है तो ये मैसेज जर्मन्स के पास गया, फिर ऊपर गया, फिर हाई कमांड की तरफ गया, फिर सीधा अडोल्फ के हेडक्वार्टर में पहुंचा। सोचिए नाउ इन रियल टाइम आपको समझाता हूं, जून 5 3:15 के आसपास सुबह को जनरल योडेल, जो कि जनरल योडेल एक्चुअली में चीफ ऑफ ऑपरेशंस थे हिटलर के लिए, उनके पास मैसेज आया। उन्होंने मैसेज पढ़ा, मैसेज इस तरीके का था कि 50 डिवीजन इंग्लैंड में नॉर्मंडी पे आएंगे, इसे भटकाने के लिए है। अभी इंफॉर्मेशन उन्हें हिटलर को देनी, हिटलर सो रहा था। अब बोले यार मैं जगा नहीं सकता, हिटलर ने बोला था जब तक सबसे जरूरी बात का ना, चलो मैं वेट कर लेता। सुबह के 6:30 बज गए, सूरज निकला, नॉर्मंडी बीच पे एलाइड फोर्सेस ब्रिटेन के पहुंच चुके थे और धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो जर्मन सोल्जर थे बेचारे तड़प रहे थे। सुबह के 10 बजे हिटलर फाइनली उठा, उसकी आंख खुली, उसके स्टाफ ने उसे सब बताया, बोले सर ये नॉर्मंडी बीच पे लोग पहुंच गए, हमारे सोल्जर्स खतरे में हैं, वो रिजर्व मांग रहे हैं, पर सर हमारा जो एजेंट है ना वो कह रहा है कि वहां नहीं भेजना है, ये भटकाने का तरीका सर, कहीं और इनका प्लान है। अब जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन, भूल जाइए कहानी, एक हिटलर के लेवल का बंदा, ठीक है, उसके पास एक से बढ़कर इंटेलिजेंट ऑफिसर है, उसके पास खुद इतने सारे बंदे हैं, और वो सुन रहा है किसकी, हुआन गार्सिया की, एक स्पेनिश चिकन फार्मर जो लिस्बन पोर्चुगल के एक अपार्टमेंट में बैठा हुआ है, उसके सुनने पे अपनी 15th आर्मी जो बहुत डेंजर आर्मी थी उसको वेट करा के अलग भेज दिया एक जगह पे, तकरीबन 150,000 सोल्जर्स को रुकवा दिया, उसमें 600 टैंक्स थे, आर्टिलरी थी, लेकिन सब किया। पूरे हफ्ते भर ही दूसरी तरफ ब्रिटेन ने पूरी तरह कैप्चर कर लिया सब कुछ वापस, वो तो फ्रांस तक पहुंच चुके थे, पर हुआन ने क्या बोल रखा था, हिलना नहीं, और जर्मन्स को उस पर भरोसा था। जब तक जर्मनी वालों को समझ में आया कि नहीं, नॉर्मंडी पे तो असली में कब्जा हुआ है, भटकाने के लिए नहीं था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। हुआन ने तकरीबन 1,00,000 के करीब सोल्जर्स की जान बचाई ऐसा करके, और जर्मन के सोल्जर्स जहां खड़े हुए थे वहां पे कोई आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया, खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे वहां पे बेचारे, नोबडी रीच्ड। मगर फिर भी जर्मन्स को अपने इस एजेंट पे भरोसा था। जुलाई 1944 बकायदा खुद चल के हिटलर ने अवार्ड दिया हुआन पुहेल गार्सिया को, आयरन कॉस सेकंड क्लास हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर मिला एजेंट एरेबल, और पता क्यों मिला, डेडिकेशन को सलाम, हिटलर ने खुद साइन करके दिया, खुद बाकायदा उस आदमी को अवार्ड दिया हिटलर ने जिसने एक्चुअली में उसकी बर्बादी के लिए इतना सब कुछ किया, उसी की बहादुरी को ये अवार्ड दिया। ये मेडल सेरेमनी आमने सामने तो नहीं हुई, कोर्स बर्लिन थोड़ी आएगा, वो एजेंट है, तो उसको एक न्यूट्रल चैनल के जरिए ये भेजा गया एक बक्से में रखे, ये बॉक्स हुआन को मिला, हुआन ने यह अवार्ड देखा, उसमें खत पड़ा और उसने इसे निकाल के अपनी ड्रॉअर में फेंक दिया। 1944 में बकिंगम पैलेस, किंग जॉर्ज द सिक्स लेवल, सोचिए, एक अवार्ड फंक्शन के दौरान हुआन को ब्रिटेन ने अवार्ड दिया ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का, MBE, मेंबर ग्रेड सिविलियन डिवीजन, इसको अवार्ड मिला सर्विसेज के लिए। उन्होंने मेंशन नहीं किया क्यों, क्योंकि खुद किंग को नहीं पता था, उस राजा को नहीं पता था कि वो अवार्ड दे क्यों रहा है।

कमाल की बात ये थी कि दोनों ही ब्रिटेन और जर्मनी आपस में भिड़ रहे थे और दोनों ही मुल्कों ने इसको अवार्ड दिया हुआन को सेम चीज के लिए. जर्मनी ने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ब्रिटेन ने अवार्ड दिया गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. सेम काम अलग अलग नजरिए. दोनों ही मेडल्स जब मिल गए थे हुआन को तो दोनों ही मेडल्स को उसने ड्रॉर में फेंक. हुआन की जो पहली लाइफ थी, पहली वाइफ थी आर्सेला गोंजालेस, वो लिस्बन में उसके साथ थी, पढ़ाई में मदद कर रही थी. सब कुछ खत्म होते होते वो भी दुनिया से चली गई. 1949 जब आए, जब चीजें ठंडी हो रही थी, हुआन ने सोचा यार अब मुझे भागना पड़ेगा. हुआन ने खबर फैलाई कि उसको मलेरिया हो गया है और वो अंगोला जा रहा है. वहां जाकर उसने अखबारों में दे दिया कि चल बसा, सब कुछ नकली था. उसने एक डेथ सर्टिफिकेट तक छपवा दिया था. हुआन एक्चुअली में वेनेजुएला चला गया था एक अलग नाम से. सब कुछ भुला के 10 साल तक दुनिया सोच रही कि हुआन तो है ही नहीं, पर वो एक किताब की दुकान खोले बैठा हुआ कैराकस में शांति भरी जिंदगी जी रहा था. किसी ने नोटिस नहीं किया, मगर एक सन की जर्नलिस्ट था जिसे पता था एक आदमी दोनों ही ब्रिटेन और जर्मनी से खेल गया है. इस डबल एज को ढूंढने के लिए उस जर्नलिस्ट ने जो मेहनत करी, फाइनली उस तक वो पहुंच पाया. और 1980s में जर्नलिस्ट कम हिस्टोरियन उस तक उसके दिमाग का कीड़ा उसे हुआन गार्सिया तक ले गया. ढूंढा, फिर हुआन गार्सिया ने इंटरव्यू भी दिया, उसका मेमोर भी लिखा जा चुका है जहां से मुझे ये पूरा किस्सा मिला है. 76 साल में हुआन पुहोल गार्सिया इस दुनिया से चल बसे. साल था 1988, वेनेजुएला. ये कहानी है एक डबल एजेंट की, या यूं कहूं कि एक आम आदमी जिसकी थोड़ी सी खिसक गई थी. ये आपके ऊपर है अब कहानी, आपके लिए थी कहानी. आई होप आपको अच्छी लगी हो, बिकॉज आई एम ट्रूली ट्रूली शॉक्ड एंड मेस्मराइज्ड विद दिस स्टोरी. 666-22107 नंबर है, 666-22107. ऑनेस्टली बताइएगा आपको ये किस्सा कैसा लगा. मैं बाकी कहानी के बारे में बताते हैं मुझे अच्छा लगता है, पर इसके लिए आई रियली रियली रियली वांट टू पुश यू कि प्लीज बताइएगा, बिकॉज आई डोंट नो आपका स्टोरी सुन के क्या इम्पैक्ट हुआ. मेरे पे बहुत भारी इम्पैक्ट हुआ भाई. मैं हैरान हूं कि इस पर अभी तक मूवी कैसे नहीं बनी है. मैं सच में हैरान हूं. दिस स्टोरी डिजर्व्स अ मूवी ऑन इट्स ओन. और क्या बनेगी भाई बताइएगा जरूर. 666-22107 स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर इंडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें qmc.ua।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: भाई साहब कैसी लगी आपको गानी, आप बता तो रहे हैं मुझे आई एम लिटरली शॉक्ड आफ्टर दिस स्टोरी। मैं बड़ा एक्साइटेड था सुबह से ही, मैंने कहा ये वाली गानी सुना के मुझे सच में मजा आएगा, एंड आई लव्ड इट, थॉरली लव्ड इट। ये नरेट करके मुझे खुद को बहुत मजा आया। आई होप

0: आपको उतना ही मजा आया होगा जितना सुनाने में आया. आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं 666-22-17 पर, 666-22-17 पर. आप कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर. कुछ मैसेजेस नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे मैसेजेस हैं. लगता है सबको बहुत पसंद आई है. आई एम रियली रियली हैप्पी. एक भाई ने बताया, इस्माइल भाई कहते हैं, भाई जब लोगों का ईगो हटता था ऐसे ही होता है आदमी का स्पेशली. एक कॉल आई है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
0: हाँ जी भाई.
1: भाई यार, भाई मैं आंदोलन करने वाला हूँ कि इस स्टोरी पे मूवी वाकई में क्यों नहीं बनी.
0: मैं खुद हैरान हूँ कि इस पे कैसे नहीं है मूवी. यार पूरी पूरी बनती है
1: ये भाई. ये स्टोरी ऑस्कर से भी ऊपर है भाई.
0: हाँ, ये एक्चुअली में इस पे डॉक्यूमेंट्री है, एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में है, बट मूवी नहीं है इस पे. एंड आई एम रियली सैड कि ऐसी टॉपिक कैसे नहीं है.
1: भाई एक बंदे ने दोनों कंट्री को हिला डाला. और ऊपर से भाई मैंने हिटलर के बारे में पढ़ा था कि वो तानाशाह इतना बड़ा, उसने तो भाई इसको भी घुमा डाला था.
0: और एक अपार्टमेंट में बैठे बैठे भाई खेल गया सबका.
1: यार एक जगह पे बैठे बैठे भाई क्या क्या आदमी भाई, उसका दिमाग यार गॉड गिफ्टेड भाई.
0: हाँ तो वही है, एक आम आदमी की सलाह बस. तो वो मुझे बहुत कमाल
1: सही बात है. आम आदमी की हड्डी की तो चीर फाड़ देगा वही वाला बात है. हाँ. दोनों तरफ और अवार्ड से और पूरे अप्रिसिएशन सब मिले उसको यार.
0: हाँ. तो भाई मैं
1: भाई आप जब ढूंढे होंगे तभी आपने सोचा कि भाई ये क्या है.
0: मैं बहुत खुश था भाई. मैं इत्तफाकन इस कहानी का सामना हुआ इस कहानी से. मैंने कहा यार ये तो बहुत ही कमाल. एक्चुअली में इतनी डिटेल्स हैं, दिस कुड हैव बीन 2 आवर्स लॉन्ग. बहुत कुछ है बीच में, पर मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स मेक इट शॉर्ट, क्योंकि पूरी पिक्चर में मैं ही बता दूंगा फायदा क्या है. तो मैंने
1: मेरे पास पैसे होते मैं तो इस पे मूवी बनवाता यार.
0: डेफिनेटली बनती है.
1: बहुत गजब की स्टोरी थी यार. बहुत मतलब एकदम मतलब स्टोरी जब खत्म ही नहीं था, पूरा माइंड मेरा सुनता यार ये बंदा.
0: हाँ मैं खुद बड़ा
1: हैरान था. ये था क्या बे, इसने घुमाया और लोग घूम भी रहे हैं भाई साहब.
0: वही तो कह रहा हूँ. और ये ऐसे लोग ना बहुत अलग लेवल के होते हैं भाई. तो मैं इस कहानी से बहुत इम्प्रेस था. मैं बड़ा एक्साइटेड था. मैंने सुबह से
1: किसी को शक भी नहीं होगा कि अरे ये इसने क्या है कि रिटेक करे या कोई तीसरा एजेंट भेजे या कुछ नहीं. इसने जो कहा बस वही. हाँ ये सही कह रहा है, हम लेट हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में कमी है भाई.
0: मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस इस बात से था कि ये बंदा इतने सारे एजेंट्स बना के उनके पीछे की बैक स्टोरी, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी फैमिली बना के
1: याद रहा. आप दो आदमी तीन आदमी को मुश्किल से उसकी स्टोरी याद रखोगे, लेकिन ये 27 स्टोरी बनाया हुआ था. उसमें उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके स्कूल क्या सब रहे होंगे,
0: सब कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स.
1: कौन कैसे मरा, कब मरने वाला, मतलब एक अपना एक दुनिया. मतलब ये सेम बिग बॉस बना हुआ था.
0: हाँ तो वो वही
1: बिग बॉस में जैसे सब एक घर होता है ना और उसे सबको डाल दिए जाते हैं कि हाँ अब मैं ही हूँ.
0: हाँ तो खेल का भाई है. बहुत खेल गया भाई, मजा आया मुझे भी. थैंक यू सो मच मेरे भाई की आपको इतनी
1: अच्छी लगी. यार बहुत मजा आया, लिटरली यार बहुत मजा आया. बिना शेयर के मत ये करना, प्लीज भेज देना, मैं मैसेज कर रहा हूँ.
0: डन डन डन डन डन, बिल्कुल भेजूंगा.
1: अरे भाई
0: ओके मेरा भाई,
1: बहुत बढ़िया.
0: थैंक यू सो मच
1: यार. मेरे को तो पता ही नहीं था कि हिटलर के साथ ऐसा भी हुआ है.
0: हाँ भाई ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ.
1: बाबू बन गया बेचारा.
0: तो भाई बताऊँ ऐसी कहानी के ऊपर, मुझे पता ये याद रहेगी लोगों को, इसका थोड़ा सा रहेगा असर रहेगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये याद रहेगा. ये मतलब आउट ऑफ लेवल यार स्टोरी है ये.
0: थैंक यू सो मच.
1: अभी दिमाग में वही गूंज रहा है यार कि आखिर कैसे आओ.
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत खुश हुई. क्या थैंक यू सो मच भाई,
1: बहुत बहुत बढ़िया स्टोरी भाई. okay, बहुत बढ़िया.
0: ख्याल रखिए मेरे
1: भाई. चले भाई.
0: ओके भाई, लाफिस लाफिस. और एक बंदे मिल गए हैं जिनको ये कहानी बोरिंग लगी है. ये मैसेज किया है मुझे यूसुफ भाई, लिखते हैं थोड़ी बोर थी. मुझे पता था हर किसी के लिए नहीं है कहानी, थोड़ी लंबी थी इसलिए बोर हो गई होगी आपको. लिखते हैं इतना होशियार बंदा और उस पर किस्मत भी साथ. किस्मत के हर बात किस्मत पर नहीं डालो, उसकी मेहनत भी है भाई. लिखते हैं ये सब जो भी गलत किया, नहीं गलत नहीं किया, उसने अपनी कंट्री के लिए किया भाई. और क्या वो खुद बताया? हाँ वो खुद भी बताया और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, प्रूफ भी हैं. सो इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री है. एंड एक कॉल भी आ रही है, जल्दी से उठा लूँ. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
0: जी मेरा भाई,
2: कैसा मेरा भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एकदम शानदार भाई. बताइए भाई.
2: शानदार. वैसे आज ना आज आपकी बड़ी मजे की लग रही है.
0: है
2: वो
0: क्यों
2: कहते ना, एक चीज की अलग ही खुशी, एक चीज

0: की अलग ही खुशी होती।
1: हाँ,
0: यार आपने
1: हाँ
0: हिटलर हिटलर का बताया, कुछ को भी चुना लगा।
1: हाँ यार, मतलब मैं खुद हैरान था, क्या किया क्या इस आदमी ने यार, कौन से लेवल का कॉन्फिडेंस होगा इस बंदे का।
0: अच्छा बचपन से जितने उसके किस्से सुने हैं ना या पढ़े हैं कि इसने इतनी गलतियां की है, ये किया है, वो किया, हमने ऐसा किया है, वैसा किया है, आज फर्स्ट टाइम ये सुन गए कि हिटलर के साथ भी कुछ हुआ है। एक अजीब सी ना खुशी फील हो रही है,
1: बहुत बढ़िया चूना लगाया
0: भाई, खुशी निकली, वो वाला काम हो रहा,
1: चूना लगाया भाई, बहुत बढ़िया वाला, बिल्कुल पान के साथ।
0: अच्छा वो इतना के भर चुका था कि उसने बोला ना भाई एक बार तो ट्राई करना है, जो हाथ लग गया वो गया।
1: हाँ उसने वही वही वो सनक गई थी, उसने बोला ठीक है भाई जो होगा देखे जाएगा, तो मैं कोशिश तो करूँ, देखता हूँ कि कहाँ तक जाता है। कहाँ तक ले गया वो।
0: लेकिन मजे का काम ये हुआ कि जब जिस वक्त ब्रिटिश वालों ने भी आके उसको ऑफर किया, हाँ ठीक है हमारे लिए भी, उन्होंने बोला एक ही तीर है, दो तरफ चल रहे हैं, चलाने दो।
1: हाँ चलो, दो नाव में सवार होना तो भाई इससे सीखे।
0: हाँ
1: नहीं भाई थैंक यू सर,
0: लेकिन नो डाउट यार पता खिल भी गया और कमा भी गया भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल।
0: तो पहले उसने 27 बनों के अलग अलग पैसे लिए।
1: हाँ
0: जाहिर सी बात है उसी के अकाउंट में है।
1: हाँ ऑफ कोर्स बहुत बनाया
0: खेल गया भाई।
1: बहुत बढ़िया खेल गया भाई, बहुत बढ़िया खेल गया। आई होप के दिखता है अमेरिका में जाते।
0: हाँ अच्छा,
1: हाँ
0: वो तो चूना लगाया अलग, जो पैसों का लगा के उसने जगह बसर की है ना अपनी, एक उसमें बैठ गए। उसने बोला क्या बंदा बाहर आए, क्या इतनी मेहनत है, क्या मजदूरी करे, कौन संभाले चिकन फार्म, आने दो, जब आ रहा है उसको ना नहीं कर दे।
1: ये है, इसके बारे में मैं सच में चाहूंगा लोग एक बार पढ़े, खुद भी जाके इसकी डॉक्यूमेंट्री देखें, अवेलेबल है, मूवी तो नहीं है सैडली, जबकि होनी चाहिए थी।
0: जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जना इसके रिसर्च में कोई कमी रही है, उसमें ये काम हुआ होगा कि लाजमी इसने पैसों का थोड़ा सा इसको तंगी आई होगी, तो इसने सोचा होगा किसी ना किसी को तो चूना लगाना पड़ेगा।
1: हाँ।
0: ऐसे नहीं काम चलेगा, चूना लगाएंगे फिर काम चलेगा।
1: एग्जैक्टली नहीं भाई, थैंक यू सो मच,
0: फायदा उठाया
1: और आपको अच्छी लगी मेले, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। बस अब जान के लिए बढ़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, थैंक यू। उसने क्या किया था, उसने कहा था कि मुझे डायरेक्ट इसमें ना भेजें, यूके में ना भेजें, आप न्यूट्रल चैनल से भेजें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी मुझ पर शक हो। तो दे वर सेंडिंग हिम द मनी थ्रू न्यूट्रल चैनल्स सच एज इन पोर्चुगल, तो वहां से उसको वो समझ रहे थे कि हम उसके थ्रू भेज रहे हैं, बट वो वहीं पर पैसे कलेक्ट कर लेता था। और फिर उन्होंने पूछा वाज ही सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेम कंट्री टू जर्मन्स विदाउट देम नोटिस, और बिकम How was he sending information from the same country to Germans without noticing? देखो, because सुहेल भाई उस time situation ऐसी थी कि उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो जाके चेक करें कि ये इस कंट्री में रह के भेज रहा है या कंट्री से भेज रहा है, और वो जो भेज रहा था वो बहुत ही पक्की इन्फॉर्मेशन थी, पकी हुई, वो इतनी पकी हुई भेज रहा था कि वो कह ही नहीं सकते कि यहाँ पर नहीं होगा, दैट्स वाई। आसिफ भाई ने बोला है कि भाई मैं आपका मैसेज पढ़ भी नहीं सकता, आसिफ भाई अपने सेकंड को ज़्यादा ही डेंजर लिखा है, और आगे भाई नेक्स्ट डायरेक्टर मिल गया हमको, कौन डायरेक्टर मिल गया भाई। एक मैसेज है, गुड इवनिंग कबीर भाई, ठीक है तो कुछ देर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, बाकी मैसेज इतने सारे हैं माशाल्लाह, सो थैंक यू सो मच। एक बार हमारे यूसुफ भाई हैं, बस यूसुफ भाई को बोर लगी कहानी। बाकी चलो सबको बढ़िया लगी है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी कि जब भी देखो लंबी कहानी नहीं सुनाता, मुझे पता है ना हर किसी कि वो नहीं होती, वो कैलिबर की नहीं हो पाती, फिर वो ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा लंबी हो गई, पर थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया भाई, बहुत बेहतरीन लगी स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार, भेजूंगा इंशाल्लाह मैं कुछ देर में कहानी भी। और एक मैसेज पढ़ता हूँ, एम के साहब लिखते हैं कि बहुत अच्छी लगी स्टोरी, थैंक यू भाई। और आसर बहन लिखते हैं वेरी इंट्रीगिंग स्टोरी, लव्ड इट, जिम स्किप किया कुछ तो भला हुआ। स्टोरी मिल गई, थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भेज भी दूँ फिर बाद में आके, आप ज़रूर ज़रूर ज़रूर सुनिएगा एंड भेजिएगा भी आगे कि भाई आज इतना जिंदा होता तो बुरा, मैं क्या मुझे चूना लगा। पान रे मुझे चूना लगाए रे। भाई ये 52 मिनट वाली स्तुति से मैंने छूटा किया, कह रहे हैं स्टार्ट से सुनी उसने सिया, बट क्या कमाल का बंदा था पुप्पो जैसा, ये मुबीन भाई कह रहे हैं। ये वही थी भाई 52 मिनट वाली, ज़्यादा लंबी हुई थी इसलिए मैंने छोटा कर दिया। सुहेल भाई थैंक यू सो मच भाई, नो प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके तो अभी इंशाल्लाह अजान के बाद आपसे मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, काम तो हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको कहानी चल गई, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। 666-22-107 नंबर है, अभी भी आपको लगे कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल है जुड़े हुए इस कहानी से, तो प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा, आई वुड लव टू आंसर एनीथिंग अबाउट दिस एंड

0: स्टे ट्यून्ड.
1: आप सुन रहे हैं इवनिंग 974 विद दो हवाला कबीर, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है. अल्लाह

0: साहब बाशी को देनी चाहिए, आपने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए। मुझे एक मैसेज आया है मेरे पास, ये सिद्दीकी भाई ने किया है, एक सेकंड में देख लूँ। अच्छा, ये सिद्दीकी भाई ने मैसेज किया है और वो कह रही है एक तो टाइगर का सीक्वल बन सकता है आज की कहानी पे। नाउ आई रियली वांट टू हियर द फुल स्टोरी, आज से भेजना है, मैं फोर्स भेजूंगा बहन। और उन्होंने एक पिंक कलर की गाड़ी भेजी है, उस पर लिखा ये आदमी अपनी अलग ही एरा में है, पैरेलल यूनिवर्स कोलाइडिंग टुगेदर। एक कॉल आ रही है, रुकिए जरा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, की हाल है थोड़े?
0: बढ़िया भाई, बढ़िया, एकदम चंगा। बताओ,
1: ठीक ठाक हूँ?
0: एकदम शानदार मेरे भाई, सुनाइए
1: भाई। मजा आ गया स्टोरी सुन के, मजा आ गया, क्या बताऊं मैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जजाक अल्लाह, बहुत बहुत प्यार
1: भाई। उसने स्पाइस एजेंट बना दिया, स्पाइस एजेंट। क्या दिमाग पाया उसने, क्या दिमाग पाया।
0: हाँ वही ना, कॉन्फिडेंस भाई बहुत लगा, कॉन्फिडेंस ये तो बहुत कॉन्फिडेंस था, नेक्स्ट लेवल का।
1: इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, स्पाइस बंदे बनाने, फिर उनको इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, वो यकीन नहीं कर रहे उसकी बात पे।
0: तो ये सोचो, ये इसने फायदा उठाया टेक्नोलॉजी ना होने का। मुझे ये भी लगता है टेक्नोलॉजी होती तो
1: पकड़ जाता। चला 3-4 साल लगातार चलता रहा, लगातार।
0: और बहुत

0: लंबा चला यार, बहुत लंबे वक्त तक ये चला, काफी लंबे वक्त तक।
1: बिल्कुल जी, वही मजा आ गया कबीर भाई।
0: थैंक
1: यू और आप
0: भाई।
1: सुनाते ऐसे हो ना, बताते ऐसे हो, और मजा।
0: थैंक यू भाई, आपको अच्छी लगी कहानी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। थैंक यू,
1: स्टोरी जो जैसे आप बताते हो ना उससे ज्यादा मजा आता है।
0: थैंक यू भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपको अच्छी लगी कहानी
1: सुनने में, और अच्छा लगता है वो।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी कहानी लोग सुन लेंगे एक एक सेटिंग में, लेकिन अच्छा लगा।
1: यूसुफ भाई पता नहीं कैसे नहीं अच्छी लगी, लेकिन मजा आया, बहुत मजा आया।
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कहानी बहुत लंबी थी, मैंने इसको 36 मिनट का बना दिया, मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा।
1: मैं जब स्टोरी सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि जब आप ये खत्म करोगे ना तो मैं आपको पूछूंगा कि आप बताओगे कि कौन इस पे कोई मूवी बनी है, कौन क्या नाम है।
0: नहीं भाई, कोई मूवी नहीं, कोई मूवी नहीं है भाई, बट डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री है गार्ब के नाम से शायद, क्योंकि उनका एजेंट गार्बा और रेबेल नाम का कुछ उनका नाम था, कोड नेम था, तो मैंने वो कहानी में यूज नहीं किया, बट गार्बा के नाम से आई थिंक एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है इन पे बनी हुई। मूवी पता नहीं क्यों नहीं है, हो सकता है कि क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉब्लम थी लोगों को उनसे, तो शायद नहीं बनी होगी, बट होनी चाहिए डेफिनेटली, इस बंदे बननी तो चाहिए। नहीं पर मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, आपको चलेगी कहानी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई।
1: तो मैंने पूछा कबीर भाई आप हरियाणा में कहाँ से हैं?
0: भाई मैं, मेरे दादा जो थे वो बेसिकली पंजाबी थे, और हैं हम सोनीपत की तरफ, सोनीपत से दिल्ली की तरफ आए, तो सब कुछ मिक्स है भाई, सब कुछ खिचड़ी पकी हुई है, हरियाणवी पंजाबी सब हमारे खानदान में। So, okay, ऐसा
1: पंजाब से कैसे के पंजाबी?
0: भाई मैं चंडीगढ़ में ही पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ वहाँ पे काफी वक्त तक। हाँ जी चंडीगढ़, तो इसलिए हाँ अच्छा क्या बात है, कित गांव से भाई?
1: मैं लुधियाने
0: तो। अरे क्या बात है, ओफो क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। नाम क्या आपका?
1: मेरा नाम मनी, एक बार पहले ही बात हुई आपसे।
0: हाँ हाँ मनी भाई, भाई थैंक यू भाई, अच्छा लग रहा है यार, कोई अपने अपने पूरे नॉर्थ बेल्ट का, मजा आ गया बात करके मनी भाई। सुनिया करे कभी, सुना करो टाइम मिले तो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा साइलेंट लिसनर, कोई कभी कभी टाइम मिले तो जरूर बताना, मैं बहुत खुश हुआ भाई आपने बताया, थैंक यू सो मच मेरे भाई।
1: अगर मैंने मैसेज भी किया लास्ट टाइम, अगर आपको वहाँ से कुछ चाहिए तो मेरा दोस्त आ रहा है कनाल, तो आपको कुछ चाहिए तो जरूर बता
0: रहे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, आपकी मोहब्बत भाई, इतना पूछ लिया आपने, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच मेरे भाई।
1: आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है, आपसे शो का वेट करते रहते हैं हम लोग।
0: थैंक यू मनी भाई, थैंक यू मनी भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे मेरे एरिया को ये, मुझे ऐसा फील कर रही है, थैंक यू सो मच भाई, बड़ा अपनापन महसूस हुआ, थैंक यू सो मच मनी भाई, बहुत प्यार भाई को। थैंक यू भाई,
1: ओके भाई शुक्रिया, थैंक यू,
0: शुक्रिया भाई, थैंक यू भाई,
1: ख्याल, बहुत अच्छा लगता है,
0: बहुत प्यार भाई को, ऐसी आती रही कहानियां, बस प्यार देते रहिए, थैंक यू भाई। ओके मेरा भाई, टेक केयर, ओके। तो मनी भाई ने तो बहुत अपनापन फील करा दिया, थैंक यू सो मच, बहुत मुझे अच्छा लगा। और विवेक भाई थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे लिंक भेजी, इसके बाद जो है एक पूरा वॉइस नोट है, और क्या मैसेज है मेरे पास, और मुबीन भाई का तो मैंने मैसेज किया था, बाकी ये तो आखिरी अहमद भट्ट साहब, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह मेरे, फिर गुड स्टोरी एक ने लिखा है, एंड देन और क्या मैसेज, भाई या बहुत सारे मैसेज हैं, बेहतरीन स्टोरी लगी मुझे, थैंक यू सो मच भाई। ये मोहम्मद बिलाल भाई ने मैसेज किया है, इनके बाद मैसेज आया, रोज़ इस तरह की स्टोरी सुनने का दिल करता है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत प्यार। मैं तो भाई बहुत डर रहा था बहुत लंबी कहानी होगी, पता नहीं क्या ही बोलने वाले लोग। सदीक भाई देखते हैं, माइंड ब्लोइंग स्टोरी, क्या बंदा था, मैं यही सोच रहा था कब फंसा, अब फंसा तब फंसा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वैसे कबीर भाई आज की स्टोरी शॉकिंग थी, थैंक यू सो मच, सुपर वेल डन, ये हिशाम साहब ने लिखा है, देन रियली इट्स अ गुड स्टोरी एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग टू अस। मंदीप भाई थैंक यू सो मच, एंड देन कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, व्हाट स्टोरी, गूज बम्स भाई, गूज बम्स बंदा क्या, उसने अगर दोनों को मुंडू बनाया, मुंडू क्या होता है, एक मैसेज स्टोरी आउट क्लास थी। इकरम भाई थैंक यू सो मच, एंड देन सुपर स्टोरी शेयर विद मी ऑल्सो, खादिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड देन मैसेज किया था बसुम बहन ने, वो लिखती है वेरी मच इंटरेस्टिंग स्टोरी कबीर भाई, रियली लाइक अप्रिशिएट अप्रिसिएशन टू हुआन, थैंक यू सो मच बहन। और क्या है, और एक और मैसेज आया है मेरे पास, मैसेज इनफैक्ट बहुत सारे हैं माशाल्लाह, स्टोरी सुपर थी, थैंक्स फॉर शेयरिंग, स्टोरी का हैंगओवर कल तक उतरेगा, व्हाट अ स्टोरी, एनी मूवी, नहीं भाई मूवी ही तो नहीं है इस पे गुरमीत भाई, कोई स्टोरी नहीं है, मूवी नहीं है, उसकी सोच को सलाम, कहानी बहुत मस्त लगी। ये मैसेज किया है सरफराज आलम भाई ने, फलक भाई आपका शुक्रिया, एंड देन यासिर भाई आपका शुक्रिया, बाई टू गुड ये मैसेज किया है मुझे एहसन उबैद साहब ने, चलो भाई आज की कहानी का असर तो हुआ, कॉन्फिडेंस आ गया, लंबी कहानी सुना सकते हैं। एक मैसेज है, बहुत दिनों बाद लाइव सुना, कंप्लीटली गुड स्टोरी, ये अनिल भाई ने मैसेज किया, बाय अनिल, थैंक यू बाय। और बाकी मैं क्या मैं पूछना

भूल गया, आपने बताया था कि आप पूल खेलना पसंद करते हैं, हम लोग रात को जाते हैं खेलने, कभी ज्वाइन करो। कहाँ खेलते हैं आप लोग पूल मेरे भाई? ये मणि, अच्छा मणि भाई, अरे क्या मणि भाई कहाँ किधर खेलने जाते हो? मुझे प्लीज शेयर द स्टोरी, आई विल। एंड देन आज क्या मेरा वाला ऐसी स्टोरी लेकर आओ हर टाइम, इंशाल्लाह भाई कोशिश रहेगी। लिखते हैं भाई आज हिटलर जिंदा, ये तो मैंने आपको पढ़ा था मैसेज, अल वकरा से तौफीक साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। नजमा में खेलते हैं आप? अरे पड़ोस में खेल रहे हैं आप, जगह का नाम बताइए, जगह का नाम। और थैंक यू सो मच, मैं बड़ा खुश हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना भारी रिस्पॉन्सेस पाएगा। एक तो लंबी कहानी थी तो ऑब्वियसली थोड़ा टायरिंग हो जाता है एक सेटिंग में सुनना। अब इसमें मैं ब्रेक देता कि अगला एपिसोड कल सुनिए तो बहुत ख़राब हो जाता मामला। बट आई वुड सजेस्ट आप खुद जाके इसकी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर चेक कीजिएगा। हुआन नाम है बंदे का, JUAN हुआन गार्सिया, GARCIA हुआन गार्सिया इस बंदे का नाम है। और डॉक्यूमेंट्री है, पिक्चर इन्होंने नहीं बनाई सैडली, बट आई होप बनाएं इस पर, ज़रूरी है भाई। बंदे ने मूव कर दिया भाई, कती मूव कर दिया भाई ने थोड़ा।

शाबाश हैदर भाई ने मैसेज किया, बहुत प्यारा मैसेज कह रहे हैं सीधा, तो मैंने गाड़ी में फोन छोड़ दिया और रिकॉर्ड गली पूरी कर ली भाई, बहुत बढ़िया। अगर रिकॉर्डिंग की आई है तो मुझे भी भेज दो भाई, मुझे भी भेज दो, कोई गाली सेंड मी। खान सरोवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैसेज है मेरे पास असम भाई, होप

सबने स्टोर की तारीफ करी है, मुझे भी सेंड करेगा, बिल्कुल सेंड करेंगे भाई, टेंशन को नहीं भाई। एक मैसेज आया रियान भाई का, रियान भाई कह रहे सुपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक क्या मैसेज है ये है? एक सेकंड, अच्छा डिसाइफर करना पड़ेगा मुझे। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे कहानी सुन के बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक अलग जगह बना ली है जो अभी तक मैंने किसी आरजे को बनाते हुए नहीं सुनी ना देखी। थैंक यू सो मच भाई, दैट्स बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे लिखते हैं कि मैं पहले कहानियाँ आपकी सुनता था, किसी के कहने पर मुझे लगता था कि मैं फिर से पक जाऊँगा क्योंकि मैंने और भी कहानियाँ सुनी हैं और जगहों पे, लेकिन जब आपसे सुनना शुरू करी तो मैं हुक्ड हो चुका हूँ कि मुझे अब डेली कहीं चाहिए ही चाहिए, मुझे आप भेज दिया करें बिकॉज इट्स लाइक समथिंग आई एम एडिक्टेड टू। और आगे लिखा मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ और भी फेमस हों और आप ऑनलाइन भी छा जाए बिकॉज यू टोटली डिजर्व इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? अच्छा सॉरी भाई नहीं है, बहन है। सीमा जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, वो मैं काम किया भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अच्छा रॉबरी वाली स्टोरी का भाई देखनी पड़ेगी भाई, कोई बढ़िया सी स्टोरी देखेंगे मोमिन भाई इंशाल्लाह। आसिफ भाई कह रहे हैं भाई सच में तुम्हारी जगह कोई आ सकता। थैंक यू सो मच आसिफ भाई को, बहुत सारा प्यार आसिफ भाई। दो ब्रेड लगाओ नारिन के लिए आसिफ भाई, थैंक यू। बाकी मैं कहानी भेजूंगा, आप फिक्र ना करें, जिनको कहानी नहीं मिली मिल जाएगी। मैं तो ये चाह रहा था कि आप लाइव सुने अच्छी कहानी बिकॉज इट वॉज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तवज्जो दी जाए जब लाइव सुनी जाए। अच्छा कुछ खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सो 11th डेट लोकल डेट फेस्टिवल जो है जो ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपल कलन विद सुख वाकिफ, वो कंक्लूड हो चुका है खलास ये फेस्टिवल, लेकिन बहुत बढ़िया चला है भाई। 25 जुलाई को शुरू हुआ था, 10 अगस्त को खत्म हो चुका है और क्या जबरदस्त रहा है, पिछली बार से भी बहुत बहुत बड़ा इंप्रेसिव सेल्स आई हैं इसमें। इस बार जो फेस्टिवल था इसमें अप्रॉक्सीमेटली 110,000 विजिटर्स पहुंचे हैं, इतना फुटफॉल था। और जो हिसाब किताब है वो बताया जा रहा है 183,268 किलो खजूर बिके भाई। इसमें खलास डेट्स अलग हैं, खुनाइजी अलग हैं, शीशे अलग हैं, सब अलग अलग किस्म के जो खजूर हैं वो मेरे मुंह पानी आ गया भाई, बस खजूर शेक पीने का मन कर रहा है आज सीरियसली। खैर ये जो है एक बहुत बड़ी खबर है, अगर आप नहीं गए लोकल डेट फेस्टिवल में तो आपने मिस कर दिया, अगर आप गए तो प्लीज़ फोटो शेयर कीजिएगा। वहाँ पे जो माहौल होता है ना, स्पेशली खजूर शेक पीने की जो आदत लगी है मुझे वो यहाँ से लगी है। टेम्परेचर बता देता हूँ 38 degrees फॉर नाउ, 34 मिनिमम चल रहा है और मैक्सिमम 45 तक जा सकता है। हवाएं शवाएं कुछ नहीं है, गर्मी चल रही है, प्रॉपर बराबर चल रहा है भाई। स्पेशली अगर आप दोहा में रहते हैं तो बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा कि हल्की भी बूंदाबांदी होगी। इट विल एक्चुअली फील हॉटर क्योंकि एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा मामला है, ह्यूमिडिटी का लेवल 50% है, कल 44% था तब बिल्कुल रियायत नहीं बरती गर्मी ने, तो आज कौन से मेरे मामा की लड़की है जो आज थोड़ी आसानी होगी, आज भी आपको प्रॉपर गर्मी लगने वाली है, मगर प्लीज़ ख्याल रखिए। एंड बाकी ट्रैफिक का हाल बता दीजिएगा, कहीं पे आप फंसें कहीं से निकल रहे हैं और आपको लगता है कि इस लड़के को बता देना चाहिए, सो प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो 666-22-107 पर। और एक गाना जिसका हुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस गाने का हुक भाई क्या बना दिया मनी भाई, अगर आप सुन रहे हो तो हरियाणा से हो ना, मनी भाई को उसका हुक अच्छा लगेगा भाई, बहुत बहुत प्यारा गाना यार, बहुत कुछ अलग है भाई, अलग ही है डांडा भाई गाना यार, दिल से बैठी आए है वगैरह, ड्राइव करते हुए जा रहे हो ना भाई, कदी चाहेगी जोरदार आ रहा है गाना।

के छोरे ने। आजी भाई मेरी हरियाणा और दिल्ली और पंजाब की जो जनता है, गाना कैसा लगा भाई? बढ़िया चस्सा की ना वगैरह तो मौसम बना देंगे भाई, बाकी वा चीज़ जो है ना वो म्यूजिक भाई हमारा भी है, बहुत बढ़िया रैप है, पूरा नहीं किया ये प्रोमो के लिहाज से, सुन लो।

कहा समझ गए थे? शाबाशी मैं देना चाहता हूँ आसिफ भाई को। आसिफ भाई ने मुझे एक मैसेज किया है, वो कह रहे हैं कि आजकल नहीं होता भाई क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है। कह रहे हैं आप पूछो है मैं मेहनत क्या है मेहनत में मैं खबर दूंगा पक्का किधर ट्रैफिक है। और भाई जितने भी राइडर भाई हैं सब निकलेंगे अपने घरों से भाई, बढ़िया करके निकलेंगे। देखो अभी अभी कॉलेज स्कूल ज़रा शुरू हो जान दो। एक मैसेज हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई को बहुत सारा प्यार। नाम नहीं पता मुझे आपका, खान सर और भाई बहुत सारा प्यार भाई को। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। तो ट्रैफिक तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं आज का ज़रा आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनली कौन कौन से दिन मार्क्ड किए गए हैं, क्योंकि कैलेंडर पे आज के दिन भी बहुत सारे दिन हैं। जैसे कि आज है पहाड़ों का दिन, आज है इंटरनेशनल माउंटेन डे भाई, मुबारक हो। पहाड़ियों पे जो लोग जाना पसंद करते हैं उनके लिए आज दिन है। स्पेशली मैं आई एम नॉट अ गाय, आई एम माउंटेन गाय, कहने में बड़ा फैंसी लगता है। तो पहाड़ी पर रहने वाले पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए आज दिन है। एक मैसेज मेरे पास बीच में आया है, क्या एक्सीडेंट ऑन फिरोजिया स्ट्रीट, अच्छा टू मच ट्रैफिक। अल्लाह हाफिज ना भाई, ख्याल रखें प्लीज़ ड्राइव सेफली। ओके तो आज माउंटेन डे है, उसके अलावा आज है नेशनल कोड डे, नो कोड डे, और आज ही मैंने एजेंट की कहानी सुनाई। इसके अलावा आज है सन एंड डॉटर डे, छोटे छोटे बालकों का दिन है आज। और सन एंड डॉटर डे आपके घर में दोनों ही हैं तो माशाल्लाह मुबारक हो, आज इनका दिन है। वैसे तो हर दिन ही होने का, आप कर क्या लोगे। इसके अलावा आज और क्या क्या है, प्ले इन द सैंड डे, मट्टी में खेलने का दिन है भाई। और आज ये रेसबेरी पॉम डे, ये तो कति फैंसी हो गई, हमारे बस का नहीं है भाई। और आफ्टरनून टी वीक, तो आज से जो हफ्ता शुरू होता है वो आफ्टरनून टी वीक है। दोपहर में गर्म धूप में बिल्कुल झुलने वाली गर्मी में चाय पीने का जो मज़ा है वो सिर्फ चाय पीने वाले समझ सकते हैं। हाथ मिलाओ इस बात पे, चाय पियोगे? मैं पिछले एक हफ्ते से

नियत बना के आता हूँ कि ऑफिस में आके मैं ब्लैक ऑफ ट्राई करूँगा, उसकी शक्ल देख के मुड़ जाता हूँ कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। देखो इस हफ्ते में ऑल द बेस्ट टू मी, मैं अगर पी पाया तो

आवारा पण टू से गाना बहुत खूबसूरत है यार. मतलब ये इसका नया रेंडिशन है, ये भी बहुत कमाल का है. जस्ट टोटली लव्ड इट. एंड जो स्टोरी बोलने मिल जाएगी इस म्यूजिक पे, बोलने में भी कितना मजा आता है. हा हा हा, मैंने किया नहीं गाऊंगा नहीं, मेरी सुर ताल होते तो मैं पता नहीं कर रहा होता. बट ब्यूटीफुल ट्रैक मैन. तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज, साज भट्ट और सुबोध.

भाई बस जल्दी से अभी 14th ऑफ अगस्त आ जाए, ये लास्ट शो देखने का है भाई, बिल्कुल शो करते पता नहीं मुझे दिन भी नहीं पता क्या है दिन बाकी, लेकिन सबसे पहले वार अपन 2 देखनी है। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि आज के शो का क्लाइमेक्स हो सकता था। मुजाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एम के भाई ने तो टूटा हुआ दिल लगाया, उन्हें को याद आ गया। मुजाहिद भाई कह रहे हैं कि क्या सॉन्ग लगा दिया भाई, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच मुजाहिद भाई। एंड वक्त भी देखूँ तो मैं जाने का वक्त हो गया है, आपसे ज़्यादा चाहूँगा मैं, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अभी प्रेशर बहुत है आज की कहानी सुनाने के बाद कि कल भी कुछ बढ़िया ही लाना तो पड़ेगा। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर, और कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABR, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक छोटा सा मसला है, वो जैसे ही हल हो जाएगा ना वहाँ पे मैं कहानियाँ ड्रॉप करने लग जाऊँगा, तो आपको वीडियो के जरिए भी वो कहानियाँ मिलेंगी जो शायद रेडियो पे ना सुनाई देती हूँ। सो बी रेडी फॉर इट एंड फाइंड मी देयर। बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, साथ में सुनेंगे आप न्यूज़ बुलेटिन, कहानी में कुछ देर में भेज रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मस्सलामा। Chill out, so drop it low, man.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107 कतर। साथियों, गिफ्ट देना और लेना भाई हम सबको पसंद है, चाहे बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, ईद का मौका हो या किसी की अचीवमेंट सेलिब्रेट करनी हो। भाई एक खूबसूरत गिफ्ट किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है, मेरे चेहरे पर तो लाता है भाई। और हाँ, गिफ्ट को स्पेशल बनाने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, उसे अच्छे से रैप करते हैं या करवाते हैं। कलरफुल रैपिंग पेपर हो गया, रिबन्स हो गई, बोज हो गई और शाइनी की जो डेकोरेशंस उसके ऊपर लगती हैं, वो गिफ्ट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गिफ्ट खोलने के कुछ मिनट्स बाद वो खूबसूरत रैपिंग कहाँ चली जाती है? वो कोने में पड़े हुए डस्टबिन के अंदर, अक्सर वो सीधा डस्टबिन में चली जाती है। जी हाँ, तो भाई आज के इको स्विच में बात करते हैं सस्टेनेबल गिफ्ट रैपिंग के बारे में, यानी तोहफा भी खूबसूरत हो और उसकी पैकेजिंग एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो। चले भाई यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले ना प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, गिफ्ट रैपिंग एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन जब हजारों लोग रोजाना गिफ्ट रैप करते हैं तो इसका वेस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ट्रेडिशनल गिफ्ट रैपिंग में ना अक्सर औकात आपको क्या नजर आएगा, प्लास्टिक कोटेड रैपिंग पेपर्स, शाइनी मटेरियल्स जो रिसाइकल नहीं होते, प्लास्टिक रिबन्स और बोज, सिंगल यूज गिफ्ट बैग्स, इसका इस्तेमाल होता है भाई, इन सारी चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। गिफ्ट खोलने के बाद ये चीजें अक्सर का दोबारा यूज नहीं होती और क्या होता है, कचरे का हिस्सा बन जाती हैं। जरा सोचिए, एक बर्थडे पार्टी में अगर कह लें मिनिमम आपको 20 गिफ्ट्स आए और हर गिफ्ट अलग अलग प्लास्टिक या नॉन रिसाइकलेबल रैपिंग में हो, तो भाई कितना सारा वेस्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि गिफ्ट की खूबसूरती सिर्फ एक्सपेंसिव रैपिंग से नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक क्रिएटिव आइडिया ज्यादा याद

0: तैयार बन जाता है साथियों। तो भाई सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन यहाँ ये है साथियों कि सस्टेनेबल गिफ्ट रैपिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज ये कि रीयूजेबल बैग्स चूज करें। एक खूबसूरत कपड़े का बैग या रीयूजेबल गिफ्ट बैग को बार बार यूज किया जा सकता है। ये स्टाइलिश भी होता है और इससे वेस्ट भी कम होता है, बता रही हूँ। और एक और ना अलग से गिफ्ट टाइप आइटम भी बन जाता है कि बंदा उसको बाद में भी जिसको आपने गिफ्ट दिया है वो लेकर शोबाजी में घूम सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पुराने मटेरियल्स को रीयूज करें। घर में मौजूद चीजें जो दोबारा यूज करें वो अगर मैं मिसाल के तौर पर दूं तो पुराने न्यूज़पेपर्स हो गए, ओल्ड मैप्स हो गए, फैब्रिक पीसेस हो गए, डेकोरेटिव बॉक्सेस हो गए, इनको क्रिएटिव रैपिंग के लिए यूज किया जा सकता है। बस थोड़ा सा आपका जो पिकासो है ना वाला उसको जगाना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि सिंपल डेकोरेशंस यूज करें ना, प्लास्टिक रिबन्स की जगह ज्यूड स्ट्रिंग्स हो गई, नेचुरल डेकोरेशंस हो गए, रीयूजेबल रिबन्स हो गए, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, चौथी चीज ये कि गिफ्ट बॉक्स को दोबारा यूज करें। अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस को फेंकने के बजाय संभाल कर रखें और अगली दफा किसी और को गिफ्ट देने के लिए यूज कर लें। मैं तो ये करती हूँ भाई, मेरी फेवरेट चीज है ग्लास की बॉटल्स और बॉक्सेस, मैं इन्हें दिल खोल के रीयूज करती हूँ। अच्छा भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपीरियंस गिफ्ट्स। कभी कभी गिफ्ट रैपिंग की जरूरत ही नहीं होती साथियों। आप किसी को डिनर एक्सपीरियंस पे लेकर जा सकते हैं, एक्टिविटी टिकट्स दे सकते हैं, लर्निंग कोर्सेज दे सकते हैं, फैमिली आउटिंग करा सकते हैं। इनमें से कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हैं जो यादगार भी होता है और वेस्ट भी कम क्रिएट करता है। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल दी जाए ना साथियों, तो आजकल बहुत से लोग क्रिएट और सस्टेनेबल गिफ्ट रैप आइडियाज अपना रहे हैं। कुछ लोग कपड़े के टुकड़ों से ट्रेडिशनल स्टाइल रैपिंग करते हैं जो दोबारा यूज हो सकती है। कुछ फैमिलीज गिफ्ट बैग्स का कलेक्शन बना लेती हैं और हर ओकेजन पर उन्हें रीयूज करती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ भाई। कुछ लोग बच्चों के गिफ्ट्स को कलरफुल ओल्ड न्यूज़पेपर या हैंडमेड डेकोरेशन से रैप करवा लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जब रैपिंग यूनिक होती है तो गिफ्ट और भी ज्यादा पर्सनल फील होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि क्रिएटिविटी और केयर भी शामिल होती है। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगली बार जब आप कोई गिफ्ट दें तो ट्रेडिशनल रैपिंग के बजाय सस्टेनेबल ऑप्शन ट्राई करें और हमें बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो करें और मैसेज करें। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar और हमें बताएं आपने कभी किसी गिफ्ट को क्रिएटिव तरीके से रैप किया है या आपके पास कोई पुराना गिफ्ट बॉक्स है जो आप आज भी रीयूज कर रहे हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, तोहफा सिर्फ अंदर की चीज से खास नहीं होता बल्कि उसे देने के तरीके से भी यादगार बनता है। तो भाई, छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें और सुनते रहिए FM 107 दिल से दिल।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Now follow us on Facebook and Instagram at FM7 Qatar. Dil se Desi.
1: FM 107 par apna business advertise karne ke liye aaj hi raabta karein. Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. Call करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं. इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है. ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए. याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं. और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं. F7 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर. स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं.
4: आप सुन रहे हैं FM 107.
0: Dil se desi.
5: One step to 2030.
6: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
5: One Step to 2030.
6: वेल, हमारा बड़ा ही खास सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाएंगे. आज हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल प्रोजेक्ट. सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एंड दैट टू हियर इन कतर. वैसे तो आपको पता ही है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा है, लेकिन चलिए आज एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आज की जरूरियात को पूरा करना बिना इस बात के कि आने वाली नस्लों के रिसोर्सेस नुकसान में ना पड़े. यानी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करना और एक हेल्दी फ्यूचर बनाना. कतर ने पिछले चंद सालों में ना सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में बहुत अहम कदम उठाए हैं. आज हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की, यानी क्लीन एनर्जी. दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से एनवायरमेंट पर असर पड़ रहा है, इसीलिए कतर सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है. सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये क्लीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स है. सूरज की रोशनी से बिजली पैदा की जाती है जो कार्बन इमिशंस को कम कर देती. वहीं दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन भी कतर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. कतर एक डेजर्ट कंट्री है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ रेगिस्तान ही है और यहाँ पानी की अहमियत सबसे ज्यादा है. डेजर्ट होने की या डेजर्ट कंट्री होने की वजह से पानी की अहमियत और बढ़ जाती है और इसीलिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी को बचाना और एफिशिएंटली इस्तेमाल करने पर काफी जोर यहाँ दिया जा रहा है. दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इरिगेशन सिस्टम्स और वाटर रिसाइकलिंग मेथड्स यूज किए जा रहे हैं ताकि पानी ज्यादा जाया ना हो. और अब बात करती हूँ ग्रीन बिल्डिंग्स की. कतर में कई नई बिल्डिंग्स हैं और ऐसी फैसिलिटीज डिजाइन की जा रही हैं जो कम एनर्जी कंज्यूम करें. इन बिल्डिंग्स में नेचुरल लाइट, एनर्जी इफिशियंट कूलिंग सिस्टम और एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है. इससे एनर्जी की बचत होती है और एनवायरमेंट पर कम प्रेशर पड़ता है. और एक और अहम फील्ड है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. जब ज्यादा लोग प्राइवेट कार्स इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों बढ़ता है. इस चाल को देखते हुए कतर ने मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है. जिया मेट्रो सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बेहतर ऑप्शन है और लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो शेयर ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करें. इससे फ्यूल कंजम्पशन और पोल्यूशन दोनों में कमी आती है. सो बस डियर लिसनर्स, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वेस्ट मैनेजमेंट भी सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. जी हाँ, रोजाना हम बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस

0: करते हैं, और अगर इसका सही इस्तेमाल हो, सही तरीके से मैनेज हो, तो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कतर में रिसाइकलिंग और वेस्ट रिडक्शन पर खास तवज्जो दी जा रही है। लोगों को भी एनकरेज किया जा रहा है कि वो प्लास्टिक और दूसरे मटेरियल्स को रिसाइकल करें और अननेसेसरली जो है वो वेस्ट उसे कम करें। डियर सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तक महदूद नहीं रहती, हर सिटीजन भी इसमें एक अहम रोल अदा करता है, जिस पर हमने हमेशा बात की। छोटी छोटी आदतें, मिसाल के तौर पर लाइट्स का सही इस्तेमाल, पानी बचाना, रीयूजेबल बैग्स का इस्तेमाल करना, रीसाइकिलिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना, कितनी अच्छी आदत है। जिया कतर का नेशनल विजन 2030 भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है, और इस विजन का मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए बेहतर जिंदगी का इंतजाम करना। ये हमें ये भी पैगाम देता है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों एक साथ चल सकती हैं। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट या पॉलिसी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, और ये लाइफस्टाइल हमें और आपको अडॉप्ट करनी है। जब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और आम लोग मिलकर साथ में काम करने लगे ना, तो बड़ा ही पॉजिटिव चेंज आता है। कतर के सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हमें ये दिखाते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट का ख्याल भी रखा जा सकता है। तो लिसनर्स, आज हमने जाना कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कतर के एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए कितने अहम हैं। हम सबका फर्ज है कि हम भी इस मिशन का हिस्सा बने और अपने डेली लाइफ में सस्टेनेबल हैबिट्स को अपनाएं। मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया, आपसे इजाजत लूंगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और एनवायरमेंट का भी बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मरल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामीन किराम, इस्लाम में अखलाक और रवैये की बुनियाद एक जामे उसूल पर रखी गई है और वो है एहसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन अल्लाह कतब अल इहसान अला कुल्ली शय, बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज में एहसान को फर्ज किया है, यानी हर काम में एहसान को लाजिम करार दिया गया है। एहसान का मतलब सिर्फ नेकी करना नहीं बल्कि हर काम को बेहतरीन अंदाज में करना है। इबादत हो या मुआमलात,

0: कि नहीं एतबार की होती है। लाखों लोगों को दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जो आपका उस वक्त साथ दे जब लाखों आपके मुखालिफ हो। दोस्ती में दूरियां तो आती रहती हैं, फिर भी दोस्ती दिलों को मिला देती है। दोस्ती चेहरा देखकर नहीं बल्कि अखलाक और चाहत देखकर कायम की जाती है, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक भी जख्मों की दवा होती। याद रखिए, अच्छा दोस्त आपका हाथ उस वक्त थामता है जब आपको उसकी जरूरत होती है, मगर सच्चा दोस्त आपका हाथ उस वक्त मजबूती से पकड़ लेता है जब आप कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। असल में दोस्ती का रिश्ता एक परिंदे की मानिंद है, सख्ती से पकड़ेंगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ेंगे तो उड़ जाएगा, और अगर मोहब्बत से पकड़ेंगे तो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा।
1: पैगाम ऑन FM 107। Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। हमारा आज का टॉपिक है इख्तलाफ का एहतराम करना। हर इंसान की सोच और नजरिया मुख्तलिफ होता है, इख्तलाफ होना फितरी बात है, लेकिन उसका तरीका बहुत अहम होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम दूसरों की राय का एहतराम करें, चाहे हम उससे मुख्तलिफ ही क्यों न सोचते हों। अक्सर लोग अपनी बात मनवाने के लिए सख्ती और बहस का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब हम इख्तलाफ को तहम्मुल और अदब के साथ हैंडल करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। ये रवैया एक मैच्योर और समझदार इंसान की निशानी है। आज का अमल ये है कि किसी भी डिसएग्रीमेंट में अपनी आवाज बुलंद करने के बजाय नरमी से अपनी बात रखें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारते दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का नए जमाने के नए स्कैम्स के बारे में। हर हफ्ते मैं आता हूँ और आपको नए स्कैम्स या फ्रॉड के बारे में अवेयर करता हूँ, और इस हफ्ते भी एक ऐसे ही स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल्दो ये स्कैम आपके साथ कतर में हो या ना हो, लेकिन आपके अपने मुल्क में या फिर जो खेती से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस तरह का स्कैम होना आसान होता है या उनके साथ स्कैम हो सकता है। तो इसलिए ये आपके लिए नहीं लेकिन आपके फैमिली मेंबर के लिए या फिर आपके अपने घर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने घर वालों को अपने फैमिली मेंबर को इस तरह के स्कैम के लिए अवेयर जरूर करना चाहिए। वेल, ये है फेक स्मार्ट एग्रीकल्चरल IoT डिवाइस स्कैम, जो आमतौर पर

0: गांव के एरियाज में ज्यादा होता है। रूरल एरियाज के फार्मर्स को टारगेट करने के लिए स्कैमर्स मॉडर्न स्मार्ट आईओटी एग्रीकल्चर डिवाइस जैसे कि सॉइल टेस्टर या ऑटोमेटेड वाटर कंट्रोलर्स सस्ते दाम पर बेचने आते हैं। वो दिखाने के लिए एक सस्ती या नकली मशीन दे देते हैं और कहते हैं कि इसका हाईटेक सॉफ्टवेयर एक्टिव करने के लिए अभी कार्ड स्वाइप करें या एडवांस पेमेंट जरूर करें। एडवांस लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं और डिवाइस बिल्कुल कचरा निकलती है और आप उनको पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही कोई ऑफिस है, तो ऐसे लोगों को आप सामने से पकड़ भी नहीं सकते। इसकी एक और वजह ये भी है कि जब वो आपको डिवाइस देते हैं वो डिवाइस कुछ वक्त बाद आपको कहते हैं कि एक्टिव होगी, जो कि कंपनी से एक्टिव होती है, और वो दुनिया भर की चीजें बताते हैं लेकिन ये तब कहते हैं जब आप पेमेंट करेंगे तब, यानी कि पेमेंट करने के बाद ये डिवाइस एक्टिव होगी और वो यानी कि वो शख्स जो आपको डिवाइस बेचने आए वो वहां से चले जाते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि ये तो डिवाइस खराब है। ये स्कैमर्स अक्सर फेक गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स का झांसा देते हैं ताकि तान जल्दी भरोसा कर रहे। वो कहते हैं कि अगर अभी स्कीम का फायदा नहीं उठाया तो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। बहुत से भोले किसान इसका शिकार हो जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। ये नकली डिवाइस ना तो कोई सही डेटा दिखाती है और ना ही खेती में किसी तरह से भी काम आती है, उल्टा इनमें लगाए गए कार्ड से बैंकिंग फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। खेती बाड़ी के लिए ऐसी कोई भी स्मार्ट डिवाइस हमेशा रजिस्टर्ड डीलर या गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से ही खरीदें। किसी भी आने वाले अनजान सेल्समैन को फील्ड में कैश या कार्ड एडवांस पेमेंट बिल्कुल ना करें। किसी भी डील को फाइनलाइज करने से पहले हमेशा लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर से राब्ता करके स्कीम की सच्चाई का जरूर पता लगाएं। उसके अलावा आप बाकी के किसान से, आसपास के लोगों से राब्ता रखें कि क्या इस तरह की कोई स्कीम चल रही है जिसमें आपको डिवाइस दिया जाता है और उसमें सॉइल टेस्ट करना या फिर तमाम जो चीजें हैं वो क्या शामिल होती हैं या नहीं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। तब तक होशियार रहें और सतर्क रहें इस तरह के फ्रॉड से और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर इत्तला करें। और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन या मुराकबा के जो जहनी फवायद हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और जानेंगे कि मुराकबा हमारी जज्बाती सेहत और रोजमर्रा जिंदगी को कैसे बेहतर बनाता है। जज्बाती सेहत का मतलब है कि हम अपने एहसासात को समझ सकें और उन पर कंट्रोल रख सकें, जिंदगी के चैलेंजेस का मुस्बत अंदाज में सामना कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि गुस्से, परेशानी, मायूसी या खौफ हमारे बिहेवियर, हमारे रवैयों पर असरअंदाज होते हैं। मेडिटेशन हमें अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में समझने और संभालने की सलाहियत रखता है। बाकायदा मुराकबा करने वाले अफराद में सब्र ज़्यादा होता है, गुस्सा कम आता है उन्हें, खुद एतमादी बेहतर होती है उनकी, और इसी तरह से जो नेगेटिविटी है वो भी कम होती है, यानी जो मनफी ख्यालात हैं उनमें भी कमी आती है। दूसरों के लिए हमदर्दी और बर्दाश्त बढ़ती चली जाती है। मुराकबा इंसान को अपने अंदर झांकने और अपनी कैफियत को समझने का मौका देता है, जिससे जज्बाती तवाजुन पैदा होता है और मुश्किल हालात में बेहतर फैसला करने में मदद मिलती है। नींद और जज्बाती सेहत का भी गहरा ताल्लुक है। जब जहन पुरसकून होता है तो नींद बेहतर आती है, और अच्छी नींद अगले दिन इंसान को ज्यादा खुश, पुरसकून और एक्टिव रखे। मुराकबा हर उम्र के अफराद के लिए बेहतरीन है और मुफीद है। स्टूडेंट्स के लिए तवज्जो और याददाश्त बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है, और इसी तरह से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए जहनी दबाव कम करने में मुफीद होता है। बुजुर्ग अफराद के लिए जहनी सुकून और मुस्बत सोच बरकरार

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, आदिल खामिस कतर और एशिया के बेहतरीन मिडफील्डर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्हें द ब्राउन गेजल के नाम से जाना जाता था। 1965 में पैदा होने वाले आदिल खामिस ने 1983 में अलगराफा को ज्वाइन किया और क्लब के लिए कई यादगार कामयाबियां हासिल की। आदिल खामिस ने कतर की कौमी टीम की 1984 से 2000 तक नुमाइंदगी की और गल्फ कप, एशियन और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कई अहम गोल स्कोर किए। 1992 में दोहा में गल्फ कप जीतना उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक माना जाता है, जब कतर ने पहली मर्तबा ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। अलगराफा क्लब के साथ उन्होंने दो लीग टाइटल्स, अमीर कप और 1999 में कुवैत में अरब क्लब चैंपियनशिप जीती। 1997-1998 सीजन में उन्होंने कुवैत के अल कत्सिया के लिए भी खेला और फिर वापस आकर अलगराफा क्लब को ज्वाइन किया। बेहतरीन पासिंग, टेक्निकल स्किल्स और कंसिस्टेंसी की वजह से आदिल खामिस आज भी कतर फुटबॉल के लेजेंड तसव्वुर किए जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो

0: जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर सवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका अपने प्रोग्राम में, आपके दिल से जुड़े प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां हर रोज की जिंदगी, या कह सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर के एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसके अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है, और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी दूर के लिए देर तक सोचने पे मजबूर कर देती है, और कहीं ना कहीं दूर ले जाकर एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी करीब लाती हैं। ये है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी, और इसलिए इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं। तो समीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं जनाब हसन राशिद साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है लेकिन कतर के साथ आपका रिश्ता कई नस्लों पर मुश्तमिल है। आपके दादा जान 1952 में कतर आने वाले पहले एक्सपैट में शामिल थे, और आपके वालिद ने भी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कतर की खिदमत में गुजारा। इसी खानदानी विरसे ने हसन राशिद साहब के दिल में कतर के लिए गहरी मोहब्बत और लगाव भी पैदा किया। तो हसन राशिद साहब ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री हासिल की और 2012 में कतर आकर अपने प्रोफेशनल सफर का आगाज किया। आज आप सीनियर टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज के मैदान में वसी तजुर्बा रखते हैं। आपने बासलाहियत अफराद होने के साथ साथ बेहतरीन मौकों से खुद को जोड़ा है, मजबूत प्रोफेशनल ताल्लुकात कायम करे हैं और इदारों को उनके स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करने में अहम किरदार अदा किया है। सीखने का जज्बा, मुसलसल मेहनत, इस्तेकामत और जाती तरक्की आपकी शख्सियत की खास पहचान है। तो आइए समीन, हसन राशिद साहब के सफर, इनका प्रोफेशनल तजुर्बा और कतर के साथ उनके खास रिश्ते के बारे में बात करते हैं और उनको करीब से और भी ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हसन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से?
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है, आप सुनाएं, ठीक है?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला FM 107 के लिए और इस खास प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े।
2: बहुत शुक्रिया आपका।
1: चलिए हसन भाई, अब हम सवाल जवाब का जो हमारा प्रोग्राम है उसकी तरफ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको और भी ज्यादा खास करके जो दोहा से मुतालिक सवाल है मेरे, वो आपसे मैं पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताएं हसन साहब कि अगर आप अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करें तो वो क्या होंगी?
2: अगर मैं अपने शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करूंगा तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और फ्रेंडली हूँ, केयरिंग हूँ, और टाइम मैनेजमेंट के साथ बहुत ज्यादा मेरा लगाव है, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हूँ टाइम मैनेजमेंट के साथ।
1: क्या बात है भाई, आप पैदा भी दोहा में हुए और यहीं परवरिश पाई, और इस शहर से आपका रिश्ता एक जुमले में आप कैसे बयान कर सकते हैं?
2: यस, आई बोर्न एंड रेजिंग कतर्स, तो अगर मैं इसको एक जुमले में बयान करूंगा तो ये कहूंगा कि इसने, दोहा ने मेरी पर्सनैलिटी को ग्रो अप करने में बहुत बेहतर करदार अदा किया है, और अपने आप को जहाँ पे भी मैं, जिन लोगों पे बैठ के मैं बात करता हूँ, तो मुझे एक डिफरेंस फील होता है कि दो कतर के कल्चर ने मेरी कैसे ग्रूमिंग की है और मेरे स्किल्स को कैसे एनहांस किया
1: है। क्या बात है सर, आपके लिए एक आइडल या रिलैक्सिंग दिन जो है दोहा में वो कैसा होता है या होता आया है?
2: रिलैक्सिंग दिन डेफिनेटली व्हेनेवर आई हैव टाइम सच एज वीकेंड, स्पेशली आई विल मेंशन टू से वीकेंड्स, तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करता हूँ, स्पेशली विद माई फैमिली. We will go out to different malls whenever we have time. It depends on the plan. Or either way, we will move to sea line beaches to do some barbecue or just chill out over there.
1: क्या बात है, बीचेस वगैरह पे भी जाना पसंद करते हैं। तो ये बताइए हसन साहब के आपकी डेली रूटीन में अगर बात करें तो दोहा की कौन सी ऐसी वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
2: सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है वो ये है कि मैं पिछले कितने साल से एक ही जो सुबह मॉर्निंग टाइम जो रोड यूज करता हूँ वो कॉर्निश है। और since 14 to 15 years I have been using this road, so it's really बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि इसके जो व्यू है, सी व्यू है, और उसके बाद जो हाई रेज बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, वो रियली इट्स रियली चार्मिंग, इट्स रियली मुझे अच्छा लगता है।
1: सुबह की ताजगी में वो आपका बहुत साथ देती है और एक बड़ा किरदार अदा करती है। क्या बात है, आइए,
2: इट्स रियली मिसमराइज्ड मी जैसा।
1: क्या बात है भाई, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और दोहा से मुतालिक और आपका जो रिश्ता है दोहा से उसके बारे में कुछ जवाब चाहता हूँ। बचपन का दोहा और आज का दोहा, सबसे बड़ा फर्क आपको किस चीज में नजर आता है?
2: Yeah, there's a huge difference between the past and present as well. So, in every sector. So, such as if we will talk about the technology, बहुत difference है। पहले मतलब के जब किसी को call करनी पड़ती थी तो बहुत ज़्यादा long queue में wait करना पड़ता था, आपको book करवानी पड़ती थी call अपनी। अभी जिस तरह advancement हो गई है telecommunication के अंदर, तो easy to access to everyone across the borders as well. उसके बाद अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बहुत लिमिटेड सी थी, ठीक है। अभी जिस तरह इनकी डेवलपमेंट हुई है, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मेडिकल सेक्टर एज वेल, तो काफी आपको एक आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल गई हैं। और इसी तरह अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो अभी डिफरेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स आपको मिल जाते हैं दोहा में, इजी एक्सेस, जहाँ पे बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज हैं 24/7। तो मैं ये समझूंगा कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा
1: माशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमारे कतर को इसी तरीके से तरक्की देता रहे और आगे बढ़ाता रहे। हसन साहब, आपकी बचपन की पहली कोई ऐसी याद या पुरानी कोई ऐसी याद जो दोहा से जुड़ी हुई हो तो कुछ बताना चाहते हैं, कुछ याद है, कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हैं?
2: सब दूसरों की तरह सबकी बचपन की यादें उनके स्कूल के साथ होती है, तो मेरी भी कुछ यादें स्कूल के साथ ही हैं। जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनको मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि उसके बाद सब लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में चले गए, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ दूसरे कंट्रीज में चले गए हैं, तो वो स्कूल की यादें, उनके साथ बिताए हुए लम्हे, वो बहुत ज्यादा याद आते हैं।
1: तो स्कूल डेज में दोहा कैसा लगता था, अगर उस टाइम की बात करें जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो किस तरीके का महसूस होता था और कैसा लगता था?
2: उस टाइम तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी हमें, मतलब कि अभी तो मुझे नहीं पता कि बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि नहीं होती थी, अगले दिन हमने स्कूल जाना है, तो उस टाइम तो हम लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। कभी कभी तो रात को नींद नहीं थी आती कि हमने कल स्कूल जाना है और हमारे ये प्लान है, हमारी ये पार्टी है, हमारे ये लेसन हैं टीचर्स के साथ, और उसमें हम बड़े अपने आप को वेल प्रिपेयर करते थे कि ताकि हम, और ये कंपटीशन होता था कि हम इस, मैं अपने दोस्त से ज्यादा अच्छा बयान करूंगा, टीचर को अच्छा ज्यादा प्रूव करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, तो वो एक कंपटीशन भी होता था, दूसरा उसमें एक मजा भी होता था, तो वो बहुत अच्छे एक दिन थे।
1: क्या बात है, तो क्या आपको याद है कि बचपन में आपकी फेवरेट जगह कौन सी हुआ करती थी?
2: फेवरेट जगह बचपन में मुझे भी याद है कि व्हेनेवर माय पेरेंट्स टुक मी टू द शेरिटन होटल,
1: अच्छा
2: कॉर्निश शेरिटन होटल
1: जब वही एक्चुअली वही हुआ करता था, मैं भी थोड़ा रिलेट कर सकता हूँ।
2: वही था और आज भी उसका जो आर्किटेक्ट है और वो बिल्कुल वो सेम है। और अगर यस वो 19 अगर आप 1980s और 1970s में देखें उसको, उसका आर्किटेक्ट बिल्कुल सेम है। और वो ही जगह थी जहाँ पे मैं जाता था अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पे साइड पे एक पार्क था, वहाँ पे हम बैठते थे एंड वी एंजॉयड वेरियस कुजीन एज वेल, होममेड कुजीन
1: लेकर जाया करते थे।
2: Yes,
1: बिल्कुल आज भी वही सिलसिला जारी है जाहिर है।
2: Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हसन भाई क्या दोहा के किस एरिया या मोहल्ले ने आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला? भाई बीइंग एन एक्सपर्ट हम लोग जगहें बदलते हैं ऑब्वियसली, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और ज्यादा ज्यादा हुआ होगा, तो कुछ इस पे बताना चाहते हैं कोई वैसा हिस्सा या मोहल्ला?
2: Exactly, क्योंकि मैं जब यहाँ पे हम लोग रहते थे, जब मेरे पेरेंट्स वगैरह भी यहाँ थे, तो हमारा जो एरिया था वो था फ्रीज अब्दुल अजीज, विच इज द हार्ट ऑफ द दोहा एंड क्लोज टू द मुशेरी बैस। तो उधर पे जो हमारा हम लोगों का घर था वो बहुत एक अच्छा घर था हम लोगों का। हमारे जो नेबर्स थे बहुत अच्छे थे, लविंग थे, केयरिंग थे। बहुत सी फैमिलीज थी पाकिस्तानी वहाँ पे, और इंडियंस फैमिली थी एंड सम फ्रॉम फलस्तीन एज वेल। तो बहुत अच्छे लोग थे वो, और उस एरिया से बहुत मेरा लगाव है। आज भी कभी मुझे पुरानी यादें ताज़ा करने को दिल करता है तो मैं उस एरिया की तरफ जाता हूँ।
1: वाह वाह वाह, असल में मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ और दूसरे भी जो बॉर्न ब्रॉट अप हैं या लोग पुराने हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारी मेरी यादें मुंतजा से हैं, तो मुंतजा भी ऐसा ही है, पुराना है, मैं भी वहीं चले जाता हूँ जब भी कुछ पुरानी यादें अम्मा अब्बा को याद करना होता है। तो भाई वाह बहुत खूब। जनाब जब आप बड़े हो रहे थे तो उस वक्त शहर भी तब्दील हो रहा था, तो इसमें क्या तासुरात हैं, क्या आप क्या कहना चाहते हैं, उस वक्त शहर किस तरह तब्दील हो रहा था, आपने क्या देखा और आपके क्या व्यूज हैं?
2: यस विद द पैसेज ऑफ टाइम यस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत तब्दीली आई है। उसके बाद अगर आप रोड्स की बात करें तो जो ये लोग पहले यहाँ पे रहते थे उनको पता होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा राउंड बाउट्स थे, ठीक है, तो हर कॉर्निश पे भी राउंड बाउट्स थे। आप वाकरा की साइड पे जाएं उधर भी राउंड बाउट्स थे, गराफा की तरफ भी राउंड बाउट्स थे। तो वो एक बड़ा एक अभी सब चीजें वो चेंज हो गई है, अभी सब जगह सिग्नल लग गए हैं, रोड को उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। और इसी तरह अगर डिफरेंट सेक्टर्स में आप बात करें, अगर आप उसमें जाते हैं लाइक अपनी प्रोफेशनल फील्ड्स में जाते हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसकी वजह से अपने स्किल्स को पॉलिश करना भी बहुत जरूरी था वक्त के साथ।
1: सही सही, क्या बात है भाई। आप दोहा के साथ साथ खुद भी ग्रो कर रहे थे और बड़े हो रहे थे, तो कभी आपको कोई फिक्र हुई कि मैं दोहा में रहकर ही अपना करियर बनाऊं, या फिर जैसे कि होता है कि दूसरी जगह जाकर और कुछ करने का सोचा?
2: नहीं, एक्चुअली दोहा के अंदर तो मेरी बहुत सी यादें ताजा हैं, बचपन यहाँ गुजरा है, तो वक्त के लिहाज से ठीक है, अपने आप को मैंने चेंज किया, जो भी यहाँ पे एडवांसमेंट होती रही उसके साथ मैंने अपने आप को ग्रो किया, अपने स्किल्स को पॉलिश किया। ठीक है, इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, वो कहते हैं सोचता है कि यार आज मतलब कि डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, तो अगर हम लेट्स सपोज जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि आपको थोड़ा सा टफ टाइम भी मिलता है, आपको ये होता है कि वो कहते हैं ना अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो इसमें यही होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, लेकिन इसमें लेकिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको मुल्क के साथ साथ अपने आप के भी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो स्किल्स को एडवांस करना पड़ता है, तो आप उस चैलेंजेस का मजबूती से सामना कर लेते हैं।
1: क्या बात है। क्या कभी आपने महसूस किया कि रैपिडली चेंजिंग सिटी के साथ खुद को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है?
2: नो, आई नेवर फील लाइक दिस, क्योंकि मैं इस कतर के जो कल्चर्स हैं, जो उसकी सकाफत है, उसके साथ बहुत मेरा गहरा ताल्लुक है, तो मैंने अपने को कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि आई एम अलोन हियर, क्योंकि मैं एक बहुत ही वो एक फ्लेक्सिबल आदमी हूँ, और जैसी मैं समझता हूँ कि चीजें चेंज हो रही हैं उस लिहाज से मैं अपने आप में भी चेंजेस शुरू कर लेता हूँ लाना, ताकि इजीली मिंगल अप हो सकूं लोगों के साथ।
1: क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सरवर मिर्जा आपके साथ, बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
0: सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और एक दो सवाल वहाँ से भी कुछ स्ट्रॉन्ग डेज के हवाले से, हार्ड डेज के हवाले से। हर शहर की तरह दोहा ने भी चैलेंजेस देखे हैं, आपकी जिंदगी का कोई मुश्किल दौर जो आज भी याद हो?
2: यस, अप्स एंड डाउन्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। उसमें ये था कि चैलेंजेस में जब मैं यहाँ पे एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, उसके बाद मेरे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तलाश करनी थी, जो रोजगार जिसको आप बोलते हैं, रोजगार की तलाश थी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसमें काफी टाइम लगा, लेकिन आई नेवर गिव अप। मैंने उसमें अपना उसने मेहनत की, मैंने उसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और मुझे अच्छी एक यहाँ पे जॉब मिल गई कतर के अंदर।
1: क्या बात,
2: ठीक है। उसके बाद फिर मैंने काफी अर्सा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, फिर ड्यू टू द सम सर्कमस्टांसेस के आई लॉस्ट माई जॉब, देन अगेन आई वॉज अनएम्प्लॉयड, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। फिर मुझे वक्त के साथ साथ अपने आप को भी चेंज किया, अपने स्किल्स को पॉलिश किया, फिर दोबारा से मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सो देर आर सम चैलेंजेस स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बट आई विल ऑलवेज एडवाइस टू द पीपल, दोज हु आर राइट नाउ इज सीकिंग फॉर ए न्यू रोल, सो नेवर गिव अप। कतर एक बहुत अच्छा देगा, बहुत सब कुछ देगा।
1: क्या बात। तो दोहा में रहते हुए सबसे बड़ी पर्सनल चैलेंज क्या रही आपके लिए?
2: यस, इन द बिगनिंग वो एक लैंग्वेज बैरियर था, जो अरबिक से स्किल्स मेरे

0: तो उसमें ये था कि कभी कभी मैं पब्लिक स्पीकिंग में जाते हुए थोड़ी सी मुझे हेसिटेशन महसूस होती थी, तो उसमें ये था कि फिर मैंने जब मुझे जॉब मिल गई तो उसमें हुआ कि मेरा जो कंपनी का एनवायरनमेंट था मोस्टली अरबिक था, तो उसमें मैंने अपने स्किल्स को बहुत एडवांस किया टूवर्ड्स द अरबिक, मैंने अरबिक सीखी, उसके बाद मैं सेपरेट क्लासेस भी लेता रहा। तो ये एक शुरू में मेरा एक चैलेंज था, इसको मैंने एक्सेप्ट किया, अपनी पर्सनैलिटी को उसके लिहाज से थोड़ा सा ग्रो अप किया और विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। और आज मैं जहाँ पे बैठता हूँ अगर वहाँ पे अरबिक स्पीकर्स नहीं हो तो मैं अरबिक में भी बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ, तो अपनी मदर टंग में भी बात कर सकता हूँ।
1: क्या बात है भाई, आपकी फैमिली ने आपकी बहुत मदद करी ही होगी, और हर फैमिली का कुछ ना कुछ हिस्सा रोल, एक बड़ा बल्कि कुछ ना कुछ नहीं इंसान की जिंदगी में रोल होता है, तो आपकी फैमिली ने आपकी पर्सनैलिटी और वैल्यूज को कैसे शेप किया बता सकते हैं?
0: Yes, first of all, my parents plays a very vital role to develop my personality, especially my father. और उन्होंने हमेशा हमें अच्छी बातों की नसीहत की है कि कभी आपने झूठ नहीं बोलना, आपने हमेशा सच का साथ देना है। और yes, और कभी भी हो किसी मुकाम पे भी अगर आप के अख्तियार में हैं, दूसरों की मदद करनी चाहिए आपको। अगर आपके इख्तियार में है तो दूसरों की मदद करनी चाहिए, और इनकी ये अच्छी एडवाइसेस की वजह से जो कुछ भी आज मेरे पास है वो मेरे फादर की वजह से है, उनकी जो एडवाइसेस थी उन पे मैंने अमल किया। और आई वुड लाइक टू से दैट ही इज बिग रोल मॉडल फॉर मी इन माय लाइफ।
1: क्या बात है भाई, अल्लाह ताला खैर के साथ रखे सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल जवाब यहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग क्या मेमोरी बिल्डिंग के हिसाब से कुछ सवाल हैं। आज आपके लिए दोहा का क्या मतलब है?
0: दोहा का मतलब ये है कि आज जो भी मैं हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है मुझे इस कंट्री से मिला है।
1: वाह,
0: मेरे पास जब मैं अपना पहला दिन दोहा में याद करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, वो मैंने सब कुछ इसी की सरजमीन पे लिया है।
1: क्या बात,
0: और जितने भी जो भी मेरे अंदर जितनी भी ग्रूमिंग हुई है प्रोफेशनली और जितनी भी मेरे अंदर डेवलपमेंट हुई है वो सब कुछ मैंने दोहा से ही सीखा है।
1: क्या बात है,
0: और जितना भी कल्चर को मैंने अडॉप्ट किया है और जितना भी इनके कल्चर को मैंने सीखा है और अपने अंदर उसको लेके आया हूँ सब कुछ दोहा से ही सीखा है।
1: बहुत खूब, बचपन या जवानी का कोई ऐसा वाकया जो आज भी याद करके मुस्कुराहट आ जाती हो और हंस पड़ते हो, शेयर करना चाहें अगर?
0: उसमें ज्यादातर हमारे जो स्कूल के वाकया थे वही होते थे, बच्चों के साथ वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ मजाक करना, और फिर उसमें भी यही है कि एक दफा हमारी वो क्लास में वो एक लड़का था, तो वो एक्चुअली दो ट्विन्स ब्रदर थे, एक का नाम अजमुल हक था और एक का नाम अजाजुल हक था। तो वो अक्सर ये होता था कि हमें समझ नहीं आती कि हम अजमुल हक को आवाज दें कि अजाजुल हक को आवाज दें, वो बिल्कुल सिमिलर कॉपी पेस्ट उनकी फेसिस थे, तो वो अक्सर उसमें ही होता था कि हम बुलाना अजमुल हक को चाहते थे तो बुला अजाजुल हक को कहते थे। और अक्सर टीचर्स को भी गलती लगती थी अटेंडेंस में, जब उनकी अटेंडेंस होती थी तो वो यस, तो वो अगर एक हाथ दूसरा खड़ा करता था यस प्रेजेंट मींस, तो ऐसा लगता था कि ये एब्सेंट है और दूसरा प्रेजेंट है। वो एक बड़ा एक जब भी याद करते हैं उससे बात करते हैं तो हम मतलब तो बहुत हंसते हैं उस बात।
1: बहुत खूब, तो इसी के सिलसिले से बताइए कि क्या कोई शख्स या कहें कि टीचर ऐसे थे जिन्होंने आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाला? उस्ताद का एक बड़ा हाथ होता है हमारी जिंदगी में, तो कुछ बताना चाहते हैं?
0: यस, वाई नॉट, वाई नॉट, मैं बिल्कुल, मैं अपने एक टीचर्स को बहुत ज़्यादा मतलब कि मिस भी करता हूँ, और उनकी जो मेरी जितनी भी जो इनिशियल ग्रूमिंग हुई है, इनिशियल ग्रोथिंग हुई है, मतलब उनका एक बहुत करदार था। और मैं स्पेसिफिकली अपने एक सर का नाम भी मैंशन करता था, तो मिस्टर उस्मान जो मेरे एक फिजिक्स के टीचर थे।
1: ओके,
0: और फिजिक्स मुझे बहुत, यस फिजिक्स काफ़ी मुझे एक टफ सब्जेक्ट लगता था, लेकिन उन्होंने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। और अगर जब भी कभी मुझे पर्सनल कोचिंग करना चाहता था तो कभी भी उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया उससे।
1: वाह,
0: और मैं ये समझता हूँ कि आज वो, मैंने उसमें बहुत अच्छे मार्क्स किए थे 10th grade, तो सो मैं यही समझता हूँ कि उनकी एक कॉन्टिन्यूसली उनकी जो एक जदोजहद थी, और उन्होंने जब मुझे एक एक्स्ट्रा टाइम दिया आफ्टर द स्कूल आवर्स, तो मैं उनको रियली अप्रिशिएट करता हूँ, और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ और मेरे लिए बहुत

0: एक काबिले मोहतरम है, और मैं यही समझता हूँ कि उनकी जो एडवाइस थी, उनकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी थी, उन्होंने मुझे बोर्ड डेवलप किया और मुझे उन्होंने बहुत एक अच्छे मार्क्स में बहुत मदद की।
1: क्या बात है भाई, अल्लाह ताला उस्तादों को, सभी के उस्ताद को खैरियत से रखे, और वाकई उन लोगों का एक बड़ा हाथ होता है हमारी ज़िंदगी को शेप करने के लिए। हसन भाई, क्या बचपन या स्कूल डेज की कोई और फ़नी इंसिडेंट वगैरह जो आज भी फैमिली गैदरिंग में डिस्कस होता हो या शेयर करते हो, अगर कुछ याद है?
0: फ़नी मोमेंट्स में तो बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन जो क्लासरूम की शरारतें हैं, उसके बाद डिफरेंट ब्रेक टाइम्स के अंदर हमने बच्चों का, जो मेरे फ्रेंड्स का जो लंच वगैरह शेयर करना, और उसमें भी काफ़ी चीज़ें, फिर स्पोर्ट्स डे के इवेंट्स होते थे उसमें हम लोगों ने, स्पोर्ट्स डे के इवेंट्स में हम लोगों ने मतलब बहुत एक फन, वहाँ पे एक फन होता था बहुत ज्यादा।
1: अच्छा, इसी सिलसिले में अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या कभी आप किसी जगह या इवेंट में हो और वहाँ, क्योंकि बच्चों के साथ यूजुअली होता है, इतने क्यूरियस होते हैं कि कहीं ना कहीं भागते हैं इधर उधर हम लोग, और वहाँ आप खो गए हो या खो गए थे और बाद में आपको वो मसला और भी ज्यादा बढ़ गया और आज भी घर वाले उसको सोच के याद करते हो, कभी ऐसा हुआ?
0: हाँ, वो एक दफा ऐसा हुआ था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ, व्हेन आई वाज इन लाइक सिक्स क्लास, मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक मॉल में गया कतर में, और उधर पे यही हुआ कि मैं जो था वो टॉयज की सेक्शन में चला गया। तो वो टॉयज के सेक्शन में चला गया, और मॉल आपको पता है कि काफी यहाँ पे उस टाइम बड़े मॉल थे, अभी भी बड़े मॉल हैं, तो वो मैं वहाँ पे घुप गया। तो फिर उस टाइम वो इतना एडवांस सिस्टम नहीं था कि माइक्रोफोन पे वो अनाउंसमेंट करते हुए, ठीक है, तो वो फिर उन्होंने उधर पे काफी मुश्किल हुई उनको, तो मैं भी उनको ढूंढता रहा, वो भी मुझे ढूंढते रहे, तो एट एंड लेकिन ये है कि मैं मिल गया उनको, उनकी जो उनका जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने बड़ी हेल्प की मुझे ढूंढने में। तो जब भी बैठता हूँ मदर, अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, मुझे कहते हैं कि यार उस दिन हम लोगों को तुमने पागल कर दिया था।
1: हमारे दोहा में यही खासियत है कि हर कोई एक दूसरे का ख्याल करने के लिए सबसे आगे आगे रहता है। दोहा के लोगों की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी आदत है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हसन साहब,
0: आते तो इधर पे लोगों की बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े फ्रेंडली लोग हैं। व्हेन इट कम्स टू द हॉस्पिटैलिटी, दे आर सुपर्ब। हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। और फिर ये भी चीज़ इसमें मैंने नोट की है कि ये अपनी कल्चर्स और वैल्यूज के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उसको नहीं छोड़ते। यस, एग्जैक्टली। तो ये चीजें रियली, दे रियली इम्प्रेस्ड मी फ्रॉम द पीपल। तो और यही चीजें मैंने अपने आप में भी अडॉप्ट की हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। हम भी इस कहना चाहिए कंट्री के रंग में जब ढल जाते हैं तो हमारी शख्सियत और भी ज्यादा खूबसूरत होकर निखर कर सामने आती है। क्या बात है हसन भाई। दोस्तों के हवाले से अगर बात करूं तो आपने अपनी दोस्ती, और कहना चाहिए अब जब हम बड़े हो जाते हैं और ताल्लुकात मजीद स्ट्रांग हो जाते हैं, तो सोशल सर्किल वगैरह कैसे आपने बनाया अपना?
0: यस, बेसिकली जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, कुछ यहाँ पे भी दोहा के अंदर हैं जो अच्छी जॉब्स पे हैं, ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, और स्पेशली ऑन वीकेंड्स हम गेट टुगेदर करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होती है हम लोगों की। और कुछ लोग जो आउट ऑफ कंट्री हैं, स्पेशली इन डिफरेंट यूरोपियन रीजन, लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलता है, वेन एवर आई हैव हॉलीडेज वेकेशन, तो मैं ट्रेवल करता हूँ यूरोप कंट्रीज में और उनसे जाके मुलाकात भी करता
1: हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे।
0: यस, और जो पाकिस्तान में है, जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो जाने से पहले भी उनसे पूछता हूँ कि ये दिन मैं फलां डेट को मैं आ रहा हूँ, तो मुलाकात का प्लान बनाते हैं, तो उस हिसाब से हम अकॉर्डिंगली हम एक रीयूनियन करते हैं, फ्रेंड्स रीयूनियन करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये कि यस, तो जब भी टाइम मिलता है तो उनके साथ मेरा कनेक्शन होता है, उनसे मुलाकात होती है और अपनी ओल्ड मेमोरीज को हम एक रिफ्रेश करते हैं।
1: क्या बात है। और वो बैठकर चर्चा जब होती होगी चाय पे तो वो दोहा की पुरानी यादें, पुरानी बातें निकल कर आती होंगी। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आपने अपने पुराने दोस्तों को आज तक याद रखा हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है। हसन साहब, मुश्किल सवाल करने वाला हूँ बट फिर भी करना चाहता हूँ हिम्मत करके, दोहा को आप एक लफ्ज में कैसे बयान करेंगे?
0: दोहा को मैं ये कहूँगा कि लाइफ को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड किया है मैंने, राइट, टाइम की अहमियत बताई है दोहा ने, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप किया है दोहा ने मेरे अंदर, बहुत से हिडन टैलेंट्स को पॉलिश करने में बहुत सी मदद की है दोहा ने, और

0: जो भी आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे कतर ने दिया, जो भी रिस्पेक्ट, टैलेंट, माय स्किल्स पॉलिश, व्हाटएवर आई हैव, आई गेट इट फ्रॉम दोहा कतर।
1: क्या बात है। जो लोग पहली बार दोहा आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
0: यस, जो लोग फर्स्ट टाइम दोहा में आ रहे हैं, मेरा उनको ये एडवाइस है कि आपने जब भी किसी कंट्री में आना, नॉट इन दोहा, आपने ब्लड स्पोर्ट्स किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना है या किसी भी दूसरी एशियन कंट्री में जाना है या कतर में आना है, तो सबसे पहले आपको उस कंट्री के कल्चर वैल्यूज का बहुत ज्यादा पता होना चाहिए।
1: क्या बात है
0: कि वहाँ लोगों का कल्चर क्या है।
1: वाह,
0: ठीक है। दूसरा ये कि वो उसके बारे में आपको एटलीस्ट उस कंट्री की बेसिक लैंग्वेज के में महारत होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेज, क्योंकि ये ऐसे जैसे मैंने बताया कि लोग कल्चर में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ते। अगर आप इनसे एटलीस्ट बेसिक कम्युनिकेशन भी करें ना इनकी लैंग्वेज में, तो ये आपको रियली अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि इनके कल्चर्स को बिल्कुल ना आप इग्नोर करें, कल्चर को स्ट्रांगली इनके कल्चर को फॉलो करें, इनकी वैल्यूज को फॉलो करें।
1: वाह।
0: और इनके साथ एटलीस्ट बेसिक कम्युनिकेशन जो अरबिक में है वो इनके साथ आप अगर आप करेंगे।
1: वेरी वेल सेड। ये बाकी ये बेसिक कुछ चीजें ऐसी हैं सन साहब जो आपने बताई कि वाकई ये हम सब के अंदर होनी चाहिए। बहुत अच्छा जवाब लगा मुझे ये भी आपका। आपके ख्याल में दोहा की सबसे खूबसूरत बात क्या है जो दुनिया को मालूम होनी चाहिए?
0: जैसे मैंने अपने काफी स्टेटमेंट्स में कहा है कि ये वैल्यूज को नहीं छोड़ते, अपने कल्चर और वैल्यूज के बारे में बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह फीफा 2022 यहाँ पे हुआ, तो उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी उन्होंने भी उसमें अपनी जो जो स्टार्टिंग थी उसमें वो कुरान तिलावत पाक से उनका जो इनॉग्रेशन की थी। राइट। तो उसमें ये है कि कंट्रीज दूसरे मुल्क को इन्होंने ये बताया कि हम अपने जो कल्चर में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, वी आर वेरी वेलकमिंग पीपल, वी आर वेरी वेलकमिंग टू द अदर्स एज वेल, आपके लिए डोर्स ओपन है, बट वी नीड फ्रॉम यू टू रिस्पेक्ट अवर कल्चर।
1: वाह वाह, बहुत खूब। अब बस बिल्कुल हम इख्तिताम पे आ गए हैं और आखिरी सवाल, और आखिर में आप क्या कहेंगे, दोहा ने आपकी जिंदगी को कैसे शेप किया? आपने बहुत कुछ बताया मगर फिर भी आप अपनी पूरी दोहा जर्नी को चंद अल्फाज में जाते जाते हमें कुछ बताना चाहते हैं।
0: बिल्कुल। दोहा, अगर मैं इसको अपनी ओवरऑल नटशेल अगर मैं इसको बयान करूंगा, तो सबसे पहले कि कतर ने मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पैदा किया, डिसिप्लिन इन सेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इधर पे मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट को बहुत अहमियत दी जाती है। ठीक है। और उसके अलावा जो मेरी पर्सनैलिटी के लिहाज से मैंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है, इनके जो कल्चरल वैल्यूज थी उनको बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया मैंने।
1: वाह।
0: राइट। जो मुझे काफी जिसने हेल्प की है लोगों के साथ मिंगल अप होने की और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की। राइट। सो ओवरऑल जो भी आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे दोहा से, इस ब्यूटीफुल दोहा कतर से मिला है।
1: क्या बात।
0: और इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि आगे भी जो टाइम गुजरेगा वो मजीद इससे बेहतर गुजरे
1: इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हसन साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कहानी, अपने जज्बात दोहा से जुड़े हुए और अपनी जो लर्निंग्स हैं वो सब हमारे साथ शेयर करी और बहुत ज्यादा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: ऑलवेज वेलकम। अपना भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
1: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो खादिनो हजरात, दोस्तों, बुजुर्गों, आप सब से भी बस इतना ही कहूंगा कि जिंदगी के हर सफर में, हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता, कहानी आप लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
4: FM 107 दिल से देसी।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें।

0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अब तेरी माँ भी अफेयर कुड़ी।

0: का वफादारी का दावा कहाँ गया? असल हकीकत तो पेशकश के आने के बाद जाहिर हुई। इसी तरह अल्लाह के साथ हमारी वफादारी भी सिर्फ आसानी के ज़माने में नहीं जांची जाती, बल्कि उस वक्त सामने आती है जब दुनिया किसी दूसरी तरफ हमें बुला रही हो। सामिन इकराम, आजमाइश के बारे में हमारी समझ अक्सर अधूरी होती है। हम जब किसी बीमार को देखते हैं तो कहते हैं अल्लाह उसे आजमाइश से निकाले, किसी फकीर को देखते हैं तो कहते हैं ये बड़ा मुब्तला है, किसी मजलूम बेरोजगार या परेशान शख्स को देखकर हमें फौरन इब्तिला याद आता है, लेकिन जब कोई सेहतमंद दौलतमंद साहिब मनसब और आसूदा हाल हो तो हम समझते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई इम्तहान नहीं। ये तसव्वुर गलत है, दुरुस्त नहीं। अल्लाह फरमाता है وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, हम तुम्हें बुराई और भलाई दोनों के जरिए आजमाते हैं, यानी बीमारी भी इम्तिहान है और सेहत भी, फ़क्र भी इम्तिहान है और दौलत भी, नाकामी भी इम्तिहान है और कामयाबी भी। कभी आजमाइश आंसुओं के साथ आती है और कभी आजमाइश मुस्कुराहटों में छुपी होती है। कभी इंसान को कुछ लेकर आजमाया जाता है और कभी बहुत कुछ देकर। जब इंसान बीमार होता है तो अल्लाह को पुकारता है, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे, रात को दुआ करता है, कुरान पढ़ता है, सदका देता है, अपनी कमजोरी महसूस करता है। जब माली तंगी आती है तो उसके अंदर आजिज़ी पैदा होती है। इसी तरह जब किसी का हक मारा जाता है तो अदल की कदर समझता है, लेकिन जब सेहत बहाल हो जाए, माल बढ़ जाए, मनसब मिल जाए और लोग एहतराम करने लगें तो दिल में गफलत दाखिल हो सकती है। यही वजह है कि औकात खैर की आजमाइश शर की आजमाइश से ज़्यादा मुश्किल होती है। मुसीबत इंसान को अल्लाह की तरफ धकेल देती है, मगर नेमत इंसान को अपने आप पर फरिश्ता कर सकती है। मुसीबत में इंसान कहता है या अल्लाह मेरे सिवा तेरा कोई नहीं, नेमत में कभी उसका रवैया ये हो जाता है कि ये सब मैंने अपनी सलाहियत से हासिल किया है। सामने कराम, अगर किसी शख्स को कोई बड़ा ओहदा मिल जाए तो अक्सर लोग उसे कामयाबी समझते हैं। बिलाशुबा मनसब एक नेमत हो सकता है, लेकिन उससे कहीं बड़ा इम्तिहान भी हो सकता है। इसे भी हमारे जहन में रखना है कि अल्लाह तो ये देखता है क्या इस शख्स ने मनसब को खिदमत बनाया या अपनी बढ़ाई, क्या उसने अहल और बासलाहियत लोगों को आगे बढ़ाया या अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को, क्या उसने आवाम के मसाइल हल किए या अपने लिए सहूलतें जमा की, क्या उसने वसाइल को अमानत समझा या ज़ाती मिल्कियत। एक आम मुलाजिम अगर गलती करे तो उसका नुकसान महदूद हो सकता है, मगर एक साहिब इख्तियार की गलती पूरे इदारे शहर या कौम को मुतासर कर सकती है। कुरान की निगाह में इख्तियार का असल हुस्न ये है कि आप कितने लोगों के हकूक की हिफाजत करते हैं। इख्तियार की खूबी इसमें नहीं कि कितने लोग आपके सामने झुकते हैं। सामने कराम, इसी तरह माल भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है। हम एक साबिर फ़कीर को आसानी से पहचान लेते हैं, मगर एक शाकिर दौलतमंद बहुत कम नज़र आता है। कितने ताजर ऐसे हैं जो अपने माल को मुकम्मल तौर पर हलाल तरीके से कमाते हैं, मुलाजमीन के हकूक अदा करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि माल इंसान के अंदर मौजूद ख्वाहिशात को बड़ा कर देता है। जिसके पास थोड़ा है उसका इख्तियार महदूद है, जिसके पास बहुत है उसके इम्तहानात भी ज़्यादा हैं। कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, किसका हक रोका, किसकी मदद की, कितना दिखावा किया, कितना शुक्र अदा किया। तो अगर माल हाथ में रहे तो नेमत है, दिल में बैठ जाए तो फितना है, इस बात को याद रखनी है। किसी मजलूम के लिए इंसाफ की बात करना नस्बतन आसान है, क्योंकि उसे इंसाफ की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन जब वही शख्स खुद इख्तदार में आ जाए तो क्या वो अपने मुखालिफ के लिए भी इंसाफ करेगा? यहाँ असल इम्तहान है। एक मुलाजम जब अपने अफसर के जुल्म का शिकार होता है तो अदल की बात करता है, लेकिन जब वो खुद मुदीर बनता है तो क्या अपने मातहतों के साथ वही इंसाफ करता है जिसका कभी मुतालबा करता था? एक शख्स जब कमज़ोर हो तो अकरबा परवरी को बुरा कहता है, लेकिन इख्तियार मिलते ही अपने दोस्तों और ख़ानदानों को तरजीह देने लगता है। यही खैर की आजमाइश है। बाज़ किसान मुसीबत में सब्र तो कर लेता है, मगर खुशहाली में शुक्र नहीं कर पाता। फ़क्र में दुआ तो कर लेता है, दौलत के वक्त फरावानी के वक्त वो भूल जाता है। बीमारी में आजिज़ी इख्तियार करता है, लेकिन सेहत में गुरूर करने लगता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं कि बहुत से लोग इब्तिला बिश्शर में कामयाब हो जाते हैं, मगर इब्तिला बिलखैर में नाकाम रहते हैं। खैर की आजमाइश तो खामोश होती है, उसके साथ दर्द नहीं होता, اس لیے انسان عمومی طور پر متنبع نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ بھائی سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، حالانکہ اس کی روح ایک بڑے امتحان کے درمیان کھڑی ہوتی ہے. سامعین کرام، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی قیمت صرف وہ تکلیف ہے جو ہمیں پہنچتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی اصل دینی قیمت اس نعمت میں ہو جو آپ کے پاس موجود ہے. آپ صحت مند ہیں تو کیا اس صحت کو عبادت، خدمت اور حلال محنت میں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ تعلیم یافتہ ہیں تو کیا علم سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں یا صرف اپنی برتری ثابت کر رہے ہیں؟ آپ صاحب مال ہیں تو کیا اس مال میں محتاجوں کا حق ادا کیا جا رہا ہے؟ آپ مقبول ہیں تو کیا اپنی مقبولیت کو خیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا صرف اپنی انا کے لیے؟ یہ سب امتحانات ہیں. شکر زبان سے صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ صحت کا شکر یہ ہے کہ اسے نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، مال کا شکر یہ ہے کہ اسے حلال میں خرچ کیا جائے اور حقدار کا حق دیا جائے، علم کا شکر یہ ہے کہ اسے چھپایا نہ جائے اور تکبر کا ذریعہ نہ بنایا جائے. اس لیے مومن ہر حال میں بیدار رہتا ہے، وہ مصیبت میں مایوس نہیں ہوتا اور نعمت میں بے خبر نہیں رہتا. وہ جانتا ہے کہ زندگی کا ہر مرحلہ ایک سوال ہے اور اس کا ہر عمل اس سوال کا جواب ہے. اللہ تعالی ہمیں مصیبت میں صبر، نعمت میں شکر، اختیار میں عدل، دولت میں سخاوت اور ہر حال میں سچی بندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
3: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی

0: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है। और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, आदिल खामिस कतर और एशिया के बेहतरीन मिडफील्डर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्हें द ब्राउन गजल के नाम से जाना जाता था। 1965 में पैदा होने वाले आदिल खामिस ने 1983 में अलगराफा को ज्वाइन किया और क्लब के लिए कई यादगार कामयाबियां हासिल की। आदिल खामिस ने कतर की कौमी टीम की 1984 से 2000 तक नुमाइंदगी की और गल्फ कप, एशियन और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में कई अहम गोल स्कोर किए। 1992 में दोहा में गल्फ कप जीतना उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक माना जाता है, जब कतर ने पहली मर्तबा ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। अलगराफा क्लब के साथ उन्होंने दो लीग टाइटल्स, अमीर कप और 1999 में कुवैत में अरब क्लब चैंपियनशिप जीती। 1997-1998 सीजन में उन्होंने कुवैत के अल कत्सिया के लिए भी खेला और फिर वापस आकर अलगराफा क्लब को ज्वाइन किया। बेहतरीन पासिंग, टेक्निकल स्किल्स और कंसिस्टेंसी की वजह से आदिल खामिस आज भी कतर फुटबॉल के लेजेंड तसव्वुर किए जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन या मुराकबा के जो ज़हनी फ़वाद हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और जानेंगे कि मुराकबा हमारी जज्बाती सेहत और रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाता है। जज्बाती सेहत का मतलब है कि हम अपने एहसासात को समझ सकें और उन पर कंट्रोल रख सकें, जिंदगी के चैलेंजेस का मुस्बत अंदाज में सामना कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि गुस्से, परेशानी, मायूसी या खौफ हमारे बिहेवियर, हमारे रवैयों पर असरअंदाज होते हैं। मेडिटेशन हमें अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में समझने और संभालने की सलाहियत रखता है। बाकायदा मुराकबा करने वाले अफराद में सब्र ज़्यादा होता है, गुस्सा कम आता है उन्हें, खुद एतमादी बेहतर होती है उनकी, और इसी तरह से जो नेगेटिविटी है वो भी कम होती है, यानी जो मनफी ख्यालात हैं उनमें भी कमी आती है, दूसरों के लिए हमदर्दी और बर्दाश्त बढ़ती चली जाती है। मुराकबा इंसान को अपने अंदर झांकने और अपनी कैफियत को समझने का मौका देता है, जिससे जज्बाती तवाजुन पैदा होता है और मुश्किल हालात में बेहतर फैसला करने में मदद मिलती है। नींद और जज्बाती की सेहत का भी गहरा ताल्लुक है। जब जहन पुरसकून होता है तो नींद बेहतर आती है, और अच्छी नींद अगले दिन इंसान को ज़्यादा खुश, पुरसकून और एक्टिव रखती है। मुराकबा हर उम्र के अफराद के लिए बेहतरीन है और मुफीद है। स्टूडेंट्स के लिए तवज्जो और याददाश्त बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है, और इसी तरह से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए जहनी दबाव कम करने में मुफीद होता है। बुजुर्ग अफराद के लिए जहनी सुकून और मुस्बत सोच बरकरार रखने में बेहतरीन है। इस तरह अगर आप और हम रोजाना सिर्फ चंद मिनट मुराकबे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो उसके फवायद बहुत जल्द महसूस होने लगते हैं। याद रखिए, अच्छी जहनी और जज्बाती सेहत खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है। मुराकबा ना सिर्फ जहन को सुकून देता है बल्कि इंसान को जिंदगी के नशीब व फराज का सामना एतमाद और तहम्मुल के साथ करने के काबिल भी बनाता है। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और अपनी जहनी और जज्बाती सेहत का खास ख्याल रखिए।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107 कतर। साथियों, गिफ्ट देना और लेना भाई हम सबको पसंद है, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरीज हो, ईद का मौका हो या किसी की अचीवमेंट सेलिब्रेट करनी हो। भाई एक खूबसूरत गिफ्ट किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है, मेरे चेहरे पर तो लाता है भाई। और हाँ, गिफ्ट को स्पेशल बनाने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, उसे अच्छे से रैप करते हैं या करवाते हैं। कलरफुल रैपिंग पेपर हो गया, रिबन्स हो गई, बोज हो गई और शाइनी किस्म की जो डेकोरेशंस है उसके ऊपर लगती हैं, वो गिफ्ट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गिफ्ट खोलने के कुछ मिनट्स बाद वो खूबसूरत रैपिंग कहाँ चली जाती है? वो कोने में पड़े हुए डस्टबिन के अंदर, अक्सर वो सीधा डस्टबिन में चली जाती है। जी हाँ, तो भाई आज के इको स्विच में बात करते हैं सस्टेनेबल गिफ्ट रैपिंग के बारे में, यानी तोहफा भी खूबसूरत हो और उसकी पैकेजिंग एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो। चलिए भाई यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले ना प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए साथियों, गिफ्ट रैपिंग एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन जब हजारों लोग रोजाना गिफ्ट रैप करते हैं तो इसका वेस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ट्रेडिशनल गिफ्ट रैपिंग में ना अक्सर औकात आपको क्या नजर आएगा, प्लास्टिक कोटेड रैपिंग पेपर्स, शाइनी मटेरियल्स जो रिसाइकल नहीं होते, प्लास्टिक रिबन्स और बोज, सिंगल यूज गिफ्ट बैग्स, इसका इस्तेमाल होता है भाई, इन सारी चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। गिफ्ट खोलने के बाद ये चीजें अक्सर का दोबारा यूज नहीं होती और क्या होता है, कचरे का हिस्सा बन जाती हैं। जरा सोचिए, एक बर्थडे पार्टी में अगर कह लें मिनिमम आपको 20 गिफ्ट्स आए और हर गिफ्ट अलग अलग प्लास्टिक या नॉन रिसाइकलेबल रैपिंग में हो, तो भाई कितना सारा वेस्ट क्रिएट हुआ है।

0: लेकिन अच्छी बात यह है कि गिफ्ट की खूबसूरती सिर्फ एक्सपेंसिव रैपिंग से नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक क्रिएटिव आइडिया ज्यादा यादगार बन जाता है साथियों। तो भाई सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन यहाँ ये है साथियों कि सस्टेनेबल गिफ्ट रैपिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज ये कि रीयूजेबल गिफ्ट बैग्स चूज करें। एक खूबसूरत कपड़े का बैग या रीयूजेबल गिफ्ट बैग को बार बार यूज किया जा सकता है, ये स्टाइलिश भी होता है और इससे वेस्ट भी कम होता है, बता रही हूँ। और एक और ना अलग से गिफ्ट टाइप आइटम भी बन जाता है कि बंदा उसको बाद में भी जिसको आपने गिफ्ट दिया वो लेकर शोबाजी में घूम सकता है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि पुराने मटेरियल्स को रीयूज करें। घर में मौजूद चीजें जो दोबारा यूज करें वो अगर मैं मिसाल के तौर पर दूं तो पुराने न्यूज़पेपर्स हो गए, ओल्ड मैप्स हो गए, फैब्रिक पीसेस हो गए, डेकोरेटिव बॉक्सेस हो गए, इनको क्रिएटिव रैपिंग के लिए यूज किया जा सकता है। बस थोड़ा सा आपका जो पिकासो है ना अंदर वाला उसको जगाना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि सिंपल डेकोरेशंस यूज करें ना, प्लास्टिक रिबन्स की जगह ज्यूड स्ट्रिंग्स हो गई, नेचुरल डेकोरेशंस हो गए, रीयूजेबल रिबन्स हो गए, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा चौथी चीज ये कि गिफ्ट बॉक्स को दोबारा यूज करें। अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस को फेंकने के बजाय संभाल कर रखें और अगली दफा किसी और को गिफ्ट देने के लिए यूज कर लें। मैं तो ये करती हूँ भाई, मेरी फेवरेट चीज है ग्लास की बॉटल्स और बॉक्सेस, मैं इन्हें दिल खोल के रीयूज करती हूँ। अच्छा भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपीरियंस गिफ्ट्स। कभी कभी गिफ्ट रैपिंग की जरूरत ही नहीं होती साथियों। आप किसी को डिनर एक्सपीरियंस पे लेकर जा सकते हैं, एक्टिविटी टिकट्स दे सकते हैं, लर्निंग कोर्सेज दे सकते हैं, फैमिली आउटिंग करवा सकते हैं। इनमें से कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हैं जो यादगार भी होता है और वेस्ट भी कम क्रिएट करता है। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दी जाए ना साथियों तो आजकल बहुत से लोग क्रिएटिव और सस्टेनेबल गिफ्ट रैप आइडियाज अपना रहे हैं। कुछ लोग कपड़े के टुकड़ों से ट्रेडिशनल स्टाइल रैपिंग करते हैं जो दोबारा यूज हो सकती है। कुछ फैमिलीज गिफ्ट बैग्स का कलेक्शन बना लेती हैं और हर ओकेजन पर उन्हें रीयूज करती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ भाई। कुछ लोग बच्चों के गिफ्ट्स को कलरफुल ओल्ड न्यूज़पेपर या हैंडमेड डेकोरेशन से रैप करवा लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जब रैपिंग यूनिक होती है तो गिफ्ट और भी ज्यादा पर्सनल फील होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि क्रिएटिविटी और केयर भी शामिल होती है। तो साथियों आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगली बार जब आप कोई गिफ्ट दें तो ट्रेडिशनल रैपिंग के बजाय सस्टेनेबल ऑप्शन ट्राई करें और हमें बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो करें और मैसेज करें। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar और हमें बताएं आपने कभी किसी गिफ्ट को क्रिएटिव तरीके से रैप किया है या आपके पास कोई पुराना गिफ्ट बॉक्स है जो आप आज भी रीयूज कर रहे हैं। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए तोहफा सिर्फ अंदर की चीज से खास नहीं होता बल्कि उसे देने के तरीके से भी यादगार बनता है। तो भाई छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। हमारा आज का टॉपिक है इख्तलाफ का एहतराम करना। हर इंसान की सोच और नजरिया मुख्तलिफ होता है। इख्तलाफ होना फितरी बात है, लेकिन उसका तरीका बहुत अहम होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम दूसरों की राय का एहतराम करें, चाहे हम उससे मुख्तलिफ ही क्यों ना सोचते हों। अक्सर लोग अपनी बात मनवाने के लिए सख्ती और बहस का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब हम इख्तलाफ को तहम्मुल और अदब के साथ हैंडल करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। ये रवैया एक मैच्योर और समझदार इंसान की निशानी है। आज का अमल ये है कि किसी भी डिसएग्रीमेंट में अपनी आवाज बुलंद करने के बजाय नरमी से अपनी बात रखें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: Well, हमारा बड़ा ही खास सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाएंगे. आज हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल प्रोजेक्ट. सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एंड दैट टू हियर इन कतर. वैसे तो आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा है, लेकिन चलिए आज एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आज की जरूरियात को पूरा करना बिना इस बात के कि आने वाली नस्लों के रिसोर्सेज नुकसान में ना पड़े. यानी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना और एक हेल्दी फ्यूचर बनाना. कतर ने पिछले चंद सालों में ना सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में बहुत अहम कदम उठाए हैं. आज हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की, यानी क्लीन एनर्जी. दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से एनवायरमेंट पर असर पड़ रहा है, इसीलिए कतर सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है. सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये क्लीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स है. सूरज की रोशनी से बिजली पैदा की जाती है जो कार्बन इमिशंस को कम कर देती है. वहीं दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन भी कतर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. कतर एक डेजर्ट कंट्री है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ रेगिस्तान ही है.

और यहां पानी की अहमियत सबसे ज्यादा है डेजर्ट होने की या डेजर्ट कंट्री होने की वजह से पानी की अहमियत और बढ़ जाती है और इसीलिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी को बचाना और एफिशिएंटली

0: एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम और एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे एनर्जी की बचत होती है और एनवायरमेंट पर कम प्रेशर पड़ता है। और एक और अहम फील्ड है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। जब ज्यादा लोग प्राइवेट कार्स इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों बढ़ता है। इस चैलेंज को देखते हुए कतर ने मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। जी हाँ, मेट्रो सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बेहतर ऑप्शन है और लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो शेयर ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करें। इससे फ्यूल कंजम्पशन और पोल्यूशन दोनों में कमी आती है। सो बस डियर लिसनर्स, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वेस्ट मैनेजमेंट भी सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जी हाँ, रोजाना हम बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और अगर इसका सही इस्तेमाल हो, सही तरीके से मैनेज हो तो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कतर में रिसाइकलिंग और वेस्ट रिडक्शन पर खास तवज्जो दी जा रही है। लोगों को भी एनकरेज किया जा रहा है कि वो प्लास्टिक और दूसरे मटेरियल्स को रिसाइकल करें और अननेसेसरली जो है वो वेस्ट उसे कम करें। जी, सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तक महदूद नहीं रहती, हर सिटीजन भी इसमें एक अहम रोल अदा करता है जिस पर हमने हमेशा बात की। छोटी छोटी आदतें, मिसाल के तौर पर लाइट्स का सही इस्तेमाल, पानी बचाना, रीयूजेबल बैग्स का इस्तेमाल करना, रीसाइक्लिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना, कितनी अच्छी आदत है। जिया कतर का नेशनल विजन 2030 भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है और इस विजन का मकसद है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए बेहतर जिंदगी का इंतजाम करना। ये हमें ये भी पैगाम देता है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों एक साथ चल सकती हैं। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट या पॉलिसी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है और ये लाइफस्टाइल हमें और आपको अडॉप्ट करनी है। जब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और आम लोग मिलकर साथ में काम करने लगे ना, तो बड़ा ही पॉजिटिव चेंज आता है। कतर के सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हमें ये दिखाते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट का ख्याल भी रखा जा सकता है। तो लिसनर्स, आज हमने जाना कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कतर के एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए कितने अहम हैं। हम सबका फर्ज है कि हम भी इस मिशन का हिस्सा बने और अपने डेली लाइफ में सस्टेनेबल हैबिट्स को अपनाएं। मैं हूं आपकी होस्ट नाजी, आपसे इजाजत लूंगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एनवायरमेंट का भी बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। भाई अगर आपके ऊपर उधारी हो गई है और मैं वो उधारी चुका दूं तो क्या बात है भाई फजील, आप ही मेरे अच्छे दोस्त हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे मैं हूं फजील और इस शो का नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। वेल दोस्तों, आजकल देखा गया है कि डेबिट कार्ड का कम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग ज्यादा करने लग गए हैं, और ऐसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से आपके साथ कैसा फ्रॉड हो सकता है इस पर जरा बात कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपका क्रेडिट, मेरे कई दोस्त हैं जिनका 50,000 53,000 60,000-70,000 तक क्रेडिट हो गया लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके पास रिमाइंडर आता रहता है और थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। कुछ लोग हैं 10,000-20,000 वाले भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड का एकदम स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आज का फ्रॉड अवेयरनेस है, मैं उनके लिए बताने वाला हूं जिनके ऊपर क्रेडिट है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 50,000-60,000 का क्रेडिट है, आपके पास कॉल आता है और उस कॉल में बताया जाता है कि आपके बैंक में आपके ऊपर जो क्रेडिट कार्ड है उस पर इतना हजार रुपए है, लेकिन ये स्पेसिफिकली कॉल है सिर्फ आपके लिए जिसपे आपके क्रेडिट पर डिस्काउंट मिल रहा है, और ये डिस्काउंट 5% या 10% नहीं 50% से 60% या 70% तक डिस्काउंट बताते हैं, और आपकी आंखें हो जाती बड़ी और आपको लगता है हैं वो जो छप्पर फाड़ के मेरे लिए किस्मत खुलने वाली थी वो आज का दिन है, 50% से 60% या 70% का डिस्काउंट मेरे क्रेडिट पे। तो अगर मेरे पास 50,000 रुपए का क्रेडिट है मेरे सर पे, तो मुझे सिर्फ 20,000-25,000 या हो सकता है 10-15,000 देना पड़े। तो आप ऐसे में फंस जाते हैं और आपको लगता है बिल्कुल इस बैंक के तरफ से कॉल आया है, क्रेडिट भी नंबर सही बताया है, डिटेल्स भी मेरी सही बताया है, लेकिन ये सारी डिटेल्स आपकी कॉम्प्रोमाइज वक्त वक्त पे होती रहती है और आप अब फंस चुके हैं। ऐसे में आप एक्चुअली करते ये हैं कि आप उसको डिटेल्स देते हैं, आखिरी में वो आपसे मेन सेंसिटिव जो सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है वो मांगता है, और आपको लगता है 10-15,000-20,000 रुपए दे के ये क्रेडिट सर से उतारो। और एक मजे की बात यहां पर ये है कि वो जो कॉल करता है आपको और कहता है कि 50% से 60% या 70% का डिस्काउंट है, वो आपको सिर्फ आज की मोहलत देता है, और ये बहुत ज्यादा वायरल वाला स्कैम चल रहा है, और आज की मोहलत में भी आपको टाइम देता है, आपको सोचने का मौका देता है। अगर उसने दोपहर में 11, 12, 1 बजे कॉल करी है, शाम को 6 बजे भी कॉल करके आपको सेम बात बताएगा और कहेगा ये बस खत्म होने वाला है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको करना है ये क्रेडिट, अगर आपको अपने सर से उतारना है तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर उतारिए। तो आपको 12-1 बजे कॉल करके सेम सिचुएशन बताएगा, सेम जानकारी देगा, और एक को 5 से 6 ताकि आपको भरोसे में लिया जाए और कहा जाए कि आज आखिरी दिन है, जल्दबाजी में आप सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उससे शेयर कर देते हैं और सारा पैसा गायब। वेल, बचा कैसे जाए इस फ्रॉड से, इस स्कैम से, इस पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए, 3 बड़े ही मेन अहम मुद्दे हैं बचने के लिए। पहली बात तो आपके पास कॉल आएगी और 50% से 60% का जो डिस्काउंट है ये अनरियल है। खुद सोचिए किसी पर आप उधार हैं और वो उधार में इतना बड़ा डिस्काउंट तो नहीं देगा, ये रेड फ्लैग है। दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट करते हुए, ऑनलाइन जब भी पेमेंट आप करें तो देखें वो ऑथेंटिक पेमेंट के लिए कहता है या नहीं। दूसरा ये है कि ऑनलाइन पेमेंट में भी आपको ये देखना होगा कि आप अपनी तरफ से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि OTP CVV नंबर ना शेयर करें। तीसरा ऑप्शन, भाई साहब ये सबसे ज्यादा सिंपल है किसी भी स्कैमर को पहचानने के लिए, जब आपके लिए कोई जल्दबाजी कर रहा हो, जब आपको स्कैमर्स जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी करो जल्दी करो ये कर रहे हैं ना, तो आपको समझ जाना चाहिए ये एक तरह का स्कैम है, और कई बार आपकी जो असली बात है, आपकी जो असली क्वेश्चन है जिससे स्कैमर्स को परेशानी होती है वो कट कर देते हैं, और असल जो उनको चाहिए होता है, जो सवाल का जवाब उनको चाहिए होता है, वो उस पर फोकस करते हैं। हो सकता है वो आपसे QID नंबर, जैसे मेरे पास अभी 3 दिन पहले कॉल आया, वो मुझसे QID नंबर कंफर्म कर रहा था और मैं बार बार QID नंबर चेंज कर रहा था, लेकिन फिर वो मुझसे QID नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहे थे। तो ऐसे में वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि मुझे QID नंबर करेक्ट चाहिए, और मैं जानबूझ के हर बार QID नंबर में एक डिटेल या एक डिजिट चेंज कर रहा था। तो बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना है और होशियार रहना है, किसी भी तरह का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, और नए जमाने के स्कैम से बचाने के लिए शो को मैं रेगुलर आपके लिए लाता रहूंगा FM 107 पे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ। छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सस्टेन द फ्यूचर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब के दिल के बहुत करीब है।
0: टॉपिक ऑफ द डे,
1: आवर ओशन, आवर ब्लू हार्ट जो क्राइसिस में है। ओशन इन क्राइसिस, ये है आज का थीम। फ्रॉम ओवर फिशिंग टू कोरल ब्लीचिंग और पोल्यूशन, हम डिस्कस करेंगे कि हमारे समंदर क्यों खतरे में है और हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड और अपनी थॉट्स शेयर करें ऑन आवर सोशल मीडिया @FM107 कतर या व्हाट्सएप पर @666221107। लेट्स डाइव इन। आज हम बात करेंगे कि हमारे ओशंस क्यों और कैसे मुसीबत में हैं। समंदर सिर्फ पानी का दरिया नहीं, ये जिंदगी का सोर्स है। फिश, कोरल रीफ्स और ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं, ये सब समंदर से मिलता है। लेकिन ओवर फिशिंग, कोरल ब्लीचिंग और पोल्यूशन की वजह से हमारे ओशंस का फ्यूचर खतरे में है।
0: सस्टेन द फ्यूचर।
1: आपने सुना होगा समंदर को अक्सर ब्लू हार्ट ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन का 70% एरिया कवर करते हैं और इंसान के जीने का बेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि हमारे ओशंस क्राइसिस में है। हम डिस्कस करेंगे ओशंस की इम्पोर्टेंस, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जैसे ओवरफिशिंग, कोरल ब्लीचिंग, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल एग्जांपल्स और रियल लाइफ स्टोरीज भी मैं शेयर करूंगी, सॉल्यूशंस और एफर्ट्स जो हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओशंस, हमारा ब्लू हार्ट। समंदर सिर्फ खूबसूरत सीनरी नहीं देते, बल्कि पूरे प्लैनेट का बैलेंस मेंटेन करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इन ओशंस की? सबसे पहले तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ओशंस में फाइटोप्लैंकटन और एल्गी 50-70% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो हम डेली लाइफ इनहेल करते हैं। मतलब हमारी हर दूसरी सांस समंदर की देन है। ओशंस हीट अब्सॉर्ब करते हैं और वेदर सिस्टम्स को बैलेंस करते हैं। अगर ओशंस ना होते तो अर्थ एक्सट्रीम हॉट और अनलिवेबल होती। बिलियंस लोग समंदर से मिलने वाले सी फूड पर डिपेंड करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड 80% सी रूट्स के थ्रू होता है। ओशंस पे मिलियंस स्पीशीज रहते हैं, फ्रॉम टाइनीस्ट प्लैंकटन टू लार्जेस्ट व्हेल। ये सब देखकर लगता है कि ओशंस ट्रूली हमारे प्लैनेट का ब्लू हार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हार्ट अब क्राइसिस में है। क्राइसिस नंबर वन की अगर हम बात करें तो ये है ओवर फिशिंग। फिशिंग एक नेचुरल प्रैक्टिस है, लेकिन जब वो अनसस्टेनेबल हो जाए तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है। क्या हो रहा है? हर साल मिलियंस टन फिश ओशन से निकाल ली जाती हैं। लार्ज इंडस्ट्रियल ट्रॉलर्स पूरी पूरी फिश पॉपुलेशन को खत्म कर देते हैं। जोविनाइल फिश जो अभी ब्रीड भी नहीं कर पाई होती, भी कैच हो जाती है, जिससे स्पीशीज रिकवर नहीं कर पाती। इम्पैक्ट, मैरीन फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है। लोकल फिशरमैन जो ट्रेडिशनल तरीके से फिशिंग करते हैं, उनकी लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो जाती है। पॉपुलर स्पीशीज जैसे ट्यूना और कॉड अब इनडेंजर्ड लिस्ट में आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, एटलांटिक कॉड कोलैप्स। 1990s में कनाडा के कॉड फिशरीज इतनी ओवरफिश्ड हुई कि पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स्ड हो गई। रिकवरी में डेकेड्स लगेंगे। पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान के फिशरमैन भी अब कंप्लेन करते हैं कि पहले जैसी कैच नहीं मिलती। ये क्लियर साइन है ओवर फिशिंग का। क्राइसिस नंबर टू, कोरल ब्लीचिंग। कोरल रीफ्स ओशंस के रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अब ब्लीचिंग की वजह से मर रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या है? कोरल्स एक सिंबायोटिक एल्गे के साथ रहते हैं जो उन्हें फूड और कलर देती है। जब समंदर का टेम्परेचर बढ़ता है या पोल्यूशन ज्यादा होती है तो कोरल्स स्ट्रेस में आकर अपना एल्गे लूज कर देती हैं। रिजल्ट वो सफेद ब्लीच्ड और वीक हो जाती हैं। इंपैक्ट मैरीन स्पीशीज जो कोरल्स पे डिपेंड करती हैं उनके घर खत्म हो रहे हैं। टूरिज्म और फिशिंग इंडस्ट्रीज भी इफेक्ट होती हैं। ओशंस की रेजिलियंस कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम रिपीटेड ब्लीचिंग इवेंट की वजह से 50% से ज्यादा डैमेज हो चुका है। मालदीव्स कोरल ब्लीचिंग ने उनकी टूरिज्म और फिशरीज दोनों को थ्रेटन किया है। क्राइसिस नंबर 3 पोल्यूशन। ओशंस दुनिया का डस्टबिन बन गए हैं। प्लास्टिक केमिकल और ऑयल स्पिल्स ने उनकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हर साल 8 मिलियन टन्स प्लास्टिक ओशंस में डंप होता है। मैरीन एनिमल्स प्लास्टिक बैग्स को जेली फिश समझकर खा लेते हैं और मर जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स फूड चेन में घुस गए हैं और अब ह्यूमन के बॉडीज में भी डिटेक्ट हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चरल रन ऑफ ओशंस में चले जाते हैं। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एल्गी ब्लूम्स क्रिएट करते हैं जो ऑक्सीजन डिप्लीट कर देते हैं। डेड ज़ोन्स जहां कोई एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव नहीं करती। टैंकर्स के एक्सीडेंट्स या ड्रिलिंग रिग से निकला ऑयल ओशंस को कवर कर देता है। बर्ड्स और फिश ऑयल में लिपट जाते हैं और मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। पैसिफिक ओशन में प्लास्टिक का एक फ्लोटिंग आइलैंड जैसा मास बना हुआ है जो फ्रांस के साइज के बराबर है। कराची के पास ऑयल स्पिल्स और अनट्रीटेड सेवेज डंपिंग ने लोकल फिशरीज और बीचेस को हैवीली पोल्यूट किया है। क्राइसिस नंबर 4 क्लाइमेट चेंज एंड वार्मिंग ओशंस। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा विक्टिम ओशंस बन गए हैं। इंपैक्ट राइजिंग टेम्परेचर्स वार्म वाटर मैरीन लाइफ के लिए अनब्यूरेबल होता है। कोरल्स ब्लीच होते हैं, फिश माइग्रेशन पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। मेल्टिंग ग्लेशियर्स और एक्सपैंडिंग वार्म वाटर कोस्ट लाइन्स को ड्राउन कर रही हैं। ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एसिडिक बना रहा है जिससे शेल्स और कोरल डिसॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक आइलैंड्स जैसे क्रीबाती और तुवालु ड्राउनिंग के खतरे में हैं। उनके लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन रहे हैं। आर्कटिक ओशन में आइस लॉस से पोलर बियर्स और सील्स के हैबिटेट्स वैनिश हो रहे हैं। क्राइसिस नंबर 5 लॉस ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी। सब प्रॉब्लम्स का कंबाइन इफेक्ट है कि ओशंस की बायोडाइवर्सिटी फास्ट डिक्लाइन कर रही है। वेल्स और शार्क्स जैसी आइकॉनिक स्पीशीज इंडेंजर्ड हैं। स्मॉल स्पीशीज जैसे प्लैंकटन एंड क्रिल भी क्लाइमेट और पोल्यूशन से इफेक्ट हो रहे हैं। अगर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल एफर्ट्स की जो कि ओशंस को सेव करने के लिए किया जा रहा है। थैंकफुली दुनिया भर में एफर्ट्स हो रही हैं। जैसे लैंड पे नेशनल पार्क्स होते हैं वैसे ओशंस में एमपीएस बनाए गए हैं। फिशिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होती है ताकि मैरीन लाइफ रिकवर करे। फॉर एग्जाम्पल मैरीन नेशनल मोनूमेंट हवाई दुनिया के सबसे बड़े एमपीएस में से है। इसके साथ ही फिशिंग रेगुलेशंस जैसे सीजनल बैंस और साइज लिमिट्स इम्पोज किए जा रहे हैं ताकि स्पीशीज रीजनरेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन में स्ट्रिक्ट फिशिंग कोटास अप्लाई होते हैं। प्लास्टिक बैन इनिशिएटिव्स, कीनिया और रवांडा में प्लास्टिक बैग्स बैंड हैं। ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट्स फ्लोटिंग डिवाइसेस से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही कोरल रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, साइंटिस्ट कोरल्स को नर्सरीज में ग्रो करके ओशंस में रीप्लांट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स और फ्लोरिडा रीफ रीस्टोरेशन प्रोग्राम्स। इसके साथ ही ग्लोबल एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जो सस्टेनेबल ओशन गोल्स सेट करता है। पाकिस्तान का कोस्टलाइन 1000 किलोमीटर से ज्यादा और अरेबियन सी हमारे लिए फूड और ट्रेड दोनों का सोर्स है, लेकिन इश्यूज बहुत हैं। कराची से अनट्रीटेड सेवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट समंदर में जाता है। ओवर फिशिंग लोकल फिशरमैन के लाइवलीहुड्स को खतरे में डाल रही है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, उनकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि एनजीओस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मैंग्रोव प्लांटेशन और मैरीन कंजर्वेशन पर काम कर रहे हैं। समुंदर हमारे प्लैनेट का ब्लू हार्ट है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्लाइमेट को बैलेंस करते हैं, फूड और ट्रेड प्रोवाइड करते हैं और मिलियंस स्पीशीज का घर है। लेकिन ये हाथ अब क्राइसिस में है। ओवरफिशिंग, कोरल ब्लीचिंग, पोल्यूटिंग और क्लाइमेट चेंज ने इसकी हेल्थ खराब कर दी है। अगर हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो ओशंस का डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट्स, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स मिलकर एक्ट करें तो ओशंस रिकवर भी कर सकती हैं। समंदर हमें सिर्फ रिसोर्सेज नहीं देते, ये हमारी जिंदगी की फाउंडेशन है। उन्हें बचाना सिर्फ एक चॉइस नहीं, एक ड्यूटी है। आर ओशियंस आर ब्लू हार्ट, लेट्स सेव देम बिफोर इट्स टू लेट। सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि ओशंस के बगैर हमारी फूड चेन, क्लाइमेट रेगुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई सब खतरे में है। टू कंट्रीब्यूट फॉर अ बेटर फ्यूचर हमें कलेक्टिव एक्शंस लेने होंगे।

छोटी छोटी चीजें जैसे प्लास्टिक यूज कम करना या सस्टेनेबल सी फूड खरीदना बड़ा फर्क ला सकते हैं लेट्स मेक आवर ओशियंस थ्राइव फॉर फ्यूचर जनरेशंस चिलिस्टर्स यहां पे वक्त हुआ है हमारे एक ब्रेक का ब्रेक के बाद वापस आते हैं सुनते रहिए एफएम 107 तलसी देसी

0: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे भवश खान और अब वक्त है ग्रीन फ्लैश का।
0: ग्रीन फ्लैश,
1: अब सुनिए दुनिया भर से सस्टेनेबिलिटी की तेजी से तारुफ कराने वाली खबरें हमारे ग्रीन फ्लैश सेगमेंट में। पहली खबर, ऑस्ट्रेलिया ने अपने ग्रेट बैरियर रीफ के लिए न्यू मैरीन सेंचुरीज बनाए हैं जहां फिशिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज पर सख्त पाबंदी है। दूसरी खबर, सी शेल्स ने अपने वाटर्स का 30% प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है जो मैरीन लाइफ के लिए

0: सेफ हेवन बनेगा। तीसरी खबर, जापान में एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो माइक्रोप्लास्टिक्स को समंदर से फिल्टर करती है। ये तीनों स्टोरीज हमें उम्मीद देती हैं कि दुनिया समंदरों को बचाने के लिए काम कर रही है। अब वक्त है ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट का।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: साइंटिस्ट ने एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डेवलप किया है जो प्लास्टिक फिशिंग नेट्स की जगह यूज हो सकता है। ये नेट समंदर में डिसॉल्व हो जाती हैं, जिससे मैरीन लाइफ को नुकसान नहीं होता। ये छोटी सी इनोवेशन ओवर फिशिंग और पोल्यूशन दोनों से लड़ने में मदद करेगी। Isn't that amazing? अब वक्त है कुछ इको लिविंग टिप्स का।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल सी फूड खरीदें। लोकल मार्केट्स में हामोर या ओवर फिश स्पीशीज के बजाय सस्टेनेबली सोर्स्ड फिश चुनें। जॉइन बीच क्लीनअप्स। कतर में कई एनजीओज बीच क्लीनअप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करती हैं। ज्वाइन करें और प्लास्टिक पोल्यूशन कम करें। प्लास्टिक स्ट्रॉज और सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स का यूज बंद करें। रीयूजेबल अल्टरनेटिव्स अपनाएं। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके और हमारे ओशंस के लिए बड़ा फर्क ला सकते हैं। अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का।
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट।
0: आज सुनेंगे एक यंग खतरे मैरीन बायोलॉजिस्ट शेयर करेंगे अपना पैशन सेविंग कोरल रीफ्स के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे कि लोकल यूथ किस तरह से ज्वाइन कर सकती है रीफ रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स।
2: With the next century, we are expecting 2 billion more people on the planet. And with the increase in the consumer behavior towards the seafood, this is a big challenge in terms of how we can increase the production in terms of not affecting or harming the environment.
3: While initiatives like this may seem like a drop in the ocean on a global scale, here in the Gulf, it's providing a positive step toward addressing one of the most pressing issues of our time.
0: Listeners, आपने सुनी अब एक इंस्पायरिंग वॉइस जो हमें बताती है कि हर छोटा कदम काउंट करता है। आप भी इन एफर्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। वॉलंटियर करें और अपने समंदर को बचाएं।
1: वीकली चैलेंज।
0: आज का चैलेंज है, इस हफ्ते अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स पूरी तरह से। नो प्लास्टिक बैग्स, नो स्ट्रॉस, नो डिस्पोजेबल बॉटल्स। नेक्स्ट वीक हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे कंप्लीट किया। व्हाट्सएप करें @666-22107 या सोशल मीडिया पर @FM107 कतर। लेट्स डू दिस फॉर आवर ओशंस। शुक्रिया आप सबका सस्टेन द फ्यूचर के साथ वक्त गुजारने के लिए। अगले हफ्ते हम बात करेंगे ई वेस्ट के हिडन टॉक्सिक प्रॉब्लम के बारे में। व्हाट हैपेंस जब हम अपने पुराने फोन्स और अप्लायंसेस फेंक देते हैं। Stay tuned, follow us @FM107 Qatar, WhatsApp पे message करें @666-22107। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने समंदर का ख्याल रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: Sustain the future.
4: आप सुन रहे हैं FM 107.
5: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
3: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है. इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकेंड्स में कम्प्लीट कर सकते हैं. ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है. साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं. इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है. वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर. माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड. हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात. स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई. बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक. सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी, दिल से देसी. याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत.
5: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं. MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ.
6: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
2: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछ गछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहां होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संगसार ही कर डालेंगे या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह न पा सकेंगे। उस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुत्तला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि कयामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन अस्हाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हांकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे, कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस न करो और न उनके मुताल्लिक किसी से कुछ पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में कभी ये न कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा।

Una.